है। मॉनसून से पहले की पहली फुहारों ने खेड़ा के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। खेड़ा जिले के कठलाल और महुदा इलाके के ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा कर दिया बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी। खरीफ फसलों की बुआई का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं।

0: रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। गुजरात के ही जामनगर में भी बारिश ने सबको भिगो कर रख दिया। तपती गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि गली मोहल्लों में पानी भर गया।
1: आमतौर पर गुजरात में 15 जून तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अल नीनो की असर के चलते इस बार अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉनसून की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग का माने तो अगले 5 दिन तक आधिकारिक मॉनसून के किसी प्रकार के संकेत नहीं है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, लेकिन अभी भी गुजरात में आधिकारिक मॉनसून को लेकर इंतजार और भी अगले 5 दिन तक करना होगा। लेकिन इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के अलग अलग शहरों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। लेकिन 2 दिन से अगले 5 दिनों तक की अगर बात करें तो मात्र सूरत और वापी समेत जो दक्षिण गुजरात के हिस्से हैं वहां पे सामान्य बारिश होगी। लेकिन ये जो सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर के चलते होने के संकेत हैं। यानी आधिकारिक मॉनसून के लिए गुजरात को अभी भी अगले 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच जो गुजरात के अंदर महत्तम टेम्परेचर की भी बात कर लें तो अहमदाबाद में लगातार 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 5 दिन तक किसी भी प्रकार की गर्मी से राहत के गुजरात में संकेत भी नहीं मिल रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहाल, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, मेहसाणा, भरूच समेत कुछ और जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: जो फोरकास्ट दिया गया है 18 से लेकर 24 जून तक, इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र को दोनों रीजन में ही वो अगले 3 दिन तक। आज जो थंडरस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया गया है, बिजली गिरने के साथ मेघ गर्जना भी रहेगा और जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का भी संभावना है। और कल से हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है। आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। कोस्टल क्षेत्र में अभी जो पवन का दिशा है दोनों क्षेत्रों में, उत्तर और दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है। जो स्पीड है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 25 नॉट होने का संभावना है। इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन थंडर शावर की भी संभावना है।
0: वहीं अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहने की संभावना है। दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट बने रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बारिश और तूफान तो कभी आसमान में बादलों की आवाजाही से गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो 21 जून को लू चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
3: देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है उमस की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है लगातार बारिश देखी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे। आज तापमान में हालांकि कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है सक्रिय है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए दिया गया है कि जो बारिश है वो हल्की बारिश जो है वो भी देखी जा सकती है। उसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लेकिन इस वक्त की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो मौसम एकदम साफ नजर आएगा, बीच बीच में धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। इस तरीके से जो हालात है वो इस वक्त के बने हुए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से अभी रात यहाँ पर नहीं

0: ही मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पे 3 दिन तक कुछ इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। तो वहीं मॉनसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि वहां पर अच्छी खासी बारिश जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और उसी के लिए पूरे चाहे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसके साथ ही दक्षिण हिस्से से मॉनसून की जो शुरुआत हुई थी और वो अब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसका असर जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मौसम अलग अलग राज्यों पर इस वक्त बना हुआ है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो अभी तापमान बढ़े हुए हैं लेकिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद।
1: हालांकि जून के तीसरे हफ्ते में भी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मॉनसूनी बादल नहीं है। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से ये तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह, जामनगर से ब्रिजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 118वां स्थान मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मऊ में गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर भारत के सबसे अच्छे एजुकेशन और रिसर्च संस्थान के तौर पर अपनी जगह बना ली है। आज जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया। संस्थान ने 123वीं रैंक से लंबी छलांग लगाकर 118वीं ग्लोबल रैंक हासिल की। ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 118वीं रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसी भी भारतीय संस्थान के अब तक हासिल की गई सबसे ऊंची ग्लोबल रैंक की बराबरी भी कर ली है। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया जाएगा। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम डालना पड़ता था और कई बार इसमें कई दिन या हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में ये प्रक्रिया लगभग तुरंत पूरी हो सकेगी। हालांकि निकासी के नियम और लिमिट मौजूदा शर्तों के अनुसार ही रहेंगे, जैसे रिटायरमेंट या बेरोजगारी पर ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा। माना जा रहा है कि जून के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकलना शुरू हो सकता है। रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने एडवांस्ड गरुड़ास्त्र 120mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। ये एक वाहन पर लगाया जाने वाला 120mm का भारी मोर्टार है, जो तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह पर जाने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। ये सिस्टम भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के गया के पत्थरकट्टी गांव की काले पत्थर की मूर्तियों को जीआई टैग मिल गया है। गांव को मिले इस उपलब्धि से गांव के शिल्पकारों में बेहद खुशी है। पत्थरकट्टी गांव में पीढ़ियों से पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां के कारीगरों ने विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब जीआई टैग मिलने से पत्थरकट्टी की मूर्तियों की मांग देश विदेश में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की कला को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए हीरानगर में नया सेल्स आउटलेट शुरू किया है। ये सेल्स आउटलेट उम्मीद स्कीम के तहत शुरू हुआ है। कश्मीर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, मिशन और अभियानों में ये सेल्स आउटलेट एक ऐसी पहल है जो हीरानगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में कारगर साबित होगी।
2: न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: कच्चे तेल की कीमतें कम होने और वेस्ट एशिया में तनाव घटने से कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 77,409 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 24,168 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 960 रुपए गिरकर 153,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,607 रुपए से गिरकर 248,740 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनने के कारण 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर बंद हुआ।
2: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: कुछ लोग जिस काम को रोजगार समझते हैं उसे कुछ लोग कला बना देते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों की मिसाल है ये वायरल तस्वीरें। ये शेफ सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहा बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा है। अपने काम को वो इस तरह मजा लेकर कर रहा है कि उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। हवा में परफेक्ट स्पिन के साथ चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो ये तस्वीरें देख रहा है इस हुनरबाज को सलाम किए बिना नहीं रह रहा। तपती गर्मी में कम ही लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इंसान की ही प्यास बुझा दे, लेकिन इस बच्ची को देखिए, गाय को इस चुभती गर्मी में हैंडपंप से पानी पिलाती इस बच्ची को देखिए, जिसने गाय माता की प्यास को महसूस किया। अब ये तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्चे के संस्कार पर फिदा हो गए हैं। करुणा, दया और संवेदनशीलता की एक और तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है, जहां एक स्ट्रीट वेंडर एक भूखी प्रेग्नेंट डॉगी की भूख को महसूस करता है। ये डॉगी उसकी दुकान पर बनते भोजन को टुकुर टुकुर देख रही थी। वेंडर को समझ आ जाता है कि ये भूखी भी है और गर्भवती भी। तब वो उसे अपने ठेले से गर्मा गर्म खाना पेट भर खिलाता है। लोग वीडियो देखकर स्ट्रीट वेंडर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको अपने आसपास के लोगों और पशुओं के प्रति ऐसे ही करुणामयी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस डिसेबल्ड डॉगी का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ये डॉगी चलती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के बीच फंस जाता है, तब स्कूटी पर बैठा ये लड़का उसे सड़क के पार जाने में मदद करता है। डॉगी पहले तो मदद का एक कदम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही समझता है लड़के के साथ सड़क पार करने लगता है। यूजर्स अब लड़के की सूझबूझ को सराहा रहे हैं। गर्मी में जानवरों हो या इंसान, सबको पानी चाहिए, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। गर्मी के मौसम में पानी की बौछारों के बीच इस डॉगी की तस्वीर वायरल है, जो गर्मी के बीच घर के दरवाजे से निकलते ही जमकर पानी की फुहारों का आनंद उठा रहा है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं कि इसे कहते हैं विशुद्ध आनंद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: और वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की सड़क किनारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। जब उसके इस नेक काम पर एक बुजुर्ग की नजर पड़ी तो वह उसके पास आकर उसके इस काम के लिए एक छोटा सा इनाम देता है। ये वीडियो दिल्ली के शेख सराय इलाके का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस में रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला हाथ में पेन लेकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टीव बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हुए पेन खरीदने की बात कहते हैं। महिला बताती है कि एक पेन की कीमत 50 रुपए है। स्टीव पहले 100 रुपए देकर 2 पेन खरीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें महिला की सादगी और मुस्कान पसंद आती है तो वे 2 और पेन खरीदने के लिए 100 रुपए और दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनके पास कुल कितने पेन बचे हैं। महिला ने बताया कि पूरे स्टॉक की कीमत करीब 900 रुपए है। स्टीव के पास उस समय केवल 550 रुपए बचे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जेब में रखे सभी पैसे बुजुर्ग महिला को दे दिए। खास बात ये रही कि उन्होंने सारे पेन अपने साथ नहीं लिए, सिर्फ 2 पेन रखे और बाकी महिला के पास ही छोड़ दिए ताकि वे उन्हें आगे भी बेच सकें। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि आप बाकी सारे पेन भी बेच लेंगी। महिला ये देखकर भावुक हो गईं और हिंदी में उन्हें दुआएं देने
7: लगीं।
6: सोशल मीडिया पर यह कमाल का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक पर स्नैक्स और कैंडी के कई सारे पैकेट रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब गेम यह है कि वहां से लोगों को भागकर पैकेट्स के पास पहुंचना है और जो जितने पैकेट एक बार में ला सकते हैं उन्हें लेकर आना है। इसके लिए वो अपना तरीका अपना सकते हैं। अब कोई दोनों हाथों से पैकेट उठाता तो कोई अपने जैकेट में उठाता, लेकिन वहीं एक शख्स गजब का दिमाग अपनाता है। वो पैकेट के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है और एक दूसरा शख्स उसे धकेलते हुए अपने एंड की तरफ लाता है। अब उस आदमी के लेटने से खूब सारे एरिया कवर हुआ, जिससे कई सारे पैकेट वो एक बार में ही लेकर इधर आ गया। सोशल मीडिया पर दो गोरिल्लाओं के बीच रूठने मनाने का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच ये अनोखी और हूबहू इंसानी कपल्स जैसी नोकझोंक सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत एक रूठी हुई मादा गोरिल्ला से होती है जो किसी बात पर बेहद खफा है और मुंह फुलाकर बैठी है। वहीं उसका साथी एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे मनाने और उसका गुस्सा शांत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जैसे ही नर गोरिल्ला प्यार से उसके पास जाता है और उसे मनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मादा गोरिल्ला झटके से उसका हाथ झटक देती है, मगर नर गोरिल्ला हार नहीं मानता है। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मादा गोरिल्ला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया ही मिलती है। मादा गोरिल्ला का ये एटीट्यूड और दोनों के बीच की ये प्यारी सी तकरार हूबहू इंसानी रिश्ते की याद दिलाती है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जानवरों के भीतर छिपे इन इंसानी भावों को देखना वाकई जादुई और बेहद खुशनुमा एहसास है। ये भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस वीडियो में एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की बचाने के लिए जो किया उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक खेत से होती है जहां खेती का काम चल रहा होता है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और चालक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी एक ऐसा सीन सामने आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। खेत में मौजूद एक चिड़िया अपने घोंसले और उसमें रखे अंडों के पास मंडरा रही होती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि ट्रैक्टर उसके अंडों के बेहद करीब पहुंचने वाला है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा की चिंता में चिड़िया बिना किसी डर के ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद वो बड़े साहस का परिचय देती है। वो अपने पंख पूरी तरह फैला लेती है और लगातार तेज आवाज निकालने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो आने वाले खतरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी हर हरकत में अपने अंडों को बचाने की बेचैनी और ममता साफ दिखाई देती है। ये सीन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि माँ चाहे इंसान हो या पक्षी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बंदर अपने साथ दो आम लेकर किसी घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां वह बड़े आराम से बैठकर आम खाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे सुकून के साथ आम का आनंद ले रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की एक महिला छत पर पहुंचती है और बंदर को आम खाते हुए देख लेती है। शायद उसे यह पसंद नहीं आता। दिलचस्प बात यह है कि बंदर महिला के इस व्यवहार से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाई देता। आमतौर पर बंदर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाला बंदर काफी मोटा और भारी भरकम दिख रहा है। यही वजह है कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं दिखता। महिला के भगाने के बाद भी वह आराम से उठता है और धीरे धीरे वहां से चलता हुआ नजर आता है। उसकी ये बेफिक्र चाल लोगों को काफी मजेदार लग रही है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज दो दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का मारता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वे आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए हैं। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर

0: अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है, मारक ग्रहों के परिणाम क्या होते हैं, और अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए, जानिए मारक ग्रहों के रहस्य मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
9: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, इस बार अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। उत्तराखंड में आज फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, रुद्रप्रयाग चमोली समेत कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा सख्त, जम्मू कश्मीर में जारी सघन तलाशी के बीच डीजीपी ने श्रीनगर से स्पेशल टीमों को किया रवाना, दुर्गम इलाकों में SDRF होगी तैनात। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक मदद, प्रधानमंत्री मोदी करीब 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए एल्युमिनियम उपकरण निर्माण में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता, रक्षा मंत्री आज नागपुर में एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का करेंगे भूमि पूजन। आर्थिक मोर्चे प्रदेश के लिए सामने आई गुड न्यूज, 1 अप्रैल से 17 जून के बीच 14.6% बड़ा नेट इनकम टैक्स कलेक्शन, करीब 2.5 महीनों में हुआ 5.21 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन। शास्त्र संगीत में योगदान के लिए संतूर वादक तरुण भट्टाचार्य को मिलेगा पद्मश्री, प्रयोग संतूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में निभाई अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, और अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
10: श्री हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद दादा गुरु जी के चरणों का प्रसाद, पंचदिवसीय हनुमान कथा का यह चरित्र क्रांति की भूमि मेरठ में हो रहा है, खेल की नगरी जिसे कहा जाता, ऐसी मेरठ की भूमि में हनुमान जी का चरित्र गाया जा रहा। हमारे बागेश्वर धाम के सभी पागल आप सब यहां उपस्थित हैं, विराजमान हैं। हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम। उन सबसे प्रार्थना किसी ना किसी रूप में यहाँ बैठ करके कथा को सुने। समस्त साधु समाज के चरणों को प्रणाम, विद्वत जनों को प्रणाम, भूदेवों के चरणों को प्रणाम, और जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, रेलगों के बाहर खड़े हैं, एक लड़का तो फायर ब्रिगेड पर चढ़े हैं, जय हो भाई साहब। तुम्हें बेटा फायर ही ब्रिगेड मिली थी ठटरी के बरे। बताओ, कोई फायर ब्रिगेड पर चढ़ा है तो कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कुछ आगे पुलिस वालों से लड़ करके आए हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में जगह जगह पड़े हैं। तो जो जहां विराजमान उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों

0: जोर से बोलो साधु जी
1: सीताराम।
0: अरे और जोर से तो बोलो, कहो कैसे हो, बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो भाई, बढ़िया नहीं रहोगे तो क्या कर सकते भैया, अब नहीं है तो लुका कर लोगे लेकिन भैया राम जी का दास कभी ना रहे उदास, और जो बनता है राम जी का दास वो हर मैटर में हो जाता है पास। इसलिए राम जी के बनकर रहोगे तो जय जय हो जाएगी। हनुमान जी की कथा की चौपाई याद है आप लोगों को, कल जो सुनाई थी चौपाई याद है, दो चौपाइयां ली हमने हनुमान जी की, उसी पर कथा सुना रहे। कौन सी चौपाई है,

अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी। हाँ जी या ना जी, चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा, ये बताओ मेरठ वालो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगो, जय हो। अब हम समझ गए मेरठ महान क्यों है। दोनों, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। अब हमें समझ में आ गई मेरठ महान क्यों है। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, अब आज के बाद मांग ना लइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है, हैं? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा, पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में चार चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया,

0: जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं, घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। हनुमान जी ही शंकर जी है, शंकर जी ही हनुमान जी है, हरते भय हनुमान, शिव जी ही हनुमान जी बने। आहा, दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं। तो किसी ने कहा वाह, शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक हैं, तो क्या दोनों लीलाएं एक साथ चली? हमने कहा बिल्कुल। बोले कैसे? हमने कहा बहुत बढ़िया उपाय है, कभी गर्मी के महीने में देखना, तो गर्मी के महीने में भयंकर तपती दोपहरी हो, जून का महीना हो, 12 बजे दिन के हो, 12 बजे दिन में 20 घड़ों में पानी भर के रख दो, आप जिस भी घड़े में झांकोगे सब में सूर्य दिखाई देगा। हाँ जी या ना जी? दिखाई देगा। 20 घड़ों में पानी भरकर छत पर गर्मी के महीने में, जून महीने में रख दो, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी के सूर्य 20 है, सूर्य तो एक है पर दिखाई सब में पड़ता है, वैसे ही भगवान तो एक है पर दिखाई वो सब में पड़ता है। हम में भी दिखाई पड़ता, तुम्हें भी दिखाई पड़ता, इनमें भी है, उनमें भी है, जीव में भी है, जंतु में भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान सब में है। और भैया जिनमें भगवान नहीं है सुबह जिंदा नहीं है। एक आदमी बोला महाराज भगवान कहां नहीं रहते? हम कहा जहां नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता, जहां भगवान नहीं रहते वहां कुछ नहीं रहता, सब राम नाम सत्य हो जाता। और जिनमें भगवान है, जो दिखाई पड़ रहे उन सब में भगवान है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसी सज्जन ने हमसे पूछा महाराज अगर भगवान सब में है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा
1: कौन सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है, मारक ग्रहों के परिणाम क्या होते हैं, और अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? जानिए मारक ग्रहों के रहस्य मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
0: इसके ऊपर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, इस बार अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा सख्त, जम्मू कश्मीर में जारी सघन तलाशी के बीच डीजीपी ने श्रीनगर से स्पेशल टीमों को किया रवाना, दुर्गम इलाकों में SDRF होगी तैनात।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज, रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी करेंगे इसका उद्घाटन। 8000 वर्ग फीट में फैला है रामायण वैक्स म्यूजियम, म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान समेत 50 पात्रों को मिलेगी झलक, पुतलों से जीवंत होंगे रामायण कालीन दृश्य। परिक्रमा मार्ग पे बना म्यूजियम तीर्थयात्रियों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, मिलेगा रामायण का जीवंत अनुभव, करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। आस्था और इतिहास का संगम बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम, रामायण की कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करेंगी मोम की प्रतिमाएं। रामायण पात्रों के भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान, पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी, अब तक 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में गुरुवार को पहुंचे 19,000 से ज्यादा श्रद्धालु, अब तक 11,86,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के किए दर्शन। केदारनाथ में कल 9,506 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 12,70,000 से ज्यादा भक्तों ने की बाबा केदार की पूजा। गंगोत्री धाम में अब तक 6,21,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,87,000 के पार। हेमकुंड साहिब में 4,144 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, अब तक 1,09,603 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन तलाशी अभियान। ट्रेनों के सभी कोचों की बारीकियों से जांच, स्निफर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से की जा रही है चेकिंग। प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम में बढ़ाई गई निगरानी, जम्मू स्टेशन को बनाया गया सुरक्षित ट्रांजिट पॉइंट। रेलवे RPF और GRPF का संयुक्त अभियान, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा जांच जारी। यात्रा सीजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी की जा रही है समीक्षा, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। उज्जैन के सावेर में स्थित है अद्भुत उल्टे हनुमान मंदिर, सिर के बल खड़ी प्रतिमा को माना जाता है स्वयंभू स्वरूप। देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं मंदिर, 5 मंगलवार दर्शन से कष्ट दूर होने की है मान्यता। सुबह शाम आरती के साथ होता है हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में राम दरबार की भी होती है नियमित पूजा। मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने की है धार्मिक परंपरा, भक्तों में चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा प्रचलित। हर 3 साल में नगर भ्रमण पर निकलते हैं भगवान, ढोल ताशों और भजनों से गूंजता है पूरा मंदिर परिसर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कौन सा ग्रह किस कुंडली के लिए मारक होता है?

0: want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते।

0: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं को दूर करने के मंत्रों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के समाधान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक मानते हैं। समझाने और सलाह देने का कार्य करता है। ये ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र और सर्वाधिक शुभ माना जाता है। ये मुख्य रूप से जीवन में संस्कारों को और ईश्वर की कृपा को नियंत्रित करता है। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं, इस वजह से इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। संतान, ज्ञान, धर्म, कानून, कोष और बड़ी बीमारियों से बृहस्पति का सीधा संबंध माना जाता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। आपके जीवन में धर्म कितना है, ज्ञान कितना है, संस्कार कैसे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, ये बात आपकी कुंडली का बृहस्पति बताता है। और बृहस्पति की वजह से अगर वो शुभ स्थिति में है तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझा। अब अगर आपके ऊपर या किसी व्यक्ति पर बृहस्पति का बुरा असर पड़े तो क्या होता है। देखिए, बृहस्पति के गड़बड़ होने से या कमजोर होने से व्यक्ति
व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में व्यक्ति के जीवन में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति की वजह से पैदा होती हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ है कुंडली में तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है और बृहस्पति अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान नहीं हो पाती। अगर बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है और वो विवाह के स्थान से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। यानी बृहस्पति अगर विवाह पर नकारात्मक असर डाले तो विवाह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है बड़े आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण, बृहस्पति के बुरे प्रभाव का निवारण बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो अगर आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित अलग अलग समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के लिए क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति की अलग अलग समस्याओं के मामले में किन मंत्रों का जप कैसी स्थिति में किया जाएगा। अगर आपको सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तब आप एक मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में गंभीर समस्या हो, तब आप मंत्र पढ़िएगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से आदतें, स्वभाव और संस्कार खराब हो रहे हों, तब मंत्र पढ़िएगा ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करिएगा। अगर बृहस्पति के कारण संतान होने में समस्या हो या संतान की तरफ से कोई समस्या हो,
तब बृहस्पति गायत्री का जप करिएगा। स्क्रीन पर देखिए, ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का रोज सवेरे 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नकारात्मक है, मारक फल दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की पूजा करिए। बृहस्पति स्वयं शिव जी के स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए अगर आप शिव जी की निरंतर पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का या शिव मंत्र का अगर निरंतर जप करें, तो बृहस्पति की जो नकारात्मकता है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर बृहस्पति की बड़ी खराब दशा चल रही हो और बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ रही हों, तो नमः शिवाय इस मंत्र का हर समय निरंतर जप करना चाहिए और रोज सुबह प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति की समस्याओं के समाधान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो लकड़ी के फर्नीचर का और लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, इस बार अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा करीब 13 लाख श्रद्धालु। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा सख्त, जम्मू कश्मीर में जारी सघन तलाशी के बीच डीजीपी ने श्रीनगर से स्पेशल टीमों को किया रवाना, दुर्गम इलाकों में एसडीआरएफ होगी तैनात। फ्रांस यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में दिया विदाई संदेश।
5: मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन और पेरिस, मैं इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to say...
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में भय बैठ जाता है, यानी कि मारक ग्रहों की दशा। तो क्या आपकी कुंडली में मारक ग्रहों की दशा चल रही है? मारक ग्रहों की दशा क्या वाकई जीवन में कठिनाई दुख तकलीफ देती है, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से जानेंगे। और साथ ही में अगर ऐसा हो रहा है तो उससे बचने के क्या है अचूक उपाय, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप सरकारी समस्याओं से, गवर्नमेंट की तरफ की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 19 जून 2026 यानी कि दिन शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी आपसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार मारक ग्रह होता क्या है, क्योंकि अलग अलग राशियों के हिसाब से मारक ग्रह अलग होते हैं। ऐसे में क्या वाकई में वो जीवन में दुख तकलीफ देते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मारक ग्रह कौन से होते हैं और अगर कोई ग्रह मारक है तो उसकी दशा के परिणाम क्या हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सामान्य यानी न्यूट्रल प्लेनेट। अशुभ ग्रह में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कुंडली में ज्योतिष में कुल मिला के 12 लग्न हैं और हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं। अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है और आप सावधानी नहीं रखते तो मारक दशाओं के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक हैं उनको समझना पड़ेगा और उनके हिसाब से जब आप उपाय करेंगे, सावधानी रखेंगे, तो उनकी मुश्किलों से बच जाएंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष ऋषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सूर्य के मारक दशाओं से बचने के आखिरकार अचूक उपाय कौन से हैं।
1: देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है, कर्क लग्न में भी मारक होता है, लेकिन कर्क लग्न में साहचर्य के अनुसार परिणाम देता है, तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य परफेक्ट मारक है। अगर आपका लग्न कुंभ है, सूर्य की दशा चल रही है, मारक दशा है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करिए। रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिए। और अगर सूर्य की मारक दशा चल रही है तो रोज शाम को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करिएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के मारक दशाओं से बचने के अचूक उपायों के बारे में।
1: अगर चंद्र की बात करें तो चंद्रमा मकर लग्न के लिए मारक होता है, कभी कभी मिथुन लग्न में भी मारक फल दे सकता है, लेकिन वहां पर उसकी पोजीशनिंग देखना जरूरी होगा। परफेक्ट मारक होता है मकर लग्न के लिए। अगर चंद्रमा की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखें, सोमवार को चावल, चीनी या दूध का दान करें। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह और शाम रोज 108 बार जप करें और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। चंद्रमा की अगर मारक दशा चल रही है तो भगवान शिव की पूजा अगर माता गौरी के साथ की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे।
0: तो मारक ग्रहों के बारे में हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रही है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न नीलिमा जी ने हमें लिखा है, हरिद्वार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1982, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है मेरठ। नीलिमा जी कह रही हैं कि काफी समय से ये और इनके पति मिल करके एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें बार बार अड़चने आ जाती हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी कब तक खरीद पाएंगे, संपत्ति का लाभ कब तक होगा। नीलिमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने का समय चल रहा है और अगर आप कोशिश करें तो नवंबर 2026 के पहले आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लेंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिएगा, एक तो 8 नंबर का मकान या फ्लैट मत लीजिएगा जिसका टोटल 8 होता हो, और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न अंजू शर्मा ने हमें लिखा है, कैथल हरियाणा से लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 28 नवंबर 2004, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है कैथल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकेगा। अंजू जी, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से आपका बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और ऐसा लगता है कि बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आगे चल करके मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करेगा और उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर अपना बनाएगा। अगर दुनिया भर के हालात ठीक रहे तो आपके बेटे को विदेश जाने का और विदेश जाके नौकरी करने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में धारण करवाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मंगल के मारक होने से बचने के क्या अचूक उपाय हैं।
1: देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए परफेक्ट मारक माना जाता है, परफेक्ट मारक होता है। अगर आपकी मंगल की मारक दशा चल रही है तो मंगलवार का व्रत रखिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और अगर मंगल की मारक दशा चल रही है तो रात में सोने के पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मंगल की मारक स्थिति से आपका बचाव अवश्य होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि बुध कौन से लग्न वालों के लिए मारक होता है और इससे बचने के अचूक उपाय क्या है।
1: देखिए, बुध जो है वो सिंह लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए मारक फल देता है। धनु और मीन में ज्यादा, सिंह में अपनी पोजीशन के हिसाब से। अगर आपकी बुध की मारक दशा चल रही है तो भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करिएगा। बुधवार को हरि वस्तुओं का दान करिए या गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को हरी पालक खिलाइए। और बुध की अगर मारक दशा चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बुधवार को गाय को हरा चारा अगर खिलाएं तो बुध की मारक दशा के प्रभाव से बच जाएंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, तो बृहस्पति किन लग्न वालों के लिए मारक ग्रह होता है और इसकी दशा से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: देखिए, बृहस्पति जो है वो मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पति वार का व्रत आपको रखना चाहिए। और अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो सोना यानी गोल्ड से और पीली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। बृहस्पति की मारक दशा चले तो बृहस्पति वार को चने की दाल का दान करिए या केले का दान करिए। और बृहस्पति की मारक दशा में अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप अवश्य करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 3 माला रोज सुबह जपिएगा अगर बृहस्पति की मारक दशा आपके लिए चल रही है।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शुक्र के मारक दशा से बचने के अचूक उपायों के बारे में।
1: शुक्र जो है ये मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए आम तौर पर मारक फल देता है, इनके लिए शुक्र के परिणाम मारक होते हैं। अगर आपकी शुक्र की मारक दशा चल रही है तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करिए। और अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो हीरा भूल कर भी धारण ना करें। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी लाभ होता है और शुक्र का जो मारक फल है वो कम हो जाता है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सैटर्न की यानी शनि की। तो शनि की मारक दशा से बचने के क्या कुछ उपाय हैं, आइए जानते हैं।
1: शनि की मारक दशा की बात करें, शनि कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लिए मारक होता है। और अगर आपकी शनि की मारक दशा चल रही है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज सुबह। हर शनिवार को छाया दान करें यानी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर सरसों का तेल दान करें। हर शनिवार अपने सर पर से वार करके उतार करके किसी पशु को रोटी खिलाएं। और शनि की अगर मारक दशा है तो परामर्श लेकर आप मूंगा भी पहन सकते हैं। सुबह और शाम 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। और शनि की मारक दशा आम तौर पर लंबी होती है, इसीलिए इस समय में सावधानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है।
0: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बेवजह की चिंता ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

0: होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वर्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में होगी, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, और वैवाहिक जीवन आपका आने वाले समय में कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। एक पीला पुखराज, लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें, एक पीला पुखराज पहन लें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी के साथ बात करते हुए जान लेते हैं कि अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं, पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1989। जन्म का समय शाम के 4:55। जन्म का स्थान है बेगूसराय बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। वैभव जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। वैभव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य के बेहतर होने का समय चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी सेहत की स्थिति जुलाई के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। केवल खान पान का और डाइजेशन का ध्यान रखिए, खाने पीने को लेकर, डाइजेशन को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक माणिक्य, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी जिनका जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और आपकी उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: लोगों का ऐसा कहना है कि जब मारक दशा चलती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्या मारक दशा चलने पर मृत्यु अवश्य हो जाती है? देखिए, मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों तो मारक दशा

0: कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा होती है।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आखिरकार आज का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा के हाल कैसे रहते हैं। आज की गुडलक राशि है मकर। इनकी शिक्षा धीरे धीरे उत्तम चलती रहती है और कभी कभी ये जीवन भर पढ़ाई करते रहते हैं, लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के कारावास के योग बन गए हों तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करिए और प्रार्थना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो कारावास के योग कटेंगे और आप कारावास की समस्या से बच जाएंगे।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
1: More top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: This game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या बृहस्पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
2: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए मुंबई आने वाले हैं। उनकी फिल्म द ओडिसी की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। ये फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने दुनिया के 4 शहरों में ओडिसी का प्रीमियर करने का फैसला किया है। देखिए, खास बात यह है कि इन 4 शहरों में मुंबई का नाम भी शुमार है। क्रिस्टोफर पहली बार अपनी फिल्म का प्रीमियर भारत में कर रहे हैं।
10: मुंबई में सजने जा रहा है हॉलीवुड के दिग्गज सितारों का मेला। भारत में पहली बार होगा क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी का प्रीमियर। हॉलीवुड को बैटमैन सीरीज, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और मोमेंटो जैसी यादगार फिल्में देने वाले मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन बहुत जल्द मुंबई आने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी का पूरी दुनिया के दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें द ओडिसी के ग्लोबल प्रीमियर पर टिकी है। इस प्रीमियर से जुड़ी एक खबर ने हिंदुस्तान के दर्शकों का जोश और बढ़ा दिया। क्रिस्टोफर नोलन ने पहली बार अपनी नई फिल्म का प्रीमियर भारत में भी करने का फैसला किया है। इस प्रीमियर के लिए उन्होंने माया नगरी मुंबई को चुना है। खास बात यह है कि इस ग्लोबल प्रीमियर के लिए खुद क्रिस्टोफर नोलन मुंबई आने वाले हैं। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग में उनके साथ मुख्य अभिनेता मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी मौजूद रहेंगे। ये शानदार इवेंट मुंबई के लोअर परेल में फिनिक्स पैलेडियम के PVR आइकॉन IMAX में आयोजित किया जाएगा। प्रीमियर की तारीखों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रीमियर जुलाई की शुरुआत में हो सकता है। क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी के प्रीमियर के लिए दुनिया के 4 शहरों को ही चुना है। मुंबई के साथ ही प्रीमियर लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। ऑस्कर जीतने के बाद क्रिस्टोफर नोलन पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर पर निकल रहे हैं। नोलन के द ओडिसी प्राचीन यूनानी कवि होमर के मशहूर महाकाव्य पर आधारित एक मेगा बजट एक्शन एपिक फिल्म है। इस फिल्म की भव्यता, स्टार कास्ट और फिल्म मेकिंग की आधुनिक तकनीक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड के साथ एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिसन और ज़ेंडाया मुख्य किरदार निभा रहे हैं। यह हॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसे पूरी तरह 70mm IMAX कैमरों से शूट किया गया है। फिल्म का बजट करीब $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसकी शूटिंग ग्रीस, इटली, आइसलैंड और स्कॉटलैंड में हुई है। क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म अपने आप में बड़े पर्दे के जादू को समेटे हुए होती है। साल 2024 में नोलन ने ब्लॉकबस्टर फिल्म ओपनहाइमर के लिए 2 अकेडमी अवार्ड जीते थे। उनकी फिल्मों की कहानी और निर्देशन की सिनेमा के क्रिटिक्स भी जमकर तारीफ करते हैं। यही वजह है कि द ओडिसी से भी दर्शकों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। भारत में भी दर्शकों को द ओडिसी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है, और ऐसे में प्रीमियर के लिए मुंबई को चुनकर क्रिस्टोफर नोलन ने भारतीय सिनेमा प्रेमियों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
12: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
11: more top sports.
13: And he's gonna go! There's the tying goal!
11: And everything in between.
13: This game is over!
11: Upgrade now for the premium listening experience.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: पति की वजह से जीवन के संस्कार कमजोर होते हैं? क्या बृहस्पति की वजह से बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं? कौन सी हैं बृहस्पति की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे इसका शुभारंभ। आधुनिक तकनीक के साथ दिखेगी रामायण की कथा।
6: हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी।
5: फ्रांस यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में दिया विदाई संदेश।
7: मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन और पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much.
6: अकोला में बचपन के दोस्तों ने बदली गांव की तकदीर, सूखी नदी को फिर से बनाया जीवन धारा, श्रमदान के जरिए नदी की सफाई से जल संकट का किया समाधान।
5: अलवर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड, जवानों संग स्पेशल डॉग्स के दस्ते ने भी दिखाए कर्तव्य।

0: टूर्नामेंट का शानदार आगाज। देश भर के 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा।
1: आज है फिल्मी फ्राइडे। सिनेमाघरों में 4 OTT पर 5 फिल्में हुई रिलीज। शाहिद कपूर कृति सनन की फिल्म कॉकटेल 2 भी आज रिलीज हुई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर आप सबके सामने।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: तो चलिए शुभ समाचार की शुरुआत रामनगरी के साथ करेंगे। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का आज लोकार्पण होगा। सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें आधुनिक तकनीक के साथ रामायण की कथा दिखेगी, साथ ही यहां राम परिवार से जुड़े सभी किरदार भी आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। कब होगा ये कार्यक्रम, ये सब आगे बताएंगे।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको देंगे और साथ ही आपको पहाड़ों की सैर भी करवाएंगे। देखिए, बात शिमला की होगी। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहां का खुशनुमा मौसम भी आपको दिखाएंगे आगे।
1: देखिए, वहीं केरल के कन्नूर में दक्षिण भारत का काशी कहे जाने वाले अक्कारे कोट्टियूर महाशिव मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की रौनक है। यहां आयोजित वैशाख महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये देश का एक ऐसा अनूठा शिव मंदिर है जो साल में एक महीने ही खुलता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा योग दिवस की तैयारियां भी आपको दिखाएंगे। शिल्पा शेट्टी भी इसमें अपना योगदान दे रही है। वही 21 जून को योग दिवस से पहले आज भी कई जगह योग कार्यक्रम हो रहे हैं। कहां कहां किस तरह किया गया योग, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी।
1: इसके बाद आगे बढ़ेंगे। साथ ही आज आपको बता दें, फिल्मी फ्राइडे है तो सिनेमाघरों में 4 और OTT पर 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं। इसमें शाहिद कपूर कृति सनन की फिल्म कॉकटेल 2 भी है, तो सभी पर होगी तफ्तील से बातचीत। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
0: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 38 लाख के अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 13 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई है।
1: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसी के मद्देनजर जम्मू रेलवे स्टेशन पर व्यापक और सघन तलाशी अभियान चलाया। विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की गहन जांच की गई।
0: भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता और बढ़ेगी। कोस्ट गार्ड के बेड़े में देश का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट ACV H-561 शामिल हुआ है। ये स्वदेशी होवरक्राफ्ट पानी, दलदली जमीन, रेत और उथले तटीय इलाकों में आसानी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है। कोस्ट गार्ड को मिले पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट में 50% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। डील के तहत तटरक्षक बल को और 5 स्वदेशी होवरक्राफ्ट मिलेंगे।
1: नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 100वें स्वदेशी बूस्टर को हरी झंडी दिखाई है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मिसाइल तकनीक में रूस पर निर्भरता को कम करने और मेक इन इंडिया को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
0: देश भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं, जिसमें शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां सैलानी रिज मैदान पर मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। गर्मी की छुट्टियों में शिमला में जबरदस्त भीड़ दिख रही है।
1: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अरावली इलाके में वन्य जीवों की संख्या बढ़ गई है। यहां तेंदुआ, हाइना जैसे अन्य वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अरावली में अब तेंदुए की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है, वहीं हाइना की संख्या 200 के करीब पहुंच गई। यहां ट्रैप कैमरा लगाकर वन्य जीवों पर नजर भी रखी जा रही है।
0: देश भर में योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई जगहों पर अभी से योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुंबई में योग दिवस से पहले अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग किया। कार्यक्रम में श्रेयस सिंह, अर्जुन कपूर, वीर पहाड़िया समेत कई हस्तियां शामिल हुई।
1: अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज हो गया है। अगले हफ्ते होने वाली वर्ल्ड वाइड रिलीज से ठीक पहले वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने एक नया गाना दीवाने हैं रिलीज किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता और राजपाल यादव जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म 26 जून को रिलीज होने वाली है।
0: भारत की T20 टीम में डेब्यू करने के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी इस महीने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। BCCI के इस फैसले के बारे में बोर्ड के सचिव देवाजीत सैकैया ने कहा है कि 15 साल के बच्चे को सीनियर टीम में आसानी से ढलने की सहूलियत देना बेहद जरूरी है। भारतीय T20 टीम में पहली बार जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को 7 मैचों के लिए चुना गया है।

0: और चलिए शुभ समाचार में सबसे पहले बात कर लेते हैं रामनगरी की, क्योंकि गुड न्यूज ये आई है कि आज राम भक्तों को एक और शुभ सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी आज भव्य वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। परिक्रमा मार्ग पर करीब 8000 वर्ग फीट के एरिया में इसे बनाया गया है।
1: बिल्कुल, भव्य तकनीक के माध्यम से इस म्यूजियम को तैयार किया गया है। विशेष तौर पर इस म्यूजियम के जरिए राम दरबार के अलावा रामायण काल से जुड़े कई पात्रों का जीवंत स्वरूप तैयार किया गया है, ताकि अयोध्या आने वाले भक्तों को राम संस्कृति के अद्भुत और अलौकिक दर्शन हो सके। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन होना है। योगी आदित्यनाथ आज इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए राम भक्तों और साथ ही साथ अयोध्या वासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
0: बिल्कुल, देखिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ये तमाम परिसर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में रामायण काल को जीवंत करने के लिए दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। और ये लाइव तस्वीरें, वहीं की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
1: तो म्यूजियम में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जटायु सहित रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों की मोम की प्रतिमाएं इसमें स्थापित की गई हैं। इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि वो वास्तविक और जीवंत प्रतीत हो।
0: बिल्कुल, देखिए पात्रों के भाव, वेशभूषा और ऐतिहासिक स्वरूप को सटीकता से दिखाने के लिए विशेषज्ञों से हेल्प ली गई है। इसी म्यूजियम का आज लोकार्पण भी होने जा रहा है। तो राम दरबार का नया अवतार आप सबके सामने है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है और इंतजार है कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके हाथों इस म्यूजियम का आज बाकायदा लोकार्पण किया जाएगा।
1: बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि मौका ही इतना खास है। आज रामायण वैक्स म्यूजियम, जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था, अयोध्या वासियों को इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और इसी दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, और इसी दौरान वो अयोध्या में बने रामायण वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे।
0: देखिए इस म्यूजियम के बारे में खास चीजें क्या हैं वो भी आपको एक एक करके बता देते हैं। यानी आज अयोध्या में एक खास कार्यक्रम तो होने वाला है, राम भक्तों को वैक्स म्यूजियम की सौगात भी मिलने जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। ये म्यूजियम 8000 वर्ग फीट क्षेत्र में बना है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, और इसमें राम संस्कृति के जीवंत दर्शन है। राम, सीता, हनुमान, जटायु की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
0: इस तरह से करीब 50 मोम की प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। इस म्यूजियम को करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
1: यानी रामनगरी में एक और नया आकर्षण का केंद्र बन करके बिल्कुल तैयार है। राम भक्तों को ये शुभ सौगात आज मिलने वाली है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करने वाले हैं। और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामायण वैक्स म्यूजियम के बाहर की। बताया जा रहा है कि रामायण के विभिन्न पात्रों की प्रतिमाएं इसके अंदर स्थापित की गई हैं। काफी भव्य दिव्य है ये, और अयोध्या वासियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र ये बनने वाला है। और शगुफ्ता, इसके साथ ही मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं, बल्कि देशवासियों के लिए ये बेहद गर्व का पल।
0: चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, देखिए सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन गौरवशाली दिन होने वाला है, क्योंकि वैक्स म्यूजियम यहाँ पर बना दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंचने वाले हैं, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भी बता दीजिए।
2: जी बिल्कुल, देखिए एक तो जो अयोध्या में चंदे की चढ़ावे को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है और अयोध्या में उनके कई कार्यक्रम हैं। पहले वो रुदौली में आ रहे हैं, जहां अभी से थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वो कार्यक्रम है, जिसमें कई कार्यक्रमों का वो शिलान्यास, कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। लेकिन आज जिस बात की चर्चा आपने की है, जो वैक्स म्यूजियम, वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में या यूं कहने चर्चा में रहने वाला है। हालांकि एक तरफ पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है अयोध्या की, कि आखिर इस ट्रस्ट के रहते हुए इतना बड़ा ये अगर पैसों के या चंदे के वारे न्यारे हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, इस पर जो एसआईटी बनी है वो अपनी जांच में लगातार लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के आज की इस यात्रा का एक आकर्षण ये वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम में 50 वैक्स की प्रतिमाएं होंगी, जो पूरा रामचरितमानस है उसे एक तरीके से दर्शाया जाएगा। अभी तक अयोध्या का जो म्यूजियम है जिसमें अयोध्या की का जो वो मंदिर के नीचे से खुदाई में जो तमाम चीजें मिली या फिर अयोध्या की जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं लोग उसे भी देखते रहे, लेकिन इस बार वैक्स म्यूजियम को लेकर के खासा इसे लेकर के चर्चा होगी। अगर कोई अयोध्या आता है तो वो इस वैक्स म्यूजियम को भी देखेगा, जहां पर वैक्स से बनी हुई प्रतिमाएं और राम भगवान राम के जीवन से जीवन वृत्त से जुड़ी हुई तमाम चीजें रखी जाएंगी। आज से इसका लोकार्पण हो रहा है, तो मुख्यमंत्री शाम को इसका लोकार्पण करेंगे। आज से ही लोगों की जो रुचि है वो दिखाई देने लगी। अब देखना है कि जब निखर करके आता है तो कैसा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, पहले रुदौली में हैं, उसके बाद यहां से देवीपाटन मंदिर जाएंगे, गोंडा जाएंगे, फिर वापस अयोध्या आएंगे जहां छोटी छावनी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और आखिर में वो जो वैक्स म्यूजियम है उसका अनावरण।
1: बिल्कुल कुमार अभिषेक, और अगर रामायण वैक्स म्यूजियम की हम यहां पर बात करें तो बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के ये तैयार हुआ है, काफी भव्य है। क्या आपको अंदर जाने का मौका मिल पाया है? कितना भव्य है, कितना दिव्य है, क्या विशेषता है इसकी बताई जा रही है, और रामायण काल के कौन कौन से पात्रों की प्रतिमाएं इसके अंदर मौजूद है? कुमार अभिषेक,
2: देखिए ये चूंकि मुख्यमंत्री को आना है तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आज इसे तब तक मीडिया के लिए नहीं खोला जाएगा जब तक मुख्यमंत्री इसका अनावरण नहीं कर देते, या हो सकता है कि दिन में जाने की थोड़ी देर के लिए इजाजत दी जाए। लेकिन ये सरकार के प्रायोरिटीज में रहा है, अयोध्या में अलग अलग तरह की जो चीजें हैं उसे लाया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत सारी चीजें ऐसी दी जा रही हैं या उनके लिए लाई जा रही हैं जो अजूबा अनोखा हो, क्योंकि दुनिया भर से भगवान राम के दर्शन, रामलला के दर्शन करने लोग आ रहे हैं। राम का भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। इसके अलावा लोग अगर आप देखें तो सरयू के तट पर जाते हैं, जो राम की पैड़ी है वहां जाते हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के लोग दर्शन करते हैं, गुप्तार घाट के दर्शन करते हैं और म्यूजियम लोग जाया करते हैं। इसके अलावा जहां पर कार सेवक पूरम है वहां भी लोग घूमते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी अब बनने लगी हैं जिसके लिए लोग खास तौर पर आएंगे, और यही माना जा रहा है कि ये वैक्स म्यूजियम अपने आप में अनूठा होगा। आप देखिए लंदन का वैक्स म्यूजियम जिस तरीके का बना है, दुनिया भर से लोग वहां आते हैं खास करके उस वैक्स म्यूजियम को देखने। इसी तरीके से अयोध्या की भी कोशिश है कि अयोध्या को कुछ अनोखा अजूबा दिया जाए, और उस कड़ी में इस वैक्स म्यूजियम को बनाया गया है। आज थोड़ी देर में हो सकता है कि मीडिया को भी इजाजत मिले तो उसके बाद हम भीतर का दृश्य आपको और बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे।
0: बिल्कुल, ये एहसास, ये अनुभव बहुत अनूठा रहने वाला है तमाम अयोध्या वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए, मयंक शुक्ला हमारे सहयोगी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वैक्स म्यूजियम का जायजा भी लिया है, वो तस्वीरें आई हैं वो दिखाते हैं आपको।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नगर निगम अयोध्या में PPP मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर एक वैक्स म्यूजियम का निर्माण कराया गया था, उसका उद्घाटन कार्यक्रम है। और इस वैक्स म्यूजियम को बनाने के लिए जमीन जो है नगर निगम अयोध्या ने उपलब्ध कराई है और एक प्राइवेट फर्म के द्वारा इस वैक्स म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। उनके द्वारा लगभग 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस भूमि पर किया जा चुका है। उसका फेज वन 2 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार है, उसमें लगभग 45 से भी ज़्यादा रामायण और रामायण से जुड़े हुए जो पात्र हैं उनकी मूर्तियां यहां पर स्थापित है। भगवान राम की मूर्ति है और कौशल्या, सुमित्रा सभी माताओं की और माता सीता की सभी की यहाँ मूर्तियाँ हैं, और फेज टू में भी और भी मूर्तियाँ आगे आने वाले समय में आएंगी। ये जो एक यूनिक मॉडल है कि इसमें रेवेन्यू शेयरिंग जो है नगर निगम अयोध्या को होगी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका 12% नगर निगम अयोध्या को इसमें मिलेगा। लोगों को जो भी यहाँ तीर्थयात्री यहाँ आएंगे उनको श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में अपना आगमन और श्री राम लला के दर्शन के बाद उनको यहाँ भी एक शाम एक जगह उनको घूमने के लिए परिवार के साथ मिलेगी।
4: सर, भारत का ये पहला ऐसा बनाया जा रहा है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है वैक्स?
3: जी, ये वैक्स म्यूजियम तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत कई दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन अयोध्या में ये दुनिया का शायद पहला रामायण आधारित वैक्सीन म्यूजियम होगा।
1: तो अयोध्या नगर निगम के आयुक्त से अभी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने बताया कितना खास ये म्यूजियम होने वाला है और किस तरीके से अयोध्या अब एक स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पर उभरने वाला है। तो चलिए, आस्था भक्ति के रंग आजकल गुवाहाटी में भी खूब बिखरे हुए हैं। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रशासन ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में होने वाले साला अंबुबाची मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 22 से 26 जून तक आयोजित होने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है।

0: असम के माँ कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। चार दिनों तक चलने वाले शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। भक्तों के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल देंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुबासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आर्द्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुबासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। साथ ही कामाख्या धाम तंत्र साधना का बड़ा केंद्र भी है। ऐसे में इस शक्ति उत्सव को लेकर अघोरी, नागा और शक्त साधकों का भी बड़ा समागम देखने को मिल रहा है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पुलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुबाची मेले में 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी का पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष प्रसाद के तौर पर उन्हें यहां पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र दिया जाता है, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। अम्बुबाची मेला मानसून की शुरुआत के साथ आता है, ऐसे में ये समय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 9 फिल्मों का कॉकटेल।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
6: Somebody save me
5: to timeless favorites
6: and, life is like a song.
5: And new discoveries.
6: So much more than a history. Wake up.
5: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें

0: पायल की कथा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें।
1: फ्रांस यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में दिया विदाई संदेश।
2: मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन और पेरिस मैंने इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship.
0: अकोला में बचपन के दोस्तों ने बदली गांव की तकदीर। सूखी नदी को फिर से बनाया जीवन धारा। श्रमदान के जरिए नदी की सफाई से जल संकट का समाधान किया।
1: अलवर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड। जवानों संग स्पेशल डॉग्स की दस्ते ने भी दिखाए करतब।
0: चीन के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। देश भर की 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा।
1: आज है फिल्मी फ्राइडे। सिनेमाघरों में 4 और ओटीटी पर 5 फिल्में हुई रिलीज। शाहिद कपूर कृति सैनन की फिल्म कॉकटेल 2 भी रिलीज।

0: चलिए अब बात फिल्मी फ्राइडे की कर लेते हैं। आज फ्राइडे है, फिल्मों के लिहाज से बहुत खास दिन है क्योंकि आज फिल्म प्रेमियों को शानदार सौगात मिलने वाली है। आज बड़े पर्दे पर चार फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, फिल्मी फ्राइडे है और इससे बेहतर फिल्मी फ्राइडे कहाँ हो सकता है। देखिए, चार फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, वही ओटीटी पर भी पांच फिल्में आज रिलीज हो रही है। थिएटर्स पर आज रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है, जिसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य किरदारों में है। वहीं आज ही इमोशनल ड्रामा समर्पित भी बड़े पर्दे पर आ रही है, जिसमें अंकित यादव और जया भट्टाचार्य लीड एक्टर्स हैं।
0: और देखिए, इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां तो चल ही रही हैं, तो बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी बड़े पर्दे पर आ रही है। ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का पांचवा पार्ट है, जिसमें बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होने वाले नुकसान से बचने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आज ही एक क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी रिलीज हो रही है।
1: बिल्कुल, बात इस फिल्म की करें तो इसमें वेटरन एक्टर असरानी, जरीना वहाब खास तौर से नजर आएंगे। इसके अलावा आज ओटीटी पर भी दर्शकों को एंटरटेनमेंट की शानदार सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि आज अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पांच फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। तो जून के आखिरी हफ्ते से पहले आज एंटरटेनमेंट का शानदार डोज दर्शकों को मिलने जा रहा है। तो अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले अक्षय कुमार माता वैष्णो के दर पर पहुंचे और उनका दर्शन पूजन किया और फिल्म की कामयाबी की कामना भी की। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसका एक नया गाना भी कल रिलीज हुआ है।
2: जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच त्रिकुटा की पहाड़ियों पर मौजूद माता वैष्णो देवी का ये वो दरबार है, जहां क्या आम क्या खास सभी माता के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। कहते हैं माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से नतमस्तक होता है, माँ उसकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। मन में श्रद्धा के कुछ ऐसे ही भाव लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार गुरुवार को माँ के दर्शन पूजन को पहुँचे।

0: जम्मू से विशेष चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए अक्षय कुमार पंछी हेलीपैड पहुंचे। यह हेलीपैड मुख्य मंदिर से महज 900 मीटर की दूरी पर कटरा के पास मौजूद है। कटरा बेस कैंप पहुंचने के बाद अक्षय कुमार गुफा मंदिर तक गए। पूरी आस्था और भक्ति के साथ पवित्र मंदिर में मत्था टेका और माँ की पूजा अर्चना की। इस दौरान अक्षय सिंपल सफेद कुर्ते पायजामे में पूरी तरह सादगी में डूबे नजर आए। मंदिर परिसर में अक्षय कुमार को अपने बीच पाकर कई फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़े। माता वैष्णो देवी में अक्षय कुमार की गहरी श्रद्धा है। माता वैष्णो देवी में अपनी आस्था के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। अक्षय ने कहा था कि जब मैं महज 1 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पर ले गए थे। उस यात्रा के दौरान मैं अचानक बेहोश हो गया था और काफी गंभीर रूप से बीमार हो गया था, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं जल्द ठीक हो गया। चाहे माता वैष्णो देवी का दरबार हो या महाकाल का या फिर आस्था का कोई और तर, अक्षय कुमार कई बार अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद लेते रहे हैं। 2023 में फिल्म OMG 2 की रिलीज से पहले भी अक्षय कुमार कड़ी सुरक्षा के बीच माता वैष्णो देवी के मंदिर मत्था टेकने पहुंचे थे और पवित्र गुफा में पूजा की थी। हाल ही में भूत बंगला की रिलीज से पहले अक्षय कुमार डिम्पल कपाड़िया और टाइगर श्रॉफ के साथ उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे थे और पूरे भक्ति भाव से महाकाल की पूजा अर्चना की थी। इस बार अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के रिलीज से पहले फिल्म की सफलता की कामना करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। गुरुवार को ही मेकर्स ने फिल्म का नया गाना दीवाने हैं रिलीज किया, जिसे अक्षय कुमार ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। अक्षय ने कैप्शन में लिखा है, जंगल में केओस है, केओस में सेलिब्रेशन है और इस सेलिब्रेशन में सारे दीवाने हैं। इस गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। अब देखना है कि वेलकम सीरीज की इस तीसरी फ्रेंचाइजी को क्या बाकी दोनों फिल्मों की तरह ही दर्शकों का प्यार मिलता है और बाकी दोनों फिल्मों की तरह क्या ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए, स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज किया गया है। इस फिल्म से टॉम हॉलैंड बड़े पर्दे पर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के रूप में वापसी कर रहे हैं। ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि पीटर पार्कर के साथ हो रही कुछ अजीब सी घटना होती है, वो खुद अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मतलब हमेशा की तरह रोमांच पूरा है, लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज हल्क की एंट्री और स्पाइडरमैन से उसका जबरदस्त टकराव भी देखने को मिलेगा आपको।
2: बिल्कुल, जिसे देखने के लिए आपको 31 जुलाई का इंतजार करना होगा जब ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।
3: ये हो क्या रहा है मुझे?
4: बस जाना मुझे स्पाइडी।
5: एक नई चुनौती और नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है स्पाइडरमैन।
3: मेरा खुद पे काबू नहीं रहा।
5: हल्क से स्पाइडरमैन की भिड़ंत बनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई USP।
6: होगा क्या?
7: कोई तो होगा।
6: ओके बाय। कोई तो
5: रोमांच और रहस्य के सागर में गोते लगाने के लिए स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की नई किस्त तैयार है। एक दिन पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर रिलीज किया गया। करीब 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में स्पाइडरमैन नो वे होम की घटनाओं के बाद की झलक मिलती है।
8: कुदरत में क्या कमी है और क्या खूबी है, ये तय करने वाले हम कौन?
9: किसी ने धक्का दिया मुझे।
5: लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाला सीन है स्पाइडरमैन की ब्रूस बैनर यानी हल्क से भिड़ंत। इस ट्रेलर में एक ऐसा पल भी दिखाया गया है जब स्पाइडरमैन अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो बैठता है, अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पाता। उसके DNA पर म्यूटेशन का असर हुआ है और मदद मांगने वो डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास जाता है। डॉक्टर ब्रूस उसे वो डिवाइस दिखाते हैं जिससे वो खुद को हल्क बनने से रोकते हैं।
9: डॉक्टर बैनर, DNA पर म्यूटेशन का असर कम करने के लिए आप क्या करते हैं?
8: अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना।
5: इस बार शहर पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज स्पाइडरमैन और हल्क के बीच जबरदस्त टकराव है। पीटर पार्कर सीधे जाकर हल्क से भिड़ जाता है, हालांकि ट्रेलर में इस लड़ाई की वजह साफ नहीं है।
10: यो स्पाइडरमैन, तुम ठीक हो? अपने अंदर के शैतान।
5: 2021 के स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इस नई फिल्म को डेस्टिन डेनियल क्रिटन ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी पिछली फिल्म के खत्म होने के 4 साल बाद की है।
6: और तुम भी नहीं।
9: हरी भाई बड़े दिन बाद दिखे।
5: ट्रेलर में दिखाया गया है कि पीटर को जिम्मेदारी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे जैसे पीटर खुद को पहले से ज्यादा मुश्किल हालात में धकेलता है, उसकी शक्तियाँ आश्चर्यजनक तरीकों से बदलने लगती है। एक हैरान करने वाला शारीरिक बदलाव शुरू होता है। ये पीटर के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है।
7: ये हमेशा याद रखना।
5: टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर के रोल में वापसी की है, जबकि जेंडिया एमजी के रोल में लौट रहे हैं। इसके साथ ही जॉन बर्नथल, सैडी सिंह और लिजा कोलून जायस भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 31 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।
9: योगा से ही होगा भाई।
5: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: रेडी।
2: अच्छा शगुफ्ता, क्या आप सनी देओल के फैन हैं?
1: नहीं। ओके आई वुड से ओके
2: आप नहीं हो, लेकिन जो हमारे दर्शक है ये खबर उनके लिए है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनी देओल एक बार फिर पाकिस्तान में जाकर 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाने की तैयारी में है। देखिए इस बार जरिया बना है बंटवारा 1947, जिसका टीजर एक दिन पहले रिलीज कर दिया गया है। देखिए देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा।
1: और देखिए इस टीजर में सनी के साथ आपको शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और सनी के बेटे करण देओल की झलक दिखाई देगी। और क्या कुछ खास है बंटवारा 1947 के इस टीजर में दिखाते हैं आपको।
12: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
5: भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित फिल्मों की फहरिस्त में सबसे लेटेस्ट और कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज है बंटवारा 1947। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म, जिसके इंटेंस टीजर ने रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट हाई कर दी है। बंटवारा 1947 का टीजर आमिर खान की आवाज में नरेशन से शुरू होता है। वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे वाले दौर का माहौल बता रहे हैं,
12: लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
5: कहानी शबाना आजमी से शुरू होती है, जो एक डरी हुई बूढ़ी महिला के रोल में नजर आ रही है।
13: होएगा तो चरम जाएगा।
5: करण देओल और अली फजल के किरदार बंटवारे के हिंसा के बीच फंसे नजर आते हैं। प्रीति जिंटा का किरदार भी इसी हालात में जूझ रहा है।
14: इरादा तो नहीं है।
5: अभिमन्यु सिंह हिंसा के लिए उतावली के लीडर के रूप में है और गलियों को खून से रंग देने की बात भी कर रहे हैं।
15: मोहल्ले दिया गलियां, उन्हें खून हो जानी है।
5: ऐसे हालात में एंट्री होती है सनी देओल के किरदार, एक ऐसा हीरो जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। हाल ही में बंटवारा 1947 के रिलीज हुए पोस्टर ने किरदारों पर से पर्दा उठाया था। सनी के अलावा इसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल नजर आए थे, लेकिन टीजर ने इन किरदारों की कुछ हद तक डिटेलिंग की है। साथ ही अभिमन्यु सिंह समेत कुछ और किरदारों से पर्दा उठाया है।
14: इरादा तो नहीं है, पर इतराज़ भी नहीं है।
5: सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं। करण देओल जावेद मिर्जा के किरदार में दिखेंगे। शबाना आजमी माई दुर्गावती देवी की भूमिका में दिखेंगी तो प्रीति जिंटा हमीदा बेगम के रोल में होंगे। अली फजल हबीब अनवर के रूप में और अभिमन्यु सिंह याकूब खान के रोल में नजर आएंगे। बंटवारा 1947 का टीजर तो दमदार लग रहा है। अब देखना है कि 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए फिल्में फ्राइडे की बात तो हो गई है, बात करते हैं फ्रांस यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्वदेश वापस लौट रहे हैं। वैसे इसी दौरे के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में विदाई संदेश दिया और कहा कि भारत फ्रांस की दोस्ती हमेशा अमर रहे।
16: दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship.
2: और अब बात योग दिवस की। देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर देश और दुनिया में जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, वो चरम पर है। कई शहरों में अभी से योग को लेकर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं।
1: पश्चिमी मेदिनीपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय में रन फॉर योगा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, छात्रों, स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। शहर शहर हो रहे इन कार्यक्रम का मकसद योग के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश देना है। अब देखिए योगा दिवस बहुत नजदीक है, तो देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर और गांव गांव में योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में योग दिवस से पहले खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड और खेल जगत की कई हस्तियां पहुंची।
2: बिल्कुल, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया और फिटनेस के महत्व का संदेश भी दिया।
1: और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील सिखा देते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने में बिल्कुल पीछे नहीं। दिलनाज ईरानी की फनी इंस्टा स्टोरी आई है, वो दिखाते हैं।
11: बहस करने से रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए तुरंत झापड़ मार कर रिश्ते मजबूत करें।
17: आज मेरा 1 किलो वेट घट गया।
18: नाखून काटे होंगे तने।
19: सुनो
17: हाँ?
19: अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार?
17: मैं तो हार पसंद करूंगी।
19: अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो।
17: लेकिन मेरी एक शर्त है।
19: कौन सी शर्त?
17: हार सोने की होनी चाहिए।
20: धीरे धीरे सीन निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।
2: तो चलिए इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल वक्त चला है आप सभी से अलविदा कहने का,
1: और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
22: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
23: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
24: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
25: और दुर्भाग्य कहता है
26: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
27: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
29: गुड न्यूज टुडे।
30: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
31: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
30: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
27: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
31: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
28: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
28: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
27: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
31: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
28: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
28: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
26: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
27: अविश्वास में विश्वास बसता है,
28: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
31: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
31: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। फ्रांस यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में दिया विदाई संदेश। अकोला में बचपन के दोस्तों ने बदली गांव की तकदीर, सूखी नदी को फिर से बनाया जीवनधारा, श्रमदान के जरिए नदी की सफाई से जल संकट का किया समाधान। अलवर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड, जवानों संग स्पेशल डॉग्स के दस्ते ने भी दिखाए कर्तव्य। चीन के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, देश भर की 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। आज है फिल्मी फ्राइडे, सिनेमाघरों में चारों ओटीटी पर 5 फिल्में हुई रिलीज, शाहिद कपूर कृति सनन की फिल्म कॉकटेल 2 भी रिलीज हुई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं को दूर करने के मंत्रों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 4:59 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 10:06 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:06 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति ग्रह की समस्याओं के समाधान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने का कार्य करता है। ये ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र और सर्वाधिक शुभ माना जाता है। ये मुख्य रूप से जीवन में संस्कारों को और ईश्वर की कृपा को नियंत्रित करता है। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं, इस वजह से इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। संतान, ज्ञान, धर्म, कानून, कोष और बड़ी बीमारियों से बृहस्पति का सीधा संबंध माना जाता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी
बृहस्पति से तय होती है। आपके जीवन में धर्म कितना है, ज्ञान कितना है, संस्कार कैसे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, ये बात आपकी कुंडली का बृहस्पति बताता है। और बृहस्पति की वजह से अगर वो शुभ स्थिति में है तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझा। अब अगर आपके ऊपर या किसी व्यक्ति पर बृहस्पति का बुरा असर पड़े तो क्या होता है? देखिए, बृहस्पति के गड़बड़ होने से या कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में व्यक्ति के जीवन में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है, कैंसर और लीवर की सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति की वजह से पैदा होती हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ है कुंडली में तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। और बृहस्पति अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान नहीं हो पाती। अगर बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव है और वो विवाह के स्थान से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। यानी बृहस्पति अगर
विवाह पर नकारात्मक असर डाले तो विवाह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है बड़े आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण, बृहस्पति के बुरे प्रभाव का निवारण बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो अगर आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित अलग अलग समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के लिए क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति की अलग अलग समस्याओं के मामले में किन मंत्रों का जप कैसी स्थिति में किया जाएगा। अगर आपको सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तब आप एक मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में गंभीर समस्या हो, तब आप मंत्र पढ़िएगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से आदतें, स्वभाव और संस्कार खराब हो रहे हों, तब मंत्र पढ़िएगा ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः।
इस मंत्र का सुबह के समय जप करिएगा। अगर बृहस्पति के कारण संतान होने में समस्या हो या संतान की तरफ से कोई समस्या हो, तब बृहस्पति गायत्री का जप करिएगा। स्क्रीन पर देखिए, ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का रोज सवेरे 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यर्थ की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नकारात्मक है, मारक फल दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की पूजा करिए। बृहस्पति स्वयं शिव जी के स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए अगर आप शिव जी की निरंतर पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का या शिव मंत्र का अगर निरंतर जप करें, तो बृहस्पति की जो नकारात्मकता है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर बृहस्पति की बड़ी खराब दशा चल रही हो और बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ रही हो, तो नमः शिवाय इस मंत्र का हर समय निरंतर जप करना चाहिए और रोज सुबह प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की समस्याओं के बारे में और बृहस्पति की समस्याओं के समाधान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए
एक लकी टिप। अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो लकड़ी के फर्नीचर का और लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Nee offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
1: Where did you see all this?
0: Online at apge.com.
1: Watson, you're always so plugged in.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: आते एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

श्री हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रसाद, पंचदिवसीय हनुमान कथा का यह चरित्र क्रांति की भूमि मेरठ में हो रहा है, खेल की नगरी जिसे कहा जाता, ऐसी मेरठ की भूमि में हनुमान जी का चरित्र गाया जा रहा। हमारे बागेश्वर धाम के सभी पागल आप सब यहां उपस्थित हैं, विराजमान हैं। हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम। उन सबसे प्रार्थना किसी ना किसी रूप में यहां बैठ करके कथा को सुने। समस्त साधु समाज के चरणों को प्रणाम, विद्वत जनों को प्रणाम, भूदेवों के चरणों को प्रणाम, और जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, रेलगों के बाहर खड़े हैं, एक लड़का तो फायर ब्रिगेड पर चढ़े हैं। जय हो भाई साहब, तुम्हें बेटा फायर ही ब्रिगेड मिली थी ठटरी के बरे। बताओ, कोई फायर ब्रिगेड पर चढ़ा है तो कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कुछ आगे पुलिस वालों से लड़ करके आए हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में जगह जगह पड़े हैं। तो जो जहां विराजमान उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आप

0: जोर से बोलो साधु जी
1: सीताराम।
0: अरे और जोर से तो बोलो, कहो कैसे हो? बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो भाई, बढ़िया नहीं रहोगे तो क्या कर सकते भैया, अब नहीं है तो लोग कर लोगे लेकिन भैया राम जी का दास कभी ना रहे उदास, और जो बनता है राम जी का दास वो हर मैटर में हो जाता है पास। इसलिए राम जी के बनकर रहोगे तो जय जय हो जाएगी। हनुमान जी की कथा की चौपाई याद है आप लोगों को? कल जो सुनाई थी चौपाई याद है? दो चौपाइयां ली हमने हनुमान जी की, उसी पर कथा सुना रहे। कौन सी चौपाई है?

देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी। हाँ जी या ना जी, चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा, ये बताओ मेरठ वालो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगो, जय हो, जय हो। अब हम समझ गए मेरठ महान क्यों है। दोनों, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। अब हमें समझ में आ गई मेरठ महान क्यों है। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, अब आज के बाद मांग ना लइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है, हैं? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा, पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में चार चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया,

0: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
20: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
21: कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
23: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
22: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
23: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है
22: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
21: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन्स। फ्रांस यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में दिया विदाई संदेश। अकोला में बचपन के दोस्तों ने बदली गांव की तकदीर, सूखी नदी को फिर से बनाया जीवनधारा, श्रमदान के जरिए नदी की सफाई से जल संकट का किया समाधान। अलवर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड, जवानों के साथ स्पेशल डॉग्स के दस्ते ने भी दिखाए करतब। चाइना के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, देश भर की 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आज है फिल्मी फ्राइडे, सिनेमाघरों में 4 और ओटीटी पर 5 फिल्में हुई रिलीज, शाहिद कपूर कृति सैनन की फिल्म कॉकटेल 2 का भी रिलीज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर 4 फिल्में हुई रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही है रिलीज। सिनेमाघरों में आज धूम मचाने को तैयार है रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन का लीड रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी, इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य हैं लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज, ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के लिए जेलर भी हैं भी हुई रिलीज, वेटरन एक्टर असरानी जरीना वहाब खास तौर से दिखेंगे। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज हुआ, दमदार भूमिका में दिखे सनी देओल, एक बार फिर पर्दे पर दिखेगी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की दास्तां। फिल्म स्पाइडरमैन बैन न्यू डे का आया नया ट्रेलर, हल्क और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, फिल्म की यूएसपी, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेत्री आलिया भट्ट के नक्शे कदम पर बेटी राहा, आलिया ने बताया बेहद फिल्मी है उनकी बेटी, स्टेज के लिए बनी है राहा। फिल्म पेडी के निर्माताओं ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म में जोड़े गए 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन्स। एक्टर धनुष की अपकमिंग फिल्म ओम का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म में एक्शन अवतार में दिखेंगे धनुष। भगवान श्री राम की करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज, रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी करेंगे उद्घाटन। 8000 वर्ग फीट में फैला है रामायण वैक्स म्यूजियम। म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान के दिव्य रूपों को मिलेगी झलक। 50 चरित्रों के पुतलों से जीवंत होंगे रामायण कालीन दृश्य। परिक्रमा मार्ग पर बना म्यूजियम तीर्थयात्रियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मिलेगा रामायण का जीवंत अनुभव। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। आस्था और इतिहास का संगम बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम। रामायण की कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करेंगी मोम की प्रतिमाएं। रामायण पात्रों के भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान। पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र। नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। उत्तराखंड में आस्था और भक्ति के साथ पवित्र चार धाम यात्रा जारी। अब तक 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में गुरुवार को पहुंचे 19,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 11,86,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ में कल 9,506 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 12,70,000 से ज्यादा भक्तों ने की बाबा केदार की पूजा। गंगोत्री धाम में अब तक 6,21,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,87,000 के पार। हेमकुंड साहिब में 4,144 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अब तक 1,09,603 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन तलाशी अभियान। ट्रेनों के सभी कोचेस की बारीकी से जांच। स्नाइपर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से की जा रही है चेकिंग। प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम में बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू स्टेशन को बनाया गया सुरक्षित ट्रांजिट पॉइंट। रेलवे आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त अभियान। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा जांच जारी। यात्रा सीजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां ओंकारेश्वर महादेव मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। ओंकारेश्वर पहुंची राष्ट्रपति का राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वागत किया। मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायकों ने भी स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में लैवेंडर फेस्टिवल मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार प्रोजेक्ट का मकसद। 1 अप्रैल से 17 जून के बीच 14.61% बढ़कर 5.21 लाख करोड़ हुआ नेट इनकम टैक्स कलेक्शन। बिहार को मिलेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की सौगात। 1 जुलाई से प्रदेश में 211 नए कॉलेज खोलने की तैयारी। एक प्रखंड एक डिग्री कॉलेज योजना के तहत खुलेंगे कॉलेज। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी गुड न्यूज। नागपुर में 100वें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बूस्टर को दिखाई गई हरी झंडी। निजी क्षेत्र की कंपनी सोलर डिफेंस ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर का निर्माण। पहले रशिया ने आयात करना पड़ता था सॉलिड।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रे का किया वीडियो जारी, दो दिन बाद नेवी में होगा शामिल। आज फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ले सकता है करवट, तेज आंधी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अयोध्या में

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं सितारों के भक्ति कनेक्शन की, देवी देवताओं और धर्म गुरुओं में उनकी आस्था की, जिसके पीछे न केवल निष्ठा, भरोसा और श्रद्धा होती है बल्कि अपने काम की सफलता और जीवन में शांति और सुकून पाने की लालसा भी नजर आती है। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास सितारों की तस्वीरें। बॉलीवुड के शानदार एक्टर अक्षय कुमार कल वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। अगले हफ्ते उनकी नई फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज होने वाली है। वहीं एक्ट्रेस जानवी कपूर की तिरुपति बालाजी के दरबार में आस्था छिपी नहीं है, वो पैदल ही बालाजी के दर्शन करने जाती रही हैं। और इस बीच अभिनेत्री कृति सैनन भी अपनी नई फिल्म कॉकटेल 2 की रिलीज के पहले तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंची। उधर एक्ट्रेस यामी गौतम को भी हाल ही में महाकाल की भक्ति में मगन देखा गया है। वो अपने पति आदित्य धर के साथ महाकाल के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंची थी। और इसके अलावा तमन्ना भाटिया भी पिछले दिनों महाकाल के दरबार में पहुंची। ये सब तस्वीरें जाहिर करती हैं कि चाहे कितने भी बड़े सितारे क्यों ना हो, भगवान के दरबार में उनकी अपार आस्था देखी जा सकती है। आखिर क्यों है ये आस्था, क्या है इन सितारों का भक्ति कनेक्शन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे अक्षय कुमार की। अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज से पहले अक्षय कुमार माता वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे और उनका दर्शन पूजन किया और फिल्म की कामयाबी की कामना की। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है और इसका एक नया गाना भी कल ही रिलीज हुआ है। देखिए
1: जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच त्रिकुटा की पहाड़ियों पर मौजूद माता वैष्णो देवी का ये वो दरबार है जहां क्या आम क्या खास सभी माता के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। कहते हैं माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से नतमस्तक होता है माँ उसकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। मन में श्रद्धा के कुछ ऐसे ही भाव लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार गुरुवार को माँ के दर्शन पूजन को पहुंचे। जम्मू से विशेष चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए अक्षय कुमार पंछी हेलीपैड पहुंचे। यह हेलीपैड मुख्य मंदिर से महज 900 मीटर की दूरी पर कटरा के पास मौजूद है। कटरा बेस कैंप पहुंचने के बाद अक्षय कुमार गुफा मंदिर तक गए, पूरी आस्था और भक्ति के साथ पवित्र मंदिर में मत्था टेका और मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान अक्षय सिंपल सफेद कुर्ते पायजामे में पूरी तरह सादगी में डूबे नजर आए। मंदिर परिसर में अक्षय कुमार को अपने बीच पाकर कई फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़े। माता वैष्णो देवी में अक्षय कुमार की गहरी श्रद्धा है। माता वैष्णो देवी में अपनी आस्था के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। अक्षय ने कहा था कि जब मैं महज 1 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पर ले गए थे। उस यात्रा के दौरान मैं अचानक बेहोश हो गया था और काफी गंभीर रूप से बीमार हो गया था, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं जल्द ठीक हो गया। चाहे माता वैष्णो देवी का दरबार हो या महाकाल का या फिर आस्था का कोई और दर, अक्षय कुमार कई बार अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद लेते रहे हैं। 2023 में फिल्म OMG 2 की रिलीज से पहले भी अक्षय कुमार कड़ी सुरक्षा के बीच माता वैष्णो देवी के मंदिर मत्था टेकने पहुंचे थे और पवित्र गुफा में पूजा की थी। हाल ही में भूत बंगला की रिलीज से पहले अक्षय कुमार डिम्पल कपाड़िया और टाइगर श्रॉफ के साथ उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे थे और पूरे भक्ति भाव से महाकाल की पूजा अर्चना की थी। इस बार अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के रिलीज से पहले फिल्म की सफलता की कामना करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। गुरुवार को ही मेकर्स ने फिल्म का नया गाना दीवाने हैं रिलीज किया, जिसे अक्षय कुमार ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। अक्षय ने कैप्शन में लिखा है, जंगल में केओस है, केओस में सेलिब्रेशन है और इस सेलिब्रेशन में सारे दीवाने हैं। इस गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। अब देखना है कि वेलकम सीरीज की इस तीसरी फ्रेंचाइजी को क्या बाकी दोनों फिल्मों की तरह ही दर्शकों का प्यार मिलता है और बाकी दोनों फिल्मों की तरह क्या ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है।

0: Better report. Good news today.
1: तो वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री यामी गौतम अपने पति और फिल्म मेकर आदित्य धार के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। आदित्य धार मशहूर फिल्म धुरंधर की डायरेक्टर हैं और इस दौरान यामी ने पूरी फैमिली के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। यामी के लिए महाकाल मंदिर की ये तीर्थ यात्रा बहुत खास थी, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आकर महाकाल की आराधना का मौका उन्हें नहीं मिला था। यामी ने बताया कि OMG 2 की शूटिंग के दौरान वो उज्जैन आई थी, लेकिन उस वक्त वो बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाई थी। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन पहली बार उन्हें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यामी के महाकाल दर्शन की तस्वीरें वायरल हो गई हैं।
2: सबसे बहुत तारीफ से भी ऊपर जो शब्द होते हैं, सबसे वही आज तक सुने था। ओ माय गॉड, टू जब शूटिंग थी मैं नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, मुझे याद है। और एक दिन का शूट और जब बाबा का बुलावा होता है सब, कैसे अब नहीं आएंगे, तो इससे मेरे भान की थी क्या बात है, सब आगे मेरा परिवार तो बाबा के दर्शन, बाबा का आशीर्वाद ली जाते, अभी कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही भावुक क्षण मिली और बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत साफ सुथरा अच्छा मंदिर ऐसा होना चाहिए जो आपको हर एक को सुविधा होनी चाहिए, हर एक को अच्छा लगना चाहिए। सब इतने दूर दूर से आते हैं सब लोग जो भी अपनी श्रद्धा के साथ, तो बहुत अच्छी बहुत आपकी जय ओम जय कृष्ण।
1: हाल के दिनों में भारतीय सिनेमा, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर साउथ, एक अद्भुत बदलाव से गुजर रहा है। जिन सितारों के पीछे दुनिया भागती है, वे सितारे खुद ईश्वर के चरणों में शीश नवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म की सफलता की मन्नत नहीं, बल्कि मन की उस परम शांति की खोज है जो करोड़ों रुपए और लाखों फैंस की भीड़ भी नहीं दे पाती।

0: चकाचौंध से भरी माया नगरी, जहां हर शुक्रवार किस्मत बदलती है, जहां नाम, शोहरत और पैसा कदमों में होता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया है, आस्था और अध्यात्म की एक ऐसी दुनिया जहां स्टारडम का अहंकार पिघल जाता है, भगवान के सामने शीश झुकाता हुआ एक अदना सा भक्त नजर आता है।
1: देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, तब उसका ध्यान उपलब्धियों प्राप्त करने पर होता है, लेकिन जब वह जीवन में सफलता, प्रसिद्धि और सम्मान हासिल कर लेता है, तब उसके भीतर कुछ और बड़े प्रश्न उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं शांत कैसे रहूंगा और मेरा संतोष कहाँ छुपा हुआ है जो परिस्थितियों को बदलने से भी प्रभावित ना हो? यही खोज व्यक्ति को मंदिरों, आश्रमों, संतों और आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि अनेक सेलिब्रिटी अपने आध्यात्मिक मूल की ओर लौट रहे हैं।
0: हाल के दिनों में भारतीय सिनेमा, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ, एक अद्भुत बदलाव से गुजर रहा है। ये बदलाव है अध्यात्म का। अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, निर्माता हो या निर्देशक, आस्था और अध्यात्म की ओर उनका झुकाव पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जब ये एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर अपने भगवान या गुरु की शरण में पहुंचते हैं, तो सिर्फ श्रद्धा से शीश ही नहीं नवाते, गाते भी हैं, नाचते भी हैं।
2: हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अज राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी।
0: जिन सितारों के पीछे दुनिया भागती है, वो सितारे खुद ईश्वर के चरणों में शीश नवाते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म की सफलता की मन्नत नहीं, बल्कि मन की उस परम शांति की खोज है, जो करोड़ों रुपए और लाखों फैंस की भीड़ भी नहीं दे पाती।
3: पिछले कुछ सालों से मैं कई मरतबा आता हूँ और शिरडी, और मुझे मेरे पापा यहाँ पे पहली मरतबा ले आए थे, ये मुझे याद है। मम्मी, पापा, मेरी बहन और मैं, हम आए थे और ये सिलसिला हम सिर्फ 30-35 साल पहले का होगा। और फिर पिछले 10 सालों में मैं कई मरतबा अपने आप आ चुका हूँ अपनी वाइफ के साथ अपने।
0: आज के सितारे सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सुल्तान नहीं हैं, वो भक्ति के रंग में डूबे वो साधक भी हैं, जो सफलता का श्रेय अपनी मेहनत से ज्यादा ऊपर वाले के आशीर्वाद को देते हैं। यही वजह है कि कभी तिरुपति बालाजी के चरणों में, कभी बाबा महाकाल के दरबार में, कभी काशी विश्वनाथ के सामने, तो कभी माता वैष्णो देवी धाम की चढ़ाई पर, तो कभी वृंदावन में संतों के सानिध्य में ये सितारे नजर आते हैं।
1: आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए।
4: एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या जाता है अंगूठी में? राधा राधा राधा राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है।
0: दुनिया का ये आध्यात्मिक रंग एक सुखद संदेश देता है। कला और आस्था का ये मिलन सिर्फ फिल्मों की कामयाबी के लिए मांगी गई दुआ नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि इंसान चाहे तरक्की के किसी भी मुकाम पर क्यों न पहुंच जाए, सनातन संस्कृति की छांव और ईश्वर का आशीर्वाद ही उसकी अंतिम नियति है। जब तक आस्था की ये लौ जलती रहेगी, तब तक कला में दिव्यता और जीवन में सुकून बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बॉलीवुड हो या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, प्रोड्यूसर्स हों या डायरेक्टर्स, आस्था और अध्यात्म की ओर उनका झुकाव पहले से ही कई ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोई गणपति बप्पा की शरण में है, तो कोई भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग पर चल रहा है, कोई महादेव को अपना इष्ट मानता है, तो कोई साईं की शरण में सुकून पाता है।

0: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आस्था, अध्यात्म और गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास बहुत गहरा है। आज के दौर में फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग सफलता के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी अध्यात्म की राह पर हैं।
1: एक समय के बाद व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि केवल बाहरी उपलब्धियां मन की हर आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती। प्रसिद्धि और धन सुविधाएं दे सकती है लेकिन मानसिक शांति की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए मैं इसे आध्यात्मिक खालीपन से ज्यादा एक आंतरिक आवश्यकता कहूंगी, क्योंकि मनुष्य केवल सफलता नहीं चाहता, वो भीतर से शांत, संतुलित और प्रसन्नता भी चाहता है।

0: अध्यात्म और ईश्वर की खोज में जब भी फिल्मी सितारों का मन व्याकुल होता है तो इनकी राहें महाकाल के दर की ओर मुड़ जाती हैं। ब्रह्ममुहूर्त में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का साक्षी बनने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के दिग्गज यहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि महाकाल के दरबार में पहुंचकर व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को पीछे छोड़ देता है। यहाँ केवल भक्ति का भाव महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि फिल्मी सितारों के चेहरे पर भी यहाँ आने के बाद एक अलग ही संतोष, सुकून और आत्मिक प्रसन्नता दिखाई देती है। कैमरों की चमक और शूटिंग की भागदौड़ से दूर महाकाल के सानिध्य में उन्हें वो शांति महसूस होती है जिसकी तलाश हर इंसान को जीवन में रहती है।
1: जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बुलावा जब आता है तभी कोई भी यहाँ पर आ पाता है। और आज जो आरती, जो भस्म आरती देखने का मौका मिला सबके साथ, इतना शब्द में बयान कर सकते हैं क्या महसूस होता है। बहुत सारा एनर्जी फील होता है और बैठ के अनुभव करना यही बहुत बड़ी बात है।
0: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनकी पहचान केवल एक सुपरस्टार के रूप में नहीं बल्कि गहरी आस्था रखने वाले एक शख्सियत के रूप में भी होती है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बिग बी का विश्वास भगवान गणेश में अटूट माना जाता है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से उनका विशेष जुड़ाव है। ये मंदिर उनके लिए श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक शक्ति का केंद्र है। कई मौकों पर अमिताभ बच्चन को सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया है। कई बार वे अपने घर से पैदल चलकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचे हैं। उनके लिए ये यात्रा श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, परिवार में कोई शुभ अवसर आता है या फिर जीवन के किसी महत्वपूर्ण पड़ाव का सामना करना होता है, तब बिग बी अक्सर बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अमिताभ बच्चन का मानना है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी जड़ों और ईश्वर के प्रति विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि भारतीय सिनेमा के महानायक आज भी उतनी ही विनम्रता से भगवान गणेश के सामने सिर झुकाते हैं जितने श्रद्धा से कोई साधारण भक्त झुकाता है।
2: ये लोग अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्हें मानसिक स्पष्टता मिल रही है, निर्णय लेने के लिए शक्ति मिल रही है और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी मिल रहा है। अपने भीतर उठ रहे अनेक प्रश्नों के भी उत्तर मिल रहे हैं। अध्यात्म उन्हें केवल धार्मिक नहीं बनाता बल्कि भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित, मानसिक रूप से अधिक मजबूत और जीवन के प्रति अधिक जागरूक भी बना रहा है।
0: बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत की आस्था अध्यात्म के आधुनिक स्वरूप में है। वे सद्गुरु जग्गी वासुदेव की शिक्षाओं का पालन करती हैं। कंगना कोयम्बटूर में आदियोगी शिव और ईशा फाउंडेशन के केंद्रों पर साधना के लिए जाती हैं। जब भी मौका मिलता है कंगना केदारनाथ और पुरी जगन्नाथ मंदिर में हाजिरी लगाती हैं। महादेव की नगरी काशी में भी उन्हें अक्सर देखा जाता है।
3: जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: वेलकम बैक टू दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
13: गुड न्यूज टुडे.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: और अब बात करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: वेलकम बैक टू दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
6: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
5: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
7: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So, you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
8: After multiple assassination attempts, they can't even get...
9: They're reliable.
10: Always when I need them.
7: ...to live sports action.
11: One-hand jam by LeBron on the break!
12: That's another three, Steph Curry!
7: And your favorite music.
13: Well, the dawn begins to crack.
7: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app, or ask your device to play TuneIn.
14: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य
16: कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रे का नया वीडियो जारी किया, दो दिन बाद नेवी में होगा शामिल। आज फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ले सकता है करवट, तेज आंधी हल्की बारिश का येलो अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन। अकोला में बचपन के दोस्तों ने बदली गांव की तकदीर, सूखी नदी को फिर से बनाया जीवनधारा, श्रमदान के जरिए नदी की सफाई से जल संकट का समाधान किया। चीन के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, देशभर की 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
1: सज गई है, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: फिल्मी फ्राइडे पर सिने प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर 4 फिल्में हुई रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही रिलीज। सिनेमाघरों में आज धूम मचाने को तैयार रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन का लीड रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने की बड़े पर्दे पर दस्तक, इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज, ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी रिलीज हुई, वेटरन एक्टर असरानी, जरीना वहाब खास तौर से आपको नजर आएंगे।
2: सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज, दमदार भूमिका में दिखे सनी देओल, एक बार फिर से पर्दे पर दिखेगी भारत पाकिस्तान बंटवारे की दास्तां। फिल्म स्पाइडरमैन का एक नया ट्रेलर सामने आया, हल्क और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, फिल्म की यूएसपी दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है फिल्म। अभिनेत्री आलिया भट्ट के नक्शे कदम पर बेटी राहा, आलिया ने बताया बेहद ही फिल्मी है, उनकी बेटी स्टेज के लिए बनी है राहा। फिल्म पेटी के निर्माताओं ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म में जोड़े गए 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन। एक्टर धनुष की अपकमिंग फिल्म ओम का फर्स्ट लुक जारी हुआ, फिल्म में एक्शन अवतार में दिखेंगे धनुष।
1: भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज, रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी करेंगे इसका उद्घाटन। रामायण पात्रों के भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान दिया गया, पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम की यात्रा जारी, अब तक 38 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सघन तलाशी अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का किया दौरा, राष्ट्रपति ने यहां ओंकारेश्वर महादेव मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन।
2: इक्कीस जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होगा मुख्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। कोलकाता योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे हजारों लोग, कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी, योग को बढ़ावा देना कार्यक्रम का मकसद। इस साल के योग दिवस कार्यक्रम की थीम होगी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, केंद्रीय आयुष्मान मंत्री प्रताप राव यादव ने किया ऐलान। योग दिवस से पहले दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया योग अभ्यास, विशेषज्ञों ने होलिस्टिक वेलनेस और साथ ही माइंडफुल लिविंग पर दिया है जोर। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस से पहले मुंबई में किया योग कार्यक्रम में, श्रेय सिंह, अर्जुन कपूर, वीर पहाड़िया समेत कई हस्तियां शामिल।
1: इंदौर में चले अभियान के तहत नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ, कलेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया इसका शुरुआत, कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर बच्चों से बातचीत की। इस अभियान के तहत नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, बच्चों को स्कूल बैग, पानी की बोतल और दूसरी चीजें वितरित की गई। 21 जून को होने वाले नीट पुनर्परीक्षा को लेकर राजस्थान के सीकर में हाई अलर्ट, जयपुर रेंज के आईजी ने तैयारियों को परखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की, कानपुर डिवीजन में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। गोरखपुर में लाउडस्पीकर से पुलिस की अपील, छुट्टी मनाने या शादियों में बेफिक्र होकर जाएं लोग, सूचना देकर जाने पर घर की निगरानी करेगी पुलिस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: अयोध्या में आज भव्य वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आधुनिक तकनीक से होगा रामकथा का मंचन।
1: चारधाम यात्रा में जारी है श्रद्धालुओं का उत्साह, 38 लाख से ज्यादा भक्तों को मिला भगवान के दर्शन का सौभाग्य, केदारनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु।
2: 21 जून को रीनीट के लिए जबरदस्त इंतजाम, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने पहुंचाए प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन।
1: उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से मौसम बदलने के आसार, नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से आंधी बारिश का अनुमान।
2: फिल्मी फ्राइडे पर बॉक्स ऑफिस में दिखी जबरदस्त हलचल, बड़े पर्दे पर 4 और ओटीटी पर 5 फिल्में रिलीज।

0: देखिए, पूजा ने मुझे बताया कि उसको ये फिल्म बचपन से बहुत पसंद रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की न्यू फिल्म है ये। इसका नया ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज किया गया है। इस फिल्म से टॉम हॉलैंड बड़े पर्दे पर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के रूप में वापसी कर रहे हैं।
1: दरअसल ट्रेलर में दिखाया गया है कि पीटर के साथ कुछ अजीब सी घटना होती है। वो खुद अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते, मतलब हमेशा की तरह रोमांच पूरा है, लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है हल्क की एंट्री।
0: और देखिए, स्पाइडरमैन से फिर हल्क का जबरदस्त टकराव, जिसे देखने के लिए आपको 31 जुलाई का इंतजार करना होगा, जब ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी।
2: ये हो क्या रहा है मुझे?
3: बस जाना मुझे स्पाइडी।
4: एक नई चुनौती और नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है स्पाइडरमैन।
2: मेरा खुद पे काबू नहीं रहता।
4: हल्क से स्पाइडरमैन की भिड़ंत बनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई USP।
5: होगा क्या?
6: कोई तो होगा।
5: ओके बाय। कोई तो
4: रोमांच और रहस्य के सागर में गोते लगाने के लिए स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की नई किस्त तैयार है। एक दिन पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर रिलीज किया गया। करीब 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में स्पाइडरमैन नो वे होम की घटनाओं के बाद की झलक मिलती है।
7: कुदरत में क्या कमी है और क्या खूबी है, ये तय करने वाले हम कौन?
8: किसी ने धक्का दिया मुझे।
4: लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाला सीन है स्पाइडरमैन की ब्रूस बैनर यानी हल्क से भिड़ंत।
9: तक नहीं है।
4: इस ट्रेलर में एक ऐसा पल भी दिखाया गया है जब स्पाइडरमैन अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो बैठता है, अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पाता। उसके DNA पर म्यूटेशन का असर हुआ है और मदद मांगने वो डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास जाता है। डॉक्टर ब्रूस उसे वो डिवाइस दिखाते हैं जिससे वो खुद को हल्क बनने से रोकते हैं।
2: डॉक्टर बैनर, DNA पर म्यूटेशन का असर कम करने के लिए आप क्या करते हैं?
7: अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना।
4: इस बार शहर पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज स्पाइडरमैन और हल्क के बीच जबरदस्त टकराव है। पीटर पार्कर सीधे जाकर हल्क से भिड़ जाता है, हालांकि ट्रेलर में इस लड़ाई की वजह साफ नहीं है।
10: यो स्पाइडरमैन, तुम ठीक हो? अपने अंदर के शैतान।
4: 2021 के स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इस नई फिल्म को डेस्टिन डेनियल क्रिटन ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी पिछली फिल्म के खत्म होने के 4 साल बाद की है।
7: और तुम भी नहीं।
2: अरे भाई, बड़े दिन बाद दिखे।
4: ट्रेलर में दिखाया गया है कि पीटर को जिम्मेदारी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे जैसे पीटर खुद को पहले से ज्यादा मुश्किल हालात में धकेलता है, उसकी शक्तियाँ आश्चर्यजनक तरीकों से बदलने लगती है। एक हैरान करने वाला शारीरिक बदलाव शुरू होता है। ये पीटर के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है।
11: ये हमेशा याद रखना।
4: टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर के रोल में वापसी की है, जबकि जेंडिया MG के रोल में लौट रही है। इसके साथ ही जॉन बर्नथल, सैडी सिंह और लिजा कोलोन जायज भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 31 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।
2: की योगा से ही होगा भाई।
4: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रेडी।
1: तो देखिए, आज फिल्मी फ्राइडे पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा हुआ है। दरअसल बड़े पर्दे पर 4 और OTT पर 5 फिल्में आज दस्तक दे रही हैं। इस साल की शुरुआत से ही फिल्मी गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है।
0: और बॉलीवुड के साथ साथ आपको हॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। देखिए, बड़े पर्दे पर इस पूरे साल क्या हलचल दिखने वाली है।
12: बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बड़े पर्दे पर हलचल मचा रही हैं, तो दूसरी तरफ हॉलीवुड भी सिल्वर स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहा है। आज फिल्मी फ्राइडे पर भी एक साथ 4 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 ने आज थिएटर्स में दस्तक दी। इसी के साथ ही अंकित यादव और जया भट्टाचार्य की इमोशनल ड्रामा समर्पित भी रिलीज हो चुकी है। OTT पर भी दर्शकों को एंटरटेनमेंट की सौगात मिली है। आज 5 फिल्में और सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट का शानदार डोज लेकर आ रही हैं। जाहिर है फिल्मों के शौकीनों के लिए ये साल बेहतरीन साबित हो रहा है। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के साथ भारतीय सिनेमा की रौनक बढ़ी और अब ये सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रामचरण की पेड्डी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नई ऊंचाइयां छू रही है।
5: हाय बॉयज,
12: अल्फा में आलिया का एक्शन अवतार देखने के लिए दर्शक बेकरार हैं।
6: दीवाने हैं, दिलदार हैं, जब भी बोलो तैयार हैं, दिल से करते हैं।
12: वेलकम टू द जंगल में 30 से ज्यादा किरदार दर्शकों को हंसाने आ रहे हैं।
6: सोनी
12: रणवीर की आने वाली फिल्म रामायण की भी खूब चर्चा हो रही है। राजामौली की वाराणसी का भी बेसब्री से इंतजार है।
8: सोते शो में बदनाम।
12: शाहरुख की आने वाली फिल्म किंग तो अभी से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।
8: एक ही नाम।
12: वही साउथ स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक भी सुर्खियां बटोर रही है। खास बात यह है कि एंटरटेनमेंट का ये डोज भारतीय फिल्मों में ही नहीं बल्कि एनिमेशन और हॉलीवुड फिल्मों में भी दिख रहा है। बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी की पांचवी फिल्म टॉय स्टोरी 5 भी आज रिलीज हो गई। इस फिल्म में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के होने वाले नुकसान से बचने की नसीहत दी गई है। जुलाई का महीना तो हॉलीवुड फिल्मों के लिए बेहद खास होने जा रहा है। क्रिस्टोफर नॉलन की मच अवेटेड फिल्म ओडिसी 17 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के प्रीमियर के लिए क्रिस्टोफर नॉलन ने मुंबई को चुना है। उनके इस फैसले ने भारतीय सिनेमा प्रेमियों का उत्साह और बढ़ा दिया है।
2: उत्तरी डॉक्टर बैनर, डीएनए पर म्यूटेशन का असर कम करने के लिए आप क्या करते हैं?
7: अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना।
12: इसी के साथ ही स्पाइडरमैन की नई सीक्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी 30 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की खास बात ये भी है कि ये फिल्म अपनी ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले ही भारत में रिलीज कर दी जाएगी। इसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।
9: तुम ही हो जिस पर उसका असर नहीं हो रहा और तुमसे वो छिप नहीं सकता।
12: पिछले कुछ महीनों में बड़े पर्दे पर आई फिल्मों की बहार ने दर्शकों को मनोरंजन का बेहतरीन मौका दिया है। आने वाले महीनों में भी फिल्मों की हलचल जारी रहने वाली है। यानी ये पूरा साल सिनेमा में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन सौगात लेकर आया है।
2: अरे भाई, बड़े दिन बाद देखे।
12: रिपोर्ट कुंडी सुरे।
13: कुछ कर सकता है तो सोच मत, अभी कर।
11: ये हमेशा याद रखना, फिर तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ।
14: I miss you, man.
0: और देखिए, सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान में जाकर 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाएंगे।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, इस बार जरिया बना है बंटवारा 1947, जिसका टीजर एक दिन पहले रिलीज किया गया। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का एक अनोखा दर्द देखने को मिलेगा।
0: और देखिए, इसी टीजर में सनी के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और सनी के बेटे करण देओल की झलक दिखाई गई है। क्या कुछ खास है बंटवारा 1947 के इस टीजर में, दिखाते हैं आपको।
15: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा हो गया।
16: भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित फिल्मों की फहरिस्त में सबसे लेटेस्ट और कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज है बंटवारा 1947। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म, जिसके इंटेंस टीजर ने रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट हाई कर दी है। बंटवारा 1947 का टीजर आमिर खान की आवाज में नरेशन से शुरू होता है। वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे वाले दौर का माहौल बता रहे हैं,
15: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा हो गया।
16: कहानी शबाना आजमी से शुरू होती है, जो एक डरी हुई बूढ़ी महिला के रोल में नजर आ रही है। करण देओल और अली फजल के किरदार बंटवारे के हिंसा के बीच फंसे नजर आते हैं। प्रीति जिंटा का किरदार भी इसी हालात में जूझ रहा है।
17: इरादा तो नहीं है।
16: अभिमन्यु सिंह हिंसा के लिए उतावली के लीडर के रूप में है और गलियों को खून से रंग देने की बातें कर रहे हैं।
5: मोहल्ले दिया गलियां उन्हें खून हो जानी है।
16: ऐसे हालात में एंट्री होती है सनी देओल के किरदार, एक ऐसा हीरो जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। हाल ही में बंटवारा 1947 के रिलीज हुए पोस्टर ने किरदारों पर से पर्दा उठाया था। सनी के अलावा इसमें शबाना आजमी, प्रेजेंटा करण देओल नजर आए थे, लेकिन टीजर ने इन किरदारों की कुछ हद तक डिटेलिंग की है। साथ ही अभिमन्यु सिंह समेत कुछ और किरदारों से पर्दा उठाया है।
17: इरादा तो नहीं है, पर इतराज़ भी नहीं है।
16: सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं। करण देओल जावेद मिर्जा के किरदार में दिखेंगे। शबाना आजमी माई दुर्गावती देवी की भूमिका में दिखेंगी, तो प्रिटी जिंटा हमीदा बेगम के रोल में होंगे। अली फजल हबीब अनवर के रूप में और अभिमन्यु सिंह याकूब खान के रोल में नजर आएंगे।
15: हिंदुस्तान
16: 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और त्रासदियों में से एक था।
15: साल की गुलामी
16: अब तक
15: से
16: कई बॉलीवुड फिल्में विषय पर बन चुकी हैं। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनदेखी कहानी को लेकर सामने आए। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नहीं पर बेस्ड है। जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नहीं एक पंजाबी कहावत है, जिसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। ये कहानी विभाजन के दर्द, मानवीय संवेदनाओं और धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर इंसानियत को दर्शाती है। नाटक में एक बूढ़ी हिंदू औरत की कहानी थी जिसका पूरा परिवार बंटवारे की हिंसा में खत्म हो चुका है और वो लाहौर के पुश्तैनी मकान में अकेली रहती है। इधर बंटवारे में भारत से पाकिस्तान पहुंचे एक मुस्लिम परिवार को सरकार ने वो हवेली अलॉट की है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने घर से निकलना नहीं चाहती। इस घर के अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है। बंटवारा 1947 में इस बूढ़ी औरत का किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। नाटक में आगे दिखाया गया है कि दंगाइयों को खबर मिल चुकी है कि लाहौर के उस घर में एक हिंदू बुढ़िया रहती है जिसे वो खत्म कर देना चाहते हैं। बंटवारा 1947 में दंगाइयों के उस लीडर के तौर पर अभिमन्यु सिंह को दिखाया गया है, तो उसके अत्याचारों का सामना करते सनी देओल जैसे किरदार इस फिल्म के हीरो हैं, जिन्होंने बंटवारे के उस कठिन दौर में हार नहीं मानी और मजबूरों और मजलूमों की रक्षा करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम की। बंटवारा 1947 का टीजर तो दमदार लग रहा है, अब देखना है कि 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अब देखिए बॉलीवुड की दो सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में रामायण और वाराणसी का सबको ही इंतजार है। इन्हें भारतीय सिनेमा का गेम चेंजर बताया जा रहा है, लेकिन रिलीज से पहले ही इन दोनों फिल्मों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है
1: जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि इन फिल्मों के मेकर्स डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए की डील चाहते हैं, मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म से इस कीमत पर दाव लगाने को तैयार कोई नहीं दिख रहा है।

रामायण और वाराणसी भारतीय सिनेमा की दो ऐसी फिल्में जिनकी रिलीज से पहले ही इनके बारे में दावे किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। कहीं ने भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विजन बताया जा रहा है तो कहीं हॉलीवुड लेवल के स्केल और प्रोडक्शन की बात हो रही है। बड़े स्टार कास्ट, बड़े डायरेक्टर्स, विशाल बजट और दावे उससे भी बड़े, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि करोड़ों की नहीं, सैकड़ों करोड़ की नहीं बल्कि हजार करोड़ रुपए तक की उम्मीद रखने वाली ये फिल्में अब तक ओटीटी मार्केट में अनसोल्ड हैं। यानी जिस डिजिटल बाजार को आज फिल्मों का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है, वहीं इन फिल्मों के लिए अब तक कोई फाइनल डील नहीं हो पाई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के मेकर्स डिजिटल राइट्स के लिए ऐसी कीमत चाहते हैं जो भारतीय ओटीटी इतिहास की सबसे बड़ी डील साबित हो सकती है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रामायण के दोनों पार्ट्स के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन मेकर्स ने उसे स्वीकार नहीं किया। रामायण के मेकर्स इस डील के लिए 1000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उधर वाराणसी के लिए भी करीब 650 करोड़ रुपए के ऑफर की चर्चा है, मगर वहां भी सौदा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि जब ओटीटी कंपनियां सैकड़ों करोड़ देने को तैयार हैं, तो फिर डील अटक क्यों रही है।

0: गौर से देखा जाए तो यहाँ टकराव दो सोच का है। एक तरफ मेकर्स हैं जो मानते हैं कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बेच रहे बल्कि एक इवेंट बेच रहे हैं, एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। उनका तर्क है कि रामायण सिर्फ भारत की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में इसकी कीमत सामान्य फिल्मों जैसी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भावनाओं पर नहीं निवेश और रिटर्न्स पर फैसला लेते हैं। उन्हें नहीं देखना है कि फिल्म कितनी भव्य है, उन्हें ये देखना है कि फिल्म कितने नए सब्सक्राइबर्स लाएगी, कितने पुराने दर्शकों को रोक के रखेगी और आखिर में निवेश पर रिटर्न कितना देगी। ओटीटी की दुनिया में एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या ये कंटेंट उतना पैसा वापस ला सकता है जितना हम लगा रहे हैं? और यहीं पर हजार करोड़ की डील सुनकर प्लेटफॉर्म्स सावधान हो जाते हैं। क्योंकि इतनी रकम में वो कई बड़ी वेब सीरीज, दर्जनों फिल्में और पूरे साल का कंटेंट लाइनअप खरीद सकते हैं। हाल ही में एक्टर मनोज वाजपेयी से जब फिल्मों के भारी भरकम बजट और उनके प्रचार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद दिलचस्प बात कही। मनोज वाजपेयी ने कहा कि कई सालों से फिल्मों को बड़ा और सफल दिखाने के लिए बजट और कमाई के आंकड़ों का इस्तेमाल एक तरह के पब्लिसिटी टूल के रूप में किया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बजट का शोर मार्केटिंग का हथियार है? आज रामायण और वाराणसी दोनों फिल्मों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी संभावनाओं को वास्तविक परिणामों में बदले, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्रेलर नहीं खरीदते, वो परफॉर्मेंस खरीदते हैं, वो वायदे नहीं खरीदते, वो दर्शकों की गारंटी खरीदते हैं। और जब तक फिल्म रिलीज होकर अपनी ताकत साबित नहीं कर देती तब तक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी सावधानी बरतते हैं। ऐसे में ओटीटी कंपनियों का संकोच भी पूरी तरह से जायज है, क्योंकि उनका कारोबार भावनाओं से नहीं मुनाफे से चलता है। सच यही है कि आज रामायण और वाराणसी से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन उम्मीद और वास्तविक सफलता के बीच की दूरी सिर्फ दर्शक ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आस्था भक्ति के रंग आजकल गुवाहाटी में भी खूब बिखरे हुए हैं। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रशासन ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में होने वाले अंबुबाची मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में 22 से 26 जून तक आयोजित होने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

0: असम के माँ कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। भक्तों के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल देंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुबासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला चरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो चरण को महायोग बोलता है, अम्बुबासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। साथ ही कामाख्या धाम तंत्र साधना का बड़ा केंद्र भी है। ऐसे में इस शक्ति उत्सव को लेकर अघोरी, नागा और शक्त साधकों का भी बड़ा समागम देखने को मिल रहा है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पुलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुबाची मेले में 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी का पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष प्रसाद के तौर पर उन्हें यहां पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र दिया जाता है, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। अम्बुबाची मेला मानसून की शुरुआत के साथ आता है, ऐसे में ये समय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब रुक कर लेते हैं केरल का। दक्षिण भारत का काशी कहे जाने वाले अक्कारे कोट्टियूर महाशिव मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की रौनक देखी जा सकती है। यहां आयोजित वैशाख महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यह देश का ऐसा अनूठा शिव मंदिर है जो साल में एक महीना ही खुलता है।
0: शांत पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा उत्तरी केरल का प्राचीन कोट्टियूर शिव मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाले वैशाख महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। आस्था ऐसी कि पांव रखने की जगह नहीं, भगवान शिव के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए यहाँ लंबी कतारें हैं। लोग पानी में कतार बनाकर परंपराएं निभाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कोट्टियूर शिव मंदिर की खासियत ये है कि ये कोई स्थायी कंक्रीट का मंदिर नहीं है बल्कि बावली नदी के बीचों बीच स्थित एक प्राकृतिक वेदी है जो अपने आप में अनूठी है। और पूजा स्थल पर यहाँ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि पानी से घिरे पत्थरों

0: कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बदलते मौसम का हाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: No.
5: Oh, no.
6: Welcome to Get Real.
4: I got something to say.
6: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
5: Oh, my God.
4: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him? Well,
7: she has a soft spot for troubled men.
4: Boo bloody who?
6: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
5: Love runs deeper than we know.
6: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
1: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है,

0: तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रे का नया वीडियो किया जारी, दो दिन बाद नेवी में होगा शामिल। आज फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ले सकता है करवट, तेज आंधी, हल्की बारिश का येलो अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण, 126 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज आई है,
4: एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस राहत की बारिश लेकर आने वाला है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो आज से 21 जून के बीच रुक रुक कर बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे कि तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।
3: और यही नहीं, अनुमान तो ये भी है कि 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून भी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आएगा और देश के कई इलाकों में छा जाएगा।
5: चार जून को केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से अब तक पूरे देश में औसत से लगभग 42% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर इस समय तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो जाती है। भारत में साल भर होने वाली कुल बारिश का 70% से ज्यादा हिस्सा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। केरल में इस बार मानसून ने तय समय से थोड़ी देरी से दस्तक दी थी, इसके बाद शुरुआती 4 दिनों में इसने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई, लेकिन अब मानसून रुक सा गया है। मानसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 25 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है, लिहाजा 22 जून से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। मौसम विभाग के मुताबिक जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसूनी हवाएं तेज होंगी। अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी परतों में बहने वाली बहुत तेज हवाएं हैं। ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। ये मानसूनी बादलों और वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं। मानसून की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखकर जानकार यही उम्मीद कर रहे हैं कि 24 और 25 जून के आसपास महाराष्ट्र के कोंकण के कई इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों के भीतर तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में जल्द ही बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है, तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
7: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
8: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
9: Good news today banata hai.
10: Good news today.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के शोपिया की बात कर लेते हैं, जहां पर एक किसान की खेती की तकनीक अब दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गई है। दरअसल शोपिया में रहने वाले हारून रशीद ने अपने घर की छत पर ही केसर समेत कुछ दूसरे दुर्लभ पौधे उगाने में कामयाबी हासिल कर ली। खास बात यह है कि इस टेरेस फार्मिंग में 100 से ज्यादा किस्म के फल, सब्जियां और मसालों के साथ साथ औषधियां भी है, और ये सभी पौधे पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इनकी पैदावार में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में केसर पारंपरिक तौर पर पूर रीजन में उगाया जाता है, लेकिन यहां पर छत पर ही केसर के पौधे की उगाए गए।
14: कहते हैं शोक के रूबरू कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियान के हारून रशीद, जो कि एक गांव में रहता है। तो इन्होंने एडवांस फार्मिंग 2017 में ये ठान लिया, इन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊं जो इलाके के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और लोगों के लिए मशले राह बन जाए। तो इन्होंने किचन गार्डन शुरू किया। 40x42 स्क्वायर फुट सिले पर हमने ये बनाया दूसरी मंजिल में, ऑल वेराइटीज इन दिस टेरेस गार्डन। पहले तो 40-45 से स्टार्ट किया, अब 100 एबो वेराइटीज है यहाँ। अभी जो यहाँ जो डाइस्कोरिया है, अभी कोबरा प्लांट भी यहाँ मौजूद है, अभी लेमन टी है, लेमन ग्रास भी, उसमें भी हमें कामयाबी मिला, सैफरान में भी हमें कामयाबी मिला। तो वैरायटी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इस छोटे से गार्डन में इन्होंने न कि सीड प्लांट्स और दूसरी अन्य चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, एडवांस फार्मिंग हम इसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए एक मशलीरा बन गया है।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
16: विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
17: Good News Today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
18: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रे का नया वीडियो किया जारी, दो दिन बाद नेवी में होगा शामिल। आज फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ले सकता है करवट, तेज आंधी हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भरा पानी, यातायात प्रभावित। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण, 126 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाया प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगी कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। चीन के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, देश भर के 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
18: फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर 4 फिल्में हुई रिलीज, OTT प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही रिलीज। सिनेमा घरों में आज धूम मचाने को तैयार, रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दी दस्तक, इस फिल्म में अंकित यादव, अजय भट्टाचार्य हैं लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज, के डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है भी हुई रिलीज, वेटरन एक्टर असरानी, जरीना वहाब खास तौर से दिखेंगे। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज, दमदार भूमिका में दिखेंगे सनी देओल। एक बार पर्दे पर दिखेगी भारत पाक बंटवारे की दास्तान।
19: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा
20: जरब जाएगा।
18: फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का आया नया ट्रेलर, हल्क और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी। फिल्म की यूएसपी, दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। अभिनेत्री आलिया भट्ट के नक्शे कदम पर बेटी राहा, आलिया ने बताया बेहद फिल्मी है उनकी बेटी, स्टेज के लिए बनी है राहा। फिल्म पैदी के निर्माताओं ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म में जोड़े गए 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन। एक्टर धनुष की अपकमिंग फिल्म ओम का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म में एक्शन अवतार में दिखेंगे धनुष। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में किया कन्या पूजन, इस दौरान कन्याओं को दिया विशेष उपहार।

0: कामाख्या मंदिर से बच्चों को लेकर दिखा सीएम योगी का स्नेह, छोटे बच्चे को गोदी में खिलाते दिखे योगी। कामाख्या धाम में सीएम योगी ने महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। रामनगरी अयोध्या में विकास की बयार, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए सामने आई गुड न्यूज, रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका उद्घाटन। 8000 वर्ग फीट में फैला है रामायण वैक्स म्यूजियम, म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान के दिव्य रूपों की मिलेगी झलक, 50 चरित्रों के पुतलों से जीवंत होंगे रामायण कालीन दृश्य। परिक्रमा मार्ग पर बना म्यूजियम तीर्थयात्रियों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, मिलेगा रामायण का जीवंत अनुभव, करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है ये तैयार। आस्था और इतिहास का संगम बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम, रामायण की कहानी को दृश्यत रूप में प्रस्तुत करेगी मोम की प्रतिमाएं। रामायण पात्रों के भाव और वेशभूषा पर दिया गया है विशेष ध्यान, पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का किया दौरा, राष्ट्रपति ने यहां ओंकारेश्वर महादेव मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन। ओंकारेश्वर पहुंचे राष्ट्रपति का राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया स्वागत, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायकों ने भी किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में लैवेंडर फेस्टिवल, मुख्यमंत्री ने किया इसका उद्घाटन, औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार प्रोजेक्ट का मकसद। एक अप्रैल से 17 जून के बीच 14.6% बढ़ के 5.21 लाख करोड़ रुपए हुआ नेट इनकम टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.46% बढ़कर हुआ 6.10 लाख करोड़। बिहार को मिलेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की सौगात, 1 जुलाई से प्रदेश में 211 नए कॉलेज खोलने की तैयारी, एक प्रखंड एक डिग्री कॉलेज योजना के तहत खुलेंगे कॉलेज। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने, नागपुर से 100वें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बूस्टर को दिखाई गई हरी झंडी। निजी क्षेत्र की कंपनी सोलर डिफेंस ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल के स्वदेशी बूस्टर का निर्माण, पहले रूस से आयात करना पड़ता था सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर। भारतीय तट रक्षक बल की बढ़ेगी क्षमता, कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट ACVH-561। पानी, दलदली जमीन, रेत और उथले तटीय इलाकों में आसानी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है ये होवरक्राफ्ट। कोस्ट गार्ड को मिला पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट, में 50% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का किया गया है इस्तेमाल, डील के तहत तटरक्षक बल को मिलेंगे और 5 स्वदेशी होवरक्राफ्ट। अमरनाथ यात्रा के लिए डीजीपी ने श्रीनगर से स्पेशल टीमों को किया रवाना, दुर्गम इलाकों में एसडीआरएफ होगी तैनात। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक मदद, प्रधानमंत्री मोदी करीब 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए एल्युमिनियम उपकरण निर्माण में बढ़ेगी भारत की आत्मनिर्भरता, रक्षा मंत्री आज नागपुर में एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का करेंगे भूमि पूजन। शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए संतूर वादक तरुण भट्टाचार्य को मिलेगी पद्मश्री, प्रयोग संतूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। अलवर में पासिंग आउट परेड में एसएसबी के विशेष प्रशिक्षित डॉग्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, डॉग्स के प्रदर्शन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई और उत्साह दिखाया। एसएसबी के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में खेल विशेष बीआरटीसी बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित, प्रशिक्षुओं ने शानदार मार्च पास्ट और अनुशासन का प्रदर्शन कर सभी का मन जीता। खेल कोटा से भर्ती प्रशिक्षुओं ने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की तैयारी की। अब ये जवान देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। एसएसबी अधिकारियों ने नव प्रशिक्षित जवानों को ईमानदारी और अनुशासन से कर्तव्य निभाने का संदेश दिया। जवानों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के परिजन भी हुए शामिल। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर परिवारजन गर्व और खुशी से भावुक नजर आए। महाराष्ट्र के अकोला में बचपन के दो दोस्तों ने एक ऐसी पहल शुरुआत की जिसने बदली गांव की सूरत। गांव वालों ने श्रमदान से नदी को दी नई जिंदगी। अकोला के चादुर गांव में नदी सफाई की दो दोस्तों की पहल बनी मुहिम। श्रमदान में हर उम्र वर्ग के लोग शामिल। नदी को फिर से जिंदा करने में जुटा पूरा गांव। गांव वाले की कोशिशों के बाद में स्थानीय विधायक और प्रशासन का भी मिला साथ। अब जेसीबी पोकलेन और ट्रैक्टर के जरिए की जा रही है नदी की सफाई। गांव वालों की मेहनत से जगी उम्मीद। नदी की सफाई से इलाके में जल संकट के समाधान की जगी आशा। सूखा प्रभावित इलाकों के लिए मिसाल बने दो युवक। सूख चुकी नदी की जीवन धारा लौटाने की जगाई उम्मीद। कभी पानी से लबालब भरी होती थी ये नदी।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Die Hard Music Fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रह का नया वीडियो किया जारी, दो दिन बाद नेवी में होगा शामिल। आज फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ले सकता है करवट, तेज आंधी हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भरा पानी, यातायात प्रभावित। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण, 126 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। चीन के सिचुआन प्रांत में चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, देश भर की 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सास बहू और बेटा की इस हॉटलाइन पर। तो बताइए क्या है आपकी फरमाइश। सीरियल्स की कहानियों के अपडेट, रियलिटी शोज की हलचल, सितारों से मुलाकात, उनके डे आउट, ये सब और बहुत कुछ है हमारे शो सास बहू और बेटिया में, जहां हम लेकर आते हैं आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हमारी हेडलाइंस के साथ।
4: सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए।
5: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, ईशा के चरित्र पर लगेंगे इल्जाम, सूरज देगा ईशा का साथ। दिखेगी रीत और राघव के रिश्ते के बीच गलतफहमी की दरार। मंगल को लगेगी चोट, जयराज बनेगा सहारा।

0: जाएगी आंसू, ध्रुव करेगा समझाने की कोशिश। मूसा को पकड़ने के लिए जगदात्री बनाएगी मास्टर प्लान, रुद्र को होगा शक। रियलिटी शो तुम हो ना में खास मेहमान बनकर आएंगी उषा ताई, होंगी पुरानी यादें ताज़ा।
1: क्या यार, सीनियर सिटीजन के साथ ये छोटी बच्ची आई है।
0: और सुधा चंद्रन संग करेंगे फन डे आउट, सास बहू और बेटिया संग वो बिताएंगी छुट्टी वाला दिन, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: हाय ईशा, तो क्या कुछ हो रहा है आपकी कहानी में आज, क्या फिर से आया है यहाँ पर भी कोई नया ट्विस्ट? हेलो, ओह माय गॉड ईशा, आप कितनी तेज बोल रही हैं। अरे इतनी जल्दी बोलेंगी बिना गैप लिए तो मुझे कैसे समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश करी। हेलो हेलो, अरे किस बात की जल्दी है। हेलो,
3: मुझे तो लग रहा है यहाँ भी कहानी में है थोड़ी बहुत टेंशन। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट। लेट्स चेक इट आउट।
4: सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए।
0: ईशा के चरित्र पर उठे सवाल।
4: जब तक सूरज गुंडा था उसे छोड़कर मेरे बेटे आकाश की बहू बनकर रही है ईशा।
0: बुआ जी और ताऊ जी ने लगाए इल्जाम।
4: इसलिए शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए, ऐसी अशुद्ध जो किसी एक पति की ना हो सकी।
0: ताऊ जी पर भड़का सूरज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में यहाँ पर हो रही है बुआ जी की बेटी चुटकी की शादी और ऐसे में शुरू हो चुकी है हल्दी और मेहंदी की रस्म। सभी लोग काफी खुश थे, शगुन वाली मेहंदी चुटकी के हाथों में लग रही थी, लेकिन जल्द ही इन खुशियों पर ट्विस्ट का ब्रेक लग गया जब आ गया फोन चुटकी के ससुराल वालों का और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बस वजह ये है कि उन्होंने चुटकी को तालाब पर किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था, इसी बात पर अब ये शादी टूट चुकी है। इस बात का गुस्सा बुआ जी अपनी ही बेटी पर उतार रही है। इतना ही नहीं, वो तो चुटकी के शुद्धिकरण की भी बातें करने लगती है, जिस पर ईशा सवाल उठाती है और बुआ जी को रोकने की कोशिश करती है।
5: शादी तोड़ दी।
6: हाँ ईशा जी, क्योंकि और लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है।
5: जरूर इसने कुछ किया होगा।
7: मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, वो लड़का तालाब में डूब रहा था, मैंने बस उसकी जान बचाई है और वो मुझे धन्यवाद कहने आया था। बस
5: तेरा शुद्धिकरण करना होगा और जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में रहेगी। चलो जी,
0: भाई चुटकी की शुद्धिकरण की बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ ताऊ जी पहुँच जाते हैं जो आग में घी का काम करने लगते हैं, क्योंकि वो ईशा की भी शुद्धिकरण की बातें करने लगते हैं। उनका कहना है कि ईशा ने शादी आकाश से की लेकिन पत्नी सूरज की बनकर रह रही है, ऐसे में शुद्धिकरण तो ईशा का भी होना चाहिए। इस बात पर बुआ जी भी देती है ताऊ जी का साथ।
4: शादी की मेरे बेटे और पूरे एक साल तक उसके साथ रही, जैसे ही सूरज आईएएस बना मेरे बेटे आकाश को छोड़कर उसके पास चली गई। इसलिए शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए, ऐसी अशुद्ध जो किसी एक पति की ना हो सकी।
6: संभाल के
5: सूरज, बड़ों का लिया भूल गया है क्या? क्या ये सब सच है?
6: कुछ भी नहीं भाई, पहले इनसे पूछिए तो सही, इनका वो बेटा है कौन? इन्होंने शादी की है दूसरी,
8: धोखा दिया है मुझे चीची, मेरे बच्चों को। इसलिए देवर जी ने घर से बाहर निकाला और इससे सारे रिश्ते तोड़े।
5: पढ़ लिख के अरविंद तो बड़े भाई का मान भूल गया, पर तू तू अपने पति के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रही है। तेरे में ही कोई खोट होगी तब ये दूसरी लेके आया है।
6: वाह बुआ जी, क्या बात है। अगर गलती औरत की हो तो उसे सजा दी जाए, और अगर कोई मर्द अपराध करे तो भी गलती औरत की ठहरे जाए। ये आपका ध्यान।
4: ईशा ने अपने पति यानी मेरे बेटे आकाश को जेल इसलिए भिजवाया ताकि वो तुझसे दोबारा शादी कर सके।
6: और आपने जो मेरी ताई माँ के साथ किया है, जेल तो उसके लिए आपको भी जाना चाहिए।
0: भाई बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सूरज को बीच में आना पड़ता है, और देखिए कैसे सूरज सभी को समझा रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो ताऊ जी पर भड़क भी गया है।
5: चुटकी के साथ ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। जो औरत कई मर्दों के साथ रह चुकी है उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, और इसका शुद्धिकरण होगा।
6: बस बुआ जी, बस बस बहुत हुआ। अब तक मैं आपके हर सही गलत फैसले पर चुप रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी के खिलाफ

0: चरित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं।
1: मेरी बहू सती के जैसे पवित्र है, इसे किसी शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। जीजी,
0: इन लोगों ने ईशा जी को मजबूर किया था मुझसे दूर होने के लिए, इसलिए ईशा जी ने मुझे आईएएस बनाने के लिए नाटक किया मुझसे दूर होने का।
2: लेकिन उसके साथ एक साल रही थी ना, उस हिसाब से शुद्धिकरण तो बनता है जीजी, अग्नि परीक्षा तो बनती है जीजी।
3: ऐसे में सूरज ने ताऊ जी का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी ईशा आकर सूरज को रोक देती है।
0: वो एक साल तक राक्षस के साथ खाते रहे, इतने सुन से इनका त्याग

0: रही हूँ और समझ भी रही कि तुमने सूरज की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे अपनों के खिलाफ कर दिया है।
1: पट्टी तो आपकी आंखों पर बंधी है बुआ जी, इन्होंने ताई जी को धोखा दिया, उनकी बात पर भरोसा करके ईशा जी पर इल्जाम लगा दिया। छुटकी ने किसी की जान बचाई और आप अपनी ही बेटी को खोटा सिक्का समझ गई।
0: तू मुझे ज्ञान मत दे, इस गांव का रिवाज है जहाँ रिश्ता पक्का होता है वही शादी होती है, वरना मैं खुद अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगी।
2: तो जैसे कि ये जो है रसम, ये हल्दी की रसम चालू है यहाँ पे, एंड साथ ही साथ जो हमारी बुआ जी है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि लड़के वालों की तरफ से अभी हल्दी पहुँची नहीं है यहाँ पे। तो सूरज बोलता है कि बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ एंड सारी चीज़ें सॉर्टेड करता हूँ। जैसे ही लड़के वालों से बात होती है पता चलता है लड़के वालों जो है वो रिश्ता तोड़ चुके हैं क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते। उसके पीछे रीज़न उन्होंने यही दिया है कि आपकी बहन जो छुटकी है वो किसी के साथ तालाब पर बात करते हुए पाई गई है, एंड ये गांव है, पुरानी परंपराएं जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो बुआ जी भड़क जाती है, छुटकी को मारना शुरू कर देती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पराए लड़के के साथ मिलने की, ये वो, अब तेरी शादी तभी होगी जब तेरा शुद्धिकरण की जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही। तो शुद्धिकरण में यही होता है कि जो मतलब कि गलत पाया जाता है वो कोयले पे चलाया जाता है उससे, ये पुरानी परंपराएं धारणाएं हैं जिसको माना जाता है, मानते हैं गांव वाले लोग, एंड ईशा जी इसके खिलाफ खड़ी होती है, एंड साथ ही साथ सूरज भी मतलब अपोज में रहता है, लेकिन सूरज ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो ईशा जी को ही समझाता है कि ये सब गाँव की मान्यताएँ हैं, इसमें शामिल मत हो, जाने तो छोड़ो ये सब। लेकिन ईशा जी स्टैंड जब लेती है एंड उसी के साथ साथ ताऊ जी की एंट्री होती है और ताऊ जी उल्टी सीधी बातें ईशा जी को बोलने लगते हैं कि शुद्धिकरण तो इसका होना चाहिए, इसने पहले मेरे बेटे से शादी की और अब सूरज की पत्नी बन के घूम रही है। तो कहीं ना कहीं ताई माँ भड़क, बुआ जी भड़क भी जाती है, वो कहती है शुद्धिकरण इसका भी होना चाहिए, एंड सूरज भड़क जाता है कुछ ज़्यादा ही। सूरज बोलता है बस बहुत हुआ, अभी तक मैं आपके सही गलत फैसले पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अगर मेरी बीवी के चरित्र पर सवाल किया जाएगा या उल्टा सीधा कुछ बोला जाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
3: तो भाई फिलहाल तो सूरज यहाँ से चला गया है ये कहकर कि वो चुटकी की शादी में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या चुटकी के साथ साथ ईशा का भी शुद्धिकरण होता है या फिर कहानी लेती है कोई नया मोड़। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हेलो डॉक्टर आरंभी एंड माय डियर ऐश्वर्या, कैसी हो? यस यस यस, आज तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कॉल करूं सास बहू और बेटिया की इस हॉटलाइन से और पता करूं क्या कुछ हो रहा है तुम्हारी कहानी में आज। वैसे मैं तो अपने ऑडियंस को बार बार यही कहती हूं कि तुम्हारी कहानी को देखकर मुझे आती है लक्ष्मी की ही याद। यू आर रॉकिंग इट, किलिंग इट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। चलिए लेकर चलते हैं आप सबको आपकी फेवरेट लक्ष्मी और आप डॉक्टर आरंभी के सेट पर।

0: टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज देखिए कैसे अकेले कमरे में बैठकर आरंभी ये फोन रिकॉर्डिंग सुन रही है। असल में वो पहुंच गई है अवंतिका के कमरे में जहां उसे ये फोन मिला है जिसमें है ये रिकॉर्डिंग जहां उसके बच्चे की आवाज़ है किडनैपिंग की। ऐसे में आरंभी ये सब सुन सुन कर देखिए कैसे आंसू बहा रही है।
1: पता चला ना तो याद रखना।

¡Aquí está el tío! ¡Aquí está el tío!

0: तभी वहाँ से गुजर रहा होता है ध्रुव और आरंभी को ऐसा रोता देख वो पहुँच जाता है उसे सांत्वना देने के लिए। भाई आरंभी जमीन पर बैठकर आंसू बहा रही है और ऐसे में ध्रुव करता है उसकी मदद, लेकिन यहाँ उल्टा आरंभी उसे खरी खोटी सुना देती है क्योंकि आरंभी नहीं बताना चाहती कि आखिरकार वो क्यों रो रही थी।
1: मुझे तुम्हारा कैच नहीं चाहिए। थैंक्स। वैसे ये तो वो डॉक्टर बंदे का कौन है? मैं आगे बोलिए।
2: मेरा घर मैं जहाँ भी हूँ आपको सुन मैं डस्टिंग कर रही
1: हूँ। डस्टिंग कर रही थी क्या? आगे मैं भी तुम्हारा
2: हो गई।
0: भाई आरंभी को कुछ ऐसा राज पता चला है जिससे वो काफी घबरा गई है। ऐसे में अब आरंभी किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहती। खैर आरंभी खुद को तो संभाल ही लेगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव पहुंच गया है किचन में, जहां पर देखिए कैसे आरंभी की सासू माँ यानी कि डिंपल खाना बनाने पहुंची है ध्रुव के लिए। ऐसे में ध्रुव भी वहां पहुंचा है और यहां ध्रुव को पता है कि डिंपल को तो खाना बनाना आता ही नहीं और अब शुरू होगा असली गोलमाल, क्योंकि यहां नायरा भी पहुंची है जो बना रही है व्लॉग।
2: लंच के लिए क्या बनाया? आज तो लंच के लिए क्या बनाया? कोई सब्जी बनाई है? दाल बनाई है? ओ गॉड, मुझे पता नहीं।
1: गुड मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम है?
2: नो नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी
3: नहीं, अब आप इतने प्यार से अपने हाथों से मांस कर रहे हैं, खाने बनाने हैं तो सिर्फ पार्टी नहीं दे सकते। सो
2: जैसे
3: कि नायरा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा।
4: सुपर फन, मेरी ना फर्स्ट रील का कैप्शन होगा माय फर्स्ट रेसिपी विद माय फ्यूचर सासू मॉम।
3: ओह क्यूट।
4: फ्यूचर सासू मॉम, मैं अभी हेल्प कर चुकी हूँ प्लीज।
2: ओह यस, श्योरली हेल्प कर चुकी हूँ। श्योरली यार।
4: आटा कहाँ है?
2: आटा, यस आटा कहाँ है? आटा जब मैंने लास्ट रखा था आई रिमेम्बर मैंने वहाँ रखा था। एनी वेज मुझसे मालूम नहीं था मुझे क्या बना। सो एक मिनट राइस
0: इसी बीच हो जाता है गोलमाल और आटा डिंपल पर गिर जाता है। बेचारी डिंपल चाहकर भी गुस्सा नहीं हो पा रही क्योंकि सामने ध्रुव जो है। ऐसे में ध्रुव देखिए कैसे उसे पानी दे रहा है, लेकिन डिंपल के पूरे चेहरे पर तो आटा फैला हुआ है।
2: डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपकी हर विश पूरी करूँ मैं और अच्छे से देखभाल करूँ आपका। यू आर वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। मगर मैं ये आई एम सो सॉरी सॉरी मुझे कहना चाहिए।
1: सॉरी, नहीं नहीं आप प्लीज ऐसे सॉरी मत कहिए। आप उसे पढ़ी है, आप ऐसे सॉरी कह के ना उसको पाप मत चढ़ाइए।
0: ध्रुव तो यहाँ आया ही है डिंपल और बाकी घर वालों को सबक सिखाने के लिए, जिसकी शुरुआत लगता है हो भी गई है। अब देखना होगा कि ध्रुव और कौन कौन से प्लान्स बनाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अरे रूही, आप इतना डिसअपॉइंट ना हो। हमें तो है आप पर पूरा विश्वास, आप हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, कर ही लेती हैं हर सिचुएशन का सामना। आप देखिए इनिशियली तो हम किसी भी सिचुएशन को देखकर थोड़ा डर ही जाते हैं, घबरा ही जाते हैं, लेकिन जब करते हैं हम खुद को कंपोज, फिर हम उसे किसी भी तरह हैंडल कर ही लेते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास, उनके शो मन सुंदर के सेट पर। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि यहाँ इनकी कहानी के नाम की तरह हो सब कुछ सुंदर।
6: नाहर और रूही का डिजिटल मिलन। ताजा हुई रूही की यादें। बेटी संग गोइनका हाउस पहुंची सुहानी। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में सुहानी और मिष्टी पहुंच गए हैं गोइनका हाउस, क्योंकि इन्हें मिल गया है गोइनका परिवार से एक बड़ा ऑर्डर। और देखिए कैसे गेस्ट हाउस में पहुंचकर मिष्टी बहुत खुश है, क्योंकि उसे ये गेस्ट हाउस बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन सुहानी, उसकी नजरें हर कोने पर पड़ रही हैं और उसकी धुंधली यादें ताज़ा भी हो रही हैं, जिसके चलते उसके सिर पर प्रेशर भी बन रहा है। भाई रुचिता के चलते रूही की यादों पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन रूही उसे अब भी कुछ कुछ याद आ रहा है। उसे यहाँ पर अपना पनसा लग रहा है। खैर रूही जो अब सुहानी है उसे याद ही नहीं है अपनी पुरानी जिंदगानी। इसी बीच नाहर के घर में भी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दादी अपने लिए साड़ियां ढूंढ रही है कि वो पार्टी में कौन सी साड़ी पहने, साथ ही परेशान भी हो रही है क्योंकि केटर का फोन नहीं लग रहा। ऐसे में नाहर बार बार उन्हें वीडियो कॉल लगा रहा है ताकि बात हो सके और ऑर्डर दिया जा सके। इसी बीच मिष्टी को दादी का कॉल आ जाता है, जो उसे अपने ऑर्डर के बारे में बताती है, और जाने अनजाने रूही उनके सामने आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि तब नेटवर्क खराब हो जाता है।
7: बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही।
2: हाँ आंटी, वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू चल रहा है। आप बस एड्रेस भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। ओके
7: ठीक है।

0: मैं मिश्री तो बहुत खुश है इस ऑर्डर को पाकर, और अब वो जल्द से जल्द ये ऑर्डर पूरा कर अपने कैफे का नाम रोशन करना चाहती है कि तभी मिश्री की तबीयत बिगड़ जाती है और सुहानी उसे संभालने लगती है। ऐसे में मिश्री परेशान है कि उस ऑर्डर को डिलीवर करने कौन जाएगा। अब देखना होगा क्या इसी ऑर्डर के चलते सुहानी और नाहर का मिलन होगा, क्या रूही की यादें वापस आ जाएंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हाय, अच्छा ओके, किससे की है हमारी टीम ने ये खास मुलाकात? जल्दी से बता दो मुझे नाम ताकि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं। अच्छा, ये नाम नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमारे ऑडियंस भी काफी स्मार्ट है। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ तो आया है मुझे हमारे स्टार रिपोर्टर का फोन, जो बता रहे हैं कि हमारी टीम सास बहू और पीटर ने की है यहाँ पर एक खास मुलाकात आपके फेवरेट सितारे से। कैन यू गेस? लेट्स चेक इट आउट।

फिल्मों से टीवी तक। स्ट्रगल से सक्सेस तक।

कभी ना हार मानने वाली, हिम्मत से जीने वाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्रन की, जिन्होंने अपने जज्बे से सक्सेस हासिल की और आज सास बहू और बेटिया में वो हमारी खास मेहमान है। आज है सुधा चंद्रन का छुट्टी वाला दिन, यानी शूटिंग से है उनका ब्रेक और आज के दिन वो पहुंची है रिलैक्स करने, खुद को पैम्पर करने दललित मुंबई में, जहां आज वो करेंगी दिल खोल कर एंजॉय, खाएंगी यहां का यमी यमी फूड, करेंगी शॉपिंग, साथ ही होगी होटल दललित की सैर। इतना ही नहीं, आज वो मिलेंगी यहां के खास एम्प्लॉयज से, होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए सीधा चलते हैं और करते हैं सुधा चंद्रन से खास मुलाकात और बिताते हैं उनके साथ ये फन डे। पहुंचते ही सुधा चंद्रन का हुआ स्पेशल वाला वेलकम और ये वेलकम किया यहाँ के स्पेशल एम्प्लॉयज और सर्वाइवर्स ने, और इन्हें देखकर देखिए सुधा चंद्रन कितनी खुश हो रही हैं और झट से वो इनके साथ कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि सुधा चंद्रन भी तो एक सर्वाइवर हैं और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है अपनी कड़ी मेहनत के साथ। तो आइए हम भी करते हैं इन सभी से ये खास मुलाकात।

0: बहुत ही प्यार और बेशुमार प्यार के साथ सुधा जी का वेलकम हुआ है द ललित में मुंबई। और कितना जब इतना प्यार आपको एक साथ मिलता है तो कैसे
1: समझ में नहीं आता यार,
0: हैंडल कैसे कर पाते,
1: बटोरूंगी, छोटा सा दिल ऊपर वाले ने दिया है, एक दिली तो है जिसमें मैं लोगों का प्यार, मतलब आज आई थिंक आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ लोगों का जो एक अनकंडीशनल लव मुझे मिला है, बदले में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, बट जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ बेशुमार प्यार ऐसे लुटाते हैं कि, और इतना अपनापन है, ये भी नहीं कि वो सुपरफिशियल है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतने इतना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स उम्र के हिसाब से, बट ऑफकोर्स बॉटम लाइन ये है कि वो प्यार है।
0: तो यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे लोग जो है आपका इंतजार जो इतने देर से कर रहे थे, तो क्या कुछ बात करना चाहेंगी, आपको देखते से सबने हार्ट बनाए, और
1: तो बहुत बड़ा हार्ट बनाया, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है ना,
0: जरा मिलते हैं उनसे।
1: चलो जी,
0: और कुछ ऑफर भी हो गया मैंने सुना आपको,
1: हमारी तो डील भी हो गई है।
0: हाँ वही कुछ डील हो गई।
1: भाई तू मेरे को एक बात बता, देखो फिलहाल मेरे पास काम है नहीं, ठीक है, अब तू मेरे को बता द ललित में तू मेरे को क्या काम देगा?
2: होम शॉप
1: में करना है, क्या करना पड़ता है उधर?
2: आइटम उसमें कुछ टेक्निक्स है।
1: अच्छा चलो, टेक्निक्स तो तू मुझे सिखाएगा फिर?
2: टेक्निक्स है लेकिन मैं कुछ सिखा सकता हूँ।
1: देखा देखा, पहली मुलाकात और डील हो गई है हमारी, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मुझे ना वो जो जज्बा है ना, जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो उस वक्त मैं ढूंढती रहती थी कि कोई तो मुझे वो प्यार दे, वो एक हौसला मुझे दे, बट ऐसे बहुत कम लोग मिले मुझे, तो अपने आप मुझे वो आई हैव टू रीबिल्ड विद इन मी, और मुझे मतलब कैसे लड़ना ये भी मैं नहीं जानती थी, पर इतना तो मुझे पता था कि मुझे लड़ना है और इस समाज में मैं अपनी एक जगह बनाऊंगी। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट दीज किड्स हैव एक्चुअली मेड अ प्लेस। एंड अक्सर मैं यही कहती हूँ कि क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि हम कब तक अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते रहेंगे, तो ये जो द ललित हैज़ टेकन, ये जो एक पहल है यू नो टू एक्चुअली एम्प्लॉय, मैं तो स्पेशली चैलेंज भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज इफ़ यू एक्चुअली सी ये ऑर्डिनरी लोगों से भी ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं, बिकॉज गॉड गिव्स अस दैट सिक्स सेंस एंड द स्टेमिना। तो जैसे मैं करती हूँ, लोग बोलते हैं आप कैसे कर लेती हो, मैंने कहा ये मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ तो ऊपर से आ रहा है, और यही है वो मैं इनमें देख रही हूँ, वही जज्बा मैं देख रही हूँ।
0: अच्छा लगा उनसे मिलके?
2: Yes.
1: वैसे तू एक बात बता, तू सीरियल वीरियल देखता है कि नहीं?
2: पिछली yes.
1: क्या क्या देखा तूने?
2: एक्सेस और मम्मी दिखती, मैं वही दिखता हूँ।
1: अरे भैया तूने नागिन देखी है कि नहीं?
2: नागिन जैसे मैं भी सीरियल है, मैं वही दिखता हूँ, लेकिन लेकिन अगर से बात करे तो फिजिकली यस मैं नागिन में दिखता हूँ, लेकिन
1: तेरी माँ को पूछ नागिन देखा है क्या? घर जाके आज जब तुम घर जाओगे ना, मम्मी से पूछना, मम्मी आपने नागिन सीरियल देखा है कि नहीं, पूछोगे कि नहीं?
2: पूछूंगा।
1: अब तो देखा
2: नहीं, अब तो मैं देखूंगा,
1: बिकॉज तू मेरा दोस्त बन गया है ना, हम दोस्त है, हम पार्टनर्स है, तो तू जरूर देखा। आई लव यू बच्चा। You are on the front office, sir.
3: Yes.
1: Oh, ma'am. Lovely, lovely, lovely. Such a pleasure meeting all of you.
3: Thank you.
1: And I'm so happy that you have not given up in life. क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ give up cannot give up. जैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. I lost my leg. I don't know whether आप लोगों को ये पता है कि नहीं. I lost my leg in an accident. मैं dancer हूँ. और लोगों ने मुझसे कहा कि मैं dance नहीं कर सकती. लेकिन एक जयपुर foot के साथ ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स की वजह से, अपने पेरेंट्स और फैमिली की वजह से आज मैं फिर से डांस कर रही हूँ। सो नेवर गिव अप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ही मोटो है हमारा, द शो मस्ट गो ऑन। हम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भाड़ में गए हम वापस आएंगे, एंड वी विल राइज लाइक द फिनिक्स, है ना, यू नो द फिनिक्स बर्ड, राइट? ओके, यप, चलो।
0: इतने स्पेशल फ्रेंड्स आपके आज और एड ऑन हो गए हैं।
1: मेरे सब मेरे फ्रेंड्स हो गए। मुझे बोलोगे तो नहीं ना?
2: नहीं नहीं।
1: हैं? बोलोगे मुझे?
3: कई किसी रोज फ्रॉम एकता कपूर सीरियल.
1: कई किसी रोज. ओह माय गॉड, देखा? सी मतलब, एंड यू नो व्हाट, फर्स्ट स्टेट अवार्ड एज एन एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस मुझे गुजरात में मिला है फॉर कडलानी जो. और ये मदर इंडिया का ऑलमोस्ट रीमेक जैसा था. मैं किरण कुमार, नरेश कनोडिया, मतलब दोस्त है नरेश भाई कनोडिया, करेक्ट. एंड सेकेंड फिल्म दैट आई डिड, माँ बाप ने भूल छो नहीं, वॉज उपेंद्र त्रिवेदी एंड नरेश भाई.

0: वार्म वेलकम के बाद अब एक
1: यार बहुत इमोशनल हो गई, मतलब हम हर जगह जाते हैं पर
0: चलिए तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं बाद में।

0: और अब बारी दललित मुंबई की सैर करने की। नहीं, वैसे तो शूटिंग के लिए या इवेंट्स के लिए सुधा चंद्रन दललित मुंबई में आती है, लेकिन आज ये फुर्सत के पलों में आई है जहाँ ये करेंगी दललित की सैर और अपने दर्शकों को भी सैर करवाएंगी कि यहाँ क्या कुछ खास चीजें हैं।
1: बहुत ही खूबसूरत है और अक्सर मैं आती हूँ, किसी इवेंट पे आती हूँ, बट एक्सप्लोर करने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आते हैं
2: मौका है, दस्तूर भी है,
1: मौके पे हम चौके मारेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल।

0: वाव लवली पूल साइड। हाँ मुंबई कर, हर मुंबई कर ये सोच रहा है मेगा बरसो ना बरसो रे, बरसो कब बरसोगे। ओ माय गॉड, बट यहाँ पर ना लुक एट द फ्रेश एयर, इट्स सो ब्यूटीफुल, एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। खैर जिंदगी में मैंने कभी स्विमिंग की नहीं, ना मैंने अटेम्प्ट की, बट ऑफ कोर्स जो स्विमिंग करते हैं जिन्हें बहुत पसंद है, लुक एट दिस मैन, मतलब आदमी सोचो इस गर्मी में आप आके यहाँ रिलैक्स हो जाओ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बट एनी वेज अगर मैं पूल में भी नहीं जा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छा, यार ये क्या है, स्पाइसोलॉजी स्पा सल, ऑफ कोर्स यार ये है क्या चीज, मतलब ये क्या स्पा यहाँ पे, सलोन यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओ ये जन्नत का रास्ता, तो ये जन्नत का रास्ता है। हमने सुना तो है कि जन्नत बहुत ही खूबसूरत है, तो अब मैं यहाँ आई हूँ और इस जन्नत का लुफ्त मैं ना उठाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए क्योंकि वादा हुआ है कॉफ़ी का, तो पहले मैं कॉफ़ी पीऊँ। के
1: तो भाई सैर के बीच में सुधा चंद्रन ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और इस ब्रेक में वो पियेंगी इनकी फेवरेट कॉफी, और कॉफी पर हो रही है कुछ चर्चा जिसमें वो बता रही हैं अपने करियर के प्लान्स और कुछ खास बातें। सबकी ही
2: आँखों में हसरत थी। तो सीजन के कलर के साथ खिली खिली है आज,
0: क्योंकि मैंने सुना है कि येलो इज द कलर ऑफ द ईयर, तो मैंने कहा चलो एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है नूपुर, तो जब भी मैं नूपुर के साथ कुछ भी करती हूँ तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मैंने कहा लेट मी स्टार्ट, एक शुभ कलर के साथ हम शुरुआत करते हैं। एंड इट्स सो नाइस बिकॉज येलो हम हमेशा बोलते हैं कि शुभ माना जाता है, और जब मैं आई तो येलो टीका भी उन्होंने लगाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मंगलमय लग रहा है।
2: और जब हम ये कह सकते हैं कि जब सुधा जी मुंबई में नहीं होती है तो साउथ में होती,
0: साउथ में होती हूँ, बिना काम किए मैं कभी बैठती नहीं हूँ। जब लोग बोलते हैं अरे तू दिखती नहीं है, मैंने कहा एक बार साउथ का चैनल खोलो वहां दिख जाऊंगी।
2: तो यहाँ अभी हिंदी पारी उनकी थोड़ी, हाँ ब्रेक चलता रहता है, वो भी ब्रेक भी नहीं है, बट मतलब आपको दिखती रहेंगी जरूर, यस। और फिलहाल जो है साउथ की पारी शुरू करने एक बार फिर से,
0: बिल्कुल मैं जा रही हूँ मंथ एंड में जा रही हूँ, और वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जी तमिल के लिए कर रही हूँ, एंड इट्स अ वेरी ऑथोबैक।
2: पहले वाला शो भी वहाँ का नंबर वन था,
0: सब बहुत अच्छे चलते हैं वहाँ पर, कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है। सो क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो एक अलग कैरेक्टर करने का मन, जब आप नो ऐसा लगता है कि वही हम क्यों करें। तो ये जो कैरेक्टर मैं करने जा रही हूँ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, एंड माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है, एंड हमारे रूट्स के बारे में हम बात करते हैं, हमारे बिलीव्स के बारे में बात करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वापस जा रही हूँ। एक वहाँ के लोग बोलते हैं अरे मैडम क्या आप सिर्फ नॉर्थ करती रहती है, साउथ नहीं आओगी? तो मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ, एक अच्छा रोल आए तो मैं डेफिनेटली आऊँगी, एंड आई एम इट्स इट्स वन ऑफ द गुड रोल्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू।
2: देखिए आपका कप का कलर भी,
0: क्या हो रहा है भाई, ये भी येलो देखा, आई सेड नो कि येलो बहुत ही मंगलमय कलर है, एंड जैसे 2026 आते ही लोगों ने कहा कि येलो येलो येलो पहनना है, येलो पहनना बिकॉज इट्स वेरी ऑस्पिशियस एंड इट्स वेरी लकी दिस ईयर। तो मैंने कहा चलो मैंने किया, अब यहाँ पर भी बोलते हैं ना जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हो ही जाता है। यस यस,
2: यहाँ जो है आपका कॉफी लव यहाँ पे भी नजर आ रहा है।
0: इंडियन हूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन अ कॉफी लवर, मतलब दिन की शुरुआत मैं कॉफी से ही करती हूँ, एंड ब्लैक कॉफ़ी अब तो मजबूरन मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, बट फिल्टर कॉफ़ी पीती हूँ मैं, कभी दूसरे मतलब मैं कॉफ़ी नहीं पीती, इट हैज़ टू बी माई फिल्टर कॉफ़ी, क्योंकि सवेरे जब मेरे घर में जब मैं किचन में जाती हूँ ना, द अरोमा ऑफ फिल्टर, फ्रेश फिल्टर कॉफ़ी, वो एक नशा है।

0: तो भाई अब बारी दोबारा से यहाँ की सैर करने की और देखने की कि द ललित मुंबई में क्या कुछ खास है।
1: काफी हो गई भाई, मैं बहुत एनर्जाइज हो गई हूँ, तो अब मैं जाऊंगी और कुछ चीजें एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि ये जो द ललित है ना, हम कहते हैं कि द ललित मुंबई में है, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आउटडोर आई हूँ। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंबई में हूँ। एंड इट्स सच अ प्लेजर, आई वांट टू थैंक आज तक, क्योंकि मैं हमेशा से यहाँ से जाती हूँ, फंक्शंस के लिए यहाँ आते हैं, बट फुल ललित, द ललित को एक्सप्लोर करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। सो इट्स सो ब्यूटिफुल, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे यार, जिस ग्रीनरी की हम हमेशा बात करते हैं। और ये, अरे ये क्या है, तो बड़ा अमेजिंग सा है, यहाँ तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, इट्स सो ब्यूटिफुल। दिस इज द कैनोपी राइट, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हम बोलते हैं ना, सी दिस इज व्हाट यू फील। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तपती धूप है बट बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। एंड अब यहाँ मैं आई हूँ, बढ़िया लोकेशन है और आप लोग तो जानते ही हैं, लोकेशन मुझे मिल जाए, गाना मेरे पास है, रील्स मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे रोक सकती हूँ, है ना। और जितनी एक्साइटेड मैं होती हूँ ना रील्स बनाने में, उतने ही एक्साइटेड आप भी होते हैं रील्स देखने में, है ना। तो देर किस बात की, चलो हो जाए, हो जाए।

0: हाय रीत, कैसी हैं आप? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ये तो हम सबकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। देखिए, किसी से भी ना अगर आप बैठकर बात करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर रहती है जो उन्हें परेशान करती है, क्योंकि बस इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, बाय। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में आज।
1: बेहोश संग हुआ हादसा। रीत को मिले तारे। देखी राघव और रीत के रिश्ते में अनबन। सीटीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज देखिए कैसे पेहू के साथ किचन में रीत खुशी खुशी स्पेशल डिश बना रही है और उसे अपने हाथों से खिला भी रही है और दोनों कर रहे हैं काफी एंजॉय। लेकिन इसी बीच हो जाता है एक छोटा सा हादसा जब गरम गरम तेल छलक कर पीहू पर गिर जाता है। हालांकि पीहू को चोट तो नहीं आई, लेकिन पीहू घबरा गई और पीहू से ज्यादा रीत घबरा गई। तभी वहाँ पर आते हैं पीहू के मम्मी पापा, जो देखिए कैसे पीहू को देखकर घबरा गए हैं। ऐसे में पूनम तो पीहू को संभालने में लगी है, लेकिन पूनम के पति देव आकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। पूनम को तो खरी खोटी सुनाते ही हैं, बल्कि रीत को भी ताने कसते हैं। ऐसे में रीत हो गई है काफी उदास। हालांकि उसने माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उसे पता है कि पीहू रीत की बच्ची नहीं है, इसीलिए रीत को ये सब सुनाया जा रहा है।
2: पीहू यहाँ किचन में गैस के पास क्या कर रही थी?
3: मैं बाहर थी। और
2: इतनी लापरवाह हो सकती हो तुम? हाँ, पीहू बेटी है तुम्हारी, ध्यान नहीं रख सकती हो उसका? अरे कुछ हो जाता अगर तो।
3: सॉरी वीरेंद्र, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
2: ध्यान रखना पड़ेगा, जब बच्चा तुम्हारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होती है। अपने बच्चे की सेफ्टी किसी और के हाथों में नहीं दे सकती हो तुम। नजर हटी दुर्घटना हटी, और बच्चों के मामले में ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, सच्चाई।
1: ऐसे में रीत पहुंच गई है इस कमरे में और देखे कैसे इन खिलौनों को देखकर अपने खोए हुए बच्चे को वो याद कर रही है। तभी वहां पर पहुंचते हैं राघव, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं हमें एक बच्चा भी गोद ले लेना चाहिए, जिस बात पर रीत भड़क गई है। फिर देखे कैसे रीत आज राघव को खरी खोटी सुना रही है, आंसू बहाकर अपने दिल की बात भी बता रही है और राघव चुप खड़ा बस सुन रहा है।
4: आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? आप प्रियांश को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह किसी और बच्चे को देना चाहते हैं, मुझसे प्यार करने का दावा करते थे तो क्या वो कोई खिलौना था जो एक टूट गया तो आप किसी और को ले आएंगे? सोच भी कैसे सकते हैं? अब इतना बड़ा बिजनेस बनाने में इतने ज्यादा बिजी है कि आपको लगता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। पैसा मेरी हाँ भी खरीद लेगा और मैं रेडी हो जाऊंगी अपने बच्चे की जगह किसी और को देने के लिए। आपका बिल्कुल यही मतलब था राघव, आपको लगता है आप दूसरा बच्चा ले आएंगे तो आपको आपके किए की माफी मिल जाएगी, अगर मैं फिर से माँ बन गई तो आपको आपके जुर्मों की सजा नहीं मिलेगी। बदल गया है आप मुझे समझते ही नहीं है। कहाँ है वो राघव जो मेरी आंखों में देख के ये बता देता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, जो मेरे बिना कहीं मेरी बातें समझ जाता था, जो मेरे बिना महसूस किए जान लेता था कि मुझे क्या चाहिए। आपको राघव है ही नहीं क्योंकि वो राघव को हो गया है, इसलिए मुझे शायद इतना ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ अपना बच्चा नहीं बल्कि अपना पति भी खो दिया है। अगर आप मेरी खुशी चाहते तो ये बात आज के बाद मत कहिए, कभी मत कहिएगा कि मेरी बेटी की जगह कोई और ले सकता।
1: ऐसे में फिर एक बार रीत और राघव के बीच लड़ाई हो जाती है और देखिए कैसे रिश्तों में दरार साफ देखने को जाहिर है।

0: रीत और राघव के बीच आई ये दरार और रिश्ते तभी सुधरेंगे जब रीत मूव ऑन करेगी। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे इनके रिश्ते सुधरते हैं।
1: अब जीने को जाने को ना कोई
0: रास्ता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता।
2: हाय जगदात्री, व्हाट्सअप, कैसी हैं आप?
3: अरे मुझे तो फोन के थ्रू ही आ रही है किसी चीज की खुशबू। क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है यहाँ पर जगदात्री की कहानी में? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर। हेलो जगदात्री, क्या चल रहा है आपकी कहानी में? हेलो हेलो, मुझे तो लग रहा है फिर से आया है कहानी में कोई ना कोई नया ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
0: जगदात्री का मास्टर प्लान। शिवाय को लगा डर। रुद्र को हुआ जगदात्री पर शक। जी टीवी की सीरियल जगदात्री में जगदात्री की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और अब तक इन्हें मूसा का पता नहीं चल पाया है। बस लोकेशन का पता कर सभी प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि कैसे मूसा को बाहर लाया जाए।
4: वो आदमी जिसने आदि पर आक्रमण किया, कई बार इस इलाके में देखा गया, लेकिन मूसा का कोई संकेत।
5: पर जिन लोकेशंस की रेखी के लिए मैं गई थी उनमें से एक लोकेशन पे दूर
4: रहा। जाहिर सी बात, वो मूसा से ही फिट करने गया।
6: और कहाँ से और कैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। और बाकी की लोकेशंस पर भी मूवमेंट ऐसी है जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।
5: काउंट डाउन अब घंटों में, 90 घंटे हैं हमारे पास।
7: वो बाहर
5: आएगा नहीं, उसे बाहर लाना पड़ेगा।
4: पर कैसे हमें पता नहीं कि वो कहाँ है।
5: चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए चारा डालना पड़ता है।
4: नहीं बॉस।
5: यस।
0: जगदात्री ने तो अपना मन बना लिया है कि मूसा को पकड़ने के लिए खुद चारा बनेगी, लेकिन शिवाय इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो उसका साथ देगा। हालांकि जगदात्री नहीं चाहती कि शिवाय उसके साथ आए क्योंकि इस प्लान में जान का खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसी प्लान के मुताबिक जगदात्री के घर में पुलिस कांस्टेबल पहुंच गया है जगदात्री के लिए लेटर लेकर। ऐसे में रुद्र उस पुलिस कांस्टेबल से लेटर मांगता है। उसे लगता है कि वो माया के लिए आया है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिफाफे पर पड़ती है तो उसमें जगदात्री का नाम लिखा होता है। बस फिर क्या, वो पुलिस कांस्टेबल भी निकल जाता है और उसके पीछे पीछे निकल जाता है रुद्र भी, करने उसका पीछा कि आखिर जगदात्री क्या खेल खेल रही है। इसी बीच पुलिस कांस्टेबल और जगदात्री की मुलाकात होती है। वो लेटर देता है, जगदात्री लेटर पढ़ती है और ये सारे नज़ारे रुद्र अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा है। इतना ही नहीं, वो लेटर पढ़ जगदात्री जलाकर वो लेटर कचरे ड्रम में फेंक कर वहाँ से चली जाती है और रुद्र तुरंत उस लेटर के पास आता है। भाई यही तो जगदात्री की प्लानिंग है ताकि रुद्र को ये पता चले कि जगदात्री पुलिस में है।
8: हाँ, उसको बहुत पहले से शक है कि कॉप है, मेरे ऊपर नहीं है, जगदात्री के ऊपर है कि ये शायद इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है कॉप वर्ल्ड से। तो वो एक बार हाल ही में आया भी था हमारे कंट्रोल रूम में, लेकिन मैं और जगदात्री वहाँ पे पहुँच कर हम सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स वो सब छिपा देते हैं और वहाँ पे एक वेयर हाउस टाइप का उसको बना देते हैं ताकि उसको ये कंफर्म हो जाए कि ये एक स्कूल है या एक ट्यूशन क्लास है, वैसा सा हो जाए। तो उसको शक है कहीं ना कहीं। और इसके बाद जो ट्रैक आने वाला है वो जो ऑडियंस देखना चाहती है एक्चुअली वो आने वाला है और बहुत कमाल का है. बहुत सारे इमोशंस हैं एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें. एक तरफ है जहाँ हमारी शादी की बात चल रही है, इन लोगों को हमारे ऊपर शक है कि हमारी शादी असली है भी या नहीं है. दूसरी तरफ है कि अब मूसा का बहुत हो गया है तो मूसा का क्या करना है, क्योंकि इस बार चारा बनने के लिए जा रही हैं, जगधात्री नायक खुद जा रही हैं, तो हम इस मिशन को कैसे हैंडल करेंगे.
0: भाई जो प्लान जगधात्री ने बनाया है वो प्लान रंग लाया है, उसका पीछा कुछ बदमाश कर रहे हैं जो कि मूसा के हैं. ऐसे में देखिए कैसे जगधात्री निश्चिंत होकर बच्चों को टॉफीज बांट रही है और शिवाय बाहर आकर जगधात्री को रोकता है क्योंकि उसे अब भी डर लग रहा है कि कहीं जगधात्री पे कोई जानलेवा हमला ना कर दे. पर जगधात्री आंखों ही आंखों में बताती है कि आजू बाजू में मूसा के ही आदमी खड़े हैं.
8: कोई पीछा वीछा कुछ नहीं है इस बार. जगधात्री का प्लान है कि मूसा को बिल से निकालने के लिए इस बार वो खुद चारा बनेंगे. तो मैं अग्री नहीं करता कि मुझे पता है कि अगर तुम चारा बनोगी तो एक तो ऑलरेडी उसके रडार पे तुम हो, ठीक है, और अगर ऐसे में इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वो सबसे पहला अटैक तुम पे करेगा, क्योंकि लास्ट जो अटैक हुआ था वो आज ही के ऊपर हुआ था, ठीक है, तो वो एक तरह से एक धमकी थी आज ही पर अटैक करने की. तो अगर हम जा रहे हैं तो तुम्हें चारा बनने की ज़रूरत नहीं है. और वो बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना है. तो मेरा शॉकिंग रिएक्शन है कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा. तो बोलती है कि अगर इस मिशन पर मुझे कुछ हो जाता है तो मूसा को मूसा से बदला लेने का काम तुम्हारा होगा और मेरे परिवार को बचाने का काम भी तुम्हारा होगा, उन सब का ख्याल रखना. और वो इमोशनली बोल के वहाँ से चली जाती हैं.
0: भाई शिवाय ने तो कसम खा ली है कि वो जगधात्री का साथ नहीं छोड़ेगा. अब देखना होगा कि कैसे जगधात्री और शिवाय मिलकर मूसा के आदमियों से भिड़ेंगे और मूसा का खुलासा करेंगे. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: अच्छा ओके, किससे की है हमारी टीम ने ये खास मुलाकात, जल्दी से बता दो मुझे नाम ताकि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं. अच्छा ये नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है हमारे ऑडियंस भी काफी स्मार्ट है. थैंक यू, बाय बाय.
9: यहाँ तो आया है मुझे हमारे स्टार रिपोर्टर का फोन जो बता रहे हैं कि हमारी टीम सास बहू और बेटा ने की है यहाँ पर एक खास मुलाकात आपके फेवरेट सितारे से. कैन यू गेस, लेट्स चेक इट आउट.
10: घूमने के बाद कुछ और भी स्पेशल है जिससे सुधा काफी खुश हो गई है, जो कि है यहाँ शॉपिंग करने का मौका. और वो ऐसा मौका भला कैसे जाने दे सकती है. तो ये पहुँच गई है यहाँ की खास शॉप में करने शॉपिंग.
11: भैया थक गई हूँ.
12: ऐसा आपको लगता है ना,
11: मैं बिल्कुल भी नहीं थकती. वेल रील्स बनाते वक्त तो मैं थकती नहीं हूँ, औरत हूँ, आई हूँ दलालित में. तो तूने मुझे वादा किया था नूपुर कि तू मेरी शॉपिंग करवाएगी, और वो कौन औरत है जो शॉपिंग के लिए ना कह सकती. ऑब्वियसली मैं तो नहीं कहती. तो चलो मैं वापस एनर्जाइज हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने. कहाँ, फॉलो मी. चलो भैया मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने. क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ, गोल्ड? नहीं यार, कीमत बढ़ती जा रही है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा. मैं वहां जाऊंगी ब्रास. यू नो व्हाई? ब्रास मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ ब्रास से. मैं केरला से बिलोंग करती हूँ एंड ब्रास इज फ्रॉम केरला. ऑफ कोर्स दूसरी जगह पर भी है बट हम ज्यादातर केरला वाले बहुत ब्रास को यूज करते हैं. मैं जा रही हूँ कुछ ब्रास के आइटम्स देखने. आप भी देखना चाहोगे ना, चलो चलो साथ में चलते शॉपिंग करते हैं. वाव, गणपति बाप्पा मोरिया, माय गॉड साई बाबा, मेरे सबसे प्रिय गणपति बाप्पा. एंड ब्रास ना, अब देखिए इसका वेट क्या है, मतलब इट्स सो हेवी. एंड जब मैं पहली बार गई थी ना केरला, ऑफकोर्स मैं जाती ही रहती हूँ, बट एक्ट्रेस बनने के बाद, क्योंकि उस वक्त उतने पैसे नहीं होते थे ब्रास आइटम्स खरीदने के लिए, बट जब से मैं फिल्मों में मैंने काम करना शुरू किया, मैंने काफ़ी मलयालम फिल्में भी की, तो जब भी मैं केरला जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं ब्रास आइटम्स लेकर आती हूँ, और मेरे घर में एक ऐसा सेक्शन है, एक कॉर्नर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रास के आइटम्स है। हाँ, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस, एक केरला हाउस में जब आप जाओगे, या फिर मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी पहचान, ये हमारी वन ऑफ द पहचान्स है, तो इसे मैं बहुत प्रिजर्व करती हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। चलो चलते हैं। तो मैंने कहा ना, द ओम शॉप हैज ओपन्ड और मैं द शॉपिंग फ्रीक अंदर जा रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल यार, बहुत ही खूबसूरत है। गॉड गुड ग्रेशियस, ये देखो चेस बोर्ड, सो ऑथेंटिक। पर ये याद ही दिलाता है, क्योंकि कई प्रोमोज हमने ऐसे चेस बोर्ड पे ही किया है, एंड एक तरफ मौली रहती थी और एक तरफ मैं रहती थी, एंड हम लोग ना ऐसे चाले चलते थे, फिर एंड में बोलते थे शह और मात का खेल, देखते हैं कौन जीतता है। बट अब मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, है ना, तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमारी पहचान है हाथी, दिस इज़ फ्रॉम केरला टिपिकली, क्योंकि मेरे पास हाथी के अलग अलग साइज के मतलब आई हैव गॉट की छोटू छोटू छोटू छोटू और बड़े तक, तो एक पूरा वो एक सेट बनता है, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। क्योंकि जब कोई भी मेरे घर में आता है ना, तो जैसे वो दे सी दैट, दे से कि केरला से लेकर आई, मैंने कहा हाँ यस आई लव देम, एंड एज यूजल ये मेरा मतलब माई बेस बिग वीकनेस, बिग बिग बिग बिग वीकनेस, ये क्लचेस एंड बैग्स, ओ या पश्मीना शॉल्स या। पर हम ये शॉल सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, कहाँ यहाँ कपड़े पहनना ही बहुत ही टेंशन है, अब पश्मीना शॉल लेके हम किस पे ओढ़े, कहाँ ओढ़े, तो इसे हम रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाओ, शेल से बनाया गया है, यस इवन शेल्स बहुत ही एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ केरला है, क्योंकि सीशोर है तो वहाँ पर शेल्स बहुत सारे मिलते हैं। पर ये क्या टाइम क्या दिखा रहा है, 6:10, ये तो शाम के नाश्ते का टाइम है, ये हमारा ब्रेक का टाइम है। करेक्ट टाइम, वो मैं सोच रही थी यार पेट में ऐसा गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली यार अब मैं बहुत थक गई हूँ यार, बहुत, वो क्या है ना, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, लेकिन यार आई हूँ तो एक चीज़ तो मैं यहाँ से उठा कर ही जाऊँगी। हाँ, क्या लेकर जाऊँ, क्या क्या क्या सस्ती वाली चीज़ देखती हूँ यार, बजट तो है नहीं। यस, माई गणपति बप्पा, एक काम करती हूँ मैं ना, ये लेकर जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे बजट में इतना ही है। बप्पा जल्दी से मुझे ज़्यादा पैसे देना, मैं जो गणपति बप्पा बड़े वाले हैं ना, फिर मैं वो लेकर जाऊँगी, ठीक है। हेलो, पैक दिस, अब मैं जा रही हूँ यार, मैं बलूची जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है और खाना मेरा इंतज़ार कर रहा है, और मेरे साइज़ को देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो चलो चलो चलो चलो चलो चलो, लेट्स मूव।
10: तो भाई सैर भी कर ली और शॉपिंग भी, अब बारी पेट पूजा की, जिसके लिए सुधा पहुँच गयी है यहाँ के बलूची में, जहाँ है यमी यमी खाना। तो आइए देखते हैं आज सुधा क्या कुछ चखने वाली है, क्योंकि शेफ राने खुद बता रहे हैं कि आज क्या है स्पेशल डिशेस।
11: मैंने सुना है कि यहाँ का खाना जो है ना, यमी है, यमी यमी, और इन्होंने पता है स्पेशल यहाँ के जो ऑथेंटिक डिशेस है, जो इनकी स्पेशलिटी है, वो बनाकर रखे हैं। अब हम बातें बाद में करेंगे, आप पहले जाएंगे, एंड यू ऑल्सो कम, भले आप यहाँ ना हो, मुझे खाते हुए देखकर ऑब्वियसली आपको भी उसका टेस्ट का अंदाजा हो ही जाएगा। ओके, चलो चलो चलो चलो। हाय तो खासियत है आपकी, खुद से बढ़ के। ये क्या है,
13: टोमेटो सिंगाड़ा शोरबा।
11: टोमेटो सूप तो हम पीते हैं, ये सिंगाड़ा, अच्छा सिंगाड़ा वो, हाँ करे करे करे, करे।

0: सो मैम ये है मोरेल और बटन मशरूम की गलौटी. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोरेल मशरूम जो कश्मीर में बनता है और बटन मशरूम. बटन मशरूम इसको टेक्सचर देता है. मोरेल मशरूम इज़ गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम. सो विथ सम स्पाइसेस इसको ब्लेंड करके हमने एक गलौटी. मैम वो लेमन है ताकि आपको स्क्वीज. हाँ ताकि
1: इसको प्रेजेंट करने का भी.
0: यस मैम.
2: क्या है जीना नजर से तेरी देखती हूँ.
1: थैंक यू शेफ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ डिशेस.
0: यस मैम. दैट्स अनदर डिश सोंदे आलू.

0: येलो जो प्रॉपर येलो स्किन रहता है उसमें वाटर कंटेंट कम रहता है ताकि वो गले ना।
1: अच्छा।
0: तो हम स्कूप करके उसको मैरिनेट करके तंदूर में स्लो रोस्ट करते हैं।
1: अच्छा।
0: एंड फिर स्टफ करके उसको सर्व करते
1: हैं। अच्छा इसके साथ अच्छा वी ऑलवेज हैव द मिंट चटनी यार जो हमेशा खाते भूल गए थे।
2: खासियत है आपकी हाँ यही तो
1: बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी बॉस मैं बोल रही हूँ आ जाओ द ललित खाना इज यमी हम तो एंजॉय कर रहे हैं अभी से हमको देखकर स्टार्टर्स में ही आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। So next time, if you're thinking of going out and having good lunch, yeah, good dinner, good food, I'll tell you, the Lalit food. So I'm going to enjoy this.
3: हम लोग रोटी तो खाते रहते हैं बट ये क्या है कुछ डिफरेंट
0: ब्रेड है बाकुमास
1: बाकुमास
0: सो इट इज ये टॉप रहता है पॉपी सीड्स और फेनल के साथ
1: अच्छा
0: सॉप के साथ सो आपको खाते हो उसका फ्लेवर भी आए एंड पॉपी सीड्स इज गुड फॉर डाइजेशन
1: ओके यस
0: सो
1: प्लीज ट्राई
0: यस
1: ओके हम डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे सुपर एक्साइटेड
0: ये हमारी सिग्नेचर पापड़ पालक की सब्जी
1: पापड़ पालक की सब्जी
0: मेथी
1: मेथी पालक
0: यस मैम मिक्स है
2: तरीका तुम्हें सिखाते हैं
1: गुड वेरी गुड पालक इज सो इंपॉर्टेंट ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं योर ट्रीट इन योर डाइट
0: जो मेथी मेथी का कड़वापन सप्रेस करने के लिए
1: वो पालक
0: वी यूज सोरेल लीव्स जो महाराष्ट्र में आंबाड़ा बोलते हैं उसके पत्ते उसके पत्ते भी मिक्स
2: हीरोइन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं
3: तब पहले जब हम आए ना तो ऐसे आए जब हम जाएंगे तो आप हमारी चाल देखना ऐसे जाएंगे नींद के मारे बिकॉज अगर आप इतना खिलाओगे तो क्या ही होगा हमारा
0: मैम ऑल द फ्लेवर्स एंड ग्रेवीज आर ऑल सटल ये उतने हैवी नहीं होंगे तो आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा
1: सोने के लिए
0: सो ये पनीर बादाम का सालन
1: सो अच्छा द सालन इज बादाम
0: द आलमंड ग्रेवी
1: ओके ओके ओके इट्स अ रियली रिच फूड
0: यस 24 आवर्स कुक्ड ये तंदूर पे कुक किया जाता है यस मैम कॉपर और ब्रास के देख पे इसको सोक किया जाता है और तंदूर पे चढ़ाया जाता है दाल पहले

माई गॉड, मेथी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसमें मेथी है। कड़वाहट तो है ही नहीं, कड़वाहटपन तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है।

खाना बहुत ही स्पेशल है एंड खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो एक शेफ्स टच है या फिर जो यहाँ की जो टीम है ना, द वे दे आर इंटरेक्टिंग विद यू, जो एक अपनापन है वो खाने को और स्वादिष्ट बना देता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कि हम आए शांति से बैठे हैं. वापस तो हम बहुत सारे होटल्स में जाके खाना खाते हैं, जो अपनापन है दैट मेक्स द फूड इवन मोर टेस्टी.

0: देखा आपने कैसे सुधा ने पेट पूजा की और यहाँ के जायकेदार खाने का मजा उठाया।
1: थैंक यू सो मच गुरबानी। डू यू हैव टू से एनीथिंग? बिकॉज वी आर स्पीचलेस, सो वी जस्ट वांट यू नो एज अ क्लोजिंग वी नीडेड समथिंग, यू नो व्हाट यू फेल्ट एंड यू नो हमें तो बहुत अच्छा लगा, बट हम सबको देखकर आपको कैसा लगा?
2: बहुत इट्स हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है दैट यू नो मैम हमारे यहाँ पे ललित मुंबई में आए हैं और वेरी ब्यूटीफुली और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमारे वेलकम का स्वागत किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि सुधा जी इज़ एन आइकॉन, आइकॉनिक पर्सनैलिटी एंड इट्स ब्यूटिफुल दैट वी विल बी एबल टू होस्ट हर। सो थैंक यू टू सुधा जी एंड द टीम टू बी इन ललित मुंबई।
1: बहुत मज़ा आया, इट वॉज एक्चुअली अ डे आउट, बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं घर से आई हूँ, फिर जब मुझे पता चला कि मुझे लंच यहीं पर है मेरा लंच, तो मैंने नाश्ता भी कसम से मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा के आई मैं, फिर मैंने कहा कि पेट जब भरना है तो यहीं पर भरूँगी। आई मैं एंड आई वॉज यू नो फर्स्ट जो वेलकम आपने मुझे यू नो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं ना उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, बिकॉज लाइफ में जब आप कोई जंग जीतते हो यू नो व्हेन यू स्टैंड अगेंस्ट द यू नो व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द टाइड उसका मज़ा ही अलग होता है, और अगेंस्ट द टाइड स्विम करने के बाद जब आप उस शोर पे जाते हो दैट इज़ व्हाट आई सॉ इन द किड्स हियर। सो वो एक बहुत ही स्पेशल वेलकम, वेलकम तो हमें हर जगह यू नो एवरी होटल दैट वी गो, बट द ललित मुंबई The welcome was very different. So, सबसे पहले वो, and then of course जो coffee मैंने पी, you know, being a South Indian, तो coffee is my weakness. Very, very superb coffee, very energizing, and of course the ambience and you know the entire. But then we came here to have lunch, and yes, Baluchi, and जो आपके जो specific, जो ना आपके masterpiece dish, signature dishes है, उसके बारे में chef ने भी हमें बताया और रानी साहब ने, and then हमको लगा कि भैया चलो खाना खत्म हो गया है, हम निकलते हैं, तब तक ये sweet dish भी आ गया, तो रसमलाई, very sweet note, and more than anything else, see the hospitality, जो प्यार आपने हमें दिया है वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे और एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल गेट माय फैमिली हियर।
0: तो भाई इतने यम्मी डिशेस खाने के बाद यहाँ एंड हुआ कुछ मीठे से। तो भाई आज का ये दिन सुधा चंद्रन के लिए तो रहा बेस्ट। उम्मीद है सुधा चंद्रन यूं ही अपने अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का दिल जीतती रहे। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हाँ हाँ सही कहा तुमने, हो रहा है लंच टाइम और मुझे भी लग रही है जोरू की भूख, और हमारी जो ऑडियंस है उनकी एंटरटेनमेंट की जो भूख है उसका क्या करना है। अच्छा लेकर आए हो एक स्पेशल स्टोरी जिसे परोस रहे हैं हम इन्हें राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म। रियली सो एक्साइटिंग। ओके बाय, चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, जहां देखिए कैसे बागा के आज आंसू बह गए, यानी कि तन्मय के। भाई ये कोई सीन नहीं बल्कि रियल में तन्मय रो रहे हैं और ऐसे में उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर असित मोदी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि असल में बात क्या है। असल में बागा यानी तन्मय को अपनी मम्मी की याद आ गई, जो 8 महीने पहले ही गुजरी है। ऐसे में वो अपनी मम्मी को याद कर रो रहे हैं और प्रोड्यूसर असित मोदी उन्हें समझाने और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

0: अरे भागा, अरे जाओगे एकदम।
1: उसने आशिक भाई आज थोड़ा लोनली और अकेला फील कर रहा। मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है आज मुझे। आज 18 तारीख है, आज मेरी मम्मी को 8 महीने कंप्लीट हुए गुजरे। अच्छा वो ये ट्रैक देखती थी, बहुत खुश होती थी। रेगुलर भी हमारा शो था, मतलब उल्टा चलना एवरी एपिसोड शी यूज टू वॉच। मतलब उसके बेटे का इतना अच्छा ट्रैक आया था, इतना अच्छा एक्सपोजर आपने दिया है, लेकिन वो देखते थे वो नियर एक्शन। अब जहाँ से भी देख रही हूँ वो हमें आज पर हमारे शो को बहुत खुशी। इस वजह से दोस्तों अपने अफसर को
0: नहीं देख, अपने को सबको हंसाना है तो मैं जानता हूँ कि जब तेरी मम्मी बीमार थी तो तू क्या हालत में इधर शूटिंग करता था। ये रोज की सीरियल है, घर में कुछ ना कुछ होते रहता है, और मम्मी बीमार थी तभी भी तू वही लगन से उससे शूटिंग करता था। तो मम्मी के आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और बस हमको हम लोगों को हंसा रहे हैं तो, और लोग ये ट्रैक को और बागेश्वर को बहुत प्यार करते हैं,
1: थैंक यू,
0: और बावरी को भी बहुत प्यार करते हैं।
2: खैर वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, तो भाई अपने आंसुओं को पोंछ कर फिर एक बार तन्मय यानी बागा निकल पड़े अपने दर्शकों को हंसाने के लिए। तो बात करते हैं सीन की, तो यहाँ पर बागा ने प्लान किया है। बावरी के लिए ये प्यारा सा सरप्राइज, जहाँ पर दुकान में फूल है, केक है और है दिल वाले गुब्बारे, और ये सरप्राइज उन्होंने बावरी के लिए प्लान किया है। और देखिए कैसे बावरी ये सरप्राइज देखकर काफी खुश है। भाई आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि जेठालाल भी नहीं है और नट्टू काका भी नहीं है, ऐसे में इन दोनों को मिल गया है रोमांस का बहाना।

0: सरप्राइज। तो आज कोई खास दिन है क्या? तो
1: प्यार करने वालों के लिए कोई दिन खास नहीं होता है, जो दिन वो साथ में मिलके मनाते हैं वही दिन खास बन जाता है। भाभी जी
0: सही कहा आपने। पर अभी चलते हैं, अगर टेटा जी आ गए तो।
1: टेटा जी नहीं भाभी जी, जेठा जी।
0: सॉरी,
1: कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्या है सेठ जी आज बारगांव गए हैं, दुकान आने वाले नहीं है और नट्टू काका ने भी छुट्टी ली है, तो आज इस गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ बागा और बावली, नो कस्टमर ऑल्सो।
0: बावली जी
1: सबसे पहले एक मिनट, नहीं सबसे पहले आप केक कट।

0: तो भाई आज तो बागा और बावरी हो गए हैं लवशुदा और देख लीजिए इनकी ये रोमांटिक वाली डेट। तो भाई हम तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इनकी शादी भी हो जाए।
1: अभी तो फिलहाल मैं बागा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बाघा क्या करने वाला है, और या वो बालम का ऑफर एक्सेप्ट करेगा और बावरी को छोड़ देगा, या बावरी को 5 करोड़ का ऑफर ठुकरा के बावरी को अपनी लाइफ में वापस ले आएगा। भाई इसका जवाब तो अभी बंदे थे आसिद भाई, वही बता सकते हैं कि बाघा की शादी कब करवाएंगे। जैसे पोपटलाल की शादी के लिए वही निमित्त बनने वाले हैं, वैसे ही बाघा बावरी की शादी के लिए वही कारण बनने वाले हैं। लेकिन होपफुली बहुत जल्द बाघा बावरी की शादी भी हो जाएगी और बाघा का एक घर भी हो जाएगा।
0: चाहिए तैयार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शादी का ट्विस्ट और कई सारे और नए नए ट्विस्ट देखने के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हाय मंगल, कैसे हैं आप? अरे हम सबको तो बड़ी अच्छी लगती है आपकी ये कहानी और आपका किरदार भी जो है सुपर स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग। तो क्या कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में आज? वैसे आपको भी कहां मिलती है चैन की सांस, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन आती ही रहती है। क्या कहा, आप हैं हर सिचुएशन के लिए तैयार? वाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकर चलते हैं हम सबको मंगल लक्ष्मी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
3: आप मिशन के बारे में ही सोचती है ना, अपने बारे में सोचती ही नहीं है, किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा।
0: मंगल की केयर करता जयराज, आदित्य को हुआ शक, अधिराज और मंगल का प्लान।

कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल पहुंची थी गोडाउन में, जहां आदित्य ने रखे थे नकली नोट, और वहां पर वो पहुंची थी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वहां देखिए पहले से ही चूहे मौजूद हैं। ऐसे में इन सब के बीच मंगल को पैर में चोट भी लग जाती है,

0: कैसे हुआ ये सब? कौन आया था यहाँ? इतना सा काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से।
1: हालांकि अदित वहां पहुंचता है लेकिन मंगल बच जाती है क्योंकि वो छुप जो जाती है, लेकिन उसके पैर में तो चोट लगी ही है। ऐसे में देखिए कैसे वो घर तो वापस आ गई है और जयराज उसकी चोट पर मरहम लगा रहा है, यानी कि आइसिंग कर रहा है। ऐसे में दोनों के बीच प्लानिंग को लेकर ही बातचीत चल रही है।
2: कितनी ज्यादा चोट आ गई है, मुझे पहले पता होता मैं सब कुछ आपको प्लान करके देता, लेकिन आप अचानक से चली गई, मैं कुछ कर ही नहीं पाया।
3: जरा सी तो चोट है जयराज जी, ठीक हो जाएगी।
2: ये जरा सी है।
3: आदित्य जी की डील रोकने के लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ता, ठीक हो जाएगी।
2: आप मिशन के बारे में ही सोचती है ना, अपने बारे में सोचती ही नहीं है, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है, किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा।
4: मंगल जो है, जो इनका गोडाउन है जहाँ पे नकली नोट रखे हुए थे आदित्य जी के, वो जाके उनको सबको खराब डिस्कार्ड कर देती है। कहीं ना कहीं चूहे होते हैं वहाँ पे, चूहे सब डिस्कार्ड कर देते हैं, पर आदित्य जी कहीं ना कहीं पकड़ने ही वाले होते हैं मंगल को, मगर उससे पहले उसके ऊपर कुछ गिर जाता है। तो उस चक्कर में जो है मंगल भागने के चक्कर में उसको चोट लगती है, जहाँ जयराज जी जो है बीइंग एज अ केयरिंग फ्रेंड मंगल को हेल्प कर रहे हैं, आइस पैक वगैरह लगा रहे हैं, ही इज वेरी कंसर्न्ड।
1: लेकिन तभी वहाँ अदित पहुँच जाता है जिसे होने लगता है इन दोनों पर शक, लेकिन मंगल ने तो पहले ही प्लान बनाया है कि वो अदित को समझाएगी। ऐसे में वो अदित का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। और लगता है मंगल ने फिर एक बार अदित का विश्वास जीत लिया है, तभी तो अदित और मंगल की वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा जिसमें अदित भी खुशी खुशी शामिल होने वाला है। इतना ही नहीं, अदित ने तो जयराज को भी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इनवाइट किया है।
5: वैसे हमारे सारे खास मेहमानों को पर्सनल इनवाइट गया है, इनफैक्ट आप तो कुछ ज्यादा ही खास है। समस्या जयराज रायजादा, आपको अदित सक्सेना और मंगल सक्सेना की वेडिंग एनिवर्सरी पर सादर आमंत्रित किया जाता है। ये जश्न आपके बिना अधूरा होगा।
2: मुझे इस जश्न का इंतजार रहेगा।
6: कहते जी क्या करने वाले हैं आखिर, इनका अगला प्लान क्या है, कैसे भी करके पता लगाना होगा।
1: भाई अदित ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर रचेगा। ऐसे में वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और देखिए कैसे कुसुम अदित और मंगल की आरती उतार रही है इनकी सालगिरह के मौके पर। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जहां एक तरफ मंगल ने प्लान रचा है तो वहीं आदित्य भी चाल चल रहा है।
7: आज मेरे घर पर फंक्शन है, नकली नोटों के लिए पूरा परिवार ही किसी को शक
4: कि मंगल जो है प्लान कर रही है कहीं ना कहीं आदित्य जी को पकड़वाना, और अब उसको यही समझ में आ रहा है कि किसी तरह से आदित्य का विश्वास लेकर मैं जो है उनका पर्दाफाश करती हूँ, क्योंकि अभी भी मंगल को समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य जी को कैसे पकड़वाए, क्योंकि अगर नकली नोट पकड़वा भी देती है तो भी आदित्य जी बच के निकल सकते हैं कि ये नोट मेरे थे ही नहीं। तो जैसे कि आप देखिए नरेश की बेटी का जो ट्रैक चल रहा है, तो उसमें मंगल कहीं ना कहीं जासूस है और यूरो अपराधियों को पकड़ रही है, और सबसे बड़े अपराधी जो हैं ये नकली नोटों के, और भी जो वो उसमें आदित्य जी ही हैं। तो मंगल जानना चाहती है कि कैसे मतलब आदित्य जी को फंसाया जाए, और अभी एनिवर्सरी तक जो है आदित्य जी का पूरा विश्वास आ गया है मंगल पे, तो अब उन उस पर शक नहीं करेंगे और वो अपना जो उसने ठानी हुई है कि मैं किसी तरह से उनका पर्दाफाश करके रहूँगी, तो आज वो दिन आ गया है।
1: तो भाई अब देखना होगा कि इस जश्न के बीच क्या आदित्य का खुलासा होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: देखिए अब तो वक्त खत्म हो गया है हमारे शो सास बहू और बेटिया का, लेकिन आपके लिए ये जो हॉटलाइन है ना, ये कभी नहीं होगी बंद। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटिया, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टेक केयर, बाय बाय।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
22: नागपुर में रक्षा मंत्री ने 10,000 टन क्षमता वाली एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का किया भूमि पूजन। रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए उपकरण निर्माण में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रय का नया वीडियो जारी किया, 2 दिन बाद नेवी में होगा शामिल। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण, 126 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास।

0: फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर चार फिल्में हुई रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही रिलीज। सिनेमा घरों में आज धूम मचाने को तैयार रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, फिल्म शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दी दस्तक, इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य हैं लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज, के डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है भी हुई रिलीज, वेटरन एक्टर असरानी जरीना वहाब खास तौर से दिखेंगे। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बटवारा 1947 का टीजर रिलीज, दमदार भूमिका में दिखेंगे सनी देओल, एक बार पर्दे पर दिखेगी भारत पाक बंटवारे की दास्तान।
1: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा जब जाएगा।
0: फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का आया नया ट्रेलर, हल्क और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, फिल्म की USP दुनिया भर में 31 जुलाई को रिलीज होगी। अभिनेत्री आलिया भट्ट के नक्शे कदम पर बेटी राहा, आलिया ने बताया बेहद फिल्मी है उनकी बेटी, स्टेज के लिए बनी है राहा। फिल्म पैदी के निर्माताओं ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म में जोड़े गए 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन। एक्टर धनुष की अपकमिंग फिल्म ओम का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म में एक्शन अवतार में दिखेंगे धनुष। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में किया कन्या पूजन, इस दौरान कन्याओं को दिया विशेष उपहार।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: नागपुर में रक्षा मंत्री ने 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का किया भूमि पूजन। रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए उपकरण निर्माण में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन समुद्री शिकारी जहाज INS अग्रे का नया वीडियो जारी किया। 2 दिन बाद नेवी में होगा शामिल। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण। 126 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अयोध्या में आज रामायण वैक्स म्यूजियम का होगा लोकार्पण। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। आधुनिक तकनीक से दिखेगी रामायण की कथा। वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की अक्षरा का धमाल। बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 126 गेंदों में ठोक दिए 306 रन। 55 चौके और 8 छक्कों से विरोधी टीम को पस्त किया। में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में भरा पानी, यातायात प्रभावित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, पूरी दुनिया आज योग का गुणगान कर रही है। भारतीय धर्म ग्रंथों में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन माना गया है, जो जीवन जीने की एक सर्वोच्च पद्धति भी है। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में योग की विस्तृत और गहरी व्याख्या की गई है, जो मनुष्य को मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे धर्म ग्रंथों में योग की क्या व्याख्या की गई है, क्या वाकई योग का प्रवाह वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में है।

0: संसार के सबसे बड़े योगी हैं महादेव, क्योंकि शिव के तांडव में योग है। सबसे बड़े कर्म योगी हैं श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण के गीता ज्ञान में कर्म भक्ति और ज्ञान योग का सार है। भारत की सनातनी परंपरा में ऋषि मुनियों की तपस्या को ध्यान और साधना की पराकाष्ठा माना गया है।
1: तो योग वास्तव में हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदत्त एक ऐसा वरदान है हमारे लिए, जो हमें हमेशा स्वास्थ्य

0: योग है, तो इसीलिए बिना उसके सब कुछ अधूरा सा है।
1: वेद को सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, वहीं योग उस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रायोगिक माध्यम भी है। दोनों का मूल उद्देश्य मनुष्य को अपनी वास्तविक चेतना से परिचित कराकर परमात्मा से मिलन कराना है, जहां योग के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि वेदों में योग का क्या स्थान है। योग के प्रमाण सीधे वैदिक संहितियों में मिलते हैं। ऋग्वेद में ध्यान, समाधि और प्राण शक्ति का उल्लेख है, जहां ऋषि पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा में लीन होने की बात करते हैं। अथर्ववेद में मानव शरीर को 9 द्वारों और चक्रों वाला बताया गया है, जो कुंडलिनी और सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जाओं का स्पष्ट संकेत देता है। वेद के अलावा उपनिषद भी भारतीय दर्शन और अध्यात्म के मूल स्तंभ हैं। उपनिषदों में जहां परम सत्य यानी ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वहीं इसमें समाया योग उस ज्ञान को जीवन में उतारने और अनुभव करने का मार्ग है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष या आत्मकल्याण। उपनिषदों में योग को तन मन के संतुलन का कारक माना गया है, अंतर्मन और शरीर को जोड़ने का एक साधन माना गया है। 108 प्रमुख उपनिषदों में 20 उपनिषद योग उपनिषद कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद से जुड़े हैं। ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। तपस्वी और साधक ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए लय योग, हठ योग और राजयोग भी किए जाते हैं। आज संसार के 150 से भी ज्यादा देशों में लोग अलग अलग आसनों, व्यायाम के तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे सांसों पर उनका नियंत्रण हो सके। स्नायुओं को पुष्ट करने वाले प्रयोग, पेट को फुलाने पिचकाने वाले आसन दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके हैं। सदियों से योग हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। योग विश्व को भारत की ही देन है।
0: कि जब हम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से योग अपने आप में हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमारे मन की शांति को प्रदान करता है। तो जो हमारे पुराण हैं उनमें विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसकी व्याख्याएं प्रदान की गई हैं। जो हम अभ्यास करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, जो हमें तन के साथ साथ जो निरंतर हम कहते हैं मन की शांति भी प्रदान करते हैं।
1: धर्मग्रंथ कहते हैं कि वेदों के अतिरिक्त पुराणों में भी योग का ज्ञान भरा हुआ है। मार्कंडेय पुराण में ईश्वर प्राप्ति के लिए योग की महत्ता बताई गई है। मार्कंडेय ऋषि ने ओंकार की साधना पर बल दिया और उन्होंने योग साधना और अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है। संयम द्वारा इंद्रियों को वश में करने की अनिवार्यता बताई गई है। अग्नि पुराण में मन की गति को ब्रह्म में लीन होना ही योग बना गया है। शिव पुराण में ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। शिव पुराण की 8 संहितियों में से एक है वायु संहिता। वायु संहिता में योग की महत्ता बताई गई है। भविष्य पुराण में सूर्य नमस्कार के महत्व को बताया गया है। धर्मग्रंथ मानते हैं कि देवाधिदेव महादेव सबसे बड़े योगी हैं, जिनका न आदि है और ना ही अंत। तो आप भी सुनिए शिव की साधना पर क्या कहते हैं ज्योतिष आचार्य।
0: भगवान शिव योग के जनक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो तांडव है

0: शंकर करते थे। और तांडव में संपूर्ण योग को दर्शाया गया है, संपूर्ण योग आ जाता है। जब भगवान शिव इसके जनक हैं और यदि उनको योग करने से उन्होंने स्वयं योग किया है, और यदि हम भी योग करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होगी और प्रभु शिव की कृपा हमारे ऊपर निश्चित होगी।
1: योग आसनों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये सहज और सर्वसुलभ हैं। इस व्यायाम में ना तो कुछ विशेष व्यय होता है और ना ही किसी विशिष्ट साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। ये प्रमाणिक भी हो चुका है कि योग आसनों से शरीर की थकान मिट जाती है, मन तरोताजा हो जाता है और आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की कैसी व्याख्या की है। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: गीता के अध्यायों में योग की महत्ता बताई गई है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानव को जीवन जीने की सीख दी गई है। इसीलिए गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को गति और दिशा देने का कार्य करती है। गीता के कई अध्याय योग शब्द से भरे पड़े हैं। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश।

0: ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्था है योग। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की चरम सीमा है योग। माना जाता है कि योग से तन मन की शुद्धि होती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कुरुक्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी गीता ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था। मैं वासुदेव कृष्ण स्वयं योगेश्वर हूं। मेरे कुछ भक्त मुझे योगीराज भी कहते हैं। मैं ही योग माया का स्वामी हूं। मनुष्य जो कुछ भी क्रिया करता है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म ही है। चाहे वे कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो। और तो और जीना मरना भी कर्म ही है।
1: गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा कहा गया है कि योग कर्मशु कौशलम। गीता के अनुसार तो कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। केवल आसन करना योग नहीं है, केवल प्राणायाम करना योग नहीं है, केवल ध्यान करना योग नहीं है। एक व्यक्ति है, बाहर कार्य करता है, तो वो अपना कर्म योग कर रहा है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, उसे हमें कुशलता पूर्वक यानी कि 100% डिवोशन के साथ में करना ही योग है।
0: द्रोणाचार्य को अजेय देखकर मैंने अर्जुन से कहा था, एको ही योगेस्य भवेत्वाधाया, अर्थात द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही योग है। वहां योग युक्ति या उपाय के रूप में था। महाभारत और गीता में योग योगी शब्द कई बार प्रयुक्त हुए हैं। गीता में सृष्टि निर्माण को योग कहा गया है। इसी अर्थ में मैं योगेश्वर हूं। मेरे लिए योग का मुख्य अर्थ है कर्म योग। मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्म करने की कुशलता, युक्ति अथवा शैली को योग कहते हैं। गीता के शंकर भाष्य में भी कर्मसु कौशलम का यही अर्थ लिया गया है। कर्म में स्वभाव सिद्ध रहने वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं। धर्म की स्थापना के कई मार्ग हैं। मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाता तो एक क्षण में सारे अधर्मियों का नाश कर देता। मैंने अर्जुन को प्रेरित किया, मैंने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। तो देखा आपने कि कैसे हमारी संस्कृति और शास्त्रों से जुड़ा है, सार्वभौम बन चुका ये योग। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि श्वास का नियमन योग का एक अंग मात्र है, वो संपूर्ण योग नहीं है। योग को समझने के लिए हमें पुराणों की शरण में जाना होगा। माना जाता है कि ध्यान की एक और विधा ओम का जाप करने से आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। माना जाता है कि जब आप ओम का जाप करते हैं, तब आप एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति अपने अंदर करते हैं।
1: ओम एक ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा शब्द है, जिस जब हम यहां बैठ करके ओंकार का जाप करते हैं, तो वो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को समाहित हो जाता है। क्योंकि आवाज जो है, शब्द जो है, एक आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व से हम जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी महत्ता भरपूर मात्रा में हमारे योग में दर्शाई गई है।
0: माना जाता है कि आसनों के द्वारा श्वास पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्राणायाम की सहायता से प्राण वायु का नियमन मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्राणायाम के माध्यम से समाधि या ध्यान के नए सोपान पाए जा सकते हैं।
1: यदि हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया, तो अष्टांग योग में यम नियम की उन्होंने बात करी है। योग के बिना सब अधूरा है, तो जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे प्रारंभ में जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अवरोध होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा जो मनोबल बढ़ता है उससे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
0: योग भारतीय जीवन दर्शन का ही अंग है। इसमें वेदों का ज्ञान और पुराणों का विज्ञान मिला है। विज्ञान भी मानता है कि योगासनों से शरीर की भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर पाती हैं, जो आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखने का काम करता है। माना जाता है कि इससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, मोटापा घटता है और दुबला पतला व्यक्ति भी तंदुरुस्त रहता है। तो आप भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे तन और मन के विकारों से आपका शरीर मुक्त हो सके और हमारी चेतना अपने ध्येय की प्राप्ति की तरफ उन्नत हो सके।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Right field, and it will... From the first pitch of the season to the stretch run.
5: That's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव
5: मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाती है। TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं? महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। नागपुर में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन, रक्षा मंत्री ने समारोह में शिरकत की, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को मिलेगी रफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को कंपोजिट फार्मियोन्स खोज के लिए मिला वर्ल्ड पुरस्कार, यरूशलम में इसराइल के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया।

0: संपूर्ण शुभ योग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और बात 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे की हो रही। वो दिन जब भारत ने दुनिया को सेहत का मंत्र दिया, तो कैसे हमारी संस्कृति में सेहत का खजाना छिपा और कैसे हम योग और श्वास क्रिया से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा डे का मकसद बिल्कुल यही है। तो योग में समाया है सेहत का खजाना। कपालभाति से कैसे चेहरे पर लाए नूर ग्लो, प्राणायाम से कैसे बीमारियां रहेंगी दूर, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के बड़े योगा एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वक्त निकालकर हम योग को दे दें तो यकीन मानिए कि हमारी जिंदगी बदल सकती है और इसकी पहचान दुनिया में हो भी रही है। भारत के योग का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं योगा के, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि देश भर में योग दिवस की तैयारी हो चुकी है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी को लेकर देश में 100 से ज्यादा जगहों पर सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम होने वाले हैं। कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस बार का जो थीम रखा गया है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग। लिहाजा दुनिया भर में 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम होने वाले। भारतीय दूतावास पर भी कार्यक्रम होगा। इस दौरान भारत समेत दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी हो रही है और भारत ने योग से दुनिया को जोड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हुगली नदी में 500 से ज्यादा नावों पर योग रिकॉर्ड बनने वाला है और साथ ही साथ योग के कई लाभ भी वहां से बताए जाएंगे। इससे मन में शांति मिलती है, यानी कि केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे मन के लिए भी बहुत जरूरी है, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं, बेहतर फिटनेस के लिए भी आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से योग हमारी जिंदगी को बदल सकता है और कहा जाता है कि खाली पेट योग करना बेहतर होता है। अगर आप योग करें तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें, आसनों को धीरे धीरे बढ़ाएं, उनके रेपिटेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। भारत हासिल हो जाएगी आपको योग में और ये योग आपके लिए जिंदगी में बहुत सारे नए रास्ते, नई सोच लाने में भी मददगार साबित होगा। तो देश भर में योग उत्सव को लेकर किस तरह का उत्साह है आप इन तस्वीरों में देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों से इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, चाहे वो श्रीनगर की पोखरीवल झील में वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों ने अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग योगा का प्रदर्शन किया है। योगा के इस नए अवतार में वाटर स्पोर्ट्स का जज्बा भी देखने को मिल रहा है। इस इवेंट में हिस्सा लेने वालों ने पानी के खूबसूरत नजारों के बीच तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर कई तरह के योगासन किए और इसमें फिजिकल हेल्थ और एडवेंचर स्पोर्ट्स का गजब का मेल दिख रहा है और संतुलन भी देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रन फॉर योग इवेंट का आयोजन किया गया है और इसमें अधिकारियों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जाहिर सी बात है कि शहर हो, कोई भी शहर हो, कार्यक्रम का मकसद सीधे तौर पर यह है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ गुड हेल्थ फिटनेस का संदेश देना। पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल में मैथन डैम पर योग अभ्यास किया गया जिसमें 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें देखिए, जहां अभी से ही योग दिवस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। यहां भी 12 जिलों में योगाभ्यास किया गया। राजस्थान के धौलपुर में लोगों को योग के प्रति प्रेरित करने के लिए योग उत्सव मनाया जा रहा है। इधर मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और फिटनेस के महत्व का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड और खेल जगत की जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की और इस बार योग उत्सव की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योगा। भारत में इस थीम के खास मायने भी है।
1: योगा फॉर हेल्दी एजिंग, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है। जैसे ही बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हो गई, इन पे रोकथाम है, तो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है। परंतु प्रॉब्लम जब आती है, जब जो एजिंग लाइफ स्पैन तो बढ़ गई है पर हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा। सो जो लास्ट डेकेड्स ऑफ लाइफ होते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कभी कोई ऑटोइम्यून इशू हो गया, डिप्रेशन हो गया, और फिर जैसे डिमेंशिया, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज बहुत बढ़ गया है. एंड इस कारणवश ये जो गवर्नमेंट ने जो ये थीम डिसाइड किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्पैन के साथ हेल्थ स्पैन भी बढ़े. तो हमने स्टडीज करी है एजेड इंडिविजुअल्स पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट योग की फाइंडिंग्स ये हैं कि योग हर उम्र का इंसान कर सकता है. तो जैसे कि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, कि ये जरूरी नहीं है कि तुम फ्लोर पे बैठ के योग करो. अगर चेयर पे बैठ के जितना आप कर सकते हो धीरे धीरे वो करो. परंतु योग का मतलब केवल कोई कठिन आसन नहीं होते, आसान आसन करो, उसके साथ प्राणायाम और ध्यान करना है. तो जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं, उससे बहुत मानसिक तनाव कम होता है और ओवरऑल मेंटल वेलबींग बढ़ती है. सो हमने देखा है कि हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि योग से बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इम्प्रूव होती है. इन एडिशन टू दैट, आवर स्टडीज, दिस एविडेंस बेस्ड रिसर्च हैज क्लियरली शोन दैट यू कैन रिड्यूस द रेट ऑफ एजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 75 एज है और आप पहले से ही योग कर रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज होगी अराउंड 50.
0: तो चलिए, गुड हेल्थ के लिए योगा, और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे. मीनल पाठक, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. बहुत स्वागत है आपका मीनल. हमारे साथ डॉक्टर अक्षय आनंद हैं, प्रोफेसर इंचार्ज हैं CCRYN योगा सेंटर से, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत स्वागत है सर आपका. डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है. और डॉक्टर साहब हमेशा हमें योगा के जरिए फिट रहने का संदेश भी देते हैं. अब क्योंकि योगा का सीधा कंसर्न मेंटल हेल्थ से है, तो इसी को समझाने के लिए डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज के इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे, तो योगा केवल हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. डाइट उसमें कितना रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ कैसे योगा हमें फिट रखता है फिजिकली भी. अब क्योंकि इस बार का थीम भी एजिंग को लेकर है, तो शुरुआत आप ही से करूंगी मीनल. सबसे पहला, क्योंकि आपने अभी सुना, हमारे एक्सपर्ट भी इसको लेकर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले क्यों जरूरी है, और क्या ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए योगा इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारी मेंटल हेल्थ को भी इक्वली बैलेंस करता है. आज की डेट में मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज्यादा याद रखिए.
2: मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को ये गिफ्ट है इंडिया की तरफ से, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज की तरफ से, कि आज स्ट्रेस का कोई भी एक मेडिसिन नहीं है. मतलब आप कोई भी स्ट्रेस के लिए एक मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए योग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं. आप नींद आने के लिए दवाइयां खा सकते हैं, लेकिन नींद आपको अच्छी ऐसी नींद आए जो रेस्टोरेटिव हो, हमारे इतने सारे रेस्टोरेटिव योगा पोजेज हैं जो आप सोने से पहले कर सकते हैं. यू कैन इंश्योर कि यू हैव अ डीप नाइस स्लीप. ये सारे जो आसन हैं बहुत सिंपल टू डू हैं, जैसे विपरीत करनी या आप बाल आसन, चाइल्ड पोज, ये आपको मेंटली रिलैक्स रखते हैं. आपके पूरा जो स्कल का एरिया है उसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जो आपका पूरा दिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रहता है ना, कॉर्टिसोल, उसको रिलैक्स करते हैं. तो इमेजिन करिए, बिना किसी मेडिसिन के आप सिर्फ कुछ आसन, ब्रीदिंग मूवमेंट और मोबिलिटी के थ्रू अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट एंड रिलैक्सेशन में ला सकते हैं. और सिंपल है.
0: मतलब नहीं, ये आसन सुबह करने या सोने से पहले करने, ये भी बताना पड़ेगा आपको.
2: आप कभी भी कर सकते हैं. आइडियली जो ब्रीदिंग है ना, वो तो मुझे लगता है कि वो सारे प्रोफेशनल्स जो पूरा दिन जॉब पे रहते हैं, उनको तो हर 1 or 2 hours के बाद बॉक्स ब्रीदिंग या ऐसा कोई ब्रीदिंग मैकेनिज्म करना चाहिए, सो दैट उनका जो एक पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो भी एक्टिवेट हो. नहीं तो पूरा टाइम कॉर्टिसोल एक्टिवेटेड रहता है, एंड दे ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम कि बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेस्ड है. तो दैट इज योर एनवायरमेंट. लेकिन योग की देन ये है कि आप आराम से कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपनी चेयर पे, कहीं पर भी. वो आपको वो ब्रेक्स देगा, आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक्स देगा, जिसमें योर बॉडी विल फील कि सब सही चल रहा है.
0: चलिए एक जरा एक आसन बताते चलिए साथ ही साथ हमारे.
2: तो हम ब्रीदिंग करते हैं. आई थिंक वो सबसे इजी है. आप सिंपल यू नो नॉर्मल जिस तरह से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए. अपने दोनों थम्स को इस तरह से जोड़ लीजिए और अपने चेस्ट पे ये हाथ रख लीजिए और धीरे से आंखों को बंद करिए. दिस इज वेरी यू नो अमेजिंग, बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद योर हार्ट बीट हियर, अदरवाइज नहीं हो पाता है. इनहेल करेंगे फॉर द 4 counts. अब इसको होल्ड करेंगे फॉर 4 counts और अब एक्सहेल स्टार्ट करेंगे. हियर द मैजिक हैपेंस. एक्सहेल करेंगे फॉर 8 counts. फिर से रिपीट करेंगे, इनहेल फोर, होल्ड फोर, और आप धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। सो ये जो लॉन्गर एक्सहेल है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। आप जितना भी स्ट्रेस में हो, जितना भी आप डेडलॉक पोजीशन में हो, आपका ब्रेन ही शिफ्ट हो जाएगा। इमेजिन आपका ब्रेन ऐसे पैराशूट की तरह खुल जाएगा।
3: चलिए डॉक्टर अक्षय, मैं आपको इंक्लूड करूंगी। नींद को लेकर बहुत सारी समस्याएं जिसका जवाब डॉक्टर वली और डॉक्टर निशा से लेंगे, लेकिन एक बार डॉक्टर अक्षय आपको मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। आज की तारीख में योगा कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, ऐसे में जब भागती दौड़ती जिंदगी है, चाहे वो इनफैक्ट मैं दूर नहीं हम जाएंगे, आप आजकल देखिए बच्चों पर ही कितना स्ट्रेस है। बच्चों के लिए भी मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का एक तरीके से प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उनके लिए भी लाइफ बहुत टफ हो गई, मेंटल प्रेशर उन पर भी है, तो कितना जरूरी है योगा ऐसे में?
4: इतना ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों ने पीजीआई चंडीगढ़ में वर्क प्लेस योगा शुरू किया है। उसको हम वाई ब्रेक कहते हैं और वो 5 मिनट का योगा है। और जैसा भी रीमा दादा कह रही थी कि हम बैठ के चेयर में भी कर सकते हैं, तो जैसे मैं चेयर में बैठा हूँ और ऐसे मेरे काफी साथी प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, वो लोग अपने अपने ओपीडी या ऑपरेशन थिएटर के बाहर या कुछ इन पेशेंट वेटिंग एरियाज हैं, जो मैं पीजीआई मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहीं पर हम लोग उन लोगों को योगा 5 मिनट का कराते हैं और वो इतना स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं कि इवन हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो दरवाजे पे खड़े आके अपनी लाइन का इंतजार कर रहे होते थे, बड़ाका चल रहा था, वो भी शांत हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जो लोग इन पेशेंट्स वेटिंग इन एरिया में जो वेट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट, वो भी एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये शांति वर्क प्लेस योगा पे जो काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, स्ट्रेस भी कम करती है, टीम वर्क भी बढ़ाती है। और एज ए नेशन अगर आप सारे मेडिकल संस्थानों को जोड़ लें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो पेशेंट केयर भी बढ़ेगा। और अगर हर वर्क प्लेस योगा अडॉप्ट करे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेट सेक्टर, तो पूरे भारतवर्ष की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। बीमारी तो चलो बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, और जो बीमारी आनी है, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन कंट्रोल और जो अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनका रोकथाम और हेल्थ केयर बजट तो बढ़े कम होगा ही होगा, पर जो स्फूर्ति आएगी और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नेशन की, आई थिंक वो सबसे जरूरी है।
3: बिल्कुल, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब वापस मीनल की बात को आगे बढ़ाती हूँ, डॉक्टर वली आपके पास आऊंगी, आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, आप खुद योगा प्रैक्टिस करते हैं हमेशा और लोगों को कहते हैं कि योगा कीजिए। अच्छी नींद का हमारी गट हेल्थ से भी सीधे तौर पर ताल्लुक है। नींद अच्छी नहीं होती, हमारी गट हेल्थ उतनी खराब होती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है हमारे बिहेवियर में, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, वो उसको उतना ही बढ़ाती है। यानी ये पूरा साइकिल है, और इस पूरे साइकिल को अगर आपको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं आपको योग की मदद लेनी पड़ेगी।
5: जी बिल्कुल, अब तो सबसे पहला तो आपने प्रेरित कर दिया लोगों को, आप खुद योग मुद्रा में बैठ गई। तो ये योग जो है, इट्स ए नॉट ए थिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। योगा जो है ना, इसको हमको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सोना रूटीन है, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो रूटीन ही की चीज से वो ठीक होगा, डॉक्टर की गोली से नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को गोलियां बंद करी हैं और वो बहुत खुश हैं। मैं रोज एक दो लोगों के नुस्खे में से नींद की गोलियां काटता हूँ, और मुझे बड़ी दुख होता है कि 6-6, 7-7 एक बहुत बड़े टीवी के जर्नलिस्ट परसों मेरे पास आए थे, बहुत मशहूर, आपसे दूसरे चैनल में थे वो, उनको 9 दवाएं चल रही थी, 8 नींद की थी। तो अब क्या करूं, सर फोड़ने के अलावा तो कोई काम नहीं था मुझे। तो मैंने उनको कहा आप 1 दवा अभी रखिए और 8 दवा बंद करी, और वो बहुत खुश गए मेरे पास। तो हम दवा का जो सहारा ले रहे हैं, आपने जो मूल बात आज इस प्रोग्राम के जरिए से प्रोपेगेट करनी है कि वो ये है कि शरीर को भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने मोबाइल रहने के लिए बनाया है। हमने कुर्सी आसन और सोफासन से इसको स्टैटिक कर दिया है। जो रही सही कमी है वो हमारे मोबाइल बाबा ने कर दी है। रात को नीली लाइट देख देख के नींद गायब कर देते हैं। एंग्जाइटी, फिकर, रोजमर्रा की कमाई से जुड़े कारण, बच्चों के रिलेशनशिप से जुड़े कारण, हजारों ऐसी चीजें जो हमारी नींद को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में व्यायाम के अलावा जो सबसे अच्छा मित्र है और जिसको हम केमिस्ट की दुकान से पैसे लेके भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो हमारा योग है, योगासन हैं, योग के आठ चीजें, आठ स्तंभ जो आप अभी प्रोग्राम के शुरू में दिखा रहे थे वो हैं, और हमारी डेली रूटीन में योग शामिल होना चाहिए। इसमें ये भी नहीं है 5 days a week जो हम एक्सरसाइज का बताते हैं। योग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि योग एक पद्धति है जो किसी से जुड़ी है, नहीं, इट्स लाइफ से जुड़ी है,
3: इट इज अ लाइफस्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल से सीधे तौर पर, बिल्कुल।
5: तो इसको हमें अपने लाइफ का ही हिस्सा बनाना पड़ेगा,
3: बिल्कुल।
5: और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मीनल की तो रोज में एक नई रील देखता हूँ, उससे इंस्पायर होता हूँ। तो उसको ये देखिए, अब जो दो लेडीज आ रही हैं, ये लोग आ रहे हैं, सब हेल्दी रहना चाहते हैं। आप जो बैकड्रॉप में पतली कमर की लड़कियां दिखा रही हैं, कोई औरत नहीं होगी जो कहेगी मेरी कमर ऐसी हो जाए।
3: डॉक्टर वली, डॉक्टर वली को बुलाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम एक आसन कर लेते हैं, हम खूब खुश हो लेते हैं, हम हंस लेते हैं।
5: दिखाइए करके प्रैक्टिकल। और एक कपिल योगा की भी मैं बात करूंगा, जो हस्बैंड वाइफ सेम एज के हैं, वो घर में एक साथ योग कर सकते हैं और कुछ आसन दोनों साथ करके।
3: चलिए उस पर मैं आऊंगी डॉक्टर साहब। देखिए आपने ऐसी बात कर दी कि पूरे स्टूडियो में एक तरीके से एक आसन तो कम से कम हम मुस्कुरा लिए, हंस लिए ना। और वो देखिए डॉक्टर निशा भी विंडो में मुझे नजर आ रही है, बहुत खुश है। डॉक्टर अक्षय भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। सवाल डॉक्टर निशा अब आपसे, जब हम योग की बात करते हैं, केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, हम ठीक है उसको एक अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि उसको एक स्पेसिफिक धार्मिक एंगल नहीं दीजिए, क्योंकि ठीक है हमारी सांस्कृतिक हमारी पद्धति है ये, लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आज की तारीख में मेंटल हेल्थ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है?
6: मैम आई वुड से मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं खुद भी योगा करती हूँ हर रोज मॉर्निंग में, मेरे ट्यूटर आते हैं मुझे करवाने के लिए। तो आई वुड से दैट योगा कहीं ना कहीं जितने भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे सब एक्सपर्ट्स ने कहा है नींद आने में उसका हेल्प है, डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने में उसका हेल्प है। हमारे फिजिकल बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो योगा से, जितने भी आप स्ट्रेचेस करते हैं, क्योंकि कई बार जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हमारी बॉडी, या अगर एक्टिविटी लेवल नहीं है, जैसे कि सर ने कहा है कि वर्क योगा करवा रहे हैं वो चंडीगढ़ में PGI में, तो वो सारी चीजें, मेरे जैसे एक्सपर्ट जो घंटों बैठे रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे हमारे सिटिंग आवर्स होते हैं, उन सब के लिए बॉडी पार्ट्स पर क्योंकि असर पड़ता है, आप यूज नहीं करते। जैसे एक टीचर है वो खड़ी रहती है तो उनके बॉडी पार्ट्स पर असर होता है, सेम वे में बॉडी को एक एक्टिविटी लेवल की जरूरत होती है। तो योगा जैसा कि सर ने कहा एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, चाहे अगर स्पिरिचुअलिटी की नाम के, तो मैं इसे किसी धर्म से ना जोड़कर, हिंदू से ना जोड़कर, इवन अगर आप पढ़े तो हार्वर्ड का भी एक आर्टिकल है दैट योगा शुड बी द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, और उसका मेंटल हेल्थ पर इतना असर पड़ता है कि आपका ब्रेन शार्प होता है। आप अगर डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर आप डेली रूटीन में योगा को इंकल्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके इमोशनल रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो कहीं ना कहीं एक तो एक घंटा जो सर कह रहे थे कि मोबाइल और नीली लाइट की दुनिया है, क्योंकि हम योगा आसन करेंगे तो मोबाइल से तो ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन योगा करते हैं, आप घर पे टीवी को चलाकर आगे सामने योगा कर सकते हैं। देखिए आई वुड से जिसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, और जैसा कि सर ने कहा कि हर इंसान को खूबसूरत दिखना है, तो अब मुझे लगता है कि हर मेल और फीमेल को ये अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बैलेंस्ड हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आती थी, आती हैं और आती रहेंगी। अगर आप योगा को डेली रूटीन में अपनाते हैं, आपकी बॉडी भी फ्रेश फील करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप उसे डेली रूटीन का मॉर्निंग में अगर हिस्सा बनाते हैं, जल्दी उठते हैं, तो उससे भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है इम्प्रूव हो जाती है।
3: बिल्कुल लौटती हूँ अब मीनल आपके पास सीधा होंगी, क्योंकि हमारे दर्शक यहाँ पर आपको देख भी रहे हैं, हम और आप दोनों मैट पर बैठे भी हैं। मैं चाहूंगी कि जरा एक आसन, कुछ एक बेसिक आसन जो हम अगर कहें कि हमारे पास वक्त नहीं, बहुत से लोगों का एक्सक्यूज यही रहता है कि वक्त नहीं है, सुबह समय नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे बेसिक आसन जो कि आपको घर से करके निकलने, जैसा कि डॉक्टर वली ने भी यहाँ पर बताया कि उसको दैट इज मस्ट, वो आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें कौन सा आसन
2: बता? सबसे पहले तो हम बटरफ्लाई पोज करते हैं, ये बहुत बेसिक है, सिंपल है, अपने पंजों को जोड़ लीजिए, अपने एडी को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींच लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, राउंड नहीं करेंगे, जो आपका बेस है ना सिट्स बोन से रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करेंगे। ये बहुत सिंपल पोज है और आइडियली सबको करना चाहिए, मेल और फीमेल्स, बट फीमेल्स के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा है बिकॉज ये आपके जितने भी यूट्रस और आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी सी मसाज करता है और वो सभी लोग जो पेरीमेनोपॉज हिट करने वाले या हिट कर रहे हैं, पीसीओडी, पीकोज, इन सभी बीमारियों के लिए ये बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप घर में बैठे हैं या बात कर रहे हैं तो आप बटरफ्लाई आसन में बात करिए, बात कर सकते हैं आराम से, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आइए करते हैं मल आसन, अगेन अ डीप स्क्वाट पोजीशन, हम इसको ऐसे तो बैठ के ही कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पंजों को थोड़ा सा खोल लेंगे, स्पेस बना लीजिए, अपने एल्बोज से सपोर्ट करते हुए अपने नीज को पूरा अच्छे से खोल लीजिए और डीप स्क्वाट पोजीशन में आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छा पोज है, बहुत इफेक्टिव है और पूरे दिन जो लोग कुर्सियों पे बैठते हैं ना उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये आपके हिप फ्लेक्सर्स, इनर थाइज, काफ मसल्स, इन सबको खोल रहा है, ऐसा कोई भी और आसन नहीं है जो खोलेगा। इनफैक्ट आपकी स्पाइन भी पूरे अच्छे से एलोंगेट हो रही है राइट फ्रॉम द टिप ऑफ द हिप बोन। आप ऐसे दिन में कम से कम 3-4 बार ब्रेक लीजिए, सुबह उठ के निकल गए कोई बात नहीं, 11-12 बजे एक मिनट के लिए ऐसे बैठ जाइए। इनफैक्ट वो सभी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और सुबह पेट साफ नहीं होता है, सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए और मल आसन में बैठिए फोर फाइव मिनट्स, गारंटेड आपका पेट साफ हो जाएगा, इतना इफेक्टिव पोज है। और दोपहर को बैठिए, रात को बैठिए, और इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ तो मैं स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों से ये करवाती हूँ, बैठ नहीं पाते, जैसे आप इतनी आसानी से बैठ गई ना एक सेकंड में वो गिर जाएंगे, उनका बैलेंस नहीं है। दिस इज सपोज टू बी एन एशियन स्क्वाट, और देखिए ना मतलब आजकल बच्चे ये करते ही नहीं है, तो बॉडी में वो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ही
3: नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये कुछ एक आसन है, क्योंकि मीनल आपसे और भी आसन आगे जानेंगे, लेकिन अब डॉक्टर अक्षय आपके पास सीधे तौर पर मैं आना चाहूंगी, आप क्या बताएंगे? आपने कहा कि आपने वहां पीजीआई में ही ये प्रैक्टिस शुरू की है डॉक्टर्स के लिए, अब एंजाइटी कम करना या फिर डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
4: हमारा सारा ध्यान विज्ञानीकरण में रहता है, प्रमाण इकट्ठा करने में। तो हम लोग आज ही एक वर्कशॉप थी योगा एंड जी में, उसी हॉल में भी हूँ, अभी भी खत्म हुई है, तो अलग अलग विशेषज्ञ आए थे। तो हम लोग सब ना बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं प्रोटोकोलाइजेशन में, तो योग का प्रोटोकोलाइजेशन यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, किताबें लिखे, पेपर्स लिखे, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस के भी प्रोटोकॉल्स हैं और वो हमने यहाँ बनाए हैं। दो डीएम स्टूडेंट्स अपना एडोलेसेंट एंग्जाइटी और चाइल्ड एंग्जाइटी पर डीएम अपनी कर रहे हैं, और उसका एक प्रोटोकॉल है बहुत सुंदर, वो प्राणायाम बेस्ड ज्यादा है, क्योंकि आसन से भी ज्यादा प्राणायाम का बहुत लाभ होता है हमारे को अपना सेल्फ रेगुलेशन में, जिसे हम न्यूरो रेगुलेशन भी कहते हैं। और जैसा आपने खुद पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स की बात की ना, पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेशन के लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन मैनेजमेंट बड़ा सीमलेस और ईजी हो जाता है, तो उस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम। तो इन दोनों डीएम रेजिडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं जो अपनी थीसिस कर रहे हैं, उन्होंने इन चाइल्ड और एडोलेसेंट ग्रुप्स लेके आधे लोगों को ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रोटोकॉल दिया है और आधों को नहीं दिया। आधों को यूजुअल केयर जो भी वो डॉक्टर देते हैं दवाई वो दे रहे हैं, और उसी से वो लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है और स्ट्रेस रिडक्शन हुआ है और डिप्रेशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उस ग्रुप में जिसने के एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाला योगा प्रोटोकॉल किया, नियमित रूप से किया, 30 मिनट किया, 5 दिन इन अ वीक किया, वो 3 months किया, और कुछ पेशेंट्स को 6 months तक फॉलोअप किया। ये दोनों ही अपने डीएम से सबमिट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पीजीआई में और इस तरह के जो INIs है ना इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, काफी ओवरबर्डन पेशेंट्स है और बहुत सारे मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, तो स्ट्रेस, बर्नआउट, एंग्जाइटी और फिर बहुत सारे नॉन मेडिकल काम भी करने पड़ते हैं, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, तो बड़ी मल्टीटास्किंग हो जाती है। तो बट नेचुरल है कि थोड़ा बर्नआउट और एंग्जाइटी तो हो ही जाती है ना, तो अब उसके लिए दवाई एल्प्रेक्स तो लेंगे नहीं। सबसे सुंदर तरीका है जिम जाएं, तो जिम भी रेगुलर नहीं होता, तो जिम को भी रेगुलर करने के लिए अगर अपने आप में एक अनुशासन लाना है तो योग का सहारा लेना पड़ता है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल,
4: योग का सहारा, भी आ जाता है, जिम भी आ जाता है, खाना पीना भी ठीक हो जाता है. एक दूसरे शब्दों में लाइफ स्टाइल और जैसा आप जिक्र कर रहे थे सारे, जीवन ही नियमित और अनुशासित हो जाता है.
3: बिल्कुल.
4: तो फिर कोई इसमें कारण नहीं रहता कि डिप्रेशन एंग्जाइटी स्ट्रेस आगे बढ़े अनलेस कुछ.
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना है. खास मेहमान बने हुए हैं, कैसे योगा हमारे लिए जरूरी है, कितना जरूरी है, और कैसे कम समय में भी हम कुछ एक आसन करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. इन सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. आप रहिए हमारे साथ.

0: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं? महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड हेल्थ का संपूर्ण शुभ योग जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, योग करना, योग के फायदे क्या क्या है, ना सिर्फ आपके शरीर के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ योग में ही छिपा है। डॉक्टर वली आपके पास आती हूँ, चाहे वो डिमेंशिया हो या अल्जाइमर हो। अभी जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एक डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि कैसे इन दो बीमारियों पर स्पेसिफिकली योग में बहुत कुछ बताया गया है, उस पर काम हो सकता है।
10: बिल्कुल, देखिए मेंटल हेल्थ की बात जो हम करते हैं ना, तो ये हमारे पूरी लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई है एक। और हम बॉडी बिल्डिंग की जब बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, वो हमारे मसल के साइज से जुड़ी हुई है। इन दोनों को इनमें सामंजस्य रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए योग ही एक ऐसी शक्ति है, आई विल कॉल इट ए शक्ति, जो दोनों में कोऑर्डिनेशन कर सकती है। आजकल आम तौर से लोगों में ये हो रहा है, सामने बंदा खड़ा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा, अरे भाई क्या हो गया, और कानों का तो हाल बुरा हो गया, इसकी बात आज नहीं करेंगे। तो हमारी जो शरीर की अंतर आत्मा की परवरिश है वो ऑक्सीजन से होती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, और वो ऑक्सीजन शरीर को सबसे अच्छा प्राणायाम और योग से मिलती है। मैं योग शब्द यूज कर रहा हूं जो सही है। तो योग योगाभ्यास ऐसा है जैसे कि खेती के लिए पानी, अगर हम योग छोड़ देंगे तो हमारी मेंटल जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैं तो देख रहा हूँ लोगों के ब्रेन का साइज श्रिंक हो जा रहा है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे हैं, यंग एज में उनके एमआरआईज में ब्रेन का, बिलीव करिए, और इस बात को मैं जोर दे के कह रहा हूँ, सब सुन ले ध्यान से, उनके ब्रेन का साइज छोटा होता जा रहा है और हम लोगों के बच्चों का ब्रेन का साइज छोटा होता जा रहा है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, और योग इसका इलाज है। योग से जब हम प्राणायाम से ऑक्सीजन पंप करते हैं बॉडी में, वो एक बहुत बड़ा अभ्यास, एक सिंपल एक्सरसाइज है ब्रीदिंग, लेकिन जब मैंने करके देखी तो मुझे पता लगा इसमें बहुत सारा अभ्यास है, इसमें बहुत सारी मेहनत है। मेरे का एक दिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अपने बच्चे पे चिल्लाया, और मेरा ट्रेनर आ गया एक्सरसाइज वाला। अब मैंने ब्लड प्रेशर देखा और धीरे से चुपके से दवाई खा के चला गया अपने कमरे में, जिम वाले में। अब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, फिर ब्लड प्रेशर देखा, मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा है, उसने कहा आप डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करवाया, फिर ब्लड प्रेशर देखा तो कम हुआ। जो चीज दवा नहीं कर सकी वो प्राणायाम कर सका, ये डॉक्टर वाली कह रहे हैं गुड न्यूज चैनल पे, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई गलत हो ही नहीं सकती
11: जी।
10: तो हमको इसका अभ्यास करना है, इसको अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना है, इसको जोड़ना है। देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि योग से कितनी कंट्रीज जुड़ गई। मैं उस पहले प्रोग्राम में था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराया था, नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति जी के साथ में उसके इंडिया गेट के आगे वो जो राजपथ है वहां बैठ के वो प्रोग्राम मैंने देखा, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। और आप उसके बाद जो है 2015 में यूएन असेंबली में योग की बात हुई, 174 कंट्री ने एंडोर्स किया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है,
11: बिल्कुल
10: पूरा विश्व।

0: जिम जाना या डॉक्टर पीजीआई से भी सर ने कहा अक्षय जी ने कि योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हर कोई जिम जाके कंफर्टेबल नहीं होता है, या कोई वॉक करना नहीं जा सकता, तो कोई हैवी वेट्स नहीं उठाना चाहता। हालांकि इन सब एक्सरसाइजेस का आपकी बॉडी पर असर पड़ता है, बट आप किसी भी वजह से अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते ड्यू टू व्हाट एक्स वाई जेड कमिटमेंट्स की वजह से, तो ऐसे केसेस में मैं योगा रिकमेंड करती हूँ। और जैसा कि रिसर्च अभी आई थिंक सो मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च किया है कि योगा का मेंटल हेल्थ पर कितना असर होता है। आई थिंक सो 2500 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड दे फाइंड इट आउट कि इमोशनल रेगुलेशन में योगा बहुत हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पीटीएसडी, इन सारे केसेस में योगा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप बेसिक स्ट्रेचेस भी और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करें, जैसा कि मीनल ने कहा था, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये पर्टिकुलर पोज कर लीजिए, आपको डायबिटीज है ये पर्टिकुलर पोज कर लीजिए। देखिए, बॉडी को मूवमेंट की जरूरत है, और उस मूवमेंट को अगर हम बॉडी को मूवमेंट में लाएंगे तो मेजर डिप्रेशन में भी, जितने भी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और जिनका कुछ भी मन नहीं करता, इट शुड नॉट बी कि आपका मन कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी कर ले कि मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा है, तो वो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आई विल से टुडे मॉर्निंग इवन मैं अपनी योगा जो टीचर है उनके साथ बात कर रही थी, तो वी विल सेइंग इट टाइट, आई मे नॉट फील मोटिवेटेड बट आई डू इट एज द पार्ट ऑफ चेक बॉक्स, बट इट मेड मेंटेन माई एक्टिविटी लेवल, तो उसकी वजह से मैं 10 घंटे काम कर पाती हूँ दिन में। तो आई थिंक सो वो एक
1: ये एक
0: जरूरी
1: बड़ा
0: नहीं है कई बार
1: इम्पोर्टेंट,
0: आप।
1: बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर निशा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इसका जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम जा रहे हैं, थोड़ा समय बाद बोर हो जाते हैं, योग कर रहे हैं, योग के बाद बोर हो जाएंगे, एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, वो बहुत एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमेशा रहता नहीं है सबके साथ, तो उसमें कैसे खुद को मोटिवेट करें?
0: देखिए, चेंज करना एक्टिविटीज को वो कोई दो राय नहीं है। आप अलग अलग एक्टिविटीज सीख भी सकते हैं, चाहे अगर आप अभी जिम जा रहे हैं तो आपने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, बैडमिंटन बंद किया तो आपने पिकल बॉल खेलना शुरू कर दिया, पिकल बॉल बंद कर दिया आपने योगा शुरू कर दिया, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप कराटे सीख सकते हैं, आप काम बागा कर सकते हैं, आजकल तो इतनी एक्टिविटीज हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो जिसे फिजिकल एक्टिविटी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है साइकिलिंग कर सकते हैं। अब जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, हर उस एक्टिविटी का असर है, पर योगा का अपना असर है। और योगा की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें कंसंट्रेशन होती है, त्राटक क्रिया होती है, जब कंसंट्रेशन का फोकस को लेकर इश्यूज होता है, स्टूडेंट्स में भी इश्यू होता है, तब भी उनको हम त्राटक क्रिया बताते हैं। एज अ थेरेपिस्ट मैं बताती हूँ कि उन्हें त्राटक क्रिया करनी चाहिए, कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है योगा। और अगर ध्यान और मेडिटेशन भी योगा की एक स्टेज है, क्योंकि मैंने खुद ने भी पीजी डिप्लोमा कर रखा है योगा और मेडिटेशन में, तो हम इसे बोलते हैं ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जिसे आप किसी धर्म से या किसी चीज से
1: बिल्कुल उससे ना जोड़ा जाए।
0: शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और उस शारीरिक स्वास्थ्य पर अगर आपने ध्यान देना है तो उसको योग को जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि उसमें फोकस, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और मैं आपको बता दूं, डैनियल गोलमैन का अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का आप कोर्स करते हैं तो मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है हमारे इमोशनल रेगुलेशन में। और ये भी माना जाता है कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेज तब अच्छे से कर सकते हैं जब हमारी बॉडी पूरी तरह से, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स पूरी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग कर रहे हैं, और उस स्मूथ फंक्शनिंग में योगा का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिसर्च भी यही कहती है, तो इंडिया में भी ये बहुत सारी।
1: बिल्कुल डॉक्टर निशा मीनल, इसी एक तो इसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप भी मल्टीपल चीजें करती हैं। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि आप कई कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़ी हुई, फिट इंडिया के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर आपके पास, आपके आने का समय होता है, जाने का कोई समय नहीं होता, तो उसमें कैसे खुद को फिट रखा जाए, उसके लिए भी एक योगा बताइए, दोनों सवालों का जवाब।
2: ठीक है, सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि जो फिटनेस का शेड्यूल होता है ना आपका, ये आपके दिन का फर्स्ट विन है। सो इट इज नॉट अ मोटिवेशन दैट यू नीड, इट इज यू नो इट्स अ डिसिप्लिन। को आपको डिसिप्लिन के तौर से सुबह उठ के 30 मिनट्स अपने बॉडी के लिए देना है, चाहे आप उस दिन योग कर लीजिए, आप उस दिन अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, आप चाहे तो रनिंग कर लीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि इस वीक में मुझे इन दिनों में स्ट्रेंथ करना है, इन दिनों में योग करना है, इन दिनों में अपना कार्डियो के लिए वर्कआउट करना है, और वो कीजिए। और बहुत अच्छा है कि आप सुबह कीजिए, बिकॉज आप सोचिए हर दिन आपका माइंड आपको बोलेगा कि मुझे आज ये वर्कआउट नहीं करना है, एंड वो लेजी आउट होना करना चाहेगा। और हर दिन जब आप वर्कआउट करेंगे ना, उस तरह से आप अपने मन से जीतते हैं।

0: और वो आपका घर से बाहर निकलने से पहले ही आपके दिन की पहली जीत है और उसके बाद आप पूरा दिन जीत जाते हैं. दिस इज लाइक यू नो कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत. तो इस तरह से आप पहले ही अपने मन के ऊपर से जीत ले लेते हैं. तो दिस इज दैट्स हाउ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जितने भी लोग ऑफिस में बैठते हैं तो उनके लिए बहुत यू नो स्पेसिफिकली डिजाइन चेयर योगा करवाते हैं. उसका एक आसन मैं आपके साथ करती हूँ. अपने दोनों फिंगर्स को डवटेल कर लीजिए और अपने जो आपका ब्रिज ऑफ नेक है ना वहां पर रख लीजिए. वो सारे लोग जिनको अभी भी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कर सकते हैं. लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस भरते हुए खोल लीजिए अपनी एल्बोस को जितना खोल सकते हैं. खोलिए खोलिए अच्छे से. अब उसके बाद पीछे की तरफ चले जाइए जहां तक जा सकते हैं. सीलिंग को देखिए, उसके पीछे भी खोल सकते हैं तो खोल दीजिए. दिस इज एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डू ऑल डे. वो फॉरवर्ड बेंडिंग, वो जॉ लाइन को पूरे अच्छे से क्लेंच करके रखना और वो फोरहेड पे फ्राउनिंग करना, ये उसका पूरा ऑपोजिट है. और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाइए. सिंपल पोज है बट बहुत इफेक्टिव. आपने देखा किस तरह से आपके पेक्टोरल्स, चेस्ट, शोल्डर्स, रोटर्स सब खुल गए. और जस्ट बिकॉज आप इसको सपोर्ट्स के साथ कर रहे हैं तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. मतलब आप वहां तक ही जाएंगे जहां तक आप खोल पा रहे हैं,
1: जितना आपसे हो पाए वही क्षमता के हिसाब से आप.
0: हाँ, तो इट्स लाइक अ सीटेड भुजंग. आपने पूरा कोबरा पोज कर लिया, खोल लिया अपने चेस्ट को, लंग्स को, लंबी गहरी सांस भी भर ली, सब कुछ एंगेज कर लिया.
1: बिल्कुल. चलिए एक और आसन बताइए हमें.
0: अच्छा, तो इसी के साथ हम बैठे बैठे ट्विस्ट पोज करते हैं. वो सभी लोग जिनको स्टमक की प्रॉब्लम्स रहती है ना, एसिडिटी, गैस, उन सबके लिए है. आप अपनी पाओ की जो एड़ी है उसको नीचे दबा लीजिए. नॉट नेसेसरली कि आपके हिप्स को उस पर रेस्ट करना है, जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए. और ऊपर वाले पाओ को बस घुटनों के पास ले आइए. ठीक है, ये जो पूरा थाइस का हिस्सा है ना, इसको पेट को दबा दीजिए इससे. हाँ, दबा दीजिए अच्छे से. अब एल्बो को इसके ऊपर से निकाल दीजिए, यही वाला एल्बो. हाँ, चाहे तो पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, नथिंग लाइक दिस, आराम से. और उसके बाद ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ आपको अपना वेस्ट पूरा ट्विस्ट करना है. तो आप इस आसन को देखकर समझ पा रहे हैं, दिस इज लाइक द मोस्ट फेवरेट पोज फॉर बॉडी डिटॉक्स. आजकल डिटॉक्स बहुत फैशन में है ना, तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है. वापिस आ जाइए. तो आप देखिए आपने पूरे अपने शरीर को ट्विस्ट कर दिया,
1: निचोड़ दिया.
0: हाँ, exactly, जैसे कपड़ों को धोते हुए आप निचोड़ देते हैं ना,
1: वैसे
0: आपने अपने सारे सोचिए, आपने स्टमक, लिवर, पैनक्रियास सबको एक्टिवेट कर दिया पूरा निचोड़ के. इतना सिंपल पोज है.
1: और अच्छा, इसी में मुझे आपसे पूछना है क्योंकि बहुत लोग यहीं तक रुक जाते हैं, क्या इसका सेकंड आई मीन दोनों तरफ करना है?
0: हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी है. और इनफैक्ट दूसरी साइड में आपको उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनके घुटनों में पेन रहता है ना, वो उनको लगता है कि वो पांव सीधा या उल्टा नहीं कर सकते हैं. ये आप सीधा भी रख सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं, वक्र आसन की तरह भी कर सकते हैं आप इसको. जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ट्विस्ट करके होल्ड करना है. पूरा पीछे देखेंगे और अपने वेस्ट को ना दबा देंगे. आपका जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसको अपने थाइस से दबाकर पीछे की तरफ देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे. सिंपल पोज है बट बहुत इफेक्टिव है. डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, इन सब बीमारियों के लिए ये एक इलाज है. दवाइयां मत छोड़ दीजिएगा एकदम से.
1: नहीं, मुझे तो बैक के लिए भी बहुत अच्छा लगा.
0: आपको अच्छा लगा ना? सिंपल, ये जो सिंपल ये वाले चेयर के ट्विस्ट है उसी का एक अच्छा वेरिएशन है. अच्छा, उसमें हमने स्टमक को भी ऐड कर दिया.
1: बिल्कुल. चलिए डॉक्टर अक्षय, अब आपके पास आऊंगी. कोई एक ऐसा आसन या प्राणायाम जिसको हमें अपने पूरी दिनचर्या में इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसा बताइएगा कि चाहे आप घर पे हो, दफ्तर है, कहीं भी, जो हम कर सकते हैं.
2: अलोम विलोम, ऑल्टरनेट ऑस्ट्रल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, दैट्स माय फेवरेट और सबसे सुंदर, टिकाऊ, कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु का, किसी भी अवस्था में वो कर सकता है. पर मैं एक बात अगर आप अलाउ करो तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे से हमेशा आपको एक अलग ही चीज और उससे अलग ही मिलेगी कहने को. तो और लोग तो आपका अच्छे अच्छे से बता रहे हैं, आपके सारे दर्शक. दर्शक और हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जानना आवश्यक है, जैसे कि वो अच्छे डॉक्टर चयन करते हैं, अच्छे लॉयर को ढूंढते हैं, और आपको पता है कितने महंगे महंगे कोच होते हैं ना, इतने एथलीट्स के, बैडमिंटन प्लेयर्स के, एक अच्छा घर भी हम बड़े इधर उधर जाके ढूंढते हैं. तो हमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट लेना है तो एक अच्छा योगा ट्रेनर लेना होगा. और वो योगा ट्रेनर कैसे लेंगे, भारत सरकार ने उसका बड़ा अच्छा तरीका निकाला है. लेवल 1 ट्रेनिंग, लेवल 2 ट्रेनर, लेवल 3, इसके एग्जाम होते हैं. तीन तरह से लोगों को देखा जाता है, उसकी थ्योरिटिकल नॉलेज कितनी है, योग शास्त्रों की, योग सूत्रों की, ग्रैंड संहिता की, ये सब देखा जाता है. दूसरा, वो कैसे टीचर है, टीचिंग का उनका टेस्ट लिया जाता है. तीसरा, परफॉर्म कैसे करते हैं, वो किया जाता है. ये लोग BNYS, PhD, MDs होते हैं. तो आप जितना अच्छा ट्रेनर लोगे ना
1: बिल्कुल उतना ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब वक्त अभी हमारे पास इतना ही है, तो योगा डे पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही। देखिए फिटनेस लाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को फिटनेस के लिए उस रूटीन में लेकर आना ज्यादा टफ है। तो अपने मन को मजबूत कीजिए। मीनल ने बहुत अच्छी बात कही थी, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। अपने मन को मजबूत कीजिए और अपनी विल पावर स्ट्रांग कीजिए कि आपको घर से निकलने से कम 30 मिनट खुद को देने हैं, अपने आप को देने हैं। शरीर फिट रहेगा, मन भी फिट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए तमाम खास मेहमानों को। तो अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: और अब बात पहाड़ों की रानी शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज सबसे पहले बात करेंगे आवाज की, जिसने हमारे दिलों में 200 साल पुरानी कचौड़ी गली को फिर से आबाद कर दिया है। तो वो कौन सा गाना है, इसको लेकर आज हम आगे चर्चा करेंगे।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, कचौड़ी गली को लेकर बात तो करेंगे और जिन्होंने अपनी आवाज दी है उत्पल जी, उनसे भी मुलाकात होगी, जानेंगे कचौड़ी गली के बारे में। लेकिन इसके अलावा केवल बात लोकगीतों की नहीं होगी, बल्कि उस ट्रिक की भी होगी जिसे जानकर आप भूलना भूल जाएंगे। अगर आपको भी कुछ याद रखने में दिक्कत होती है या आप जरूरी बातें जल्दी भूल जाते हैं, तो हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनके पास कुछ भी याद रखने की कमाल की टेक्निक है।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आप कुछ भूलें या ना भूलें, लेकिन धुरंधर के क्रेज को भूलना अभी भी मुश्किल है। धुरंधर फिल्म की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल दिए और अब ये फिल्म थिएटर से निकलकर IIM अहमदाबाद पहुंच रही है। जी हां, प्रोफेसर सांख्यिकी पढ़ाने के लिए फिल्म के सीन को क्लासरूम में दिखा रहे हैं, ये खबर भी देखेंगे। लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। नागपुर में एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन, रक्षा मंत्री ने समारोह में की शिरकत, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को मिलेगी रफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को कंपोजिट फर्मियॉन्स खोज के लिए मिला वुल्फ पुरस्कार, यरूशलम में इसराइल के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर।
3: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज चाय की चर्चा की शुरुआत थोड़ी सुरीली होने वाली है, क्योंकि बात होगी गीत की, संगीत की। तो कभी कभी देखिए, कोई गीत जो है सिर्फ दरअसल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, उसके शब्द कानों से ज्यादा दिल तक पहुंचते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक लोकगीत सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। इंस्टाग्राम के रील्स हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो या फिर फेसबुक की फीड, हर जगह कोक स्टूडियो भारत के नए गीत कचौड़ी गली की धूम।
4: दरअसल यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर चुका कचौड़ी गली आज लोक संगीत की ताकत बनकर उभरा है। एक ऐसा गीत जो गांव की चौपाल से निकलकर डिजिटल दुनिया के करोड़ों दिलों तक पहुंच गया है। रेखा भारद्वाज और उत्पल उदित की मिट्टी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को ऐसा रंग दिया कि सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास बन गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको इससे गाने वाले उत्पल से मिल पाएंगे।
8: सेजिया पे लोटे काला नाग, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो, इन अल्फाजों में केवल सुर नहीं है बल्कि विरह का बहाव है। एक औरत का दर्द जिसका पति रोजी रोटी की तलाश में मिर्जापुर गया है। घर सूना है, आंगन सूना है और कचौड़ी गली भी सूनी है। यही विरह, यही इंतजार इस गीत की आत्मा है।
9: कचौड़ी गली सुन कई लपल मिर्जापुर।
8: ये लोक गीत कई बार गाया गया, दोहराया गया, लेकिन हर बार इसकी मिठास और इस गीत में छिपा दर्द नए रूप में सामने आया। ये गीत उस दौर का है जब पूर्वांचल और बिहार के हजारों लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर दूसरे शहरों की ओर जाते थे और पीछे छूट जाती थी उनकी पत्नियां, उनकी प्रेमिकाएं और उनका इंतजार।
10: से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल।
8: कोक स्टूडियो भारत ने इसी गीत को नई पीढ़ी के सामने नए अंदाज में पेश किया। रेखा भारद्वाज की आवाज और बिहार के लोक गायक उत्पल उदित की माटी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया है। इस गाने को YouTube पर अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सहरसा से बनारस तक हारमोनियम के पहले सुर से कोक स्टूडियो के मंच तक आज उत्पल उदित नए मिशन पर है। वो फोक को सहेज रहे हैं, उसे नई जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। कोक स्टूडियो भारत पर आए कचौड़ी गली ने उत्पल को न केवल नई पहचान दी है बल्कि उन्हें लोक गीतों का नया सितारा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: तो चलिए कोक स्टूडियो भारत पर जिन उत्पल उदित ने कचौड़ी गली का स्वाद फिर से आबाद किया है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उत्पल आपका जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करें, हम शुरुआत इन्हीं दो लाइनों के साथ करेंगे जो आजकल एक सेंसेशन बना हुआ है हर जगह।
3: उत्पल आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, देखिए अनम्यूट कर लीजिए आप।
12: ओके ओके
11: जी।
12: हेलो एवरीवन, पहले तो बहुत शुक्रिया जी एंटी का टू फॉर हैविंग मी हियर। एंड इतना प्यार कचौड़ी गली को मिलना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक तो। और बहुत शुक्रिया।
3: बिल्कुल उत्पल, चूंकि बिहार की मिट्टी से आते हैं आप, सहरसा से आते हैं, मैं खुद मिथिलांचल से हूँ, हमने सुना है भोजपुरी में तो आप गाते ही हैं, मैथिली गीत भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो दो लाइन सबसे पहले कचौड़ी गली आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि आजकल हर जगह इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेकर हर जगह आप ही गर्दा मचाए हुए हैं, तो पहले ये कचौड़ी गली सुनाइए और फिर हम मैथिली में कुछ सुनेंगे।
12: बिल्कुल, कचौड़ी गली।
3: बिल्कुल बिल्कुल।

मिर्जापुर कैला तुले आके वो कदम भी।

0: की बात बहुत खूब उत्पल एक आर कनी मिथिला में कनी एक गाना सुना दिया
1: बहुत विद्यापति जी के एक गीत है पिया मोर बालक
0: बिल्कुल सुनाओ

0: बहुत सुंदर गाया आपने उत्पल। इसी के साथ मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कचौड़ी गली की सक्सेस के लिए, और इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि जो बिहारी गाने हैं उनको आप दुनिया भर में मशहूर करें और दुनिया भर में प्रचलित हो, इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी सोच क्या है?
1: मोटिवेशन सबसे बड़ा ये रहा कि लोकगीत के पीछे, कि आप अगर कहीं भी जाएं बिहार से बाहर, तो जिस तरह से आप बिहारी म्यूजिक को या फिर भोजपुरी म्यूजिक को देखा जाता था, वो एक बहुत चिंता का विषय था और मेरे मन में हमेशा था कि इसको बदलना है। और
0: जी
1: क्योंकि शुरुआत मतलब बॉलीवुड कवर से ही थी, मगर एक मोमेंट पे ये भी आया दिमाग में कि मतलब फोक मेन स्ट्रीम क्यों नहीं हो सकता है, और अगर फोक मेन स्ट्रीम होगा तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये भी एक उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ में।
0: उत्पल, अभी हाल फिलहाल में देखिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं अगर हम भोजपुरी गानों की बात करें, लेकिन हाल फिलहाल में ये भी खबर आई कि ये तय किया गया है कि उसमें अश्लील कंटेंट या भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, आप जो गा रहे हैं भले ही हम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वो उस म्यूजिक के साथ कहीं ना कहीं हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: क्या क्या ये एक नई शुरुआत है वापस से? और दूसरी बात, देखिए कोक स्टूडियो में जब आपने कहा कि फोक म्यूजिक को ले जाना, हम पंजाबी फोक म्यूजिक, सूफी फोक म्यूजिक सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने इस म्यूजिक की बात की है, जिसमें चाहे वो मैथिली म्यूजिक हो या भोजपुरी हो, दोनों चीजें जब यहाँ पर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया भी इसको देखती है। इसके पीछे आपकी सोच क्या है? यहां तक पहुंचने का सफर भी साथ ही साथ बताइए कैसा रहा?
1: सफर तो बहुत अच्छा रहा। और मतलब पहले तो बहुत स्केप्टिकल थे, क्योंकि एक ऐसा कुछ करना जो मतलब जिसका कंजप्शन बहुत कम हो चुका है, बट इसको एक नए साउंड में प्रेजेंट किया गया, मतलब पहली बार हमको लगता है कि इस ऐसे साउंड में, ऐसे सेटअप में इस चीज को परफॉर्म किया गया है, और जितना प्यार मिल रहा है ये बहुत मतलब मेरे लिए बड़ी बात है। और ये जैसे ही ये गाना आया ना, ये गाना कम फील हुआ, ये मतलब एक नया फेस्टिवल, नया त्योहार, एक नया सेलिब्रेशन, एक वी कैन कॉल इट अ न्यू एरा फॉर बिहारी एंड भोजपुरी
0: बिल्कुल
1: फोक म्यूजिक।
0: बिल्कुल उत्पल, खास करके मुझे लगता है कि जब से कोक स्टूडियो, इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म ही लोगों के सामने आया है, तो जितनी अब कह लीजिए जो फोक म्यूजिक है उसको यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक ऐसा मंच है हम कह सकते हैं। इसीलिए हमने पंजाबी हो, सूफी हो और तमाम तरह के जो रीजनल लैंग्वेज है उनके गानों को यहाँ पे हमने सुना है। अब रेखा भारद्वाज के साथ आपने गाया, रेखा भारद्वाज अपने आप में बहुत बड़ा नाम रही है, उनके गाने बहुत ही फेमस रहे हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छे गाने उनके एक से एक रहे हैं, लेकिन आपका कैसे ऐसा उनसे रहा इंटरेक्शन, और जब म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा था, जब ये गाना पूरा रिकॉर्ड हो रहा था, उस समय का कुछ एक्सपीरियंस बताइए।
1: पहले तो स्टूडियो में जब आप पहली बार इतने बड़े दिग्गज कलाकार से मिलते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, मगर वो बस स्टूडियो के बाहर तक था। जैसे ही स्टूडियो एंटर किए, पहले पहला तो ये भी होता है, एज अ म्यूजिशियन आपका दायित्व तो बनता है, सबसे पहला आपका काम होता है, और जैसा नेचर है रेखा भारद्वाज जी का, वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग है। मतलब वो जिस तरह से बात करती हैं, मतलब हमको याद है पहली बार हम लोग मिले थे तो हम लोग 1.5 घंटे बस आपस में बात किए, मतलब अबाउट लाइफ, अबाउट हमारा जो फोक म्यूजिक है, ज्यादातर म्यूजिक के बारे में बात हुआ, तो वो बहुत कंफर्टिंग माहौल था स्टूडियो में।
0: अगर इस कचौड़ी गली की हम बात करें तो उसमें कौन सा ऐसा पैरा है, कौन सा ऐसा अंतरा है जो आपका फेवरेट हो, आप हमें सुनाना चाहें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें?
1: क्योंकि मेरा बहुत ध्यान है वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, तो इसमें एक जो आखिरी जो लाइन है वो है बहुत, वो रेज निकल के आता है और वो फील्स वेरी एम्पावरिंग, तो वो ये लाइन है कि न्यू

0: बहादित गोर वन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बल से जिया पे लोट काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल।
1: क्या बात क्या बात, बहुत खूब।
0: थैंक यू सो मच
1: उत्पल। ये जो आपने 200 साल पुराना जो लोकगीत एक बार फिर से इसको गुनगुनाया है, बहुत सुंदर। और इसने सोशल मीडिया पर जो धमाल मचाया हुआ है, जो रिएक्शन अब यूजर से आ रहा है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
0: मतलब सच बताया तो एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब ऐसा लाइफ का फ्लिप हो जाने वाला मोमेंट है। बिकॉज पहचाना जानना एक चीज है
1: जी
0: और अपने फोक के लिए पहचाना जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक तो बहुत बहुत बड़ा ये हुआ कि रिवाइवल हुआ, और जब कचौड़ी गली आया तो नहीं पता था इतना फैल जाएगा, मतलब हर जहां जाए वहां बज रहा है। मतलब एक छोटा सा किस्सा है कि हम अभी बनारस गए थे और हम जहां ठहरे थे तो वहां पे जो इंसान नहा रहे थे वो मतलब कचौड़ी गली बजा रहे थे, और वो जैसे ही निकले और वो हमको देखे एंड ही वाज लाइक ये क्या हो गया। तो ये बहुत एक प्यारा बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स अभी हो रहे हैं साथ में।
1: अब इसी के साथ ना दर्शकों को बहुत उम्मीदें अब आपसे होंगी आगे भी, तो कुछ आगे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं?
0: फ्यूचर प्लान्स ये है कि मतलब जो यहाँ के जो बिहार के जो धरोहर हैं, जैसे अगर मिथिला से ले ले बात करें तो महाकवि विद्यापति हैं, अगर भोजपुरी से ले ले तो महेंद्र मिश्र जी हैं, भिखारी ठाकुर जी हैं जो एक टाइम पे विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं भोजपुरी लिटरेचर के।
2: और एकटा उत्पल अहाँ एकटा अपन पसंदीदा गाना गाओ जे अहाँ के नीक लगे है।
0: मैथिली फोक
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे सबक एकटा गीत छे जैसे सब कुछ शुरू है छे एंड इट इज कॉल्ड जय जय भैरवी। मतलब
2: अरे हमरा सबके घर आंगन में यही बजे छे रोज सुबह। हाँ
0: बिल्कुल। तो

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जल्द हम आपके नए गीतों को भी सुनना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। यशराज फिल्म्स हमेशा से ही अपनी फिल्मों की सरप्राइज एलिमेंट और सीक्रेसी के लिए जाना जाता रहा है, अब तक का इतिहास भी गवाह है। पहले धमाकेदार ट्रेलर आता था, फिर रिलीज के वक्त किसी बड़े सुपरस्टार का कैमियो दर्शकों के होश उड़ा देता था, लेकिन इस बार आदित्य चोपड़ा ने ऐसा पासा फेंका है जिसने दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षकों को भी हैरान कर दिया है।
2: और अपनी आने वाली मेगा एक्शन थ्रिलर अल्फा के साथ यशराज फिल्म्स ने नया दांव खेला है। आपको बता दें, अब तक सस्पेंस छिपाने वाली कंपनी ने इस बार फिल्म के ट्रेलर में ही वो तुरूप का इक्का खेल दिया है।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।

0: यश राज फिल्म्स भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि ट्रेंड बनाए हैं। कभी रोमांस का नया दौर शुरू किया, कभी एक्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और जब जब बात उनके स्पाई यूनिवर्स की आती है तो दर्शकों की उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं।
1: ये कहानी कैसे खत्म हुई? पर इस बार
2: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: लेकिन इस बार यशराज फिल्म्स ने सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं बल्कि अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी से भी सभी को चौंका दिया है। अब तक दर्शक यही देखते आए थे कि यशराज अपनी फिल्मों के बड़े कैमियो और सरप्राइज एलिमेंट्स को रिलीज तक छिपा कर रखते हैं। ट्रेलर में कहानी की झलक मिलती थी और सिनेमा घरों में जाकर फैंस को मिलता था बड़ा सरप्राइज। लेकिन फिल्म अल्फा के साथ YRF ने खेल ही बदल दिया है।
3: अल्फा
0: इस बार ट्रेलर में ही उस बड़े सरप्राइज की झलक दे दी गई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में कुछ सेकंड की एक झलक दिखाई देती है, चेहरा पूरी तरह सामने नहीं आता, डायलॉग्स भी बहुत कम हैं, लेकिन आंखें सब कुछ कह देती हैं। ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक रोशन की हैं। दिलचस्प बात ये है कि यशराज फिल्म्स ने पहली बार अपनी सबसे बड़े सरप्राइज को पूरी तरह छिपाने के बजाय उसकी झलक पहले ही दिखा दी है। ये रणनीति दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ लोग हैरान हैं कि YRF ने अपना तुरुप का इक्का पहले ही क्यों दिखा दिया, तो दूसरी तरफ फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें ऋतिक रोशन की वापसी का संकेत मिल चुका है। कुल मिलाकर अल्फा का ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का प्रमोशनल वीडियो नहीं बल्कि एक बड़े सिनेमाई इवेंट का ऐलान है। आलिया भट्ट और शर्वरी बाग का साहस, बॉबी देओल का खौफनाक अंदाज, अनिल कपूर की दमदार मौजूदगी और सबसे बढ़कर ऋतिक रोशन के कबीर की झलक, इन सब ने मिलकर दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेलर में दिखाई गई ये झलक पर्दे पर कितना बड़ा धमाका करती है। लेकिन इतना तय है कि अल्फा के साथ यशराज फिल्म्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरप्राइज देना उन्हें खूब आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उन्होंने सरप्राइज को पर्दे के पीछे नहीं ट्रेलर के भीतर छिपाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: एक तरफ दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस रेस में दो ऐसे युवाओं को सुर्खियों में ला दिया है जिनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है।
5: बिल्कुल, भारतीय मूल के अमन सांगर और पाकिस्तानी मूल के सुअले आसिफ, आज इन दोनों नामों की चर्चा ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में खूब हो रही है। दोनों ने मिलकर AI टूल की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को एलन मस्क ने $60 अरब में खरीद लिया और इस डील ने उन्हें रातों रात अरबपति बना दिया।
6: अरबों की डील और एलन मस्क के साथ नाम जुड़ने से ये दोनों चेहरे सुर्खियों में हैं। भारतीय मूल के अमन सांगर और पाकिस्तान के सुअले आसिफ ने अपने करियर की शुरुआत में ही वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी ख्वाहिश आईटी सेक्टर में हर शख्स को होती है। एलन मस्क ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कर्सर AI की पेरेंट कंपनी एनिस्फेयर को खरीद लिया है। अमन और आसिफ दोनों एनिस्फेयर कंपनी से जुड़े हैं। दोनों के पास कंपनी के शेयर हैं और इस सौदे ने अमन और आसिफ दोनों को अरबपति बना दिया। एनिस्फेयर कंपनी का कर्सर AI टूल कंप्यूटर प्रोग्रामों को कोड लिखने में मदद करता है। कंपनी का दावा है कि दुनिया भर में लाखों सॉफ्टवेयर डेवलपर इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। एनवीडिया, एडोबी, उबर, शॉपिफाई और पेपॉल जैसे बड़ी कंपनियां भी कर्सर AI का ही इस्तेमाल कर रही हैं। एनिस्फेयर कंपनी को एलन मस्क ने $60 अरब यानी करीब 5,00,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। अमन और आसिफ दोनों के पास कंपनी के 4.5% शेयर हैं। इस डील से दोनों को 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस सौदे ने दोनों नौजवानों को दुनिया के सबसे अमीर युवाओं की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये सौदा ऑल स्टॉक डील है, यानी अमन और आसिफ को ये रकम कैश में नहीं बल्कि SpaceX के शेयर के तौर पर मिलेगी। इस डील के बाद भारतीय मूल के अमन सांगर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अमन सांगर रेनस्वेयर बनाने वाले लोगों में शामिल हैं। उनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। अमन के पिता ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। अमन ने 14 साल की उम्र से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। MIT में पढ़ाई के दौरान अमन की मुलाकात पाकिस्तानी मूल के आसिफ से हुई। MIT में अमन और आसिफ ने दो और लोगों के साथ मिलकर रेनस्वेयर कंपनी बनाई। रेनस्वेयर बनाने से पहले अमन गूगल और U.com में काम करने के साथ ही AI की कंसल्टेंसी भी चला रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के महीने में रेनस्वेयर ने SpaceX को सेवाएं दी थी। उसी वक्त SpaceX ने कंपनी को खरीदने का विकल्प दिया। शुरुआत में सौदे की अनुमानित कीमत $19 अरब जताई गई थी, लेकिन एलन मस्क ने $60 अरब में रेनस्वेयर को खरीद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मचाएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसी ट्रिक जिससे आप भूलना तक भूल जाएंगे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
9: After multiple assassination attempts, they can't even get...
10: They're reliable.
11: Always when I need them.
8: To live sports action.
12: One hand jam by LeBron on the break.
13: That's another play, Steph Curry.
8: And your favorite music.
14: Well, the dawn begins to crack.
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाए। बाद चाय पर चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन।
4: ज्यादातर बच्चे इतिहास की तारीखें, साइंस के फॉर्मूले और पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए घंटों रट्टा मारते हैं और एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हाल ये है कि आज के दौर में मोबाइल नंबर्स भी लोगों को याद नहीं रहते।
5: आपको बता दें कि J&T की टीम ने देश के जाने माने ब्रेन साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा से मुलाकात की है। विनोद शर्मा ने एक ऐसी मेमोरी टेक्निक इजाद की है कि चाहे मोबाइल नंबर हो या फिर कोई पिन कोड, सभी को याद रखना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं।
6: बेसिक सवाल है कि जादू कैसे होता है, कैसे हुआ वो?
7: देखिए, इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पीपल लुक फॉर मैजिक नॉट लॉजिक, बट ऑलवेज रिमेम्बर एवरी मैजिक हैज अ लॉजिक। तो ये मैजिक के अंदर एक लॉजिक है जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं।
6: मैजिक देख चुके हैं, लॉजिक देखते हैं।
7: देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो विजुअल्स को याद रखता है, चित्रों को याद रखता है, संरचनाओं को याद रखता है, ऑब्जेक्ट्स को याद रखता है। हमारे ब्रेन को ज्यादा वो याद रखता है जो थ्री डायमेंशनली उसे दिखता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक वर्ड में बोलता हूं अमिताभ बच्चन तो आपको वो दिखते हैं, अगर मैं कहता हूं एरोप्लेन तो आपको दिखता है, पर अगर मैं कहता हूं प्रायोरिटी, ये भी एक वर्ड है पर इसका मीनिंग तो पता है पर दिख नहीं रहा है ना, इसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है बस उन्हें ही रिवाइज करना पड़ता है, वही याद नहीं रहती। जो विजुअलाइज्ड होती है, जो पिक्चर होती है, हमें बचपन की कहानियां याद है, हमें मूवीज याद रहती है, जबकि हम उन्हें याद करने के लिए देखते भी नहीं है। पढ़ाई याद करने के लिए करते फिर भी याद नहीं होती है, क्योंकि मूवीज विजुअल होती है। दो फैक्टर है, ध्यान सुनिएगा, पहला है विजुअलाइजेशन और दूसरा है एसोसिएशन, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले चित्र में कन्वर्ट कर दो और उस चित्र को उसके बाद आपस में जोड़ लो। आपस में जोड़ने से चीजें याद रहती हैं। इसको करने से पहले मैं वो सीक्रेट बताता हूं कि नंबर्स को कैसे याद किया, क्वेश्चन वही है तो आंसर उसी पे आते हैं। देखिए, एक होता है नंबर, जो नंबर 0 से लेकर 9 से बने हैं पूरे वर्ल्ड के, यस और नो, और दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो A to Z के बीच में है, यस और नो। इसका मतलब जितने भी वर्ड है, जो भी कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो दिखता है, उसका कोई ना कोई नाम है और वो नाम A to Z के बीच में ही बना है, राइट? जैसे आपका नाम है वो भी A to Z के बीच में है, मेरा नाम भी A to Z के बीच में है। हम नंबर और नाम को आपस में जोड़ना सीखते हैं। जैसे कि 0 इसके लिए लिखते हैं S, 1 इसके लिए लिख देते हैं T या D, 2 इसके लिए हम लिख देते हैं N, 3 इसके लिए हम लिख देते हैं M, 4 इसके लिए हम कर देते हैं R, 5 के लिए हम L लिख देते हैं, 6 के लिए हम J या G कर देते हैं, 7 यहां से कर लेता हूं मैं, 7 के लिए हम K, 8 के लिए हम F, 9 के लिए P या B, और 0 से 9 कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल है कि ये लेटर्स हमने क्यों लिखे? इसे निमोनिक साइंस का एक फोनिक मेथड होता है जिसके अंदर हम नंबर को किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं। आप लेटर चेंज करके अपने भी बना सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड बना रखे हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है। ढंग से देखिए, इसमें कोई वॉवल नहीं है, और दुनिया के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट और वॉवल से मिलके ही वर्ड बनता है। तो हम जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल लगाते हैं तो शब्द बन जाता है, राइट? जैसे कि P और P, ये 2 लेटर हैं, हम बीच में वॉवल लगा दिया A, तो पापा बन गया, है ना? T, P, ये वर्ड लेटर हैं, इसके बीच में लगा दिया A, तो टैप बन गया। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट से वॉवल जोड़ करके हम कोई वर्ड बना सकते हैं, और वर्ड बन गया तो ये नंबर भी दिखने लग जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक वर्ड लेते हैं, मान लीजिए 6 और 9, तो 6 के लिए जे है हमारे पास और 9 के लिए पी है, तो यहां पर अब 6 9 नहीं लिखेंगे, अपन जे और पी लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जे और पी में वॉवल लगा के कोई वर्ड बनाया जा सकता है? बताइए, बच्चे बड़े क्रिएटिव होते, तुरंत बना लेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसके बीच में एक वॉवल लगाया ई, तो बन गया जीप। 6 9 हमें नहीं नजर आ रहा है ब्रेन में, लेकिन जब मैं जीप बोल रहा हूं तो नजर आ रहा है, राइट।
1: और अब बात करते हैं योग दिवस की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर देश और दुनिया में उत्साह अपने चरम पर है। कई शहरों में अभी से योग को लेकर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, लोग अभी से योगा करना शुरू हो चुके हैं।
4: पश्चिमी मिदनापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। शहर शहर हो रहे इन कार्यक्रमों का मकसद योग के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश देना है।

0: पहुंच रही है। नावों से पानी के बीच योग मुद्राओं जैसी आकृति बनाई जाएगी। इस इवेंट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की भी तैयारी है।
1: तो वही इंटरनेशनल योग दिवस पर 500 से ज्यादा नावें उतरेंगी। हुगली नदी पर योगा डे पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। आपको बता दें बाबूघाट पर 500 से ज्यादा टूरिस्ट और यात्री नावें होंगी और प्रोग्राम के लिए सुंदरबन में भी नावें हुगली नदी पहुंच रहे हैं। नावों से पानी के बीच योग मुद्राओं जैसी आकृति दिखाई देने वाली है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस इवेंट को शामिल करने की तैयारी भी है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे थिएटर से आईआईएम के क्लासरूम पहुंच गई धुरंधर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची

0: खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आपको बता दें, सुनील ग्रोवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे खुद कॉमेडियन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है और इसमें देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर एक घाट के किनारे आम श्रद्धालुओं के बीच फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दिए हैं। वो जमीन पर ही लेटे हुए हैं और पास ही चप्पल उतरी हुई है। अपने इस सादगी भरे अंदाज में उन्होंने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया है।
2: सुनील ग्रोवर ने इस वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन लिखा है, तारे जमीन पर। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर के चेहरे पर कितना सुकून है। घाट का किनारा, खुले आसमान के नीचे वो तसल्ली से सो रहे हैं। इस वीडियो के साथ सुनील ने धार्मिक गाना जय महाकाल लगाया है। कहा जा रहा है कि सुनील ग्रोवर यहां सोए हैं, वो ऋषिकेश का घाट है।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, फिल्में सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, कई बार वो पढ़ाई और रिसर्च का हिस्सा भी बन जाती है। ऐसा ही दिलचस्प नजारा देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIM अहमदाबाद में देखने को मिला। यहाँ पर एक प्रोफेसर ने धुरंधर के एक सीन को रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। क्लासरूम में फिल्म का सीन प्रोजेक्टर पर चलाया गया और उसके डायलॉग्स के जरिए छात्रों को जटिल सांख्यिकीय अवधारणाएं समझाई गई।
2: प्रोफेसर ने फिल्म के मशहूर डायलॉग विन लियारी विन पाकिस्तान को क्लस्टर सैंपलिंग से जोड़ा है, जबकि बलूच गैंग एंड पठान गैंग्स आर फंडामेंटली डिफरेंट ग्रुप्स के जरिए स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट समझाया है। इस अनोखे लेक्चर का वीडियो IIM अहमदाबाद के छात्र प्रखर सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे मंडे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं, महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: यू कैन नेवर हैव टू मेनी टूल्स। शॉप DeWalt डील्स एट Lowe's। Get a free select DeWalt 20 volt max power tool when you buy a select 20 volt max 5 amp hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20 volt max 8 amp hour battery when you buy a DeWalt 10 inch 20 volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
5: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: भारत के GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, पीएम मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोल शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को कंपोजिट फर्मियोन्स खोज के लिए मिला वुल्फ पुरस्कार। यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए। और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंसगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापन है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
1: जहाँ पर भोजन वगैरह,
2: जहाँ पर उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेज जो है
1: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है, वो लंगर फैसिलिटी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
3: मैं यहाँ बज़ाते जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था। आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता आ रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
4: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है।
1: मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
4: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे कि मन में शांति आ रही कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार हैं और उनकी शक्ति पीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। जून से कामाख्या धाम में अम्बुबाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08 और 42 सेकंड पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है। प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुबासी महायोग होता है उसमें जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला चरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो चरण को महायोग बोलता है अम्बुबासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुबाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में से सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माताजी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माताजी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माताजी से जो भी कुछ मांगेगा तो माताजी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुबाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुबाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुबाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं? महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: भारत के GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, पीएम मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार, नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोल शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को कंपोजिट फर्मियोन्स खोज के लिए मिला वुल्फ पुरस्कार, यरूशलेम में इसराइल के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज, रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण। 8,000 वर्ग फीट में फैला है रामायण का वैक्स म्यूजियम, म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान के दिव्य रूपों की मिलेगी झलक, 50 चरित्रों के पुतलों से जीवंत होंगे रामायण कालीन दृश्य। परिक्रमा मार्ग पर बना म्यूजियम तीर्थयात्रियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, मिलेगा रामायण का जीवंत अनुभव, करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। आस्था और इतिहास का संगम बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम, रामायण की कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करेंगी मोम की प्रतिमाएं। रामायण के पात्रों के भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखा गया, पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र, नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में किया कन्या पूजन, इस दौरान कन्याओं को दिया विशेष उपहार। कामाख्या मंदिर से बच्चों को लेकर दिखा सीएम योगी का स्नेह, छोटी बच्ची को गोदी में खिलाते हुए नजर आए। कामाख्या धाम में सीएम योगी ने महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। रामनगरी अयोध्या में विकास की बयार, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का दौरा किया, राष्ट्रपति ने यहां ओंकारेश्वर महादेव मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। ओंकारेश्वर पहुंची राष्ट्रपति का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वागत किया, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायकों ने भी स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में लैवेंडर फेस्टिवल, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार प्रोजेक्ट का है मकसद। 1 अप्रैल से 17 जून के बीच 14.61% बढ़कर 5.21 लाख करोड़ हुआ नेट इनकम टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12% से बढ़कर हुआ 6 लाख करोड़ से ज्यादा। बिहार को मिलेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की सौगात, 1 जुलाई से प्रदेश में 211 नए कॉलेज खोलने की तैयारी, 1 प्रखंड 1 डिग्री कॉलेज योजना के तहत खुलेंगे कॉलेज। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी गुड न्यूज, नागपुर में 100वें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बूस्टर को दिखाई गई हरी झंडी। निजी क्षेत्र की कंपनी सोलर डिफेंस ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल के स्वदेशी बूस्टर का निर्माण, पहले रशिया से आयात करना पड़ता था सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर। भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ेगी क्षमता, कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट। पानी, दलदली जमीन, रेत और उथले तटीय इलाकों में आसानी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है होवरक्राफ्ट। कोस्ट गार्ड को मिले पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट में 50% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल, डील के तहत

समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के परिजन भी शामिल हुए। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर परिवारजन गर्व और खुशी से भावुक नजर आए। महाराष्ट्र के अकोला में बचपन के दो दोस्तों ने पहल के ने बदली गांव की सूरत। गांव वालों ने श्रमदान से नदी को नई जिंदगी दी। अकोला के चादुर गांव में नदी सफाई की दो दोस्तों की पहल बनी मुहिम। श्रमदान में हर उम्र वर्ग के लोग हुए शामिल। नदी को फिर से जिंदा करने में जुटा पूरा गांव। गांव वालों की कोशिशों को बाद में स्थानीय विधायक और प्रशासन का भी साथ मिला। अब जेसीबी पोकलेन और ट्रैक्टर के जरिए की जा रही नदी की सफाई। गांव वालों की मेहनत से जगी उम्मीद। नदी की सफाई से इलाके में जल संकट के समाधान की जगी आशा। सूखा प्रभावित इलाके के लिए मिसाल बने दो युवक। सूख चुकी नदी की जीवनधारा लौटने की जगाई उम्मीद। तभी पानी से लबालब भरी होती थी नदी। इक्कीस जून को होने वाले विश्व योग दिवस की भव्य तैयारी। दिल्ली के शिवनंदा योग वेदांता नटराज सेंटर में एक साथ कई लोग कर रहे हैं योग। महिलाओं में योग को लेकर खासा उत्साह। योग प्रेमियों ने साझा किया अपने अनुभव। सालों से योग कर रहे लोगों ने बताया लाइफ चेंजिंग। योग से लोगों के शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी आया बड़ा सुधार। योग की ट्रेनिंग देने वाले युवा ट्रेनर की उम्र महज 21 साल। श्रीनगर में भी युवा योग प्रैक्टिस सेशन में जमकर कर रहे अभ्यास। बच्चों युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी बढ़ी भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में से पहले अम्बाला में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग साधकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हो गया मुख्य कार्यक्रम। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कोलकाता योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे हजारों लोग। कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी। योग को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम का है मकसद। इस साल के योग दिवस कार्यक्रम की थीम होगी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया ऐलान। योग दिवस से पहले दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया योग अभ्यास। विशेषज्ञों ने होलिस्टिक वेलनेस और माइंडफुल लिविंग पर जोर दिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस से पहले मुंबई में योग किया। कार्यक्रम में श्रेय सिंह, अर्जुन कपूर, वीर पहाड़िया समेत कई हस्तियां शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के 12 जिलों में योग कार्यक्रम। राज्य योग बोर्ड की ओर से थीम आधारित कार्यक्रमों का आयोजन। जामनगर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना के जवानों ने योग किया। कार्यक्रम में गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा ने भी हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना के जवानों और अलग अलग संस्थानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड की नरेंद्र नगर में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुमारखेड़ा बाईपास से रामलीला मैदान तक हुई दौड़। योग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं, छात्रों के साथ स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह की शुरुआत। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में रोजाना किया जा रहा योग अभ्यास। स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और सरकारी दफ्तरों में रोजाना लगाए जा रहे योग के सेशन, ट्रेनिंग कैंप और जागरूकता अभियान। स्वस्थ तन मन के लिए योग को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना मकसद है। बुनियादी आसमानों प्राणायाम आसनों ध्यान की दी जा रही है ट्रेनिंग। इसी कड़ी में गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने गोरखपुर एम्स के डॉक्टर्स के साथ योगाभ्यास किया। सेना के जवानों ने लद्दाख में योग किया। स्टोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दुर्बुक में छात्रों के लिए लगाए गए जागरूकता और प्रैक्टिकल सेशन। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिर।

0: विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना की रखी आधारशिला। ये मशीन रक्षा और एरोस्पेस निर्माण में निभाएगी अहम भूमिका। बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम घटकों का उत्पादन होगा संभव। बागेश्वर की प्रेमा रावत का भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चयन, तो वहीं सुमटी गांव की बेटी के चयन पर स्थानीय लोगों ने जताया गर्व। रिलायंस की 49वीं AGM में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो IPO को मंजूरी दी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का स्वागत किया। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर 4 फिल्में हुई रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही है रिलीज। सिनेमाघरों में आज धूम मचाने को तैयार रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन का लीड रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य हैं लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज। ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी हुई रिलीज। तो वहीं वेटरन एक्टर सरानी जरीना वहाब खास तौर से दिखेंगे। जूने नाम के डॉग ने अमेरिका की जीत की भविष्यवाणी की। फीफा वर्ल्ड कप के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई एक्टिविटी। डॉग के सामने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 कप रखे गए थे। जूनियर सीधे अमेरिका वाले कप की तरफ गया और आइसक्रीम खा ली। इस एक्टिविटी के दौरान आया दिलचस्प और मजेदार ट्विस्ट। जूनियर डॉग के बाद ने बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले कप से भी आइसक्रीम खा ली। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होने वाले मैच को लेकर उत्साह बढ़ा। लोग इस भविष्यवाणी को मजे के तौर पर देख रहे हैं। कॉमेडियन ड्रू कैरे ने भी भविष्यवाणी की, अमेरिका के जीतने को ज्यादा बताई संभावनाएं। ताइवान के न्यू ताइपे में ड्रैगन बोट रेस ने जीता लोगों का दिल। परंपरा और खेल का दिखा शानदार संगम। ड्रम की ताल पर नाविकों ने दिखाया बेहतरीन तालमेल। खिलाड़ियों ने सामूहिक ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन किया। रंग बिरंगी ड्रैगन बोट्स रही आकर्षण का केंद्र। 500 मीटर बोट रेस ने दर्शकों को में जबरदस्त रोमांच भर दिया। कई टीमों ने जीत के लिए जोरदार मुकाबला किया। ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। हजारों साल पुरानी है ड्रैगन बोट फेस्टिवल की परंपरा। ड्रैगन बोट रेस आज ले चुकी है अंतर्राष्ट्रीय खेल का रूप।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं, महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
3: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
4: है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोन शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। देशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, दिल्ली से लेकर अंबाला तक योग को लेकर जागरूकता, श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल का विशेष आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारतीय विज्ञान का गौरव, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन को कंपोजिट फर्मियॉन्स खोज के लिए मिला वुल्फ पुरस्कार, यरूशलम में इजराइल के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए सरकार ने इस बार चाक चौबंद व्यवस्था की है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है नीट को क्लीन करने की तैयारी। प्रश्न पत्रों को पहुंचाने में वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं जो कि इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। दोबारा परीक्षा को लेकर इस बार सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोटा ख्वाबों का शहर है। भारत के दूर दराज इलाकों, गाँव और शहरों से छात्र अपने अरमानों की उड़ान भरने यहाँ आते हैं। इस शहर में समय भी मानो छात्रों के टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। यहाँ के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी।
2: कोटा के लोग भी नीट उम्मीदवारों की मदद के लिए आगे आए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को दोबारा परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं।
4: उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए और कोटा आए तो मैक्सिमम हॉस्टल्स वाले थे या बाकी लोग थे। कोचिंग्स की बात हम करें, सभी ने उनको हाथों हाथ लिया और सबके लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज मिल सकती है यहाँ पर वो सब प्रोवाइड की उनको।
2: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों में 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनटीए के साथ साथ प्रदेश के तमाम संबंधित विभागों और सभी एजेंसियों ने एग्जाम को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष करने के लिए कमर कस ली है। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा समेत तमाम उपकरण भेजना शुरू कर दिया है।
5: परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहां पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहां पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।
2: प्रश्न पत्रों को कहां रखा है इसकी जानकारी भी किसी से साझा नहीं की जा रही है और उसे गोपनीय रखा गया है। प्रश्न पत्रों की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई है जो स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक कड़े सुरक्षा घेरे में पेपर्स पहुंचाएंगे। पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं।
5: प्रदेश में करीब 44 साइबर कमांडोज तैयार किए गए हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया में या फिर डिजिटल दुनिया में किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि जो होगी उस पर नजर रखेंगे और वहीं पे तुरंत उसे जो है फ्लैग किया जाएगा।
2: परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और देश के सभी सेंटर्स तक प्रश्न पत्र पहुँचाने का काम शुरू हो चुका है। कोटा से मौसमी सिंह के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।
6: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल सीए फाइनल 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस बार पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है सीए में ऑल इंडिया टॉपर बने नूर सिंगला। आपको बता दें कि पंजाब के नूर सिंगला ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है जबकि डोंबिवली के छात्र ने तीसरी और जयपुर के प्रणव दूत ने 7वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया।
7: सीए फाइनल 2026 के नतीजों में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के घर में खुशियां ही खुशियां हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं तो कहीं परिवार और दोस्तों के साथ इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सफलता सिर्फ एक परीक्षा में मिले अंक नहीं बल्कि धैर्य, समर्पण और दृढ़ संकल्प की जीत की कहानी है। पंजाब के नूर सिंगला ने सीए फाइनल 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। नतीजों के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। नूर का कहना है कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें ये मुकाम दिलाया है।
8: स्टार्टिंग तो ये मेरा ऐसे था कि सीए तो बनना ही है बट टॉप द सीए बनना सी मैंने तब करके मैंने तैयारी उस तरीके नाली की थी, पढ़ाई वगैरह थे उस तरीके नाली फोकस किया। दिखता था बहुत आया कि कभी कभी पढ़ने मन नहीं करता, कभी वो नहीं करता बट अपन है कि अपना गोल अगर क्लियर हो तो अपन दिक्कत इतनी परेशान नहीं कर दिया।
7: बेटे की इस उपलब्धि पर माता पिता को गर्व है क्योंकि बेटे की वर्षों की मेहनत और समर्पण रंग लाई है।
9: दिन रात मेहनत की थी उसदे करके उसने आ मुकाम हासिल किया जी। सानू खुश है जी, किसी ने होनी नहीं सी, मेरे ते बेटे ने किया, मैं तो बहुत खुश है।
7: वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी खुशी का माहौल है। यहां के प्रतिभाशाली छात्र सोहन ने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है और इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है।
10: मैं दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ता था लास्ट के 5 to 6 मंथ्स में एंड मैं राइटिंग प्रैक्टिस एंड दोनों करता था, मतलब रीडिंग भी करता था, राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था, लेक्चर वैसा।
7: राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी खुशियों ने दस्तक दी है। जयपुर के प्रणव धूत ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की है।
11: बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पहले मार्क्स चेक करे और मार्क्स देख के मुझे लग गया था कि रैंक है इस मार्क्स पे, तो रातों रात रैंक चेक करी और बिल्कुल एक बार सन्नाटा सा हो गया 2 मिनट तक तो कि क्या क्या रिजल्ट है। और पापा मम्मी और दादी साथ थी मेरे और मेरी छोटी बहन, सब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रोने जैसे हो चुके थे, आंखों में आंसू थे बिल्कुल।
7: इन होनहार युवाओं की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि लगन, मेहनत और सही रणनीति के साथ किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है और आज ये युवा लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर से रिदम जैन और डोंबिवली से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश और दुनिया में योग के अनूठे और मनमोहक नजारे सामने आ रहे हैं। श्रीनगर की पोखरीवल झील में लोग पानी के बीच तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर योग कर रहे हैं तो कहीं पर रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, रन फॉर योग से स्वस्थ जीवन शैली का संदेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में उत्साह चरम पर है। कई शहरों में अभी से योग को लेकर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें सितारों से लेकर आम लोगों तक बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं।

0: योग जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाता है। योग जिसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया जाए तो शरीर की आधी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर में लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प ले रहे हैं। कहीं सामूहिक योगाभ्यास हो रहा है तो कहीं योग के जरिए फिट और निरोग रहने का संदेश दिया जा रहा है। श्रीनगर में खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पूरे हफ्ते योग अभ्यास कर रहे हैं ताकि फिट रहने की मुहिम चलाई जा सके। श्रीनगर में पोखरीबल झील में खिलाड़ियों ने तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर योगासन कर एक अनूठी मिसाल पेश की।
1: इससे यही मकसद था कि वाटर बॉडीज को योगा का प्लेग्राउंड बनाना, तो आज इसी यही मकसद था इस सेशन को कराने के लिए।
0: वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े एथलीट्स ने इस फ्लोटिंग योगा डेमोंस्ट्रेशन के जरिए ये संदेश दिया कि योग केवल जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि इसे किसी भी वातावरण में अपनाया जा सकता है। ऐसे ही योग अभ्यास की तस्वीर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
2: रन फॉर योगा 2 किलोमीटर का एक मिनी रन, मैराथन नहीं बोल सकता, छोटा सा 2 किलोमीटर रन, जिसमें हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए। इसके बाद एक फॉलो अप बाय शॉर्ट योगा सेशन। ये हमारे 21st का प्रोग्राम का एक बिल्डअप एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ था, हर दिन कोई ना तो कोई प्रोग्राम हो ही जा रहा है।
0: शहर शहर हो रहे इन कार्यक्रमों का मकसद योग के प्रति जागरूकता फैलाने तथा स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश देना है। वैसे तो योग जागरूकता को लेकर ये अभी शुरुआत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन देश और दुनिया में केवल योग का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। श्रीनगर से अशरफ आनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से अब तक अयोध्या जी को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं जिनमें से एक है वैक्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में रामायण कालीन इतिहास, संस्कृति और आस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है अयोध्या को मिला वैक्स म्यूजियम का उपहार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब एक और अनूठा आकर्षण मिल गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर निर्मित भव्य वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण आज हुआ। करीब 8000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित ये म्यूजियम रामायण कालीन इतिहास, संस्कृति और आस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। इस म्यूजियम में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जटायु सहित रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों के मोम के पुतले स्थापित किए गए हैं। इन प्रतिरूपों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वे वास्तविक और जीवंत प्रतीत हों। पात्रों के भाव, वेशभूषा और ऐतिहासिक स्वरूप को सटीकता से दर्शाने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना अयोध्या के पर्यटन विकास में एक नया अध्याय जोड़ रही है। वैक्स म्यूजियम न केवल श्रद्धालुओं को रामायण के पात्रों से जुड़ने का अनुभव देगा बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। ज्यादा बच्चे इतिहास की तारीखें, साइंस के फॉर्मूले और पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए घंटों रट्टा मारते हैं और एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हाल ये है कि आज के दौर में मोबाइल नंबर्स भी लोगों को याद नहीं रहते। ऐसे में डॉक्टर विनोद शर्मा उम्मीद जगाते हैं। दरअसल विनोद जाने माने ब्रेन साइंस एक्सपर्ट हैं और वो लोगों की मेमोरी को तेज बनाने के लिए एक टेक्निक बताते हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है और वो है याददाश्त बढ़ाने का अद्भुत फॉर्मूला। देश के जाने माने ब्रेन साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा ने एक ऐसी मेमोरी टेक्निक ईजाद की है जिससे मोबाइल नंबर हो या फिर कोई पिन कोड, सभी को याद रखना बेहद आसान होगा। कैसे, आइए जानते हैं।
3: हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो विजुअल्स को याद रखता है, चित्रों को याद रखता है, संरचनाओं को याद रखता है, ऑब्जेक्ट्स को याद रखता है। हमारे ब्रेन को ज्यादा वो याद रखता है जो थ्री डायमेंशनली उसे दिखता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक वर्ड में बोलता हूं अमिताभ बच्चन तो आपको वो दिखते हैं, अगर मैं कहता हूं एरोप्लेन तो आपको दिखता है, पर अगर मैं कहता हूं प्रायोरिटी, ये भी एक वर्ड है पर इसका मीनिंग तो पता है पर दिख नहीं रहा है ना, इसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है बस उन्हें ही रिवाइज करना पड़ता है, वही याद नहीं रहती। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले चित्र में कन्वर्ट कर दो और उस चित्र को उसके बाद आपस में जोड़ लो। आपस में जोड़ने से चीजें याद रहती हैं। इसको करने से पहले मैं वो सीक्रेट बताता हूं कि नंबर्स को कैसे याद किया। क्वेश्चन वही है तो आंसर उसी पे आते हैं। देखिए, एक होता है नंबर, जो नंबर 0 से लेकर 9 से बने हैं पूरे वर्ल्ड के, यस और नो। और दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो A to Z के बीच में है, यस और नो। हम नंबर और नाम को आपस में जोड़ना सीखते हैं। जैसे कि 0 इसके लिए लिखते हैं S, 1 इसके लिए लिख देते हैं T या D, 2 इसके लिए हम लिख देते हैं N, 3 इसके लिए हम लिख देते हैं M, 4 इसके लिए हम कर देते हैं R, 5 के लिए हम L लिख देते हैं, 6 के लिए हम J या G कर देते हैं, 7 यहां से कर लेता हूं मैं, 7 के लिए हम K, 8 के लिए हम F, 9 के लिए P या B, और 0 से 9 कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल है कि ये लेटर्स हमने क्यों लिखे। इसे निमोनिक साइंस का एक फोनिक मेथड होता है जिसके अंदर हम नंबर को किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं। आप लेटर चेंज करके अपने भी बना सकते हो पर ये स्टैंडर्ड बना रखे हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है। ढंग से देखिए, इसमें कोई वॉवल नहीं है और दुनिया के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट और वॉवल से मिलके ही वर्ड बनता है। तो हम जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल लगाते हैं तो शब्द बन जाता है, और वर्ड बन गया तो ये नंबर भी दिखने लग जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक वर्ड लेते हैं, मान लीजिए 6 और 9, तो 6 के लिए J है हमारे पास और 9 के लिए P है, तो यहां पर अब 6 9 नहीं लिखेंगे अपन J और P लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या J और P में वॉवल लगा के कोई वर्ड बनाया जा सकता है, बताइए। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते, तुरंत बना लेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसके बीच में वॉवल लगाया E तो बन गया जीप। 6 9 हमें नहीं नजर आ रहा है ब्रेन में, लेकिन जब मैं जीप बोल रहा हूं तो नजर आ रहा है, राइट।
0: अकोला में कुछ लोगों ने एक गांव की तकदीर बदल दी है। इन लोगों ने गांव की सूखी नदी को फिर से जीवित करने का फैसला किया, और खास बात यह रही है कि इस काम के लिए गांव के लोगों ने श्रमदान किया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। श्रमदान से सूखी नदी फिर से बनी जीवन धारा। महाराष्ट्र के अकोला का चांदूर गांव, जहां करीब 14,000 लोगों की आबादी रहती है, इस गांव के लोग पहले यहां पर बहने वाली स्थानीय नदी में तैरते थे, लेकिन ये नदी अब गाद और झाड़ियों की वजह से सिकुड़ गई। ऐसे में ग्रामीणों ने इस नदी को दोबारा जीवित करने का बीड़ा उठाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान करना शुरू किया। आज ये ग्रामीण पिछले 1.5 महीने से लगातार नदी की सफाई में जुटे हैं। इसके लिए नदी में जमा गाद हटाई गई, जटिल झाड़ियों को साफ किया गया, सिकुड़े हुए नदी के रास्ते को फिर से चौड़ा किया गया। धीरे धीरे ये पहल आंदोलन बन गई। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुड़ गए। स्थानीय लोगों के श्रमदान को देखकर प्रशासन ने भी मदद शुरू की। JCB, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद से अब नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। दरअसल अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत रहती है। यहाँ दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती थी, जिससे कि ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन नदी की सफाई के बाद गांव में फिर से नदी की धारा वापस लौट रही है। वैभव सूर्यवंशी के बाद अब एक उभरती महिला क्रिकेटर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। इस लड़की का नाम है अक्षरा गुप्ता, जिसने BCA के महिला U19 वनडे ट्रॉफी के एक मैच में 13 शतक लगा दिया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, 15 साल की अक्षरा की ट्रिपल सेंचुरी। जी हाँ, महज 15 साल की अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार में भागलपुर के सैंडस कंपाउंड के में खेलते हुए क्रिकेट ग्राउंड में BCA महिला U19 वनडे ट्रॉफी के मैच के दौरान अक्षरा ने धुआंधार पारी खेलते हुए नाबाद 306 रन बनाए। क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता बिहार के ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलती हैं। अक्षरा ने वनडे मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाकर बिहार के घरेलू क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया। इस मैच में अक्षरा ने केवल 126 गेंदों में 306 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। इस उपलब्धि के बाद अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। उन्होंने शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। अक्षरा का सपना भारत का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रही है।
4: आगे कि जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे। घर पे अंकल हैं, वही मतलब देखते रहते हैं, मतलब उनको जैसे अच्छा लगता है वैसे वो करवाते हैं मेरे को और वो अच्छा होता भी है।
5: मैं घर में था और सामने मुझे पता चला कि किसी ने जैसे हैं यहाँ 306 रन बना दिए हैं, तो मैं नोट आउट और मैं आया और देखा। मैंने बोला कि जैसे हैं यहाँ पे और भी थे एसोसिएशन के लोग थे, तो मैंने बोला कि आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहा है जैसे हैं वाइज में, तो हो सकता है कि जाते आने वाले टाइम में आप इंडिया खेलते हुए देखें इसको।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
7: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: नीट री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी NTA। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन DC में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। भारत के GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टॉल शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत चंदावा, आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावों की तरह बिजली की रफ्तार की तरह फैलाई जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम इन तमाम खबरों की सच्चाई आप तक लेकर आते हैं, हम इन तमाम खबरों को परत दर परत खंगालते हैं, जिसके बाद सही, सटीक और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि खान सर को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने की जगह उनके साथ वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। सच्चाई क्या है इस वीडियो की, आगे आपको बताएंगे। दूसरी खबर है उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने की जगह उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: 2 जून को पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों के बीच हुए विवाद के बाद फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिल गई थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि खान सर को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मी उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। कुछ यूजर्स ये वीडियो फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर शूटिंग विवाद से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया कि खान सर को पकड़ने गए पुलिसकर्मी उनके छात्र थे और उनके साथ वीडियो बना रहे थे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: हाल फिलहाल में पटना में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के पास फायरिंग का मामला सामने आया था और खान सर के 2 बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया और FIR में खान सर का नाम भी शामिल किया गया। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु जी इस अकादमी कोचिंग संस्थान के संस्थापक रोशन आनंद को गिरफ्तार किया। और अब इस मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि फायरिंग मामले में खान सर को गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मी खान सर को गिरफ्तार करने की वजह उनके साथ वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि क्या पुलिस खान सर को गिरफ्तार करने के लिए उनके कोचिंग सेंटर पहुंची थी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि फायरिंग मामले में निचली अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ जब हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा तो इस दौरान हमें ऐसी तस्वीरें नजर आई जिससे हमें दावे पर शक हुआ। मसलन वायरल वीडियो किसी कार्यक्रम का लग रहा है, क्योंकि किसी शख्स को अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी जरूर नजर आएगी, या फिर शख्स कुछ विरोध जताता हुआ नजर आएगा।

0: लिखा खान सर के साथ दरोगा बनने के बाद। हमें सुशांत यादव की प्रोफाइल पर एक और पोस्ट मिला जिसमें वायरल वीडियो जैसा ही बैकग्राउंड दिख रहा है। इसमें वे एक सोफे पर खान सर के साथ बैठे नजर आ रहे हैं जिसके पीछे खान ग्लोबल स्टडीज लिखा है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने बेगूसराय में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर सुशांत यादव से संपर्क साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये वीडियो उस समय का है जब सब इंस्पेक्टर बनने के बाद एक सम्मान समारोह में वो खान सर से मिले थे और उन्हें मिठाई दी थी। ये वीडियो उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था और दिसंबर 2025 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। साफ है वायरल हो रहा वीडियो पुराना है और साल 2025 में इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में दिख रहे सब इंस्पेक्टर की पहचान की जिनका नाम सुशांत यादव है जो कि खान सर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें देखा जा सकता है कि एक जगह पर भयंकर आग लगी हुई है, उससे काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए।
0: सोशल मीडिया पर एक जगह लगी भयंकर आग का वीडियो इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि ये ईरान पर इसराइल के हालिया हमले का दृश्य है। दरअसल हाल ही में ईरान ने पहले इसराइल पर मिसाइलें दागी जिसके जवाब में इसराइल ने भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस बीच ये भी खबरें सामने आई कि यूएस और ईरान के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हॉर्मूज के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जगह पर भयंकर आग लगी हुई है और उससे काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को एक्स पर वायरल दावे वाले कैप्शन के साथ शेयर किया गया है जिसमें लिखा है इसराइल ने पिछले 24 घंटों में ईरान पर 500 से अधिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग दावा ये कर रहे हैं कि 24 घंटे में इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक किया और उसी हमले से जुड़ा हुआ ये वीडियो सामने आया है जहां पर एक जगह पर भयंकर आग लगी है और उससे काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल की और ये सर्च के दौरान जानकारी सामने आई कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर जब इसराइल ने स्ट्राइक की तो इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर पलटवार किया और फिर इसके बाद इसराइल ने भी ईरान पर मिसाइल अटैक किया। उस सब के बीच खबर यह आई कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई, लेकिन इसराइल इस शांति समझौते पर सवाल खड़े कर रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। फिलहाल इसके बारे में कहीं कोई खबर भी नजर नहीं आई, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी और जगह या फिर दूसरी घटना से संबंधित किसी और वीडियो को ईरान इसराइल टकराव के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में जाना।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो से जुड़े दृश्य दागिस्तान के एक मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर 9 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में मिले। रिपोर्ट में बताया गया था कि रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के दागिस्तान निदेशालय को मेटान गैस स्टेशन पर 3 विस्फोटों की सूचना प्राप्त हुई। इसके अलावा हमें वायरल वीडियो कुछ दूसरे रूसी मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट पर भी 9 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट में इसे दागिस्तान के किजिल्युर्त शहर के पाइपलाइन में धमाके और आग लगने का बताया गया था। इस जानकारी के आधार पर रूस में काफी उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर कीवर्ड सर्च करने में हमें ये वीडियो दागिस्तान के नाम से बने 2 टेलीग्राम अकाउंट पर 9 जून को अपलोड किया हुआ मिला। दोनों ही टेलीग्राम अकाउंट पर वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में
2: इसे किजिल्यूर्ट शहर की पाइपलाइन में धमाके और आग।

0: लगने का बताया गया था। इसके अलावा हमें दोनों ही अकाउंट पर इस घटना से जुड़े कई दूसरे वीडियो भी अपलोड किए गए मिले। सर्च के दौरान एक वेबसाइट पर भी 9 जून 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 जून को दागिस्तान के किजिल्यूट शहर के मोजदोक काजी मोगो में गैस पाइपलाइन में 3 विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों के बाद भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ईरान पर इजरायल के हालिया हमले के दावे से वायरल ये वीडियो असल में रूस के दागिस्तान इलाके की एक गैस पाइपलाइन में लगी आग का है। फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जा रही हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार आपको ये चलेंगे भारत दुनिया में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों,
3: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं, महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
5: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
4: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
6: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
7: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
6: to live sports action.
8: To the near side corner, to wrap around. He scores!
6: And your favorite music.
9: You and I stargazing.
6: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
10: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
11: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
13: वक्त है फैक्चर के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
17: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो की कोच अच्छी खासी भरी हुई है। तभी एक दोस्त उठकर अनाउंस करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो सभी यात्रियों से दोस्त साहिल के लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसे विश करने की प्यारी सी अपील करता है। इसके बाद मेट्रो में सफर कर रहे सभी यात्री गाना गाकर उसे विश करते हैं। हालांकि बर्थडे बॉय की शक्ल देखने लायक होती है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। इसके बाद बर्थडे बॉय का दोस्त अपने बैग से मेलोडी टॉफी का पैकेट निकालता है और दोनों मिलकर पूरी कोच को टॉफियां बांटते हैं। इस दौरान लोग हाथ मिलाकर भी साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

0: प्यार में दिल टूटने की कहानियाँ तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी खास को यह तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वह गिफ्ट लेकर आई थी, वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसान की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का यह पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से वापस लौट जाती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: and life is like a song,
3: and new discoveries,
4: that's so much more than a history. Wake up.
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: You and

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
0: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर आए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले कड़े पहरे में नीट री एग्जाम के पेपर, प्रश्न पत्र पर भारतीय वायुसेना का सुरक्षा कवच, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तैयार है मंच, भारत से निकला योग अब पूरी दुनिया का हुआ, और अंकों को याद रखने के लिए वैज्ञानिक तरीका, जेएनटी पर याददाश्त बढ़ाने के लिए साइंस समझिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: नीट री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टॉल शामिल। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात नीट री एग्जाम की। 21 जून को फिर से देश भर में होने जा रही है परीक्षा। पिछली गड़बड़ियों से सबक लेते हुए इस बार एफओस की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। साथ ही नीट री एग्जाम से जुड़ी अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ही सरकार और एनटीए की तरफ से हो रही है।

0: वायुसेना की मदद से प्रश्न पत्रों को पहुंचा दिया गया है। परीक्षा केंद्र भी तैयार हैं और तैयार हैं करीब 23 लाख छात्र जो 21 जून को फिर से नीट री एग्जाम देने जा रहे हैं। इस बार की परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि पिछली गड़बड़ियों से सबक लेते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इस बार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो नीट री एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पर कदम उठाए जा रहे हैं, छात्रों के लिए पारदर्शी, सुरक्षित, सम्मानपूर्वक, विश्वासपूर्वक परीक्षा पद्धति से अच्छी परीक्षा हो, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है और कल का परीक्षा के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
0: सरकार के इन दावों और तैयारियों के बीच गुड न्यूज टुडे की एक टीम भोपाल के एक परीक्षा केंद्र पहुंची, जहां नीट री एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम सेंटर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया, साथ ही परीक्षा देने वाले छात्रों की जांच के लिए कई सुरक्षा उपकरण भी मंगवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा वाले दिन एग्जाम सेंटर पर एनटीए की टीम भी मौजूद रहेगी जो पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग करेगी।
2: परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहां पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहां पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल के स्कूल में कैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये जो छात्राएं आएंगी उनकी फ्रिस्किंग होगी पूरी तरीके से यहां पे, तो उसके लिए कैनोपीज आ चुकी हैं। इस कैनोपी को जो प्रवेश द्वार है वहां पे भी लगाया जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी रखा जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहां पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे। क्या इससे पहले कभी ऐसी तैयारी देखने को मिली थी?
3: नहीं, इस तरह की तैयारियां पहली बार हुई है। एनटीए के एग्जाम के लिए एनटीए के काफी स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी। ये तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास हैं प्रशासन के और हम सभी लोग भी पूरी तरह से उसमें लगे हुए।
0: नीट री एग्जाम को लेकर ग्राउंड लेवल पर ऐसी ही तैयारी राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। वहाँ के सीकर और कोटा जैसे शहरों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगा हुआ है। सीकर में जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश की अगुवाई में एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को परीक्षा के दौरान पूरी मुस्तैदी से काम करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और एनटीए की परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस को शत प्रतिशत अमल में लाने के निर्देश दिए गए।
4: परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई, सभी को पूरी मुस्तैदी से काम करने की हिदायत दी गई और जो एनटीए की गाइडलाइंस के संदर्भ में जो भी क्लैरिफिकेशन थे वो जारी किए गए और तदुपरांत सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अपीयर होना है और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर कोटा शहर में भी बड़ी संख्या में छात्र नीट री एग्जाम देने जा रहे हैं। इनमें कई छात्र ऐसे हैं जो अपने घर लौट गए थे लेकिन अब वो फिर से परीक्षा देने के लिए कोटा पहुंच गए हैं। इन छात्रों की परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है ये जानने के लिए गुड न्यूज की टीम ने कुछ बच्चों से बात की।
5: अभी पांव के छाले ना देख, अभी तो सफर की इब्तिदा है। छात्रों के मन में तमाम सवाल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा है जो उनको दोबारा देनी पड़ रही है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगें हैं ये तमाम वो हॉस्टल हैं जिनमें घंटों, दिन ब दिन और कई सालों तक कई छात्र अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं और ऐसे ही छात्र हमारे साथ हैं जो नीट का एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं। मन को कैसे समझाया, आगे दो दिन में क्या तैयारी है?
6: मेरा नाम शिवम कुमार गुप्ता, मैं बिहार से हूँ। और नीट एग्जाम जब ये कैंसिल हो गया जो हमारा, तो एक होता है ना, मतलब एक करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उस दिन में तो बुरा बहुत ज्यादा लगा कि फिर वो रोए भी, मतलब एक हो गया था, मतलब क्या कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा मुसीबत हुई, लेकिन जो टीचर हमारे एल एन के हैं सब अच्छे हैं, तो सपोर्ट किए, तो जिसकी वजह से अभी हैं, अब एग्जाम देने के कगार पे हैं।
5: हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हौसला आप लोग को रखना होगा, है ना? तो यहाँ क्लासेस आप लोग ने किए दोबारा, या ऐसा लगा कि मैं भूल गया जो प्रैक्टिस किया था? अपने आपको समझाना, वो किताब दोबारा खोलना कितना मुश्किल था। मतलब आप किताबों को दे देते हो, ये बता रहे हैं कि इन्होंने नोट्स भी दे दिए थे, फिर वो कैसे लाए वापस नोट्स वोट्स सारा?
7: मेरा नाम पीयूष है और मैं भरतपुर से हूँ। मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: नीट री एग्जाम देने जा रहे इन छात्रों के लिए कई राज्यों ने एडमिट कार्ड दिखाने पर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा या फिर किराए में छूट की घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अलग अलग रेल मंडल में स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला भी किया है, ताकि बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। भोपाल से रवीश पाल सिंह, कोटा से मौसमी सिंह और सीकर से सुशील कुमार जोशी, गुड न्यूज टुडे।
8: आगे बढ़ते अगली अच्छी खबर है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई, जिसका आयोजन देश और दुनिया भर में दो दिन बाद होने जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन को सफल बनाने और दुनिया को योग के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए देश भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। इन तैयारियों के तहत कहीं योग से जुड़ी रिहर्सल्स हो रही हैं और कहीं योग दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया है, जिसका मतलब है कि योग केवल फिटनेस का जरिया नहीं बल्कि बढ़ती उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक प्रभावी तरीका भी है।

0: तैयार हो चुके हैं मंच। शहर शहर शुरू हो चुकी है रिहर्सल। और जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं कैंपेन। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये तैयारी है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, जिसका आयोजन 21 जून को देश और दुनिया भर में होने जा रहा है। ऐसे में दुनिया को योग के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देने वाले हिंदुस्तान में आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। जिसकी एक तस्वीर श्रीनगर से सामने आई, वहां वाटर स्पोर्ट से जुड़े कुछ खिलाड़ियों ने अनोखे अंदाज में योगासनों की रिहर्सल की। इनमें किसी ने तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर योग किया और किसी ने झील में तैरते हुए योग करके दिखाया। आयोजकों का कहना है कि झील में योग करने के पीछे उनका मकसद योग को लोकप्रिय बनाना है और पूरे इलाके में वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है।
1: आज हमने ये जो पहला फर्स्ट एवर योगा फ्लोटिंग योगा किया पॉकरीबन लेक में, इसमें यही मकसद था कि योगा की अवेयरनेस वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स में देना, और खासकर वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए प्लेग्राउंड होता है पानी। तो हमने आज ये जो योगा सेशन है और 21st को हम इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस महीने इस पूरे वीक को हमने योगा डे सेलिब्रेट किया। इससे यही मकसद था कि वाटर बॉडीज़ को योगा का प्लेग्राउंड बनाना, तो आज इसी यही मकसद था इस सेशन को कराने के लिए।
0: हरियाणा के सिरसा और गुजरात के जामनगर में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रिहर्सल की। सिरसा के कार्यक्रम में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद हिस्सा लिया, वहीं जामनगर में प्रदेश की राज्य मंत्री रिवाबा जडेजा की अगुवाई में सेना, वायुसेना, नौसेना और पुलिस के जवानों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान इन लोगों ने कई योगासन किए।
2: इक्कीस जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री की चेतना से पूरे विश्व में कहीं मनाया जाने वाला है, तो उसकी पूर्व संध्या में आज गुजरात राज्य योग बोर्ड एवं जिला प्रशासन तंत्र के माध्यम से 12 जिलों में अलग अलग थीम के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जामनगर जिले की थीम एक योग दिन पूरे सैनिकों के साथ। तो इस थीम के आधार के ऊपर डिफेंस सर्विसेज की हमारी जो तीनों विंग्स है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे जवान हैं, उन सभी जवानों के साथ आज हमने योग किया।
0: इन रिहर्सल और योगाभ्यासों के अलावा देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जागरूकता कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कैंपेन बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में चलाया गया, जहां रन फॉर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद इन तमाम लोगों ने योगाभ्यास भी पूरे जोश और उत्साह के साथ किया।
3: आज रन फॉर योगा बोल के हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो गया और बाकी वेस्ट बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है आज। तो रन फॉर योगा 2 किलोमीटर का एक मिनी रन, मैराथन नहीं बोल सकता, छोटा सा 2 किलोमीटर रन, जिसमें हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए। इसके बाद एक फॉलो बाई शॉर्ट योगा सेशन। ये हमारे 21st का प्रोग्राम का एक बिल्डअप एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ था, हर दिन कोई ना तो कोई प्रोग्राम हो ही जा रहा है योगा के बारे में। इसके माध्यम से योगा का प्रचार एंड पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये प्रयास है हमारा।
0: पश्चिमी मेदिनीपुर ही नहीं, राज्य के दूसरे हिस्सों में भी योग दिवस को लेकर तैयारी देखने को मिली। आसनसोल में मैथन डैम के खूबसूरत किनारे पर एक मेगा योग कैंप आयोजित किया, जिसमें पुलिस के आला अफसरों समेत करीब 500 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग योगासन किए। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सबसे बड़ा आयोजन कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं खबर तो ये भी है कि हुगली नदी में 500 से ज्यादा नावों पर एक साथ योग करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि आयोजकों की नज़र सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी की जाएगी।
4: और सबसे बड़ा आकर्षण इस बार है हुगली नदी में लगभग 500 नौकाओं के साथ योग दिवस का पालन। जी हाँ, कल्पना कीजिए, हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के एक साइट से गुजर रही है, वहाँ पर 500 नाव पर लोग एक साथ योग का कार्यक्रम करेंगे और ये एक अनोखा कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है 21 जून को। और इसके लिए सुंदरबन के जो मछुआरे हैं उनसे भी आग्रह किया गया है, वो भी यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा हुगली में जो नावें रहती हैं वो भी सब शामिल होंगी। कुल 500 नावों पर लोग रहेंगे जो एक साथ योग का कार्यक्रम करेंगे। कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है और इस बार कोलकाता में ही प्रमुख आयोजन किया गया है। कोलकाता के आइकॉनिक रेड रोड पर लगभग 35,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।
0: आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, जिसे रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन मिला और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। तब से यह हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका मकसद आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को योग के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। श्रीनगर से अशरफ वानी, जामनगर से दर्शन ठक्कर, आसनसोल से अनिल गिरी और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और बात करते हैं याददाश्त बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके की। अंकों को किसी भी फॉर्मेट में याद रखना बेहद मुश्किल होता है, हालांकि विजुअलाइजेशन क्षमता के दम पर किसी भी लंबी संख्या या फिर डेटा को कुछ सेकेंड्स में आसानी से याद किया जा सकता है। दरअसल निमोनिक्स या फिर नंबर राइम विधि तकनीक में अंकों को वर्णमाला या किसी तस्वीर में बदल दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक याद रह जाते हैं।

0: बच्चे ही क्या, हमें भी बचपन में अंकों से जुड़ी बातों को याद रखने में दिक्कत आती थी। एक ही रास्ता बचता था, रटने का। लेकिन रटने के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है, बिना समझे याद करने पर भूलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ आसान तकनीक का इस्तेमाल करके जो कुछ भी याद करेंगे वो ताउम्र याद रहेगा।
1: गणित का गणित समझना आसान नहीं है भाई, नंबर्स बहुत परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो नंबर्स को देखकर उन्हें रोना आता है। लेकिन इसकी भी एक टेक्निक्स है कि नंबर्स को कैसे याद करें, स्क्वायर रूट कैसे याद करें और बहुत सारी चीजें कैसे याद कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा मेरे साथ में हैं, ब्रेन साइंस एक्सपर्ट हैं, कई सारे बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। हम भी इस वेकेशन पर आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप भी नंबर्स को और बहुत सारी अलग अलग चीजों को याद कर सकते हैं।
0: दरअसल अंकों को लंबे समय तक याद रखने के लिए उनको अपनी कल्पना, कहानियों या चित्रों से जोड़ना ही सबसे असरदार और यूनिक तरीका है, जिसे ब्रेन साइंस कहा जाता है। उससे जुड़े विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन नाम के दो फैक्टर के दम पर जितना नंबर चाहे वो याद रह सकते हैं। मस्तिष्क विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद शर्मा ने बहुत सारी मेमोरी तकनीक विकसित की हैं। 40 अंकों को लिखने के दौरान ही डॉक्टर विनोद शर्मा को पूरी तरह याद भी हो गया।
2: मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ नंबर बोलें और आप नंबर बोलेंगे तो यहां एक लैपटॉप रखा है, मैं इस पर उनको नंबर्स को नोट करता हूं। नोट करने के बाद में जब मैं कहूं कि स्टॉप तो आप रुक जाइएगा और फिर देखते हैं जादू इसका।
1: 42 79 86 92 66 39 17 17 88 इजी हो गया शायद इतने
2: नंबर। अच्छा, तो पहली बार में आप रैंडम बोल रहे थे, मैंने भी पहली बार ही सुना और रैंडम ही मेरे ब्रेन में गया। मैं ट्राई करता हूं कि इसका मैं कितना परसेंटेज अच्छा बता सकता हूं। अगर कोई इंसान पहली बार में नंबर्स को पढ़ता है तो एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से या ब्रेन साइकोलॉजी के हिसाब से भी लगभग 50-60% तक याद रहना चाहिए। मैं ट्राई करता हूं 50-60% इसको बिल्कुल सही बोलूं। इसके लिए ये अब मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, केवल कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि मैंने आपने मुझे क्या बोला था।
1: ठीक है, आपको और टाइम चाहिए से देखने के लिए?
2: अभी तो नहीं,
1: जितनी देर लिखा आपने उतने टाइम चाहिए था, बस
2: उतना ही टाइम चाहिए था। फिर आई सी, मैंने कोशिश करी थी कि जब आप बोल रहे थे तो मैं उन पे फोकस करूं क्या नंबर्स थे, तो मैं अपने कंसंट्रेशन का इस ब्रेन का टेस्ट खुद भी करना चाहता हूं।
1: तभी हम थोड़ा स्लो नंबर बोल रहे थे।
2: हाँ,
1: तो शुरू करते हैं। चलिए, मैं भी देखता हूं क्या होता है।
2: करिए इसको। तो आई थिंक यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट मस्ट बी।
1: और देखिए इन्होंने आईज भी क्लोज कर ली है अपने,
2: क्लोज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा है तो दिमाग में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, इट इज 42 79 86 92 66 और 66 के बाद दैट शुड बी 39 17 38 52 91 26 19 23 37 7 8 के बाद इट इज 80 16 43 88।
1: माई गॉड, ये पूरा सही था, आप 50-60% बात कर रहे थे।
0: जानकारी के साथ किसी भावना को जोड़ना और ब्रेन में उसके विजुअल इमेज बनाने का फायदा और भी है। इसी बदौलत ब्रेन साइंस विशेषज्ञ 40 नंबरों को उल्टे क्रम में भी सुना देते हैं।
1: तो अभी डॉक्टर विनोद ने हमें इन नंबर्स को सीधा सीधा पढ़ के बताया, पढ़ के नहीं, अपने एक बार बस उन्होंने लिखा, उनको याद हो गया, उन्होंने हमें सुना दिया। अभी हम इसका पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं, अब ये उल्टा पढ़ेंगे, मतलब जो लास्ट नंबर है वहां से शुरू करेंगे, पहले नंबर तक जाएंगे।
2: आई थिंक रिवर्स ऑर्डर में यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो होने चाहिए, दैट शुड बी इट इज 88 34 61 और 61 से पहले दैट शुड बी 08 87 और उससे पहले दैट शुड बी 73 32 91 और 91 से पहले दैट शुड बी इट इज 62 19 25 83 और 83 से पहले दैट शुड बी इट इज 37 71 93 66 और 66 से पहले दैट शुड बी इट इज 2968 और 68 से पहले दैट शुड बी इट इज 9724।
1: क्या बात है, आपने कहा था 50-60% याद रह जाए तो बड़ी बात है, पूरा का पूरा आपको याद था।
0: याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता के लिए डॉक्टर शर्मा 0 से 9 अंक को अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक कुल 26 अक्षर से जोड़ देते हैं, जिसके बाद अंकों और अक्षरों के मिलन से विजुअल्स बन जाते हैं, उन्हीं विजुअल्स से स्टोरी बन जाती है और किसी भी स्टोरी या कहानी के जरिए कुछ भी याद करना बेहद आसान हो जाता है।
2: देखिए, एक होता है नंबर, जो नंबर 0 से लेकर 9 से बने हैं पूरे वर्ल्ड के, यस और नो, और दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो ए टू जेड के बीच में हैं, यस और नो। इसका मतलब जितने भी वर्ड हैं, जो भी कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो दिखता है, उसका कोई ना कोई नाम है और वो नाम ए टू जेड के बीच में ही बना है, राइट। जैसे आपका नाम है वो भी ए टू जेड के बीच में है, मेरा नाम भी ए टू जेड के बीच में है। हम नंबर और नाम को आपस में जोड़ना सीखते हैं, जैसे कि 0 इसके लिए लिखते हैं S, 1 इसके लिए लिख देते हैं T या D, 2 इसके लिए हम लिख देते हैं N, 3 इसके लिए हम लिख देते हैं M, 4 इसके लिए हम कर देते हैं R, 5 के लिए हम L लिख देते हैं, 6 के लिए हम J या G कर देते हैं, 7 यहां से कर लेता हूं मैं, 7 के लिए हम K, 8 के लिए हम F, 9 के लिए P या B, और 0 से 9 कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल है कि ये लेटर्स हमने क्यों लिखे। इसे निमोनिक साइंस का एक फोनिक मेथड होता है, जिसके अंदर हम नंबर को किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं। आप लेटर चेंज करके अपने भी बना सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड बना रखे हैं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है। ढंग से देखिए, इसमें कोई वॉवल नहीं है, और दुनिया के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट और वॉवल से मिलके ही वर्ड बनता है। तो हम जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल लगाते हैं तो शब्द बन जाता है।
0: सवाल उठता है कि हम नंबर से जुड़े अक्षर को कैसे याद रखें। इसके लिए नेमोनिक साइंस और फोनिक्स मेथड का सहारा लेना पड़ता है।
1: इसको भी याद करने की कोई टेक्निक है कि भाई किस नंबर पे हमने कौन सा लेटर डाल रखा है?
2: तो चलिए मैं अपना सीक्रेट पूरा ही बता देता हूँ आपको कि हमारे जैसे 1869 में वो येलो कैसे बना और ये जो लेटर है ये याद कैसे रहेंगे। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, इसको फटाफट बताता हूँ ताकि आपके ब्रेन में छप जाए। मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, लॉजिक को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 0 यानी S, अगर मैं यहां लिखता हूं 0, इसको बीच में से काट देता हूं तो ये 2 बॉल जैसा बन जाता है। इसको अगर मैं ऐसे और ऐसे रख लेता हूं तो क्या दिख रहा है ये? तो ये बन गया 0 और 0 से बन गया S, याद रहेगा। अब अपन आते हैं 1, ये 1 है, क्या ये 1 को अगर थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए तो ये T जैसा नहीं लगता? और टी और डी का साउंड एक जैसा नहीं है, टी डी? तो बस, तो 1 हो गया टी डी। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, 2 2। अब देखिए, एक कर्सिव में एन लिखते हैं ऐसे, तो 2 का शेप ढंग से देखो, 2 का शेप इस एन के जैसा ही है, यानी इसको घुमा के रख देंगे तो ये एन बन जाएगा।
0: साफ है कि अंकों, अहम तारीखों को 2 अहम कारणों से लोग भूल जाते हैं। पहली, जानकारी के साथ कोई भावना न जुड़ना, और दूसरी, मस्तिष्क में उसकी विजुअल इमेज का न बनना। ऐसा ना हो इसके लिए ब्रेन साइंस से तकनीकों का सहारा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end, Game 2, headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की बीमारियों के बारे में। क्या महिलाओं की बीमारियां पुरुषों से अलग होती हैं? महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और बीमारियां हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की बीमारियों के बारे में। महिलाओं की जो बीमारियां हैं उनकी खास बातें ज्योतिष में क्या हैं? देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं क्योंकि महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग है। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है और जो बाकी ग्रहों का असर पड़ता है वो भी इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं के साथ चूंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ होता है इसीलिए महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। इसीलिए महिलाओं की बीमारी को जब देखिए और समझिए तो इसके साथ हमेशा उनकी मन स्थिति को भी देखिए, उनकी मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। यानी महिलाओं की बीमारियां चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करती हैं और महिलाओं की बीमारियों में उनके मेंटल स्टेटस का, उनकी मानसिक स्थिति का बड़ा योगदान होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी,

गाइनिक प्रॉब्लम होती है चंद्रमा की गति के आधार पर और मंगल की स्थिति के आधार पर। इस समस्या के होने पर महिला को ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का लिक्विड लेकर के व्रत रखना चाहिए। तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करना चाहिए। और अगर गाइनिक प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है तो सलाह लेकर के एक मूंगा अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे महिलाओं की बीमारियों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होगा, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अक्सर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है और खास तौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज्यादा होती है। तो अगर महिलाओं को हड्डियों की समस्या है तो कारण क्या, उपाय क्या? महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है चंद्रमा और सूर्य की वजह से, मुख्यतः सूर्य की भूमिका होती है। तो क्या करेंगी? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। दूध वाली चीजें जैसे दूध है, दही है, क्रीम है, इनका प्रयोग ज्यादा करिए। और हड्डियों की समस्या होने पर सलाह लेकर एक मोती या एक माणिक्य धारण करिए। और अगर हड्डियों की समस्या है आपको तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिएगा। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है उनकी मानसिक या भावनात्मक

समस्या, तो अगर महिलाओं को कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या है तो क्या करेंगे? महीने में एक पूर्णिमा आती है, महीने की पूर्णिमा को उपवास रखिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी और घर के उसी कमरे में सोइए या उसी कमरे में रहिए जहां थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सूर्य का प्रकाश आता हो। और अगर भावनात्मक समस्या ज्यादा है, इमोशनली आप हर समय परेशान रहते हैं या रहती हैं, तो मोती या ओपल बहुत सोच समझकर पहनिएगा, वही बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर एक देसी मूंगा अगर आप धारण करें तो मन को मजबूत करना थोड़ा आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता के योग हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही हैं तो आपको चंद्रमा और मंगल वाले हिस्से पर काम करना होगा। सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय हो जाए, जब चंद्रमा निकल जाए, उसके बाद चंद्रमा के मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और महिलाओं को किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहननी चाहिए। चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी की पायल, अपने शरीर में अगर आप चांदी धारण करें
तो चंद्रमा रेगुलेटेड रहेगा, चंद्रमा कंट्रोल में बना रहेगा और आपकी ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की महिलाओं की बीमारियों के बारे में, अब जान लेते हैं आपके लिए लकी टिप। अपने धन के स्थान पर हमेशा एक पीले वस्त्र में लपेटकर हल्दी की कम से कम दो गांठ रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से धन की बचत करना आसान होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जून दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कैसा होना चाहिए आपके घर का मुख्य द्वार? बेडरूम और रसोई में रंगों का क्या ध्यान रखें? बाथरूम में किस बात की सावधानी सबसे ज्यादा रखें? घर के कोनों से क्या है कुंडली के ग्रहों का संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: नीट री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13,00,000 भक्त पहुंचे। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा श्रीनगर की पोखरीबल झील में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले फ्लोटिंग योगा के प्रदर्शन की भी है। देखिए,
7: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले श्रीनगर की पोखरीबल झील में फ्लोटिंग योग का प्रदर्शन किया गया। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों ने झील में अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग योग प्रदर्शन किया। इस योग प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों ने पानी के खूबसूरत नजारे के बीच तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर कई तरह के योगासन किए। इसमें शारीरिक सेहत और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मेल देखने को मिला। इस इवेंट का मकसद नए तरीकों से योग को लोकप्रिय बनाना और साथ ही पूरे इलाके में वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना था। श्रीनगर की डल झील में इन दिनों पर्यटकों की बहार है। बड़ी संख्या में देश विदेश से आए सैलानी घाटी के मौसम का आनंद उठा रहे हैं। वहीं पर्यटकों को शिकारी भी खूब लुभा रहे हैं। सभी सैलानी डल झील की खूबसूरती के साथ शिकारी की सवारी का अनुभव लेकर कश्मीर की इस खास पहचान का लुत्फ उठा रहे हैं और अपनी खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। शिमला में शहर के मशहूर पर्यटन स्थलों और जहां काफी पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां इन दिनों गंदगी देखने को मिल रही है। इसीलिए यहां घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक ने गंदगी को देख अपनी चिंता जाहिर की। विदेशी पर्यटक ने ट्रैकिंग के दौरान पहले एक वीडियो बनाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई। हिमाचल की राजधानी शिमला के पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी को लेकर एक विदेशी महिला टूरिस्ट ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से एक भावुक अपील की।
8: Look at this amazing view. But what I see here, look, you are traveling by cars. Can't you keep your garbage inside your car and throw it in the hotel? I am telling again, this is land of gods. For you, for your culture, how can you do this?
7: झारखंड में ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक का सबसे बड़ा आई सर्जिकल कैंप शानदार ढंग से संपन्न हो गया। भारतीय सेना के प्रमुख नेत्र चिकित्सा मिशन ने मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम में कैंप में 4 दिन का सर्जिकल मैराथन पूरा किया, जिससे झारखंड के 320 से ज्यादा नागरिकों की आंखों की रोशनी लौटी। रांची के साथ इस मिशन ने अब 9 कैंप पूरे कर लिए हैं और देश में देखे गए सबसे बड़े निरंतर सैन्य चिकित्सा आउटरीच कार्यक्रमों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नागपुर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने तमाम रीति रिवाजों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आज एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन किया। राजनाथ सिंह ने सरकारी कंपनी YIL की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन की एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि जो देश अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, वही सबसे ज्यादा भरोसे के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। रक्षा मंत्री ने बताया कि 2014 में भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन महज 46,000 करोड़ था, लेकिन आज देश का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है।
3: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रांग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने?
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
1: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है क्योंकि पेपर लीक होना गलत है, लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
4: तुरंत सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अवेयर होना है, और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुँचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
5: 21 जून यानी रविवार को देश भर में रीनीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था, और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
0: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है, लिहाजा उन्हें समझा बुझा कर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
6: हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए। आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेने।
7: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही जो सरकार लगी है ये उन्हीं के भले के लिए लगी है। तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
6: आपको लगता है
7: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
0: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
6: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
8: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्ज़ाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीज़न ये है कि NMC है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पे क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
0: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर ऑपरेशन विजय के दौरान आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल की गई थी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने तलाशी और सफाई अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल की माता खीर भवानी यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के नगरोटा से लगभग 8,000 से 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था कल रवाना होगा। राहत और पुनर्वास विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए JK रोड ट्रांसपोर्ट की लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई हैं। यात्रा के लिए हर साल की तरह इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माता खीर भवानी का सालाना पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। आज CM योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये म्यूजियम आने वाले समय में अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भी आराधना के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और चार्जशीट देने तक की प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। शाह के मुताबिक कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने इसके बाद एआई के जरिए डेटा का आकलन करके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करने की बात कही। अबाश श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी तो गांव जीवित रहेगा। इस संदेश के साथ ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श बन गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चांदूर गांव में स्थानीय निवासियों और बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गाँव के जल संकट का समाधान करना है।

0: श्रमदान की ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अकोला के चांदूर गांव की है, जहां फावड़े और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए। इन दोस्तों ने सूखी और सिकुड़ी मोरना नदी को फिर से जीवन देने का जो संकल्प लिया वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है।
1: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहां पर खड़े हैं उस मोरना नदी के जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है, क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे, लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
0: गर्मी के दिनों में जिस मोरना नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है, लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रम दान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
2: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया, दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, तो काम इस कदर का करें कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
0: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरना नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
3: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारे पूरी लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना, ये बहुत हो चुका है, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लीजिएगा। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि ये इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।
0: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए JCB, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है। यहां दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है, ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है। लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
1: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है। बारिश का रुख जो है वो अब मानसून आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर 1 महीने से 1.5 महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग है और ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर हुई है। और इन सभी बचपन के दोस्तों ने इस साल जो है कम बारिश होने के बाद में भी जो है नदी में ग्रीष्मकाल के दिन जो अकोला और आसपास में काफी गर्मी होती है, ग्रीष्मकाल के दिनों में नदी में तैरने के लिए पानी हो यही सोचकर ये काम अपने हाथ में लिया। और उन्होंने लगभग 60-70% जो है इस नदी का 5 किलोमीटर तक का जो है इलाका साफ कर दिया।
0: इस साल कम बारिश की आशंका के बीच चांदूर गांव के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये है कि पानी बचाना है तो मिलकर काम करना होगा। और अब उम्मीद है कि इस नदी में साल भर पानी रहेगा, इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिलेगा। अकोला से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की

0: लगातार चार दिनों से तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 607 अंकों की गिरावट के साथ 76,502 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 154 अंकों की गिरावट के साथ 24,013 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में गिरावट के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 2840 रुपए गिरकर 150,600 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 8040 रुपए गिरकर 240,700 रुपए पहुंच गई। 18 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 94.34 के स्तर पर बंद हुआ।
1: बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज हो गया है और वहीं अल्फा के ट्रेलर में ऋतिक के कैमियो का खुलासा भी हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
2: की चर्चित फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा। फिल्म का टीजर आमिर खान की आवाज में नरेशन से शुरू होता है। वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे वाले दौर का माहौल बता रही है। टीजर में सनी के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और सनी के बेटे करण देओल की झलक भी दिखाई गई है। ये फिल्म प्रोफेसर असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या ओ जमियाई नहीं पर बेस्ड है। आने वाली मेगा एक्शन थ्रिलर अल्फा की ट्रेलर में ऋतिक रोशन के धमाकेदार कैमियो का खुलासा हो चुका है। ये पहली बार है जब अल्फा के साथ YRF ने अपनी परंपरा बदल दी है। पहले वो ट्रेलर में कहानी की झलक देते रहे हैं और फैंस को कैमियो जैसा सरप्राइज थिएटर में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अल्फा के ट्रेलर के आखिरी हिस्से में कुछ सेकंड के लिए दिखाई गई आंखें बहुत कुछ कह रही थी और फैंस ने पहचान लिया कि आंखें किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक की हैं, जिसके बाद फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। डांस फिल्म थाप यूट्यूबर स्टार का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसमें डांस फ्लोर से स्पॉटलाइट तक का सफर दिखाया गया है। गतिमान फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म जुनून, रिदम, सपनों और डिजिटल पीढ़ी से प्रेरित कहानी है। इसमें अशोक द स्टार नजर आएंगे और जल्द ही कई और नामों की घोषणा की जाएगी। इसमें पदम सिंह ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है और जल्द ही ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी।
1: वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: नीट री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी NTA। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वाशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 38,25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13,00,000 भक्त पहुंचे। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
5: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा, इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। ये तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूं तो भेड़ों को चराने गडेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका। और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गरेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में पुलिस की ओर से शुरू की गई एक पहल की। ये पहल शहर के मकानों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए है। आपको बता दें कि गोरखपुर में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं को बंद मकानों को निशाना बना रहे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था के तहत अब यदि कोई परिवार कई दिनों के लिए घर बंद कर बाहर जा रहा है तो वो इसकी जानकारी संबंधित थाने या फिर पुलिस चौकी को दे सकता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ऐसे बंद मकानों की निगरानी करेगी ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इस व्यवस्था को लेकर गोरखपुर पुलिस ने शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों में जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। ऑटो और ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों से अपील की जा रही है कि घर खाली छोड़ने से पहले पुलिस और पड़ोसियों की इसकी जानकारी जरूर दें। पुलिस की इस व्यवस्था से लोग बेफिक्र होकर अपना मकान बंद कर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अब उनके घर की सुरक्षा पुलिस करेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें चोरों ने पहले मकानों की रेकी की और मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चोरों के निशाने पर खासतौर पर ऐसे मकान रहते हैं जिनमें कई दिनों तक ताला लटका रहता है। नई व्यवस्था के तहत जिन मकानों के बंद होने की सूचना पुलिस को मिलेगी वहां संबंधित बीट पुलिस अधिकारी, चौकी प्रभारी और गश्ती दल निगरानी रखेंगे। हाल ही में दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की घटनाओं को गोरखपुर पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इसके बाद ही बंद मकानों की सुरक्षा को लेकर ये पहल शुरू की गई। गोरखपुर पुलिस की इस नई पहल को लेकर हमने एसपी सिटी और शहर के लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
6: चोरी का पैटर्न जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है उसमें जो छुट्टियों के लिए लोग घर जाते या किसी फंक्शन के लिए कहीं बाहर जाते उन घरों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के चलते गोरखपुर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें हम सभी जगह लाउडस्पीकर से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर जा रहा है छुट्टियों पे तो इसकी सूचना संबंधित थाने पे, चौकी पे या संबंधित बीट कांस्टेबल को दे दी जाए ताकि वहाँ पे पुलिस द्वारा निगरानी बढ़ाई जाए। ये अभियान हम पिछले दो दिनों से चला रहे हैं, इसमें कुछ थानों पे ऐसी सूचनाएं आई भी है तो वहाँ पे हमारे द्वारा निगरानी बढ़ाई गई है।
7: गोरखपुर पुलिस एक अभियान चला रही है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपके घर पे ताला बंद है तो आप एक सूचना पुलिस को दे दीजिए, वहाँ पे गश्ती बढ़ जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, आपके घरों की सुरक्षा होगी। किस तरह आप देख रहे थे?
8: निश्चित रूप से यह गोरखपुर की जरूरत भी थी क्योंकि लगातार इधर चोरी की घटनाएं बढ़ी थी और जैसे आप घर से निकलते थे रेकी होती थी और चोरी हो जाती थी। तो गोरखपुर के लिए बहुत ये अभिशाप की तरह था कि आप घर छोड़ के नहीं जा पाते थे। लगन में बहुत सारे रिश्तेदार छूट जाते थे इसी चक्कर में। तो यह पुलिस का निश्चित रूप से काबिले तारीफ प्रयास है। अगर यह अंजाम तक पहुंचा तो लोग बेफिक्र होकर लगन और शादी और ब्याह और गांव जा सकेंगे। यह वाकई में बड़ी उपलब्धि गोरखपुर पुलिस की होगी।
9: ये बहुत ही सराहनीय कदम है पुलिस गोरखपुर पुलिस का। हमको ये लगता है कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसा चलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग के घरों में ऐसा लोग होते हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, घर में एक ही दो लोग व्यक्ति रह जाते हैं, तो कभी शादी विवाह या कहीं जाना आना होता है तो कई लोगों को बड़े दिक्कतें होती हैं और सोचते हैं किसके भरोसे आपको अपने घर को छोड़ के जाया जाए, घर में चोरी ना हो जाए। घटनाएं लगभग चोरियों की, चाहे एक दो लोग रहने वाले हों चाहे पूरा परिवार रहने वाला हो, अगर परिवार छोड़ के कहीं जाता है तो आता है तो देखता है कि ताले टूटे हुए हैं, चोरी हुई है, अंदर सारे सामान बिखरे हुए हैं। पुलिस को तब पता चलता था कि जब लोग आते थे। लेकिन अगर ये पहल शुरू की है गोरखपुर पुलिस ने तो बहुत अच्छी पहल शुरू की है, सराहनीय कदम है। और कोई अगर इसी बात है कि सूचना देकर कोई जाता पुलिस को तो उनकी समान सुरक्षित है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है गोरखपुर पुलिस का ये।
10: देखिए, इस अभियान से सबसे पहले तो उस परिवार के लिए बहुत लाभ होगा जिस परिवार के घर में चोरी हो जाता था, और उससे बड़ा आसानी और राहत की सांस लेगी पुलिस, क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर अपने घर के बारे में बता देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि हम लोग पूरा परिवार जा रहे हैं, तो जिसमें क्या है कि पुलिस वहाँ पर राउंड करेगी, आएगी जाएगी। लेकिन अब उसमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि राउंड आप 10 बजे करते हैं, कै बजे करते हैं, कि या फिर उस पुलिस वालों को, दो पुलिस वालों को उस घर पर बैठाते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। आके जाने से तो खैर चोर कभी भी आ सकता है।
11: कुछ हद तक समाधान होगा?
10: समाधान तो होगा कुछ हद तक, तो
11: चोरी की वारदातों में कमी।
10: बिल्कुल बिल्कुल,
12: ये तो ठीक है। इस तरह का अभियान चला रही पुलिस, गोरखपुर की पुलिस तो सराहनीकार है, लेकिन ये अभियान कब तक चलेगा और कितने टाइम चलेगा ये पहले पूछने वाली बात है कि किस तरह से वो पुलिस अभियान चलाएगी। मान लीजिए किसी का घर बंद करके जाता है, 24 घंटे बंद रहेंगे, तो 24 घंटे में कितने घंटे पुलिस उस क्षेत्र का निगरानी करेगी या उस कमरे का निगरानी करेगी। जो
1: अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात बिहार के दूसरे वैभव की। बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का दूसरा वैभव और बिहार क्रिकेट का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है।

0: बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहाँ के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। अक्षरा ने नाबाद 306 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। ऐसा करके 15 साल की अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मुंबई की ईरा गुप्ता के नाम है। ईरा ने घरेलू राज्य स्तर मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे। उनकी पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे।
1: जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके, फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे।
0: अक्षरा क्रिकेट को मिशन की तरह देखती हैं। वो जीवन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट को भी जीवन का लक्ष्य बताती हैं।
1: भैया लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मेरे को भी लगा हमको भी खेलना है, तो फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे उस टाइम से।
2: कोई कोच भी है?
1: कोच मेरे अंकल ही हैं और भैया लोग।
0: अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी वाले इस वनडे में शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। ऐतिहासिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर 19 टीम ए ने 40 ओवर में 5 विकेट पर 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अक्षरा बवाल बनकर उभरी। बिहार की रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता 14 साल से ही घरेलू मुकाबलों में अपना जौहर दिखा रही हैं, जिसके दम पर उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में जगह मिली। बीसीसीआई की आयु श्रेणी टूर्नामेंट्स के चारों प्रमुख फॉर्मेट में एक ही सीजन 2024-25 में खेलने वाली अक्षरा देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अक्षरा जब केवल 8 साल की थी तो पहली बार उन्होंने बल्ला पकड़ा था। अक्षरा के पिता राज किशोर शाह रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं और उनकी मां रीना देवी एक गृहिणी है। शाह ने घर के पास बगीचे में एक नेट लगवाया था ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। 2024 में अक्षरा को बिहार अंडर 19 महिला टीम के लिए चुना गया और कुछ वक्त बाद 14 साल की उम्र में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। शानदार खेल दिखाने के लिए अक्षरा को सबकी तारीफ मिल रही है। बिहार से रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्र ने भी अक्षरा को बधाई दी और भविष्य में उसके सितारा क्रिकेटर के तौर पर उभरने की उम्मीद जताई।
3: आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहते हैं वाइज में, तो हो सकता

0: Pod Good News Today. ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
6: अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज

0: का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी।
0: डोपिंग के खिलाफ अभियान से जुड़े नीरज चोपड़ा, खेल जगत से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
6: डोपिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में अब भाला फेंक में ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा जुड़ गए हैं। नीरज चोपड़ा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर इस समस्या के खिलाफ एक जागरूकता अभियान शुरू किया। एथलीट्स फोरम में IOA के CEO रघुराम अय्यर ने बताया कि संस्था ने क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेन के लिए नीरज चोपड़ा फाउंडेशन के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान डायमंड लीग में हिस्सा लेने के लिए अभी दोहा में मौजूद नीरज चोपड़ा का एक वीडियो संदेश दिखाया गया, जिसमें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ने बताया कि उन्होंने ये पहल क्यों शुरू की। भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को M.A. चिदम्बरम स्टेडियम पर तीसरा और सीरीज का आखिरी वनडे खेला जाएगा। चेन्नई वनडे से पहले भारतीय टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी शामिल हो गए हैं। BCCI ने पुष्टि की है कि राणा ने बेंगलुरु के COE में अपना रिहाब कार्यक्रम पूरा किया और अब चेन्नई में टीम इंडिया से जुड़ रहे हैं। भारतीय टीम शुरुआती 2 वनडे में जीत दर्ज करके पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह IPL के अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये युवराज सिंह का IPL में पहला कोचिंग असाइनमेंट होगा। युवराज सिंह 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ODI वर्ल्ड कप दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। युवराज सिंह टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल और T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पर्सनल मेंटोर रहे हैं। युवराज सिंह ने कुल 132 IPL मैच खेले हैं।
0: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
7: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
8: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
9: Swing and a foul out of play off to the left.
8: Big 12 Radio.
10: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
8: Talk Sport.
11: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
8: And more. Search sports to find the stations covering your team.
4: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: नीट्री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना।

नमस्कार रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं रीनीट 2026 की। 21 जून को होने जा रही इस परीक्षा में देश भर की नजर है। परीक्षा में नकल या फिर किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रश्न पत्रों के ले जाने से लेकर सेंटर्स पर निगरानी करने तक सुरक्षा की अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आज हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे जरूरी ये जानना है कि दूसरी बार परीक्षा दे रहे छात्रों में कितना जोश है। पेपर लीक के बाद जब परीक्षा रद्द हुई तो स्वाभाविक है कि छात्र निराश हुए, पर अब उनकी तैयारी एक बार फिर से एग्जाम क्रैक करने की है। आज आपको कोटा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे और छात्रों का माइंडसेट भी समझाएंगे। मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में स्कूलों में कैसी सुरक्षा है, इस पर भी आगे बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की शानदार तैयारी से। 21 जून को होने वाली रीनीट को लेकर कल होने वाली जिस तरह की तैयारियां हैं, इस बार दरअसल परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी सिलसिले में कल देश भर के 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। इससे पहले एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को अपने हैंडओवर में ले लिया है। इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल होने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे शुरू होगी ये मॉक ड्रिल। पेपर लीक के बाद जब नीट को रद्द किया गया तो कुछ दिनों के लिए लाखों छात्र मायूस हो गए, लेकिन घर वालों के साथ और टीचर्स या फिर कोचिंग के सहयोग से उनमें जल्दी ही तैयारी का जुनून लौट आया। रीनीट को लेकर छात्रों में कैसा जोश है, इसे समझने के लिए हमारी टीम पहुंची कोटा, जहां एक बार फिर से हजारों की तादाद में छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। देखिए कोटा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

मेहनत पर भरोसा है, तैयारी पर इत्मीनान है। क्या हुआ अगर 24 घंटे बाद ही कठिन इम्तिहान है? पहले भी दम दिखाया, इस बार भी जोर लगाएंगे और मुश्किल मुकाबले में अपनी जगह बनाएंगे। कोटा की सड़कों पर, गलियों में, हॉस्टल में, कोचिंग में नीट को लेकर एक बार फिर से वही जज्बा, वही जुनून नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत तनाव तो लाजमी है, पर घबराहट नहीं। कहीं किसी कमरे में गिटार के तार पर जीत का संगीत है और परीक्षा की इस घड़ी में अर्जुन की तरह उद्घोष, न दैन्य न पलायनम, यानी निराशा से निकलकर जूझेंगे और जीतेंगे।

0: कोटा देश का कोचिंग कैपिटल है। पिछले 4 दशकों में 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की है। हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ पे भर्ती लेते हैं और इम्तिहानों की तैयारी करते हैं। आशाएं, उम्मीदें, नाउम्मीदी और टूटे सपनों को एक साथ समाये हुआ है उच्च शिक्षा का ये नर्व सेंटर। लेकिन नीट की दोबारा परीक्षा से पहले यहाँ के छात्रों में क्या मूड, क्या माहौल है?
1: जागती आंखों ने जो सपना देखा है, ये घड़ी उसे साकार करने की है। साल, दो साल या उससे भी ज्यादा वक्त से जिसके लिए साधना की, अब उसे आजमाने का समय है। कोटा के कोचिंग सेंटर में और बंद कमरों में छात्र जी जान से जुटे हैं। इस दौरान भूख लगे तो पोहा है ना?
0: पोहा खाके उसके बाद लंबा टाइम होता है, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। और यहीं पे हमें मिल गए 2 स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं नीट की तैयारी और नीट की परीक्षा सर पर है। तो पूछ ही लेते हैं आपसे कि कितना टेंशन है, तनाव है?
2: तनाव तो मैम कुछ नहीं है। 21 तारीख को एग्जाम है, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर है और अच्छे से एग्जाम देना है।
3: कहाँ से आए हैं?
2: मैं एमपीसी ओपुर से आया हूँ। दो साल से यहीं कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
0: पिछला दिया था आपने?
2: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
0: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
2: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना। रिदम टूट गया था, मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में इसे।
0: चलिए, मेंटली टफ होना तो बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं?
4: मैं 12 से हूँ, राजस्थान, यहाँ पास में ही पड़ता है मेरे तो।
0: और खा लीजिए, खाते रहिए।
4: खाते खाते
0: आपका ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ बताइए, तो फिर आप भी घर चले गए थे?
4: मेरा तो पेपर हो गया था 3 मई को, मैं घूमने आया था पूरा महीना मई का। बट क्या हुआ, फिर बाहर तक न्यूज आई कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो फिर ना एंजॉय कर पाए वाला तो वैसे सबका ना।
0: अच्छा अच्छा,
4: तो वही था बस कि कैंसिल वगैरह हो गया था, वरना मैं तो फन करने वगैरह थोड़ा घूमने वगैरह आया था। क्योंकि कोटा में मेरा सेकंड ड्रॉप है, 4 साल में तक घूम वगैरह नहीं पाया था क्योंकि पढ़ाई वगैरह में लगा हुआ था। तो मैं तो सोचा कि लास्ट ईयर है, वैसे लास्ट ड्रॉप है मेरा भी, तो मई में ना कि थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो बट वो 12 तारीख को पेपर कैंसिल हो गया था। फिर
0: मूड सेट करना पड़ा कि पढ़ना है?
4: नहीं, मूड सेट तो क्या, पढ़ाई तो कभी भी कर लो, ऐसा है नहीं ना कि डिप्रेस वगैरह, ऐसा कुछ होते नहीं है। मेंटालिटी डिफरेंट रखनी चाहिए।
0: आप बड़ा मजबूत मैसेज बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स को देते हैं उससे।

0: नोएडा, जिसकी पहचान इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्री के तौर पर है, वहाँ सिर्फ किताबों में डूबे चेहरे नहीं, घंटों की पढ़ाई के दरमियान थोड़ा बहुत वक्त शौक के लिए भी निकल आता है, और संगीत का शौक पढ़ाई और तैयारी के तनाव को कम कर देता है।
1: में यहाँ पे जगह जगह जा रहे हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि कोटा में एक पूरी छात्रों की दुनिया है, और उस दुनिया में एक छोटी सी दुनिया इन म्यूजिशियंस की है, इन संगीतकारों की है, जो कि अपना रॉक बैंड लॉस्ट कॉड्स, द लॉस्ट कॉड्स, इन्होंने अपना रॉक बैंड बनाया है। और एक तरफ जहां इतनी एग्जाम की टेंशन होती है, आई एम श्योर दिस इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ यू।

0: मतलब जैसे सीट्स वगैरह भी बहुत कम है कॉलेजेस में, और जैसे कि अगर कॉलेज करना चाहे तो, और जितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे कि नीट जेईई कोई सा भी हो, तो फिर उसका मतलब एक बहुत कम सेलेक्टेड बच्चे ही जाते हैं, तो सीट्स बहुत कम है उस चीज़
1: के। आई एम श्योर आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, और आपका रॉक बैंड भी बहुत हिट होगा।
2: 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा को एनटीए ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था। अकेले कोटा में ही 37,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। मेहनत पर इस तरह पानी फिरने से निराशा तो हुई, पर टीचर्स और संस्थानों ने फिर से जोश भरा और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।
3: उनको लग रहा था ऐसा कि अब यहाँ पर आने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने सेंटर्स को चेंज कर दिया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे, जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है, और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था, तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए। और कोटा आए तो मैक्सिमम हॉस्टल्स वाले थे या बाकी लोग थे, कोचिंग्स की बात हम करें, सभी ने उनको हाथों हाथ लिया और सबके लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज मिल सकती हैं यहाँ पर वो सब प्रोवाइड की उनको। टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए।
1: अच्छा।
3: ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों के बेहतरी के लिए किया।
2: कोटा एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड्स को दोहराने के लिए तैयार है। 21 जून को नीट में शामिल हो रहे छात्रों के दिलो दिमाग में नेगेटिविटी नहीं, यहाँ तक कि कोचिंग और टीचर्स ने माता पिता और घर वालों को भी मानसिक तौर पर मजबूत बनाया है।
4: तो हाँ, काफी डिप्रेसिंग फेज था, वापस लाइक कैसे भी करके हिम्मत वापस करके आए हैं, और लाइक ठीक है, हाँ इस बार देंगे पूरी कोशिश करके।
5: नीट एग्जाम जब ये कैंसिल हो गया जो हमारा, तो एक होता है ना, मतलब एक करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उस दिन में तो बुरा बहुत ज्यादा लगा कि फिर वो हाँ रोए भी, मतलब एक हो गया था, मतलब क्या कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा मुसीबत हुई, लेकिन जो टीचर हमारे एलएन के हैं सब अच्छे हैं, तो सपोर्ट किए, तो जिसकी वजह से अभी हैं, अब एग्जाम देने के कगार पे हैं।
6: थोड़ा कॉन्फिडेंस है, 2 दिन बाद फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आराम से
1: स्पिरिट सबको रखनी है, 2 दिन बाद एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, है ना, कॉन्फिडेंस रखना है ना।
2: सिस्टम की नाकामी से दिल में मलाल है, पिछली बार ही पास हो जाते ये भी ख्याल है, पर उदासी को दरकिनार करके कोटा के छात्र हाथी जैसी दिखने वाली चुनौती से आंख मिलाकर भिड़ने को तैयार हैं। उनकी ही भाषा में कहें तो एक बार फिर से नीट फोड़ने को तैयार हैं। कोटा से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

तो हुई छात्रों की बात, जिनमें री एग्जाम के लिए जबरदस्त जोश है, लेकिन इसके साथ ही एनटीए ने परीक्षा के लिए भी जबरदस्त इंतजाम किए। चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश और विदेश के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए एनटीए ने 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। इनमें 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र अधीक्षक, निरीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल भी शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी के साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन वाले प्रश्न पत्र का भी इंतजाम है। परीक्षा सामग्री को जीपीएस वाले वाहनों के जरिए पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, जिन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्षों से जोड़ा गया है। सेंटर पर छात्रों की जांच हाई सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर के जरिए होगी। गर्मी को देखते हुए सेंटर्स पर पानी, बिजली और मेडिकल सुविधा सुनिश्चित की गई है। एंट्री के लिए छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। एनटीए ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील भी की है और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-4075-9000 और 011-6922-7700 जारी किए हैं। बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्र नीट क्लियर करना चाहते हैं, यानी इस बार इस एक परीक्षा पर उनकी कड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, और इसीलिए 21 जून की परीक्षा के लिए व्यापक और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए रिपोर्ट।

0: ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि इससे पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो गई। रीनीट के प्रश्न पत्रों को लेकर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़े, अलग अलग सेंटर पर पहुंचे। एयरफोर्स के 200 उड़ानों का नतीजा ये होगा कि रास्ते में पेपर लीक या छेड़छाड़ की संभावना नहीं रही। लेकिन पेपर लीक होने के बाद यही एक इंतजाम नहीं है, तमाम बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा फोकस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा पर है। बाहर और भीतर सुरक्षा के कई लेयर बनाए गए हैं। केंद्रों के अंदर जिम्मेदारी सीधे CRPF को दी गई है। इसके अलावा रीनीट परीक्षा केंद्र हॉल में प्रवेश करने से पहले और बाद में ज्यादा सख्त जांच प्रक्रिया होगी। इसके लिए हर एक जरूरी जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर, घड़ियां, कैनोपी और दूसरी जरूरी चीजें सेंटर्स पर पहुंच चुकी हैं।
1: परीक्षा केंद्र में मौजूद है, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहां पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहां पे आपको दिखा दें CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, और ये सभी CCTV कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के स्कूल में। और यहां पे अगर आप देखें तो बाकायदा जो सरकार की तरफ से NTA की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको CCTV कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और ये जो छात्राएं आएंगी उनकी फ्रिस्किंग होगी पूरी तरीके से यहाँ पे, तो उसके लिए कैनोपीज आ चुकी हैं। इस कैनोपी को जो प्रवेश द्वार है वहां पे भी लगाया जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी रखा जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है, और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। CCTV कैमरों का जो आउटपुट है वो इसी कंट्रोल रूम में पहुंचेगा।
0: न सिर्फ MP बल्कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां रीनीट के सेंटर हैं, सरकार और प्रशासन दोनों सतर्क और सावधान हैं। रीनीट में एक बड़ा बदलाव समय को लेकर है। इस बार छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। रीनीट 2026 परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त समय उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र पूरा करने और OMR उत्तर पुस्तिका को आराम से भरने में मदद के लिए दिया गया है।
2: तैयारियों की समीक्षा की गई, सभी को पूरी मुस्तैदी से काम करने की हिदायत दी गई, और 20 की गाइडलाइंस के संदर्भ में जो भी क्लैरिफिकेशन थे वो जारी किए गए। तदुपरांत सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अपीयर होना है, और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो समयबद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: सेंटर पर छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, एक फोटो ID प्रूफ और जरूरी दस्तावेज ले जाना होगा, जिसकी पहचान सत्यापित नहीं होगी उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। छात्र आसानी से सेंटर तक पहुंचे, इसके लिए कई राज्य सरकारों ने छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है।
1: इस बार की परीक्षा में होने वाले सभी उपकरणों को परीक्षा केंद्रों पर भिजवाना शुरू कर दिया है, और गोपनीयता इतनी कि खुद जो केंद्र के संचालक हैं उन तक को नहीं पता है कि जब उनके हाथों में यहाँ परीक्षा के दिन पेपर पहुंचेंगे तो वो भोपाल में आखिर रखे कहां गए हैं। कुल 32 केंद्र है राजधानी भोपाल में, जिनमें 13,000 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा देनी है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 230 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जो रीनीट की एग्जाम होगी जहां पर 21 जून रविवार दोपहर 2 बजे से, और इस बार अतिरिक्त समय रहेगा यानी शाम 5:15 तक कड़े सुरक्षा घेरे और अभूतपूर्व इंतजामों के बीच इस बार नीट का एग्जाम होने वाला है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।
3: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें, कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर, जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर, जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
4: Achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
5: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: नीटरी एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी NTA। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन DC में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 13 लाख भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू होनी है यात्रा।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। नगरोटा से कल 8 से 9 हजार श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था रवाना होगा। गांधरबल के तुलसित मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला। कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी यात्रा को लेकर है जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं के लिए लगभग 200 जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात। राहत और पुनर्वास विभाग ने यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों की सघन तलाशी अभियान। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भगवती नगर बेस कैंप में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी। अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 16,470 श्रद्धालु पहुंचे। अब तक 12,02,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में 8,308 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक करीब 12,80,000 भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 6,26,000 भक्तों ने दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,91,000। श्रीमकुंड साहिब में भी 3,745 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अब तक 1,13,000 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। टेरी गढ़वाल के प्रतापनगर में ओणेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का मेला। सबसे प्राचीन शिवालयों में ओणेश्वर महादेव मंदिर की होती गिनती। शिवलिंग पर हमेशा चावलों से आच्छादन की अनोखी परंपरा। श्रद्धालु बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करके करते हैं पूजा। ओणेश्वर महादेव मंदिर में विशाल शिवलिंग है। गर्भगृह की प्रमुख पहचान ग्राम पंचायत देवल का रावल परिवार पीढ़ियों से कर रहा है सेवा। श्रद्धालु स्वयं शिवलिंग को सीधे स्पर्श नहीं कर सकते, देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं। ओणेश्वर महादेव मंदिर में पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठान और दर्शन रहते जारी, लोगों में खासी आस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान राम की आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुख शांति की कामना की। भगवान राम की आरती में भी शामिल हुए। मंदिर में दान पात्र में किया दान। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद भी लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रहित और सांस्कृतिक विषयों पर हुआ मंथन। सीएम धामी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। बैठक में भारतीय संस्कृति और संरक्षण और संवर्धन पर हुई चर्चा। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में कन्या पूजन भी किया। इस दौरान कन्याओं को दिए विशेष उपहार। कामाख्या मंदिर से बच्चों को लेकर दिखा सीएम योगी का स्नेह। छोटी बच्ची को गोद में खिलाते नजर आए मुख्यमंत्री।
9: कामाख्या धाम में सीएम योगी ने महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा का किया अनावरण। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। रामनगरी अयोध्या में विकास की बयार, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। द्रास में कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक वर्षगांठ का जश्न, ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ पर हुआ विशेष समारोह। कारगिल वॉर मेमोरियल पर भारतीय सेना की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित, शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सेना ने टोलोलिंग चोटी पर कब्जे को कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया। कार्यक्रम ने शौर्य और बलिदान की गाथा को फिर से जीवंत किया। रांची के मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम में 4 दिवसीय आई कैंपेन का समापन, ऑपरेशन दृष्टि के तहत मेगा सर्जिकल कैंप का आयोजन किया गया। 320 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई गई, 2500 मरीजों की आंखों की हुई जान, 260 से ज्यादा मोतियाबंद ऑपरेशन। नीट री एग्जाम के लिए देशभर में पुख्ता इंतजाम, परीक्षा से पहले एनटीए कल देशभर में मॉक ड्रिल करेगा, नीट परीक्षा केंद्रों पर रहेगा सख्त पहरा। 21 जून को देश के 551 शहरों में नीट री एग्जाम, 5500 परीक्षा केंद्रों पर तैनात होंगे 2,00,000 कर्मचारी, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। एनटीए ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

पासिंग आउट परेड आयोजित। प्रशिक्षुओं ने शानदार मार्च पास्ट और अनुशासन का प्रदर्शन कर सभी का मन मोहा। खेल कोटे की भर्ती। प्रशिक्षुओं ने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की तैयारी की। अब ये जवान देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एसएसबी अधिकारियों ने नव प्रशिक्षित जवानों को ईमानदारी और अनुशासन से कर्तव्य निभाने का संदेश दिया। जवानों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के परिजन भी शामिल हुए। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर परिवारजन गर्व और खुशी से भावुक नजर आए। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस की भव्य तैयारी। दिल्ली के शिवनंदा योग वेदांता नटराज सेंटर में एक साथ कई लोग कर रहे योगा। महिलाओं में योग को लेकर खासा उत्साह। योग प्रेमियों ने साझा किए अपने अपने अनुभव। सालों से योग कर रहे लोगों ने बताया लाइफ चेंजिंग। योग से लोगों के शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी में भी होता है सुधार। योग की ट्रेनिंग देने वाले युवा ट्रेनर्स की उम्र महज 21 साल। श्रीनगर में भी युवा योग प्रैक्टिस सेशन में जमकर कर रहे अभ्यास। बच्चों युवाओं के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अंबाला में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग साधकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होगा मुख्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। कोलकाता योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे हजारों लोग। कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी। योग को बढ़ावा देना कार्यक्रम का मकसद। इस साल के योग दिवस कार्यक्रम की थीम होगी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने किया ऐलान। योग दिवस से पहले दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया योगाभ्यास। विशेषज्ञों ने हेल्थनेस वेलनेस और माइंडफुल लिविंग पर जोर दिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस से पहले मुंबई में किया योग कार्यक्रम में श्रेयस सिंह अर्जुन कपूर वीर पहाड़िया समेत कई हस्तियां शामिल हुई। नागपुर में रक्षा उत्पादन के एक क्षेत्र में एक बड़ा कदम। 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना की रखी आधारशिला। ये मशीन रक्षा और एरोस्पेस निर्माण में निभाएगी अहम भूमिका। बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम घटकों का उत्पादन होगा संभव। बागेश्वर के प्रेमा रावत का भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में चयन। सुमटी गांव की बेटी के चयन पर स्थानीय लोगों ने जताया गर्व। बागेश्वर में स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। शहर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की। रिलायंस के 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दी मंजूरी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का स्वागत किया। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात। बड़े पर्दे पर 4 फिल्में रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही रिलीज। सिनेमाघरों में आज धूम मचाने के लिए तैयार रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने बड़े पर्दे पर दस्तक की। इस फिल्म में अंकित यादव और जय भट्टाचार्य लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर पर टॉय स्टोरी 5 भी आज बड़े पर्दे पर रिलीज। ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी रिलीज हुई। वेटरन एक्टर असरानी जरीना वहाब खासतौर से नजर आएंगे इस फिल्म में। जूनियर नाम के डॉग ने अमेरिका के में जीत की भविष्यवाणी की। फीफा वर्ल्ड कप के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई एक्टिविटी। डॉग के सामने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 कप रखे गए थे। जूनियर सीधे अमेरिका वाले कप की तरफ गया और आइसक्रीम खा ली।
इस एक्टिविटी के दौरान आया दिलचस्प और मजेदार

0: एक्टिविस्ट जूनियर डॉग ने बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले कप से भी आइसक्रीम खाई। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होने वाले मैच को लेकर उत्साह, लोग इस भविष्यवाणी को मजे के तौर पर देख रहे हैं। कॉमेडियन ड्रू कैरी ने भी भविष्यवाणी की, अमेरिका के जीतने की ज्यादा संभावना। ताइवान के न्यू ताइपे में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन, परंपरा और खेल का शानदार संगम। ड्रम में ताल पर नाविकों ने दिखाया बेहतरीन तालमेल, खिलाड़ियों ने सामूहिक ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन किया। रंग बिरंगी ड्रैगन बोट्स रही आकर्षण का केंद्र, 500 मीटर बोट रेस ने दर्शकों का मन मोह लिया। कई टीमों ने जीत के लिए किया जोरदार मुकाबला, ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। हजारों साल पुरानी है ड्रैगन बोट फेस्टिवल की परंपरा, ड्रैगन बोट रेस आज ले चुकी है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का रूप। चीन के जेजियांग प्रांत में ड्वानवू फेस्टिवल की शानदार धूम, विदेशी सैलानियों ने पारंपरिक चीनी संस्कृति को करीब से जाना। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के रंगारंग कार्यक्रम ने खींचा सबका ध्यान, रोमांटिक ड्रैगन बोट टग ऑफ वॉर मुकाबला बना आकर्षण का केंद्र। जोंगजी बनाने की कला ने सैलानियों को खास आकर्षित किया, जेजियांग का यह उत्सव विदेशी सैलानियों के लिए बना यादगार अनुभव। चीन के ग्वांगजू प्रांत में अनोखी ड्रैगन बोट परंपरा, हजार साल से ज्यादा लोगों ने मिलकर उठाई विशाल लकड़ी की ड्रैगन बोट। वुडन ड्रैगन बोट की लंबाई 108 मीटर, सड़क पर हजारों कदम बढ़े एक साथ, दिखाई दी अद्भुत अनुशासन और तालमेल। रियो के एक्वेरियम में शार्क रितिन्हा ने ब्राजील की जीत की भविष्यवाणी की, उसने हैती के बजाय ब्राजील वाला डिब्बा चुना।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
3: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
2: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त, रात 8 बजे
0: गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन में इन दिनों ड्रैगन बोट फेस्टिवल की धूम है। एक तरफ सबसे बड़ी ड्रैगन बोट रेस आयोजित की जा रही है, दूसरी तरफ बर्फ की शानदार कलाकृतियों के जरिए इस त्योहार की परंपरा और इतिहास को जीवंत रखा गया है।
2: नदी के पानी को चीरती रंग बिरंगी नावें, जोश से भरे खिलाड़ी और किनारों पर उमड़ा उत्साह, ये नजारा है चीन के सिचुआन प्रांत के बाजोंग शहर का, जहां 2026 चाइनीज ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। देश की सबसे बड़ी ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में 54 टीमों के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। दो दिन तक चलने वाले इस आयोजन में पुरुष, महिला, युवा और अंडर 16 समेत कई श्रेणियों में मुकाबले हो रहे हैं। सौ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की रेस के साथ इस बार 2000 मीटर की लंबी रेस भी जोड़ी गई है। खिलाड़ियों में भी तालमेल भरी पेडलिंग और जीत की जंग ने प्रतियोगिता को और रोमांचक बना दिया है। लेकिन ड्रैगन बोट रेस सिर्फ खेल नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक परंपरा। इसी सांस्कृतिक विरासत को अब बर्फ की खूबसूरत कलाकृतियों में भी सजाया गया है। लाल, हरे, नीले और पीले रंग की बर्फ से बनाई गई ये कलाकृति ड्रैगन बोट रेस की परंपरा को बेहद जीवंत अंदाज में दर्शाती है। एक ओर पानी पर दौड़ती ड्रैगन बोट्स का रोमांच तो दूसरी ओर बर्फ में सजी संस्कृति की झलक। चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल परंपरा, खेल और कला का ऐसा संगम बन गया है जो लोगों को अपनी विरासत से जोड़ते हुए नई पीढ़ी तक उसकी कहानी पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: नीट री एग्जाम से पहले कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, घर और मकान, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि घर में छिपी होती हैं आपकी खुशियां और साथ ही में यहां से होता है ऊर्जा का संचार और इसी से कनेक्शन होता है आपकी जिंदगी, आपके भाग्य का। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे घर को सुधारने से सुधर सकता है आपका भाग्य। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपको किसी कानूनी मामले के लिए या किसी मुकदमे के काम से जाना है तो कमर के ऊपर जो अपर आउटफिट है उसमें सफेद रंग का कपड़ा पहनकर जाइएगा। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता जो भी पहन के जाते हैं वो वाइट कलर का पहन के जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 20 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि हमारी खुशियों की चाबी, हमारा जो भाग्य होता है ये भी उससे जुड़ा होता है। ऐसे में हम अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरीके से अपने घर में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने घर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जगहों को बेहतर रखते हैं तो आप अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। क्या संबंध है घर का भाग्य से? देखिए, घर के अलग अलग स्थान अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जैसे पूजा घर सूर्य से, बेडरूम शुक्र से, बाथरूम राहु और केतु से। तो घर के इन विशेष स्थानों को ठीक रख के आप अपने ग्रहों को ठीक रख सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थानों को बेहतर करके आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को भी सुधार सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुंडली का जो कोना खराब होता है या जिस कोने में खराब ग्रह आपकी कुंडली में हैं, वही हिस्सा घर का गड़बड़ होता है। अगर आप घर के उस हिस्से को बेहतर कर लें तो आप अपनी कुंडली के उस नकारात्मक ग्रह को बेहतर जरूर बना पाएंगे।
0: तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार यानी कि एंट्रेंस की। कितना महत्वपूर्ण होता है घर का मुख्य द्वार, ये कैसा होना चाहिए और कैसे इसमें सुधार किया जाए, आइए जानते हैं।
1: घर का जो मुख्य द्वार है यानी मेन डोर है, इसका महत्व क्या है और क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार से आपके घर में खुशियां भी आती हैं और आपके घर में समस्याएं भी आती हैं। घर के मुख्य द्वार को ठीक करके ही घर में खुशियां लाई जा सकती हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए और मेन डोर अंधेरा ना हो, यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर एक नेम प्लेट आपको लगाना चाहिए जो काले रंग की नहीं होनी चाहिए, और मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में शनिवार को एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले स्वस्थ रहेंगे, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, सफलता पाना आसान होगा।
0: तो चलिए, घर का मुख्य द्वार कैसा हो, आपका घर कैसा हो, इस पर हमारी जो चर्चा है लगातार यूं ही जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घर के लिविंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम की, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भी घर में आता है सबसे पहले इसी एरिया में बैठता है। कैसा होना चाहिए आपका घर का लिविंग एरिया, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: तो घर का जो लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। और अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को ठीक रखते हैं तो जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। लिविंग एरिया अगर गड़बड़ होगा, 24 घंटे की टेंशन घर में बनी रहेगी। लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को प्रकाशित रखिए, इनलाइटेंड रखिए। यहां पर हल्की सुगंध की व्यवस्था करिए, थोड़ी खुशबू आती रहे, और इस स्थान पर ढेर सारे फूल या फूलों के चित्र लगाइएगा। लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में जूते चप्पल रखने की जगह ना बनाएं। बेहतर होगा कि ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में जूते चप्पल ना रखे जाएं। उसको जितना सुंदर, जितना प्रकाशित और जितना व्यवस्थित रखेंगे उतना ही आनंद आपको जीवन में प्राप्त होगा।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का। तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न दीक्षा जी ने हमें लिखा है, और दीक्षा जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई सन 2000, जन्म का समय रात में 9:35, जन्म स्थान है पंचकुला। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। ये कह रही हैं कि मैं अभी कंप्यूटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरी करती हूँ, और अब मैं नौकरी भी बदलना चाहती हूँ और स्थान भी बदलना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकेगा, क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए ठीक रहेगा? दीक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप फरवरी 2027 तक जहां हैं वहीं रहिए, फरवरी 27 तक कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। फरवरी 2027 के बाद अगर आप नौकरी बदलती हैं तो नौकरी बदलेंगी, स्थान बदलेगा और बेहतर जगह आप पहुंच जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो इसका तरीका बेहद आसान है। आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न कविता गुलाटी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1978, जन्म का समय सुबह के 9:35, जन्म स्थान है दिल्ली। कविता कह रही हैं कि मैं मानसिक समस्याओं से, भावनात्मक समस्याओं से बहुत परेशान हूं, हर बात पर मुझे चिंता होती है, तनाव होता है और डॉक्टर की दवाई चल रही है मेरी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। कविता, सबसे पहले बता दें कि जो डॉक्टर की आपकी साइकोलॉजिकल दवाई चल रही है मानसिक स्थिति की, वो दवाई अपने मन से बीच में बंद मत करिएगा। डॉक्टर की बात और डॉक्टर का परामर्श मानिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको लाभ जरूर होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को अपने गले में पहने, या कोई चेन पहनती हैं तो उसमें बुधवार की शाम को डालकर पहन लीजिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए और सुबह दोपहर शाम रात चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी अक्सर आप कहते हैं कि सबसे पर्सनल स्पेस बेडरूम के बाद अगर कोई और स्थान होता है तो वो होता है आपके घर की रसोई, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो ऐसे में कैसी हो आपके घर की रसोई, आइए जानते हैं।
1: अगर आपके घर के किचन की बात करें, रसोई की बात करें, तो यहां पर किन बातों का ध्यान देना है। घर की जो रसोई है उस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है, घर के लोगों के हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपके घर में रसोई में सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रसोई घर में बर्तन को, डिब्बों को, चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए और रसोई को पर्सनल रखिए। हर व्यक्ति आपकी रसोई में घुस जाए, आपकी रसोई में बर्तन छूने लगे, काम करने लगे, ये उचित नहीं है। और रसोई घर में जब आप शाम को पूजा कर लेते हैं या कर लेती हैं तो रसोई घर में धूप बत्ती जलाकर जरूर दिखाइए ताकि रसोई घर में शुभता प्रवेश करे। और रसोई घर में 2 बातों का बहुत ध्यान रखिए। खाना बनाते समय किसी भी हाल में आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट में रहते हो, आप मकान में रहते हो, खाना बनाते समय चेहरा साउथ में ना हो। या तो रसोई घर को सफेद रंग का रखिएगा, व्हाइट कलर का, या रसोई में हल्के लाल रंग का और ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक को धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, आर्थिक रूप से आपको लाभ होता दिख रहा है, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके घर के शयन कक्ष यानी बेडरूम के बारे में। तो आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी कि आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं।
1: अगर बेडरूम की बात करें, शुक्र का आधिपत्य है यहां पर। आपके बेडरूम में, आपके शयन कक्ष में जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो है शुक्र का। तो आपके बेडरूम से सुख और समृद्धि दोनों देखी जाती है। बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट शेड रखें, हल्का हरा या गुलाबी रंग या वाइट कलर बेडरूम का रखना अच्छा होगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में टेलीविजन ना लगाएं। हल्के संगीत की व्यवस्था आप चाहें तो अपने बेडरूम में कर सकते हैं। जहां तक संभव हो बेडरूम में पलंग पर बैठकर या कैसे भी खाना खाने से बचना चाहिए। अपने शयन कक्ष में ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश और वेंटिलेशन, हवा अच्छी तरह से आती रहे। देखिए, बेडरूम बहुत व्यक्तिगत जगह है, इसीलिए अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश मत करवाइए। और बेडरूम में अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो देवी देवताओं का चित्र रखने से या लगाने से भी बचना चाहिए।
0: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं आपके घर के बाथरूम की। तो बाथरूम कैसा होना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: आपके घर का जो बाथरूम है, चूंकि वहां पानी है तो चंद्रमा तो स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन उसके अलावा वहां राहु और केतु भी होते हैं। इसीलिए आपके घर के बाथरूम से जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं, जीवन की समस्याएं कंट्रोल होती हैं। बाथरूम को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। बाथरूम में पानी का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन पानी की बर्बादी मत करिए। बाथरूम में नीले रंग का प्रयोग या पर्पल रंग यानी बैंगनी रंग का प्रयोग करना लाभकारी होगा। और बाथरूम साफ रहे, प्रयोग करने के बाद सूखा रहे और हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा। जिन लोगों के कमरों से अटैच्ड बाथरूम है वो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला ना रखें, बाथरूम को बंद करके रखें प्रयोग करते समय भी और प्रयोग करने के बाद भी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न अनिल जी ने हमें यूएसए से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 3 जून 2010, जन्म का समय शाम के 7:25, जन्म स्थान है कैलिफोर्निया अमेरिका। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा आगे किस क्षेत्र में करियर बनाए, किस क्षेत्र में जाना इसके लिए बेहतर होगा। अनिल जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, अकाउंट्स के क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में बिजनेस या कॉमर्शियल क्षेत्रों में करियर बनाना अच्छा रहेगा। आपके बेटे के स्वास्थ्य के लिए जो आपने लिखा है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, केवल इनके खान पान का और इनके डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा लगभग 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने के लॉकेट में बनवाकर लाल धागे में मंगलवार को सवेरे अपने बेटे को पहनाएं, शुभ रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा और अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न नूपुर ने हमें लिखा है और नूपुर हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1974। जन्म का समय है सुबह के 11:25। जन्म का स्थान है बांदीकुई, जयपुर राजस्थान। नूपुर जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और अब तक मेरे 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में मेरे समस्या लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो। नूपुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत का समय अभी चल रहा है और स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल 2027 तक सतर्क रहिए। हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में ठीक रहेगा, लेकिन अपनी हड्डियों पर, अपनी नसों पर ध्यान बनाए रखिएगा। डॉक्टर से समय समय पे सलाह लेते रहिएगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर में रहते हुए नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है, तो अगर ऐसा किसी दर्शक के साथ भी हो रहा है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उस स्थिति को ठीक करने के लिए?
1: जी, अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके घर का बाथरूम सही ना बना हो, आपके घर के किचन का कलर बहुत अच्छा ना हो, या बेडरूम में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जीवन में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो रही हो। तो देखिए, तुरंत पेंटिंग करवाना, तुरंत तोड़फोड़ करवाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, उसकी तरंगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठिए, या तो शंख में जल भर के रख लीजिए सामने, या एक छोटे से लोटे या कटोरी में जल भर करके सामने रख लीजिए और बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। जब मंत्र जप कर लें, पूजा समाप्त हो जाए, उसके 10 मिनट बाद उस जल को अपने हाथ में लेते जाइए और घर के कोने कोने में, कमरे में, बाथरूम में, किचन में, रसोई में, हर जगह उसको छिड़किए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की तरंगे बड़ी अच्छी हो जाएंगी, घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और वास्तु के दोष होने के बावजूद भी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनका जन्मदिन 20 जून को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 20 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर में किसी तरह का जोखिम ना लें, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगलवार को धन का, रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को धन या कर्ज लेना देना उचित नहीं होता और देना तो बिल्कुल उचित नहीं होता, क्योंकि अगर आप मंगलवार को पैसा देते हैं, बांटते हैं, तो इससे दिया हुआ धन डूब सकता है। लेकिन अगर मिल रहा है तो चलिए तब भी ठीक है, लेने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा देना, पैसा बांटना, पैसा लगाना, पैसे संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेना, ये मंगलवार को करने से बचना चाहिए।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का समय और उसका उपाय क्या है।
1: दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा, ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय शुभ पहर का समय रहेगा।
0: और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम जानते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा पढ़ाई के हालात कैसे रहते हैं। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इनकी शिक्षा सामान्यतः मध्यम रहती है, अक्सर जीवन के मध्य में 35-40 के बाद ये दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
0: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, अगर आपका छोटा बच्चा है, 12 साल या 12 साल से कम उम्र का है और जिद बहुत करता है तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे के गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चांदी का एक चंद्रमा धारण करवाइएगा। रोज जब बच्चा सुबह नहाकर तैयार हो जाता है उसके कंठ पर छोटा सा हल्दी का तिलक लगाइएगा और बच्चे की सद्बुद्धि के लिए बच्चे की माता रोज सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Hey, sports fans. TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're gonna feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए, और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापना है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
3: जहाँ पर
2: उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेस जो है
3: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है वो लंगर फैसिलिटी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ, यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
4: मैं यहाँ बज़ाते जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था। आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की, यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है, और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया, उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई, और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय, जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी, और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आईं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी दिवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना, वो ये है तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता आ रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
5: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है।
1: मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
5: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे हैं कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो 4 दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। परसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
5: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा यहाँ?
5: बस
1: प्रार्थना,
5: मास वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की, कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह की कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार है और उनकी शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08 और 42 सेकंड पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जाने के बाद जो अर्ध नक्षत्र का पहला चरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो चरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है, लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
4: Good news today is really good. It's good. उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा, करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
7: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रांग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने,
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से
1: दोबारा? तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है क्योंकि पेपर लीक होना गलत है, लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
4: सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अपीयर होना है और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुँचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
5: 21 जून यानी रविवार को देश भर में री नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
0: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है, लिहाजा उन्हें समझा बुझा कर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
6: देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए, आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर।
7: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही जो सरकार लगी है ये उन्हीं के भले के लिए लगी है, तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
6: आपको लगता है
7: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
0: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
6: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
8: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्जाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे, पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्जाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीजन ये है कि NMC है जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है, तो आमतौर पे क्या होता था कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
0: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर ऑपरेशन विजय के दौरान आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल की गई थी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने तलाशी और सफाई अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल की माता खीर भवानी यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के नगरोटा से लगभग 8,000 से 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था कल रवाना होगा। राहत और पुनर्वास विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए JK रोड ट्रांसपोर्ट की लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई हैं। यात्रा के लिए हर साल की तरह इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माता खीर भवानी का सालाना पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। आज CM योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये म्यूजियम आने वाले समय में अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भी आराधना के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और चार्जशीट देने तक की प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। शाह के मुताबिक कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने इसके बाद एआई के जरिए डेटा का आकलन करके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करने की बात कही।
9: अबाश श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी

0: बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गांव के जल संकट का समाधान करना है। श्रमदान की ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अकोला के चांदूर गांव की है, जहां फावड़े और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए। इन दोस्तों ने सूखी और सिकुड़ी मोरना नदी को फिर से जीवन देने का जो संकल्प लिया वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है।
1: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहाँ पर खड़े हैं, उस मोरना नदी का जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है। क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे, लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
0: गर्मी के दिनों में जिस मोरना नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे, वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है, लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रमदान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
2: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया, दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते है, तो काम इस कदर का करे कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
0: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरना नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
3: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी नहीं गई, लेकिन हम ये कर नहीं सके, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारा भी विश्वास नहीं बनता, क्योंकि हमने जब चालू किया गाँव यानी स्वच्छता मुहिम जब चालू की हमने, तो हमने शुरुआत में ऐसे 10-20 लोग हम जो बैच थे उन्होंने चालू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना ये बहुत हो चुका है, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लेंगे। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि ये इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।
0: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है। यहाँ दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है, ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है। लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
1: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है। बारिश का रुख जो है वो अब मानसून

0: आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी, और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर एक महीने से, डेढ़ महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग है, और ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर हुई है। और इन सभी बचपन के दोस्तों ने इस साल जो है कम बारिश होने के बाद में भी जो है नदी में ग्रीष्मकाल के दिन, जो अकोला और आसपास में काफी गर्मी होती है, ग्रीष्मकाल के दिनों में नदी में तैरने के लिए पानी हो, यही सोचकर ये काम अपने हाथ में लिया। और उन्होंने लगभग 60 से 70% जो है इस नदी का 5 किलोमीटर तक का जो है इलाका साफ कर दिया।
1: इस साल कम बारिश की आशंका के बीच चांदूर गांव के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है, और संदेश ये है कि पानी बचाना है तो मिलकर काम करना होगा, और अब उम्मीद है कि इस नदी में साल भर पानी रहेगा। इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिलेगा। अकोला से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा, इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। ये तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूं तो भेड़ों को चराने गड़ेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका, और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गड़ेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
2: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात बिहार के दूसरे वैभव, बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का दूसरा वैभव और बिहार क्रिकेट का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है।

0: बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहाँ के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। अक्षरा ने नाबाद 306 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। ऐसा करके 15 साल की अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मुंबई की ईरा गुप्ता के नाम है। ईरा ने घरेलू राज्य स्तर मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे। उनकी पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे।
1: जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे।
0: अक्षरा क्रिकेट को मिशन की तरह देखती हैं। वो जीवन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट को भी जीवन का लक्ष्य बताती हैं।
1: भैया लोग खेलते थे क्रिकेट तो उनको देख के मेरे को भी लगा हमको भी खेलना है, तो फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे उस टाइम से।
2: कोई कोच भी है?
1: कोच मेरे अंकल ही हैं और भैया लोग।
0: अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी वाले इस वनडे में शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। ऐतिहासिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर 19 टीम ए ने 40 ओवर में 5 विकेट पर 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अक्षरा बवाल बनकर उभरी। बिहार की रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता 14 साल से ही घरेलू मुकाबलों में अपना जौहर दिखा रही हैं, जिसके दम पर उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में जगह मिली। बीसीसीआई की आयु श्रेणी टूर्नामेंट्स के चारों प्रमुख फॉर्मेट में एक ही सीजन 2024-25 में खेलने वाली अक्षरा देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अक्षरा जब केवल 8 साल की थी तो पहली बार उन्होंने बल्ला पकड़ा था। अक्षरा के पिता राज किशोर शाह रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं और उनकी माँ रीना देवी एक गृहिणी है। शाह ने घर के पास बगीचे में एक नेट लगवाया था ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। 2024 में अक्षरा को बिहार अंडर 19 महिला टीम के लिए चुना गया और कुछ वक्त बाद 14 साल की उम्र में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। शानदार खेल दिखाने के लिए अक्षरा को सबकी तारीफ मिल रही है। बिहार से रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्र ने भी अक्षरा को बधाई दी और भविष्य में उसके सितारा क्रिकेटर के तौर पर उभरने की उम्मीद जताई।
3: कि आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहा है जाते हैं वाइज में, तो हो सकता है कि जाते हैं आने वाले टाइम में आप इंडिया खेलते हुए देखें इसको।
0: अक्षरा ने क्रिकेट के लिए ना किसी अकेडमी का सहारा लिया और ना ही कोई खास कोच चुना। क्रिकेट को जुनून बनाया, घर के पीछे प्रैक्टिस कर क्रिकेटर बनने का सपना देखा और पूरा किया। आज ट्रिपल सेंचुरी की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को उनमें वैभव सूर्यवंशी वाली हनक दिखती है, इसलिए अक्षरा को वैभव के बाद बिहार का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38,25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13,00,000 भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए, और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापना है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
3: जहाँ पर
2: उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेस जो है
3: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है, वो लंगर फैसिलिटी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
4: मैं यहाँ बज़ाते जम्मू कश्मीर के वजीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतजाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था। आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है, और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया, उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई, और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय, जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी, और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आईं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे, तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी दिवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना, वो ये है तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता आ रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
5: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है।
1: मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
5: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे हैं कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो चार दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। परसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं की जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
5: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा या?
5: बस
1: प्रार्थना,
5: मास वापसी हो जाए, अच्छी तरह अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह की कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार हैं और उनकी शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। बाईस जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08 और 42 सेकंड पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो यही से उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है, लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है, तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: To right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: and that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
8: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की है।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रांग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने,
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से
1: दोबारा? तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
4: तुरंत सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अवेयर होना है, और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुँचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
5: 21 जून यानी रविवार को देश भर में रीनीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था, और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
0: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है। लिहाजा उन्हें समझा बुझा कर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा, जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
6: हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए। आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर।
7: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही जो सरकार लगी है ये उन्हीं के भले के लिए लगी है। तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
6: आपको लगता है
7: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
0: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
6: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
8: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्ज़ाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीज़न ये है कि NMC है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पे क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
0: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोलोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोलोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर ऑपरेशन विजय के दौरान आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल की गई थी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने तलाशी और सफाई अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल की माता खीर भवानी यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के नगरोटा से लगभग 8,000 से 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था कल रवाना होगा। राहत और पुनर्वास विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए JK रोड ट्रांसपोर्ट की लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई हैं। यात्रा के लिए हर साल की तरह इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माता खीर भवानी का सालाना पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। जहां उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये म्यूजियम आने वाले समय में अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भी आराधना के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और चार्जशीट देने तक की प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। शाह के मुताबिक कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने इसके बाद एआई के जरिए डेटा का आकलन करके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करने की बात कही। अबार श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी तो गांव जीवित रहेगा। इस संदेश के साथ ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श बन गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चांदूर गांव में स्थानीय निवासियों और बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गाँव के जल संकट का समाधान करना है।

0: बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए। इन दोस्तों ने सूखी और सिकुड़ी मोरना नदी को फिर से जीवन देने का जो संकल्प लिया वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है।
1: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहां पर खड़े हैं, उस मोरना नदी के जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है, क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे, लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
0: गर्मी के दिनों में जिस मोरना नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है, लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रम दान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
2: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया, दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, तो काम इस कदर का करें कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
0: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरना नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
3: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी नहीं गई, लेकिन हम ये कर नहीं सके, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारा तो ये हमारा भी विश्वास नहीं बनता, क्योंकि हमने जब चालू किया गांव यानी स्वच्छता मुहिम जब चालू की हमने, तो हमने शुरुआत में ऐसे 10-20 लोग हम जो बैच थे उन्होंने चालू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना ये बहुत हो चुका है, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लीजिएगा। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।
0: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए JCB, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है। यहां दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है। ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है, लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
1: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है। बारिश का रुख जो है वो अब मानसून आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी, और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर 1 महीने से 1.5 महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग हैं,

0: ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर हुई है। और इन सभी बचपन के दोस्तों ने इस साल जो है कम बारिश होने के बाद में भी जो है नदी में ग्रीष्म काल के दिन जो अकोला और आसपास में काफी गर्मी होती है ग्रीष्म काल के दिनों में, नदी में तैरने के लिए पानी हो यही सोचकर ये काम अपने हाथ में लिया। और उन्होंने लगभग 60 से 70% जो है इस नदी का 5 किलोमीटर तक का जो है इलाका साफ कर दिया।
1: इस साल कम बारिश की आशंका के बीच चांदूर गांव के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये है कि पानी बचाना है तो मिलकर काम करना होगा। और अब उम्मीद है कि इस नदी में साल भर पानी रहेगा, इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिलेगा। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा, इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। ये तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भेड़ों को चराने गडेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका। और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गडेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
2: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात बिहार के दूसरे वैभव की। बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का दूसरा वैभव और बिहार क्रिकेट का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है।

0: बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहां के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। अक्षरा ने नाबाद 306 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। ऐसा करके 15 साल की अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मुंबई की ईरा गुप्ता के नाम है। ईरा ने घरेलू राज्य स्तर मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे। उनकी पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे।
1: जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके, फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे।
0: अक्षरा क्रिकेट को मिशन की तरह देखती हैं। वो जीवन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट को भी जीवन का लक्ष्य बताती हैं।
1: भैया लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मेरे को भी लगा हमको भी खेलना है, तो फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे उस टाइम से।
2: कोई कोच भी है?
1: कोच मेरे अंकल ही हैं और भैया लोग।
0: अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी वाले इस वनडे में शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। ऐतिहासिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर 19 टीम ए ने 40 ओवर में 5 विकेट पर 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अक्षरा बवाल बनकर उभरी। बिहार की रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता 14 साल से ही घरेलू मुकाबलों में अपना जौहर दिखा रही हैं, जिसके दम पर उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में जगह मिली। बीसीसीआई की आयु श्रेणी टूर्नामेंट्स के चारों प्रमुख फॉर्मेट में एक ही सीजन 2024-25 में खेलने वाली अक्षरा देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अक्षरा जब केवल 8 साल की थी तो पहली बार उन्होंने बल्ला पकड़ा था। अक्षरा के पिता राज किशोर शाह रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं और उनकी मां रीना देवी एक गृहिणी है। शाह ने घर के पास बगीचे में एक नेट लगवाया था ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। 2024 में अक्षरा को बिहार अंडर 19 महिला टीम के लिए चुना गया और कुछ वक्त बाद 14 साल की उम्र में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। शानदार खेल दिखाने के लिए अक्षरा को सबकी तारीफ मिल रही है। बिहार से रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्र ने भी अक्षरा को बधाई दी और भविष्य में उसके सितारा क्रिकेटर के तौर पर उभरने की उम्मीद जताई।
3: कि आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहा है, जाते हैं वाइज में, तो हो सकता है कि जाते आने वाले टाइम में आप इंडिया खेलते हुए देखें इसको।
0: अक्षरा ने क्रिकेट के लिए ना किसी अकेडमी का सहारा लिया और ना ही कोई खास कोच चुना। क्रिकेट को जुनून बनाया, घर के पीछे प्रैक्टिस कर क्रिकेटर बनने का सपना देखा और पूरा किया। आज ट्रिपल सेंचुरी की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को उनमें वैभव सूर्यवंशी वाली हनक दिखती है, इसलिए अक्षरा को वैभव के बाद बिहार का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए, कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38,25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13,00,000 भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए, और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: तो यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापना है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
1: जहाँ पर भोजन वगैरह,
2: जहाँ पर उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेज जो है
1: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है, वो लंगर फैसिलिटी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
3: मैं यहाँ बजाते जम्मू कश्मीर के वजीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतजाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था, आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आईं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकीं कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी देवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहां पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है, तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
4: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई
1: है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
4: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो 4 दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। परसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
4: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा यहाँ?
4: बस मास वापसी हो जाए, अच्छी तरह अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की, कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अंबुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह की कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार है और उनकी शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। इस जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: पर असर डालती है, तो कुछ दिल को।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है। बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
7: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रॉन्ग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने?
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
1: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
4: सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को एडमिट होना है, और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुँचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
5: 21 जून यानी रविवार को देश भर में रीनीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था, और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
0: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है, लिहाजा उन्हें समझा बुझा कर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा, जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
6: देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए, आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर।
7: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही, जो सरकार लगी है, ये उन्हीं के भले के लिए लगी है। तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
6: आपको लगता है
7: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
0: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
6: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
8: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्ज़ाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीज़न ये है कि NMC है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पर क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
0: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर ऑपरेशन विजय के दौरान आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल की गई थी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां लगातार जारी है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने तलाशी और सफाई अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल की माता खीर भवानी यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के नगरोटा से लगभग 8,000 से 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था कल रवाना होगा। राहत और पुनर्वास विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए JK रोड ट्रांसपोर्ट की लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई हैं। यात्रा के लिए हर साल की तरह इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माता खीर भवानी का सालाना पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। आज CM योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये म्यूजियम आने वाले समय में अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भी आराधना के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और चार्जशीट देने तक की प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। शाह के मुताबिक कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने इसके बाद एआई के जरिए डेटा का आकलन करके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करने की बात कही। अब श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी तो गांव जीवित रहेगा। इस संदेश के साथ ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श बन गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चांदूर गांव में स्थानीय निवासियों और बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गाँव के जल संकट का समाधान करना है। की ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अकोला के चांदूर गांव की है, जहां फावड़े और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले

0: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहाँ पर खड़े हैं उस मोरणा नदी के जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है, क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे। लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
1: गर्मी के दिनों में जिस मोरणा नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे, वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है। लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रम दान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
2: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया, दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, तो काम इस कदर का करें कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
1: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरणा नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
3: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी नहीं गई, लेकिन हम ये कर नहीं सके, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारा भी विश्वास नहीं बनता, क्योंकि हमने जब चालू किया गांव यानी स्वच्छता मुहिम जब चालू की हमने, तो हमने शुरुआत में ऐसे 10-20 लोग हम जो बैच थे उन्होंने चालू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना, ये बहुत हो चुका है, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लेगा। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।
1: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए JCB, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है। यहां दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है। ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है। लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
0: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है। बारिश का रुख जो है वो अब मानसून आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी, और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर 1 महीने से 1.5 महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग हैं और ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर हुई है। और इन सभी बचपन के दोस्तों ने इस साल जो है कम बारिश होने के बाद में भी जो है नदी में

0: ग्रीष्म काल के दिन जो अकोला और आसपास में काफी गर्मी होती है, ग्रीष्म काल के दिनों में नदी में तैरने के लिए पानी हो, यही सोचकर ये काम अपने हाथ में लिया और उन्होंने लगभग 60 से 70% जो है इस नदी का 5 किलोमीटर तक का जो है इलाका साफ कर दिया।
1: इस साल कम बारिश की आशंका के बीच चांदूर गांव के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये है कि पानी बचाना है तो मिलकर काम करना होगा और अब उम्मीद है कि इस नदी में साल भर पानी रहेगा। इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिलेगा। अकोला से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा, इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। ये तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूं तो भेड़ों को चराने गड़ेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गड़ेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
2: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बाद बिहार के दूसरे वैभव, बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का दूसरा वैभव और बिहार क्रिकेट का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है।

0: बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहाँ के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। अक्षरा ने नाबाद 306 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। ऐसा करके 15 साल की अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मुंबई की ईरा गुप्ता के नाम है। ईरा ने घरेलू राज्य स्तर मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे। उनकी पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे।
1: जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके, फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे।
0: अक्षरा क्रिकेट को मिशन की तरह देखती हैं। वो जीवन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट को भी जीवन का लक्ष्य बताती हैं।
1: भैया लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मेरे को भी लगा हमको भी खेलना है, तो फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे उस टाइम से।
2: कोई कोच भी है?
1: कोच मेरे अंकल ही हैं और भैया लोग।
0: अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी वाले इस वनडे में शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। ऐतिहासिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर 19 टीम ए ने 40 ओवर में 5 विकेट पर 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अक्षरा बवाल बनकर उभरी। बिहार की रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता 14 साल से ही घरेलू मुकाबलों में अपना जौहर दिखा रही हैं, जिसके दम पर उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में जगह मिली। बीसीसीआई की आयु श्रेणी टूर्नामेंट्स के चारों प्रमुख फॉर्मेट में एक ही सीजन 2024-25 में खेलने वाली अक्षरा देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अक्षरा जब केवल 8 साल की थी तो पहली बार उन्होंने बल्ला पकड़ा था। अक्षरा के पिता राज किशोर शाह रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं और उनकी मां रीना देवी एक गृहिणी है। शाह ने घर के पास बगीचे में एक नेट लगवाया था ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। 2024 में अक्षरा को बिहार अंडर 19 महिला टीम के लिए चुना गया और कुछ वक्त बाद 14 साल की उम्र में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। शानदार खेल दिखाने के लिए अक्षरा को सबकी तारीफ मिल रही है। बिहार से रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्र ने भी अक्षरा को बधाई दी और भविष्य में उसके सितारा क्रिकेटर के तौर पर उभरने की उम्मीद जताई।
3: कि आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहा है जाते हैं वाइज में, तो हो सकता है कि जाते आने वाले टाइम में आप इंडिया खेलते हुए देखें इसको।
0: अक्षरा ने क्रिकेट के लिए ना किसी अकेडमी का सहारा लिया और ना ही कोई खास कोच चुना। क्रिकेट को जुनून बनाया, घर के पीछे प्रैक्टिस कर क्रिकेटर बनने का सपना देखा और पूरा किया। आज ट्रिपल सेंचुरी की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को उनमें वैभव सूर्यवंशी वाली हनक दिखती है, इसलिए अक्षरा को वैभव के बाद बिहार का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
5: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38,25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13,00,000 भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए, और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापन है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
1: जहाँ पर भोजन वगैरह,
2: जहाँ पर उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेस जो है,
1: तो ये निशुल्क रहेगी सेवा?
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है वो लंगर फैसिलिटी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
3: मैं यहाँ बजाते जम्मू कश्मीर के वजीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतजाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था। आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की, यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है, और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया, उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई, और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय, जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी, और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आईं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी दिवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना, वो ये है तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता आ रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
4: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है।
1: मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
4: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे हैं कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो 4 दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। परसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
4: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा यहाँ?
4: बस
1: प्रार्थना,
4: मास वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह की कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार हैं और उनकी शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल देंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है। प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ चरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला चरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो चरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल, भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 38.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रांग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने?
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
1: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।
3: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में। उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
0: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
4: सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अपीयर होना है, और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
5: 21 जून यानी रविवार को देश भर में री नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था, और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
0: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है, लिहाजा उन्हें समझा बुझाकर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
6: देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए, आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर।
7: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही जो सरकार लगी है, ये उन्हीं के भले के लिए लगी है। तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
6: आपको लगता है
7: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
0: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
6: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
8: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्जाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्जाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीजन ये है कि NMC है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पर क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
0: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने करगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर अबाध श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी तो गाँव जीवित रहेगा। इस संदेश के साथ ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श बन गया। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चांदूर गांव में स्थानीय निवासियों और बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गांव के जल संकट का समाधान करना है। की ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अकोला के चांदूर गांव की है, जहां फावड़े और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए। इन दोस्तों ने सूखी और सिकुड़ी मोरना नदी को फिर से जीवन देने का जो संकल्प लिया वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है।
9: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहां पर खड़े हैं उस मोरना नदी के जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है, क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे, लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
0: गर्मी के दिनों में जिस मोरना नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे, वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है, लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रमदान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
10: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया, दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, तो काम इस कदर का करे कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
0: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरना नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
10: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी नहीं गई, लेकिन हम ये कर नहीं सके, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारा तो ये हमारा भी विश्वास नहीं बनता, क्योंकि हमने जब चालू किया गांव यानी स्वच्छता मुहिम जब चालू की हमने, तो हमने शुरुआत में ऐसे 10-20 लोग हम जो बैच थे उन्होंने चालू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना, ये बहुत हो चुका, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लेंगे। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि ये इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।

0: पर बड़ा हो जाएगा।
1: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है। यहां दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है। ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है। लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
2: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है। बारिश का रुख जो है वो अब मानसून आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी, और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर एक महीने से, डेढ़ महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग है, और ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर।
1: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा। इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूं तो भेड़ों को चराने गड़ेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका। और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गड़ेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
1: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात बिहार के दूसरे वैभव है। बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई।
0: क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का

0: बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहाँ के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। अक्षरा ने नाबाद 306 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। ऐसा करके 15 साल की अक्षरा महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। महिला घरेलू क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मुंबई की ईरा गुप्ता के नाम है। ईरा ने घरेलू राज्य स्तर मैच में नाबाद 346 रन बनाए थे। उनकी पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे।
1: जो अच्छा चल रहा है उसको यही कंटिन्यू करके, फिर जैसे भी मतलब इसको कंटिन्यू करे और ऐसे ही खेलते रहे आगे।
0: अक्षरा क्रिकेट को मिशन की तरह देखती हैं। वो जीवन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट को भी जीवन का लक्ष्य बताती हैं।
1: भैया लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मेरे को भी लगा हमको भी खेलना है, तो फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे उस टाइम से।
2: कोई कोच भी है?
1: कोच मेरे अंकल ही हैं और भैया लोग।
0: अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी वाले इस वनडे में शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और महज 16 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और टाइमिंग को दर्शाता है। ऐतिहासिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर 19 टीम ए ने 40 ओवर में 5 विकेट पर 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अक्षरा बवाल बनकर उभरी। बिहार की रक्सौल की रहने वाली अक्षरा गुप्ता 14 साल से ही घरेलू मुकाबलों में अपना जौहर दिखा रही हैं, जिसके दम पर उन्हें बिहार की सीनियर महिला टीम में जगह मिली। बीसीसीआई की आयु श्रेणी टूर्नामेंट्स के चारों प्रमुख फॉर्मेट में एक ही सीजन 2024-25 में खेलने वाली अक्षरा देश की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। अक्षरा जब केवल 8 साल की थी तो पहली बार उन्होंने बल्ला पकड़ा था। अक्षरा के पिता राज किशोर शाह रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं और उनकी मां रीना देवी एक गृहिणी है। शाह ने घर के पास बगीचे में एक नेट लगवाया था ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। 2024 में अक्षरा को बिहार अंडर 19 महिला टीम के लिए चुना गया और कुछ वक्त बाद 14 साल की उम्र में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। शानदार खेल दिखाने के लिए अक्षरा को सबकी तारीफ मिल रही है। बिहार से रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्र ने भी अक्षरा को बधाई दी और भविष्य में उसके सितारा क्रिकेटर के तौर पर उभरने की उम्मीद जताई।
3: कि आने वाले टाइम में जैसे वैभव हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहा है जाते हैं वाइज में, तो हो सकता है कि जाते आने वाले टाइम में आप इंडिया खेलते हुए देखें इसको।
0: अक्षरा ने क्रिकेट के लिए ना किसी अकेडमी का सहारा लिया और ना ही कोई खास कोच चुना। क्रिकेट को जुनून बनाया, घर के पीछे प्रैक्टिस कर क्रिकेटर बनने का सपना देखा और पूरा किया। आज ट्रिपल सेंचुरी की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को उनमें वैभव सूर्यवंशी वाली हनक दिखती है, इसलिए अक्षरा को वैभव के बाद बिहार का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
5: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वॉशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38,25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा, करीब 13,00,000 भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए। और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा। और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापन है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5ों जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
1: जहाँ पर भोजन वगैरह,
2: जहाँ पर उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200+ बसेज जो है
1: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है। और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है, वो लंगर फैसिलिटी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
3: मैं यहाँ बजाते जम्मू कश्मीर के वजीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतजाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था, आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफ़ी क्रोधित थी, काफ़ी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आई, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी देवसर में है, मंजगाम में है, लखटीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है, तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुंचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुंचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
4: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई
1: है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
4: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुँच कर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो 4 दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। परसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
4: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा यहाँ?
4: बस प्रार्थना, मास वापसी हो जाए, अच्छी तरह अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की, कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार हैं और उनकी शक्ति पीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है। वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माताजी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माताजी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माताजी से जो भी कुछ मांगेगा तो माताजी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: गुड न्यूज टुडे शिमला के मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस बार की गर्मियों में शिमला का मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे कि स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है।

0: पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर लोगों का हुजूम है। इसकी वजह है शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम। रोज ही सुबह चटक धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल जाता है और फिर बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि इस बार पूरे गर्मियों में लगभग हर वीकेंड पर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा और कूल कूल बना हुआ है। सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत चिली सा वेदर हो जाता है तो अच्छा है। बहुत चिल सा मौसम है, लोग भी बहुत अच्छे है और ये मॉल रोड तो बहुत ही सुंदर है।
2: इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे खेलने। हम गतका मार्शल आर्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ से हम स्पेशल पंजाब का नगर कीर्तन छोड़ के हम यहाँ पे खेलने हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और दूसरा ये है कि सभी लोग इधर आ रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमें भी वेदर अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इसका वेदर व्यू चेक करने भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: मैदानी इलाकों में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 40 के पार है। इसी वजह से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
3: पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, गर्मियों में वो मौसम जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को छू रहा है और उससे भी ऊपर कई जगहों पर जा रहा है, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला समेत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि अब पर्यटन कारोबार में उछाल की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1 मई से 15 जून के भीतर शिमला में करीब 15 लाख गाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था से जाम जैसी परिस्थितियां शहर के भीतर कम ही देखने को मिल रही हैं। पुलिस का दावा है कि शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेज करने में आसानी हो रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी टूरिस्ट के आने से खुश हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के आने से कमाई अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेगा तैयारी। वाशिंगटन डीसी में योग के रंग में रंगा ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक 38.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा, करीब 13 लाख भक्त। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: और अब बात करते हैं नीट री एग्जाम की। 21 जून को देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इस बार एयरफोर्स की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच नीट के प्रश्न पत्रों को देश भर में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये पूरी कवायद परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और एनटीए ने की है।

0: बाद 21 जून को पूरे देश में नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाने वाली है। पेपर लीक के बाद दोबारा हो रही इस परीक्षा को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपरों को उतारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रॉन्ग रूम की ओर रवाना कर दिया गया। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। देश का कोचिंग कैपिटल कोटा भी नीट की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: 2 साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
2: पिछला दिया था आपने,
1: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
2: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से
1: दोबारा? तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था मतलब।
0: कोटा के चौक चौराहों पर सुबह सुबह छात्र कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना दोबारा नहीं होगी।